राम राम, सुप्रभा, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग आबू। और हमें खेद है कि सुबह 3 बजे से आप रेडियो सुन नहीं पा रहे थे सही से, और कुछ कार्यक्रम आप नहीं सुन पाए। अभी आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग आबू रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, और जो टेक्निकल ग्लिच था वो अभी दूर हो गया है। और आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 94-14-15-14-15 पर कि आप सही से सुन पा रहे हैं मुझे या नहीं। तो आज के इस गुड मॉर्निंग आबू कार्यक्रम के अंतर्गत हम आज के पंचांग के बारे में जानेंगे, वेदर रिपोर्ट रहेगा, साथ ही साथ ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से सुनेंगे समाचार प्रभात 8:45 पर। और इसके साथ साथ देश दुनिया के इन्फॉर्मेशन के ऊपर नज़र भी डालेंगे, कुछ बातें करेंगे जो जॉब से जुड़ी हुई है, यूथ के बातें जो जॉब रिलेटेड है वो भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत करेंगे। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते।

वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अबू और मैं हूँ आरजे सुभाष। शक समय 1948 से आज श्रावण शुक्ल दशमी शनिवार है। विक्रम समय 2083 है। अंग्रेजी तारीख है 22 अगस्त सन 2026। सूर्य दक्षिणायन उत्तर गोल वर्षा ऋतु। राहु काल 9 बजे से लेकर के 10 बजे

करके 30 मिनट तक, दशमी तिथि अगले दिन तड़के 2 बजे से लेकर और उसके उपरांत एकादशी तिथि का आरंभ है। ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर 2:49 तक उपरांत मूल नक्षत्र का आरंभ है। विश्वकुंभ योग पूरी रात्रि तक रहेगा। तोतिल करण दोपहर 12:48 तक उपरांत गरज करण का आरंभ है। चंद्रमा दोपहर 2:49 तक वृश्चिक राशि पर उपरांत धनु राशि पर संचार करेगा। सूर्योदय का समय 5:54 पर रहा है। सूर्यास्त का समय 6:54 पर शाम को है। चंद्रोदय का समय दोपहर 3:06 पर। चंद्र अस्त का समय रात्रि 1:01। और सूर्यदेव सिंह राशि में स्थित है। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में दोपहर 2:49 तक फिर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 3:55 से 4:41 तक था। अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:50 तक रहेगा। ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी पंचांग के साथ। इस्लामी हिजरी 1448 से 08 रबीउल अव्वल हफ्ता कल्ब है आज के दिन।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ बुक, जीवन एक बहुत सुंदर किताब है। रीड इट, उसको पढ़ो, है ना। कुछ एक अच्छी अच्छी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। एक किताब रिसेंटली जो मैंने पढ़ी है और वो है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। और एक और किताब मुझे अभी रिसेंटली बहुत अच्छी लगी थी, एंड दैट वाज हु वुड क्राई व्हेन यू वुड डाई। जब हमारी मृत्यु होगी ना तो कौन कौन लोग रोएंगे। जब मैं किताब पढ़ने लगा तो मुझे ये एहसास हुआ, मृत्यु के नजदीक जब हम हैं और अगर हमने अपने लाइफ को रिवाइंड करके देखा, अगर हमारे जीवन के प्रति हमारी बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आया, तो मींस माय लाइफ इज अ वेरी रियल सक्सेस। हमें इस जीवन को देखकर खुशी में रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक बातों को फॉलो करना है। हो सके ना तो बीच बीच में उपवास करने का। कौन सा उपवास करना है, कोई शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है, लेकिन उपवास करना है दो बातों का, और एक है न्यूज़पेपर्स का। हफ्ते में एक दिन न्यूज़पेपर को थोड़ा बंद करो, हफ्ते में एक दिन टीवी को थोड़ा बंद करो, और हो सके तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। मैं आपको कुछ एक अच्छे और किताबों का सजेशन करूंगा, अगर हो सके तो वो किताबों को जरूर पढ़ना। एंड दैट इज नंबर वन इज इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, जो आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मिलेगा। इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा रिटन बाय आदरणीय जगदीश भाई जी, बहुत अच्छी किताब है। एक और किताब मैं आपको सजेस्ट करूंगा और वो है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये भी किताब हो सके तो आप जरूर खरीदना और पढ़ना। और एक जो सबसे अच्छी किताब मुझे लगी है वो आप जरूर पढ़ना, और वो है आदिदेव ब्रह्मा। हिंदी में अवेलेबल है, और वो है ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। और जैसे जैसे आप ये किताबें पढ़ेंगे, आपको ये समझ में आएगी कि यस, दुनिया जो है किस तरफ बढ़ रही है, और कैसे ये दुनिया परिवर्तन हो रहा है, और कैसी एक सुंदर दुनिया की स्थापना होगी।
0: अभी बजे हैं सुबह के 8। स्वयं के प्रति एक मिनट का समय दें।

ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ बहुत पुराना हमारा रिश्ता है, मेरे ख्याल से 25 साल से भी ज़्यादा हो रहे होंगे, और बहुत अच्छा लगता है। इतने सिंपल लोग हैं, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। इतनी शांत प्रकृति के लोग हैं, इतनी दुनिया में शांतता हो सकती है ये उनको देख के महसूस होता है और अच्छा लगता है। उनकी सीख में सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर किस तरह शांति पैदा की जाए, इसलिए उनका लोगो भी है ओम शांति। जब भी किसी को मिलते तो ओम शांति बोलते हैं। और सबसे बड़ा दुनिया का वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और मैं फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ इस संस्था को।

0: पुनः आप सभी का स्वागत है। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर 8:02 रेडियो मधुबन की घड़ी पर। कहते हैं मौसम भी कितना खूबसूरत कहानीकार है, कभी धूप के रंग भरता है तो कभी बादलों की चादर ओढ़ा देता है। तो आइए जाने आज आसमान का मिजाज कैसा रहेगा, कहाँ होगी बारिश की दस्तक और कहाँ खिलेगी धूप। तो पेश है आपके लिए आज के मौसम की जानकारी। सबसे पहले चलेंगे राजधानी जयपुर की ओर। यहाँ पर 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। बारिश होने की संभावना रात्रि के समय 70% तक है, दिन के समय बारिश होने की संभावना फिलहाल नहीं है। उदयपुर के बारे में बात करें, 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर, बारिश होने की संभावना फिलवक्त नहीं है। बात करें आबू रोड की, यहाँ पर 24 डिग्री न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक जा सकता है। 50-50 चांसेस है बारिश होने की सुबह के समय, और रात्रि के समय वर्षा की संभावना बहुत ही कम है। बात करें माउंट आबू की, 19 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ पर दिन के समय बारिश होने की संभावना 63% तक है और रात्रि के समय लगभग वर्षा की संभावना 50% तक है। बात करें अगर पाली जिले के बारे में, यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक जा सकता है। बारिश होने की संभावना फिलवक्त नहीं है पाली जिले में। इस मोड पर एक हमारे कोई श्रोता जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आपका।
1: नमस्ते,
0: गुड मॉर्निंग सुरेश भाई जी, बढ़िया, आप कैसे हैं?
1: बस बहुत अच्छे हैं, जैसा है बात कर रहे हैं आपसे।
0: जी जी जी,
1: बहुत अच्छे हैं।
0: मौसम का हाल क्या है वहाँ पे?
1: मौसम तो दीदी अभी साफ है, कोई बारिश की कोई संभावना नहीं है अभी।
0: जी जी, साफ है, इसका मतलब
1: अभी हवामान वाले तो बोल रहे हैं कि अभी तो जैसे से बारिश आएगी, बहुत बारिश आएगी ऐसा बोल रहा है, लेकिन अभी तो मौसम साफ है, अभी तो कोई धूप है कोई आने की संभावना नहीं, लेकिन शाम को थोड़ा सा जो परिवर्तन होता है मौसम में।
0: जी जी,
1: शाम को थोड़ी बारिश आने की संभावना रहती है, शाम को 6-7 बजे।
0: जी जी,
1: लेकिन दिन को तो नहीं होती है, दिन की तो बिल्कुल साफ होता है
0: जी। ओके, थैंक यू सो मच जानकारी देने के लिए
1: जी। नमस्ते
0: नमस्ते, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सुरेश भाई फ्रॉम जोटाना से बात कर रहे थे। और आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम जोधपुर की ओर। जोधपुर में 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर और बारिश होने की संभावना बिल्कुल नहीं है आज जोधपुर के क्षेत्र में। सूरत के बारे में बात करें तो सूरत में लगभग 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान जाने की संभावना है आज के दिन सूरत में 27 डिग्री सेल्सियस। बादल छाए रहेंगे आसमान पर और बारिश होने की संभावना दिन के समय लगभग 63% तक है, रात्रि के समय 60% तक है। और यहाँ पर चेतावनी है पीली निगरानी यानी कि येलो कलर की चेतावना भारी बारिश के लिए है आज सूरत में। और इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए जानते हैं मेहसाना के बारे में। मेहसाना का हालचाल है, 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर, बारिश होने की संभावना दिन के समय 50% तक है, रात्रि के समय नहीं है। राजकोट में 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की संभावना बहुत ही कम है। गांधीनगर अहमदाबाद के अंचल में 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम, अधिकतम 33 डिग्री तक जा सकता है। और सूरज के साथ साथ बादल देखने को मिलेंगे, चांद के साथ साथ भी बादल देखने को मिलेंगे, लेकिन बारिश होने की बहुत ही कम संभावना है। राजधानी दिल्ली में 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। एक या दो बार बौछार होने की संभावना है राजधानी दिल्ली में। कोलकाता के बारे में बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम 27 डिग्री और जोरदार बारिश होने की संभावना है कोलकाता में। बेंगलुरु में लगभग 55% तक चांसेस है बारिश होने की। 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक जा सकता है। मुंबई के बारे में बात करें तो यहाँ पर 31 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है और बारिश होने की संभावना 62% तक है और रात्रि के समय 67% तक है। चेन्नई के बारे में बात करें, यहाँ पर 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। और यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना दिन के समय ज़्यादा है 55% से अधिक, क्षमा कर रात्रि के समय 74% से ज़्यादा संभावना है। चेन्नई में आज जोरदार बारिश की और दिन के समय 55% तक संभावना है। बात करें अगर हम जिला सिरोही के बारे में, 35 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे, आसमान पर बारिश होने की संभावना है, दिन के समय ज़्यादा है, रात्रि के समय कम है। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे मौसम के साथ। तो आपके अंचल के मौसम के बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। मौसम जैसा भी हो, आपका दिन हमेशा खुशियों और सकारात्मकता से भरा रहे, इसके लिए आप रेडियो मधुबन सुनते रहिए, और छाता हो या फिर धूप का चश्मा तैयार रहिए, क्योंकि मौसम अपना रंग कभी भी बदल सकता है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी क्या तेरे मन में भी राम है। हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले

पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। आइए चलते हैं अबुर रेलवे स्टेशन की ओर, जानते हैं गाड़ियों के बारे में जानकारियां जो अब से 8 घंटे तक अबुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। गाड़ी संख्या है 12547। आगरा कैंट से साबरमती तक जाने वाली ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस 8:25 पर पहुँचेगी। संभावित प्लेटफॉर्म 2 है। अरावली एक्सप्रेस 1407-02 8:30 पर पहुंचेगी। गाड़ी संख्या है 04174 और ये गाड़ी 8:45 पर अबुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। ये वेरावल से चलती हुई प्रयागराज तक जाने वाली स्पेशल ट्रेन है। वेरावल से प्रयागराज जाने वाली एक्सप्रेस 8:45 पर पहुंचेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस 1241 9:05 पर पहुंचेगी। 9:10 पर अजमेर एक्सप्रेस 16210 पहुंचने वाली है। 19224 जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस पहुंचने वाली है 9:45 पर। 10:10 पर जोधपुर बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस 20693 संख्या वाली गाड़ी पहुंचने वाली है। जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 20496 10:30 पर पहुंचेगी। बांद्रा टर्मिनस से भगत की गुटी तक जाने वाली एक्सप्रेस 22965 11:05 पर पहुंचने वाली है। गाड़ी संख्या 19032 योगा एक्सप्रेस 38 देरी से चलती हुई 11:28 पर पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 19412 दौलतपुर से गांधीनगर तक जाने वाली ये एक्सप्रेस 11:43 पर 13 मामूली देरी से चलती हुई संभावित प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर पहुंचने वाली है अबुर रेलवे स्टेशन पर। 14822 साबरमती से जोधपुर जाने वाली एक्सप्रेस 11:40 पर पहुंचेगी 1 प्लेटफॉर्म पर। 19411 गांधीनगर दौलतपुर एक्सप्रेस 12:55 पर पहुंचेगी, संभावित प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 है। वहीं पर साबरमती थवे एक्सप्रेस 19409 1:30 पर पहुंचेगी, संभावित प्लेटफॉर्म 1 है। पुरी से चलती हुई अजमेर तक जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 20823 1:45 पर संभावित प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंचेगी। साबरमती जम्मू तवी एक्सप्रेस 19223 1 प्लेटफॉर्म पर 2:10 पर पहुंचेगी। योगा एक्सप्रेस 19031 1 प्लेटफॉर्म पर 3 पहुंचेगी। जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस 14821 दोपहर बाद यानी कि शाम को 4:05 पर संभावित प्लेटफॉर्म 2 पर पहुंचने वाली है। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे रेलवे इन्फॉर्मेशन के साथ। आइए यहाँ पर लेते हैं एक और अल्पविराम, मिलते हैं अल्पविराम के उस पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मैं हूं सुनील खरे, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में काम करता हूं। अब सुनिए आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन को 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप 8:31 रेडियो मधुबन की घड़ी पर। इस मोड़ पर एक रेडियो मित्र हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो नमस्ते, रेडियो पर आपका स्वागत है।
1: भूरा राम बोल रहा हूँ मैडम।
0: भूरा राम जी कैसे हैं आप?
1: बस आपके दया से बैठे और सुबह सुबह अच्छा हनुमान जी का और दशा माता का भजन सुन रहा था और मैं बोला मगर सुबह सुबह राम राम भी कर दूं।
0: जी जी राम राम राम राम। नाश्ता किया आपने?
1: हाँ नाश्ता कर रहा था बैठ के और भजन भी सुन रहा था।
0: जी जी जी बहुत बढ़िया।
1: अच्छा वो
0: जी
1: अच्छा वो आप कौन उषा बहन जी बोल रहे हैं कौन?
0: नहीं मेरा नाम शुभा है।
1: अच्छा तभी मैं बोला उषा बहन जी से आजकल मुलाकात नहीं हो रही थी।
0: उषा बहन जी एक्चुअली सेवा अर्थ वो जा रहे थे आमतला गाँव में स्कूटी में राजकुमारी जी के साथ, वो भी रेडियो पर प्रेजेंट करते हैं कार्यक्रम, तो दोनों गिर गए।
1: अच्छा,
0: और उषा जी के हाथ में लगी है, मतलब ऑपरेशन हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है।
1: अरे बाप रे भैया। चलो हमारे इधर बोले तो सूरज भाई ने कल मेरे से बात किया था
0: जी,
1: ऐसा ऐसा हो गया तो मैं बोला मैं को एक पूछ लूंगा मैं भी
0: जी,
1: इसीलिए मैंने चलो भगवान करे उनका अच्छा हो और आवे जल्दी।
0: जी जी जल्दी आएंगे जी।
1: ओके ओके
0: जी धन्यवाद धन्यवाद।
1: भजन और आज शनिवार है अच्छा भजन और सुना देना।
0: जी जी बिल्कुल कोशिश करेंगे, धन्यवाद आपका।
1: ओके सर
0: जी, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो ये थे हमारे भूरा राम जी फ्रॉम ओर से। आइए बाजार जगत की ओर चलते हैं। बाजार बढ़ा है या फिर गिरा है, यानी कि चढ़ा है या फिर गिरा है, उसके बारे में जानते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी का क्या हालचाल रहा है कल? भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन उतार चढ़ाव के बाद सपाट बंद हुए। पश्चिम एशिया में बनी अनिश्चितताओं के कारण प्रमुख सूचकांकों की तेजी सीमित रही है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही मामूली बढ़त के साथ बंद हुए हैं। 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 3.11 अंक बढ़ करके 77,540.83 पर लगभग अपरिवर्तित रहा। दिन के कारोबार में ये 77,725.67 के उच्चतम स्तर और 77,445.86 के निम्न स्तर पर रहा है। 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी भी 20.15 अंक यानी कि 0.08% की मामूली बढ़त के साथ 24,252 पर बंद हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स में उछाल ने निवेशकों को बड़े निवेश से रोका। कच्चे तेल की लगातार ऊंची कीमतें भी इसका एक कारण रही और HST वेल्थ के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी ने कहा है कि निवेशक सप्ताहांत से पहले सतर्क रहे। अमेरिका और ईरान के बीच जारी गतिरोध से ऊर्जा बाजारों में भू राजनीतिक जोखिम बना हुआ है। तो सेंसेक्स की कंपनियों में पावर ग्रिड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोटक महिंद्रा बैंक, NTPC, बजाज फिनसर्व और एशियन पेंट्स प्रमुख लाभ में रहे। वहीं पर मारुति, फिर इंटरग्लोब एविएशन, SCL टेक नुकसान में रहे। तो ये कल सेंसेक्स बंद होने तक का हालचाल जान रहे थे हम। आइए सोने और चांदी के बारे में बात करते हैं। 22 अगस्त सोना है 24 कैरेट प्योर गोल्ड 1,85,314 रुपए। वहीं पर 22 कैरेट की बात करें तो 1,69,879 रुपये है और वहीं पर 18 कैरेट है 1,39,032 रुपये हैं 10 ग्राम के हिसाब से। चांदी के बारे में बात करें तो 2,60,100 रुपये है चांदी पर किलोग्राम के हिसाब से, पर ग्राम 260 रुपये 10 पैसे हैं। प्लैटिनम के बारे में बात करें तो प्लैटिनम पर 10 ग्राम है 57,420 रुपये पर ग्राम है 5,742 रुपये। तो ये कुछ सोना और चांदी के बारे में बात की हमने। पेट्रोल और डीजल के ऊपर भी हम नज़र डालते हैं कि क्या कुछ हालचाल है हमारे पेट्रोल और डीजल का भी। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल है 102 रुपये 12 पैसे और राजधानी जयपुर में 113 रुपये 19 पैसे, यानी कि 1 रुपये कम हुई है हमारे राजस्थान में पेट्रोल की कीमत। डीजल के बारे में बात करते हैं, डीजल है राजधानी दिल्ली में 95 रुपये 20 पैसे और राजधानी जयपुर में है 98 रुपये 25 पैसे, 96 पैसे कम हुई है डीजल। और वहीं पर एलपीजी के बारे में अगर बात की जाए तो डोमेस्टिक है 941 रुपये 50 पैसे, कमर्शियल है 2691 रुपये 50 पैसे, कल के मुकाबले 194 रुपये कम हुआ है कमर्शियल। और वहीं पर सीएनजी है राजधानी दिल्ली में 83 रुपये और 9 पैसे और गुजरात में 88 रुपये 76 पैसे, 3 रुपये 75 पैसे की बढ़ोतरी हुई है सीएनजी में। राजस्थान में 96 रुपये 50 पैसे है सीएनजी पर केजी। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे पेट्रोल डीजल एलपीजी सीएनजी के साथ। आइए रुपयों के बारे में बात करते हैं, एक यूएसडी के मुकाबले इंडियन करेंसी है 95 रुपये 66 पैसे, यूरो के मुकाबले 111 रुपये और 69 पैसे हैं, एक जीबीपी के हिसाब से 130 रुपये 42 पैसे, एडी के हिसाब से 26 रुपये लगभग 27 रुपये तक है और रियल के हिसाब से 25 रुपये 47 पैसे तक है। एयूडी के हिसाब से ऑस्ट्रेलियन डॉलर की अगर बात करें तो 68 रुपये और 60 पैसे हैं। तो ये कुछ बातें वर्ल्ड करेंसीज वर्सेस इंडियन रुपीस के बारे में हमने बातचीत की। आइए यहां पर एक फटाफट सा ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के उस पार।

अपन आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। आइए कुछ बातें जो जुड़ी हुई हैं हमारे आसपास के साथ जान लेते हैं। सिरोही में आज सुबह 8 बजे से 12 बजे तक बिजली बंद है और सिरोही शहर के रिको जीएसएस पर शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। डिस्कॉम जेईएन के अनुसार इस अवधि में रिको जीएसएस के सभी फीडर मंडवा रिको सारणेश्वर गांव आदर्श नगर से लेकर के खेजरा फिर अमरनगर शिवनगर और मोचीवाड़ा क्षेत्र प्रभावित रहेगी। बादलों से ढका माउंट और 17 डिग्री पर अटका है पारा और इसके साथ साथ जल जीवन मिशन में पूरी हो चुकी है परियोजनाओं को पीएचईडी से पंचायत राज को सौंपेंगे। पंचायतें करेंगी जल वितरण, पहले चरण में 250 गांव शामिल हैं। सिरोही गोवंश के आगे बेवर शहर नगर परिषद ने गौशाला में भेजे 190 गोवंश, फिर भी सड़कों पर घूम रही है मवेशी। नशा मुक्ति और बाल विवाह रोकथाम को लेकर के माउंट आबू के कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की ओर से ये पहल की गई है। नशा मुक्ति सिरोही अभियान नशे से बचाव और बाल सुरक्षा पर समझाया गया। विद्यार्थियों को नवाचार और उद्यमता की राह दिखाई गई। सिरोही में राजकीय महाविद्यालय सिरोही में विद्यार्थियों के बीच नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप दिवस हुआ और फिर टेक्नोलॉजी के संस्थापक सिंदल टेक्नोलॉजी के संस्थापक युवा उद्यमी जसपाल जी ने ये जानकारी पहुंचाई युवाओं तक विद्यार्थियों तक। सेंट राजेश्वर स्कूल में कई प्रतियोगिताएं आयोजित, हिंदी निबंध में माही आई प्रथम। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे आसपास के साथ, कुछ करियर के साथ बातें भी आप तक पहुंचाएंगे। SBI में जूनियर एस

0: होगी बहाली। तो एम्स के आधिकारिक वेबसाइट पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वहीं पर पटना हाई कोर्ट में एक स्कैडर असिस्टेंट के लिए 68 पदों पर आवेदन आमंत्रित है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में असिस्टेंट ग्रेड 3 के 1174 पदों पर भी भर्ती निकली है। और वहीं पर आईटीबीपी में मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती 8 सितंबर तक आप कर सकते हैं आवेदन। AAI मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लगभग 389 पदों पर भर्ती निकली है। तो आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट है 7 सितंबर 2026। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे करियर गोल्स के साथ भी। अभी वक्त हो गया है ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से समाचार प्रभात सुनने का। तो आइए सुनते हैं समाचार प्रभात और यहीं पर मैं रुकना चाहूँगी। फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। नमस्ते।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, AI और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से। और एम्स्टर्डम में पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
2: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किला से दिए गए स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल हैं।
2: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्तधारा की, सप्त शक्तियों की बात की है। और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है।
3: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1100

0: 29 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। पे तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
1: गृहमंत्री ने अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही। श्री शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसे पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। गृहमंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालने के 3 दिन के भीतर 3 नए आपराधिक कानून लागू कर अपना वादा पूरा किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्यसमूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: चर्चा के दौरान सीमा पार अपराधों और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने, एकीकृत जांच चौकी, सड़क और रेल नेटवर्क पर बात हुई। दोनों पक्षों ने अतिक्रमण हटाने और सीमाओं के रखरखाव पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत और क्षमता विकास को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया और इन क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नेपाल में होने संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक की तारीख पर भी सहमति जताई। समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
3: एक ऐसा पर्यटन का भविष्य जो अधिक रेजिलिएंट हो, जो इनोवेशंस को अपनाए और उसके साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी की आधारशिला का निर्माण करे, क्योंकि भारत के लिए पर्यटन केवल मॉन्यूमेंट्स की विजिट तक सीमित नहीं, अभी तो हमारी संस्कृति को जानने, हमारी संस्कृति की पहचान कराने का और इस तरह का अनुभव कराने का एक सशक्त माध्यम भी है, जिसके माध्यम को हम उनको अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के साथ में जोड़ सकते हैं।
1: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपये से बढ़कर करीब 55 रुपये प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट मल्हार कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेंजी से धैर्य और दायित्व के साथ व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के स्वयं प्रभा चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
4: भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से केवल 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान हासिल किया। उधर कुश्ती में भारत की महिला पहलवान काजल धोचक ने स्लोवाकिया में अंडर-20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में काजल ने चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराया। इधर BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टेन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया यी फैन और झांग शू शियान को 16-21, 21-15, 21-13 से हराया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। उधर अमस्टल फैन में FIH महिला हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। और पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के बाद भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया है।
1: मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गरज के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वर्तमान में अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण कैरोलिना में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.ue.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
5: धन्यवाद कनक। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का संक्रमण, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण की पहली खबर है। दैनिक जागरण लिखता है, राजधानी में एक दिन में स्वाइन फ्लू के 114 मरीज मिले। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, कुल मामले पिछले साल से 7 से 8 गुना बढ़े, केंद्र ने स्वाइन फ्लू पर दिल्ली के अस्पतालों को किया अलर्ट। हिंदुस्तान ने लिखा है, फेफड़े हो रहे प्रभावित। चीनी की बढ़ती कीमत पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा 15 दिन की भंडारण सीमा तय करने पर जनसत्ता ने अपने संपादकीय में चीनी की कड़वाहट शीर्षक से लिखा है, भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी रोकना है तो ये स्वागत योग्य, मगर सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि छोटे कारोबारियों पर नियमों का अनावश्यक बोझ न पड़े। लद्दाख में ग्रेविटी आधारित डायवर्जन से ग्लेशियर का पानी ईगुफे सिंचाई नहर की ओर मोड़कर खेतों तक पहुंचाने की योजना दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर है। पत्र लिखता है, 9 करोड़ लीटर पानी अब भारत को सींचेगा। यमन के पास समुद्री लुटेरों द्वारा 2 जहाजों को अगवा किए जाने की खबर भी अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, 22 भारतीय नाविकों को बंधक बनाया, विदेश मंत्रालय ने कहा सभी भारतीय सुरक्षित। सिविल जज भर्ती योग्यता नियमों में बदलाव की खबर दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी सहित कई अखबारों में है। नवभारत टाइम्स लिखता है एक साल की वकालत पर अब बन सकेंगे जज। राजस्थान पत्रिका ने विदेश कारोबार में मोदी सरकार का बड़ा कदम शीर्षक से लिखा है अब डॉलर ही नहीं रुपए में भुगतान ले सकेंगे निर्यातक। पत्र लिखता है इससे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपए का रुतबा बढ़ेगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दिल्ली में खाली सरकारी मकानों को किराए के घर में बदलने की योजना नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। और अमर उजाला ने अपने अंतिम पृष्ठ पर बताया है पाकिस्तान में दिल्ली की चाट और ढाका में खूब पसंद की जा रही बनारसी साड़ियां, न्यूयॉर्क से कराची तक भारतीय व्यंजनों का क्रेज।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: अभी बजे हैं सुबह के 9। एक मिनट का समय स्वयं को दे।

आप सभी सुनने जा रहे हो ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन कार्यक्रम आशियाना, आपकी अपनी उषा के साथ। आशियाना सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को प्यार भरा नमस्कार। चलिए आज के कार्यक्रम की जानकारी मैं आपको दे रही हूँ कि आज के कार्यक्रम आशियाना में इस प्रकार चलने वाले है। दिन की शुरुआत तो करेंगे एक सुंदर और श्रेष्ठ विचार के साथ, फिर आपको घरेलू नुस्खे भी देंगे, खुशनुमा जीवन में ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो नई नई व्यंजन तो आपको सिखाएंगे ही और आपको देंगे सामान्य जानकारी। तो प्यारे श्रोता बंधु, चलिए कार्यक्रम सारे ही बाकी है, इसलिए बने रहोगे आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: ओए रुक रुक, ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पकाए चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही न टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: आशियाना सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। पुनः आप सभी का स्वागत है आशियाना में। चलिए दिन की शुरुआत कर लेते हैं एक अच्छे से विचार के साथ, और आज का विचार बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सूक्ष्म है, समझिएगा। चालक हमेशा वाहन से न्यारा होता है, चालक हमेशा वाहन से न्यारा होता है। चलिए आज के विचार का विस्तार करते हैं। आत्मा को शक्तिशाली बनाने की दिशा में पहला कदम है शरीर और आत्मा के अंतर को महसूस करना, स्वयं को कर्मेंद्रियों से न्यारा और उसका संचालक समझना। जो चालक या नियंत्रक होता है वह हमेशा अपने साधन से न्यारा, अलग, भिन्न होता है। एक जहाज का चालक जहाज से अलग है, जहाज के हजारों पुर्जे हैं, कोई पुर्जा उससे अलग नहीं हो सकता, पर उसका चालक जब चाहे अपनी चालक सीट से उतर और चढ़ सकता है। मानव शरीर में भी छोटे बड़े सैकड़ों अंग है, कोई भी अंग शरीर से स्वाभाविक तौर पर अलग नहीं हो सकता है, पर आत्मा जब चाहे अपनी बिखरी हुई स्मृतियों को आत्म केंद्रित कर शरीर के भान से न्यारी हो सकती है, इंद्रियों के प्रयोग को ठहरा सकती है और जब चाहे पुनः चालू कर सकती है। तो ये हुआ आज का सूक्ष्म सुंदर सा विचार। चलिए अब सुन लीजिए एक प्यारा सा गीत, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन सुनने वालों को सुरेश ओबरॉय का नमस्कार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं घरेलू नुस्खे। अगर कब्ज की शिकायत है तो हम क्या करेंगे? कब्ज होने पर सुबह नाश्ते में नारंगी का रस कई दिन तक पीते रहने से मल प्राकृतिक रूप से आने लगता है। ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है। पुनः सुनेंगे इस नुस्खे को। सुबह नाश्ते में नारंगी का रस कई दिन तक पीते रहने से मल प्राकृतिक रूप से आने लगता है। यह पाचन शक्ति को भी बढ़ाती है। अगला नुस्खा भी आप ध्यान से सुनेंगे। मेथी के पत्तों की सब्जी खाने से कब्ज दूर होती है। मेथी के पत्तों की सब्जी खाने से कब्ज दूर होती है। 2 चम्मच दाना मेथी सुबह शाम खाइए या फिर फाकी लीजिए। इससे पेट ठीक रहेगा, कभी भी कब्ज नहीं होगी और भूख बढ़ेगी। अगला नुस्खा भी ध्यान से सुनेंगे। गेहूं के पौधे का रस लेने से कब्ज नहीं रहती। लास्ट नुस्खा भी आप ध्यान से सुनेंगे। सोते समय आधा चम्मच पीसी हुई सौंफ की फाकी गर्म पानी से लीजिए, कब्ज नहीं रहेगी। सोते समय आधा चम्मच पीसी हुई सौंफ की फाकी गर्म पानी से लीजिए, कब्ज नहीं रहेगी, पेट साफ हो जाएगा। तो ये सारे ही नुस्खे आप आजमा सकते हैं कब्जियत की तकलीफ में, और आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। चलिए अब सुना देते हैं आपको एक प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हाय, मैं हूँ शबाब साबरी और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब खुशनुमा जीवन की बातें करते हैं। हमारी सखी हमारे साथ है सविता जी, जो अक्सर आशियाना में आकर के आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं खुशनुमा जीवन में। तो सविता जी, आज आपका फिर से स्वागत है आशियाना में।
2: नमस्कार श्रोताओं।
1: अच्छा सविता जी, हम अक्सर देखते हैं कि जो हमारे सर्विस करने वाली बहनें होती है ना, उनको सचमुच आप पूछो तो इतना उनके लाइफ बिजी रहती है कि न उनको सोने का समय मिलता है न खाने पीने का समय। वो कहते हैं कि जब दोनों तरफ होते हैं तो इधर का करो तो उधर का छूटता है, और उधर का करो तो इधर का छूटता है। और सरकारी सर्विस हो चाहे प्राइवेट सर्विस हो, सर्विस का कार्य तो परफेक्ट चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आपको सर्विस से निकाल दिया जाएगा। लेकिन हम किस में करते हैं कॉम्प्रोमाइज, घर के कामों में।
2: हाँ, बिल्कुल।
1: या फिर बच्चे, पति, घर या परिवार, इसमें हमको थोड़ा सा समझौता करना पड़ता है और थोड़ा बहुत चलाना पड़ता है
2: जी।
1: तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कभी कभी घर परिवार वाले बहू को इस तरह समझने लगते हैं कि देखो देखो कमा रही है तो घर में ध्यान देना ही बंद कर देती है। तो बेचारी को बहुत सुनना पड़ता है,
2: तनाव की स्थिति
1: जी, और इस वजह से तनाव भी रहता है क्योंकि अब ऑफिस का करो या घर का करो, स्वाभाविक है ना, इंसान कितना कर पाएगा,
2: कितना कर पाएगा।
1: तो कैसे हमारी बहनों को इस तनाव से हम थोड़ा सा छुड़वा सकते हैं, या ऐसे कहो कि तनाव से थोड़ा जी फ्री कर सकते हैं।
2: हाँ उषा जी, प्रश्न बहुत सुंदर है आपका। और नेचुरली तनाव तो आएगा क्योंकि जो सृष्टि का नियम था वो टूट गया है, तो तनाव तो आएगा ही, घर परिवार में भी आएगा और नौकरी करने वाले को भी आएगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नौकरी नहीं करनी चाहिए या सर्विस करनी चाहिए। आज का जो माहौल है ना उषा जी, सर्विस तो करनी चाहिए, महिलाओं को खास तौर पे अपने पैर पे खड़ा भी होना चाहिए। लेकिन बात अभी चल रही थी सृष्टि के नियम को टूटने की। तो देखिए, पहले ज़माने में ऐसा होता था, हमारी जो दादी नानियाँ हुआ करती थी वो घर में ही रहते थे और उनको बाहर का काम करने या पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जाते ही नहीं थे। और पुरुष वर्ग जो होते थे वो नौकरी करते थे और पैसे लाते, तो घर आराम से चल भी जाता था बहुत सुख से, और जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे तो काम बढ़ जाता था। अब चक्कर है कि सब अलग अलग रहने लगे तो काम की समस्या तो आएगी। अब महिलाओं को भी आजकल बाहर निकलना पड़ रहा है, चाहे किसी की आर्थिक मजबूरी है या किसी का शौक है या किसी को भाई अपने पैरों पे खड़ा होना, तो समस्या तो आएगी, ये बात सही है। लेकिन अब हमें उसे मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों अलग रहते हैं जैसे, तो हस्बैंड को भी काम में मदद करवानी चाहिए, क्योंकि अकेले वाइफ कितना काम करेगी, क्योंकि उन्हें बच्चे भी संभालना है। कई बार तो हमने देखा है कि उनको बच्चों को साथ लेके जाना पड़ता है अपने काम पर
1: जी,
2: क्योंकि बहुत छोटे होते हैं ना। ऐसे टीचर्स को भी मैंने देखा है कि जो टीचर्स होते हैं स्कूलों में, तो उनको छुट्टी तो मिलती है थोड़े दिनों की, लेकिन बच्चे फिर इतने बड़े नहीं हो पाते, तो उनको अपने साथ लेके जाना पड़ता है। अब ये भी देखिए, बच्चे एक साल के भी नहीं होते उसके पहले स्कूल में कदम रख लेते माँ के साथ
1: जी,
2: है ना। तो माँ को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है ऐसी स्थिति में। मैंने देखा है कि पोस्टिंग भी कई बार बहुत अजीब अजीब जगह हो जाती है, सुबह सुबह उठना पड़ता है, बच्चों के लिए दूध की बॉटल तैयार करो, उनके लिए सारे दिन भर का उनका कपड़े लत्ते सब रख के जाओ, बहुत भागम भाग होती है। तो उसमें क्या होता है, शाम को भी देर हो जाती है तो फिर बीमार पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं तो कहती हूँ, जहाँ आपकी नौकरी हो जिस जगह, उसके आसपास ही आप मकान देखें। अगर पति पत्नी अलग अलग शहरों में रह रहे हैं तो, और अगर एक जगह रहते हों तो फिर ऐसी कुछ व्यवस्था हो कि घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हों तो बच्चों को जो संभाल लें, तो काम हल्का हो जाएगा। नहीं तो अगर माँ अकेले सारा करती रहेगी तो फिर बीमार होना स्वाभाविक है। और हाँ, नौकरी करने वालों को भी ये नहीं कि अगर हमें कोई घर में सहयोग कर रहा है, चाहे हमारी मदर इन लॉ है या हमारे हस्बैंड है या घर में और भी हैं जो सदस्य, तो हम उन पे ही सब कुछ छोड़ दें और हम तो नौकरी करते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। एक सिस्टम होता है, मैंने कई बार देखा है लोगों के बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करते हैं इस चीज़ को। जैसे सुबह का टाइम है तो वो बाहर निकल गए जिनको नौकरी करनी है, तो अगर उनको टाइम है तो खाना बना लेते हैं, अपना नाश्ता तैयार करते हैं और घर वालों का भी बना देते हैं कई बार, जिनके पास थोड़ा समय का है, और जिनके पास नहीं है वो स्वयं तो चले जाते बल्कि उनको लोग घर वाले बना कर देते, मैंने ये भी देखा है कुछ परिवार में, ये भी अच्छा लगा मुझे, देखो ये भी एक अपनापन हुआ। और जब वो शाम को लौटते हैं तो वो सुबह नहीं करके जाते, तो फिर वो शाम को कर लेते कि भाई चलो हमें सुबह आराम मिल गया। अब ये नहीं कि हमें कोई बार बार बनाते जे, चाहे वो हमारी सास हो या हमारे देवरानी जेठानी कोई भी हो परिवार में, तो मुश्किल होगा। अगर हस्बैंड भी अकेले हैं तो वो भी बेचारे कितना करें, क्योंकि वो भी तो बाहर काम पे जाते हैं। तो समय अनुसार कौन कितने बचे लौटता है, कौन कैसे करता है, उसको हम मैनेज करें।
1: सही कहा सविता जी, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही प्यार से जो चलते हैं वो इस तरह एडजस्ट करते हैं, लेकिन जहाँ पति पत्नी अकेले रहते हो तो वहाँ पर फिर हस्बैंड को ज्यादा समझना होता है।
2: ज्यादा समझना पड़ेगा
1: दोनों को समझ के चलना पड़ेगा कि भाई चलो दोनों सर्विस वाले हैं तो फिर दोनों काम करो। और जब संयुक्त परिवार होते हैं तो पुरुषों को काम करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन देखिए हर एक, जैसे कि आपने कहा ना कि बड़े हो तो बड़े बच्चों को संभाल सकते हैं, लेकिन बड़े भी आप जानते हैं कि कहीं कहीं पर बड़े भी ऐसे सोचते हैं कि भाई अब हमने सारी जिम्मेवारियां निभा ली है, तो कुछ समय उनको भी चाहिए ईश्वर भजन के लिए, कहीं जाना हो आना हो तो उनका भी थोड़ा अपने जीवन होता है। फिर वो तो कहते हैं कि मोह तो कभी छूटता नहीं है,
2: नहीं छूटे
1: है ना, मूल से भी ब्याज अच्छा लगता है।
2: जी, बिल्कुल।
1: तो पोते पोतियों के फिर उनके भी बच्चे बच्ची के, तो फिर उनका जीवन कहाँ रहा,
2: कहाँ रहा, ये ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उषा बहन हमें ऐसा भी लगा, मैंने ये भी देखा है कई घरों में कि मतलब जैसे घर के बड़े हैं अगर वो कॉपरेट करते तो अच्छे, नहीं भी करते तो, लेकिन वो अकेलेपन भी कई बार महसूस करते तो वो नीरस जीवन हो जाता है, ये भी मैंने देखा। क्योंकि आप देखिए जो बच्चे होते हैं ना उनको देव स्वरूप कहा गया, उनकी एक जो मुस्कुराहट होती है ना हमारा बहुत सारा तनाव दूर कर देती है। मैंने अपने घर में देखा मेरे मम्मी पापा को कि जो पोते हैं ना उनके दोनों, उनसे वो दिन भर बिजी रहेंगे, पूजा भी करेंगे, मंदिर में उनको ले भी जाते अपने साथ, वो मिल मिल के और खुशी से उनका टाइम पास होता। हालांकि हर उनके आराम में भी थोड़ा खलल पड़ता है,
1: जी जी,
2: लेकिन हाँ मतलब खुशी बहुत मिलती है। मैंने ये भी देखा
1: बच्चों को रखना, देखिए बच्चों तो
2: मेहनत भी है,
1: मासूम होते हैं, और बच्चों के तो भले दादा दादी के अड़ोस पड़ोस के बच्चे भी हमको अच्छे लगते हैं,
2: प्यारे लगते हैं
1: ना, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन बच्चों को जो रखने में जिम्मेवारी भी होती है पूरी
2: बड़ी, अब उसमें नींद भी नहीं पूरी हो पाती है,
1: नींद भी नहीं हो पाती है, कोई घर पर मेहमान आ गए तो भी मुश्किल पड़ता है, हर तरफ से होता है। तो थोड़ी देर कहते हैं कि बच्चों को थोड़ी देर रखना अच्छा लगता है, घंटे दो घंटे तीन घंटे रखना अच्छा लगता है, लेकिन वो तो रोज का रूटीन बन गया ना, क्योंकि दादा दादी को एक माता पिता बन करके पालना करना पड़ेगा,
2: उससे भी ज्यादा,
1: उससे भी ज्यादा,
2: क्योंकि वो एकदम सिर चढ़ जाते हैं।
1: जी बिल्कुल
2: बिल्कुल नहीं मान,
1: क्योंकि दादा दादी ऐसे होते हैं जो बच्चे को प्यार इतना देते हैं कि कभी डांटना तो वो समझते ही नहीं, क्योंकि अपने मतलब खुद के औलाद को डांटा होगा लेकिन पोते पोती को नहीं डांटेंगे,
2: नहीं कर सकते उनको।
1: तो कितनी बार बहनों को ऐसा भी लगता है कि देखो बच्चे को बिगाड़ रहे,
2: लगता है
1: है ना, तो इस तरह भी थोड़ा सा कहा सुनी, तो फिर ऐसे ही कहते कि भाई तो फिर आप अपने आप संभालो। तो मतलब दोनों को थोड़ा, बहनों को भी समझना चाहिए कि भाई जो जिम्मेवारी हम नहीं निभा पा रहे हैं कि हमारी सर्विस की वजह से या कोई भी कारण की वजह से, तो फिर बुजुर्गों को टोकना ये भी अच्छी बात नहीं है। तो चलिए सविता जी और भी बातचीत करेंगे इस टॉपिक पर, लेकिन अभी समय हो रहा है एक गीत सुनाने का, तो सुना देते हैं एक गीत, सुनते रहिए
2: मुस्कुराते रहिए।

0: सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। सविता जी हमारे साथ है और बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया गया है। आजकल हम देखते हैं सविता जी की वास्तव में जो हमारी बहनें सर्विस वाली है वो ज्यादा परेशान हो रही है
1: जी।
0: और जैसा कि हमने बात किया ना कि विशेष जब परिवार बढ़ता है बच्चे होते हैं तब ज्यादा दिक्कतें आती है।
1: बिल्कुल,
0: जब बच्चे नहीं होते उसके पहले तो इतना कुछ नहीं होता
1: है, चलता है,
0: लेकिन जब बच्चे होते हैं तब अब सर्विस पे भी जाना, बच्चों को भी संभालना, तो बहनों के बहुत ही मतलब दुविधा में आ जाती है कि अब
1: क्या
0: कैसे
1: करे?
0: क्या करे। और जब परिवार समझू है, समझदार है, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत से एकल परिवार भी होते हैं और बहुत से संयुक्त परिवार होते हैं, वहां पर कोई एक दूसरे को समझने वाला नहीं होता है, तब दिक्कतें आती है।
1: लेकिन उषा जी, खुशी तो इसी में मुझे ऐसा लगता है कि हम सब एक दूसरे की भावनाओं को समझे, एक दूसरे की जरूरतों को समझे। वही मैंने जैसे पहले भी कहा कि अगर कोई हमारा सहयोग परिवार में कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे अपना गुलाम समझ ले या नौकर ही समझ ले। कई बार होता है फिर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं संभालते हैं इतने बच्चों को, फिर उनको कुछ अगर बोल दो कितनी तकलीफ होती है ना, तो हमें उनका रेस्पेक्ट भी करना चाहिए, ऋषि को मानना चाहिए कि हमारे बड़े हैं या हमारे परिवार में और भी हैं, उन्होंने हमारी हेल्प की।
0: जी सविता जी, पर एक दो जगह
1: सामंजस्यता बनी रहती है।
0: जी बिल्कुल, और एक दो जगह मैंने ऐसा भी देखा है कि बच्चों को रखते भी है दादा दादी।
1: हाँ,
0: और कुछ जैसे कि कभी रखते रखते देखिए कोई दिन बच्चा गिर भी जाता है,
1: फिसल जाता
0: है, कि माँ बाप के सामने नहीं गिरता
1: नहीं,
0: है
1: गिरते हैं कई बार बच्चे गिरते।
0: तो इस तरह जब बच्चा मम्मी आता है तो अक्सर आदत होती ना मम्मी के सामने रोएंगे बताएंगे, तो फिर वो अपनी सास से झगड़ा के आपने बच्चे को गिराया आप क्या कर रहे थे, तो फिर उसने कहा कि भाई हम बच्चा है गिर गया तो कोई हमने जानबूझकर तो नहीं गिराया,
1: पर अपने से
0: तो ऐसे करो कि तुम रखो अपने बच्चे को, तो बोलेगे एहसान कर रहे हो क्या, तुम्हारे बेटे के बच्चे को रख रहे हो, कौन से मुझे रख रहे हो। इस तरह की बातें जब होती है सविता जी बहुत बुरा लगता है कि मतलब उन माता पिता को देखो कैसे उस समय क्या उनके दिल पर गुजरती होगी।
1: नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वही मैंने कहा ना रेस्पेक्ट भी करना चाहिए। और हमसे भी बच्चे कई बार बीमार भी होते हैं, गिर भी जाते हैं, तो हमें बड़ों को साथ लेकर ही चलना चाहिए मिला करके। और बड़ों को भी चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि बहुएं देती हैं तो बड़े भी नहीं मैंने देखा संभालते हैं कई बार
0: जी।
1: लेकिन दोनों तरफ से ताली कहते हैं ना, एक हाथ से नहीं बजती, दोनों को करना ही पड़ेगा मेल मिलाप। और जितना हमारी जो भारतीय संस्कृति में है कि हम संयुक्त परिवार का सुख लेते थे, मुझे लगता बहुत अच्छा लगता था, लेकिन संयुक्त परिवार भी टूटने का कारण यही रीजन रहा है कि कहीं ना कहीं स्वार्थ, कहीं ना कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई, जिसकी वजह से परिवार भी टूटना शुरू हो गया। लेकिन आजकल एक अच्छी चीज भी मैंने देखा कि लोगों को पसंद आ रहे हैं संयुक्त परिवार में रहना, कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ लोग मैंने देखा घर में इतने प्यार से रहते कि विश्वास नहीं होता कि कई कई लोग 60-70 लोग भी एक साथ रहते हैं।
0: जी बिल्कुल, पीढ़ियां बीत जाती है फिर भी साथ में रह रहे हैं,
1: बहुत अच्छा लगता है। सात सात भाई हैं, आठ आठ भाई उनका परिवार है, ऐसा नहीं कि नहीं है, तो अच्छा लगता है। और जैसे जहाँ पे अगर नहीं है साधन तो फिर वहाँ पे फिर बच्चों को लोग क्रैश में छोड़ते और क्या करेंगे, क्रैश में डालना पड़े, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। या तो आप लेकर जाएंगे तो भी हर जगह अलाउड नहीं होता, हर ऑफिस में भी नहीं, प्राइवेट जॉब में तो बिल्कुल नहीं ले जा सकते आप।
0: जी बिल्कुल, तो
1: हाँ
0: हर तरह का माहौल है समाज में, अच्छा भी है तो इस तरह का भी है। पर सविता जी जैसे हम बात कर रहे हैं कि सर्विस वाली बहनों को तनाव है, लेकिन जो घर पर रहती ना हाउसवाइफ है उनको भी तनाव कम नहीं है। एक जगह मैंने ऐसा भी देखा है कि जैसे सर्विस वाली बहू लेकर के आए वो
1: जी,
0: और जेठानी सर्विस नहीं करती, वो पहले से घर परिवार संभालते हुए आई है, और जब देरानी सर्विस वाली आई तो सास ससुर के रवैये चेंज हो गया।
1: होते हैं, वही बात मैंने कहा ना कि परिवार में सामंजस्यता नहीं है
0: जी, और अब वो बड़ी वाले को दबाते हैं।
1: हाँ दबाते हैं कि
0: ये तो कमा के ला रही तू क्या करती है, जबकि वो पूरे दिन घर को संभालती है। उसके बावजूद भी कहते हैं कि वो एक कहावत है मारवाड़ी में, कोड़ी की कमाई नहीं और घड़ी की फुर्सत नहीं, ये वाली हालत हो जाती है
1: हो ही नहीं, हो रही
0: क्योंकि
1: है।
0: काम तो दिखाई देता नहीं है, सर्विस करके जब 35-40 हजार लेके आती है लड़की तो वो दिखाई देता है कि देखो इतने कमा के लाई, लेकिन जो घर का काम कर रही है उसका काम की कोई गिनती नहीं, कीमत ही नहीं,
1: क्योंकि लोगों ने पैसे को अपना वो बना रखा है लक्ष्य, पैसा कमाना, और पैसा जिसके पास है वही वैल्यूबल, और घर के कामों का महत्व नहीं। वही मैंने कहा ना सृष्टि का नियम इसीलिए टूटा, हम जो घर का काम करते हैं देखिए छोटी सी बातें बाई रखते हैं तो उसका भी हम थोड़ा सा भी काम कराते हैं तो कितना ज्यादा पैसे हमें पे करना पड़ता है। हम कपड़े प्रेस करने बाहर भेजते हैं, कपड़े धुलने उसके लिए, तो जो घर का काम करे अगर हम उसकी भी तनख्वाह छोड़े तो कितनी निकल जाएगी, और कितनी ईमानदारी से व्यक्ति करता है, कितने अपनेपन से करता है तो तकलीफ तो उसको होगी। इसीलिए ना जो कर रहा है उसको जब उतना वो नहीं मिल पाए सिला तो फिर उन्होंने परिवार से बेहतर है कि हम अलग हो जाए। जेठानी सोचेगी भाई मैं अलग ही हो जाऊँ इससे, अच्छा करो।
0: हाँ,

0: कि भैया सर्विस वाली बहू है तो रोज साथ में, कौन सी मुझे दे रही है पैसे,
1: जबकि होता है ना
0: ये भावना भी रहती है कि कौन सी मुझे दे रही है, भले वो बहू किसी को ही नहीं दे रही,
1: किसी को नहीं,
0: सास ससुर को भी नहीं दे रही,
1: नहीं दे,
0: फिर भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये सर्विस वाली है और ये तो फालतू की रोटी तोड़ रही
1: है। इसलिए सास ससुर को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये बहुत मतलब हाँ होता है अपने भारतीय परिवारों में, ये भी है, ऐसा नहीं कि हर जगह बहू ही गलत है, बड़े भी बहुत गलतियां करते हैं और ऐसे कह के एक दूसरे की तुलना नहीं करनी चाहिए, उसका अपना वजूद है, उसका अपना वजूद है और पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी क्वालिटी, कोई व्यक्ति सुबह से आपके लिए सारा दिन लगा हुआ है, बना रहा है, खिला रहा है और आपके तो आप पैसे नहीं कमाते, उल्टा घर में खा रहे मुफ्त में,
0: तो मतलब इससे भी फिर परिवार
1: भी कभी कभी इज्जत नहीं करते हैं, वो भी कहते हैं कि तुमसे तो अच्छी वो है, तुम तो उल्टा मेरा पैसा खर्चा करवा रही हो।
0: और सविता जी, हम देखते हैं कि जो सर्विस करते हैं उन बहुओं का घर में भी मानते हैं, सभी उसकी बात को मान देते हैं,
1: मान देंगे,
0: ये सही कह रही है, भले वो भी सही कह रही जो घर में रह रही है, वो बात अगर वो सर्विस वाली बहू कहेगी तो नहीं नहीं ये सही कह रही,
1: ये सही कह रही, बिल्कुल ये भी बात हमने देखा है। तो वही बात है कि अगर हम सब मिल करके अपनी बुद्धि को क्लीन कर लें, कमाने वाला भी और ना कमाने वाला भी, और सास ससुर भी, तो कभी टेंशन हो ही नहीं सकता। और
0: तो ऐसी बहू है ना वो फिर उनको घुटन ज्यादा होती है, क्योंकि चलो सर्विस वाली तो फिर भी बाहर जाके अपने स्टाफ में भी शेयर कर सकती है, लेकिन वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलती
1: और
0: तो परिवार उसको समझता नहीं। जैसे आपने कहा ना कि पति भी कहीं कहीं ऐसे होते हैं कि ताने मारते, तो पति ताने मारते, सास ससुर ताने मारते, वो किसको बताए,
1: किसको बताए?
0: और अगर बहू घर छोड़ के दूसरे अपने सखी सहेलियों में जाएगी तो कहेंगे कि देखो ये घर गिनती फिर रही है,
1: नहीं वो भी बुरा मानेंगे।
0: तो बाहर भी जाना नहीं होता, तो ऐसी बने और ज्यादा घुट रही है।
1: और ऐसी स्थिति में मैंने कई बार ये भी देखा है कि जो शुरू से सारा काम करता चला रहा, जब उसको इस तरह फेस करना पड़ता तो काम करना बंद कर देता, मैं भी नहीं करूंगी,
0: फिर होता
1: एक लिमिटेड करेगा।
0: अगर
1: हाँ वो भी नहीं ध्यान,
0: अगर उसमें पति की सह होती है तो फिर इस तरह की बातें होती
1: हैं। हाँ बिल्कुल,
0: तो मतलब दोनों कंडीशन में
1: अलग हो जाएंगे परिवार से,
0: दोनों कंडीशन में परिवार तो टूट रहा है।
1: इसीलिए सबसे अच्छा जो, और आज जो जॉब की इतनी ज्यादा समस्या है वो इसीलिए, क्योंकि पति पत्नी दोनों कमाना चाहते हैं, तो नौकरी कहाँ से मिले, कितनों को मिले। पहले जो एक सिस्टम था कि पति कमा के लाएगा, औरत घर की रानी, वो बाहर का राजा, राजा रानी बन के रहते थे, तो घर अच्छा था और जितना जैसे था वैसे ही, और वही सही था, उसमें सबको आराम मिल जाता था, सब काम भी टाइम टू टाइम होता था, बच्चे भी संभल जाते थे, सब कुछ होता था। लेकिन अब ये सिस्टम थोड़ा वैसा हो गया है, तो इसलिए समस्या आएगी, हम सबको समझदारी से ही चलना पड़ेगा, तब हम इसका बैलेंस बना सकते हैं।
0: बिल्कुल, छोटे हो चाहे बड़े, सभी को समझ के एक दूसरे का प्यार अपनापन देख करके रहेंगे परिवार में, तो ही संयुक्त परिवार रहेंगे।
1: और भरोसे आप काम और बच्चे नहीं छोड़ सकते,
0: नहीं, वो पैसे कमाने के हिसाब से काम करेंगे, उनके अंदर वो भावना ही नहीं रहेगी,
1: नहीं रहेगी। कई बार
0: जैसे घर परिवार वालों को भावना ही रहती है, वो नहीं रहे, उनको क्यों रहेगी, उनको
1: कई बार
0: तो
1: दुर्घटनाएं घट जाती है। आप देखिए घर छोड़ देते हैं तो दुर्घटनाएं भी घटती
0: है। जी जी बिल्कुल, दुर्घटनाएं घटती है, वो भी हम जानते हैं। और इस तरह सविता जी, बस मैं तो यही चाहूंगी कि छोटे भी बड़ों को समझे, बड़े भी छोटों को समझे, और सभी समझदारी से चले। बड़ों का भी फर्ज है कि एक को ऊंचा दिखाना, एक को नीचा दिखाना, ऐसा करना छोड़ दे,
1: बहुत गलत
0: है। समान, सभी को समान रखे और छोटे भी समझ जाए इस बात को, तभी संयुक्त परिवार भी रहेंगे और सर्विस वाली बहनों को भी तनाव नहीं रहेगा, तो घर में रहने वाली बहनों को भी तनाव नहीं रहेगा और एक खुशी का माहौल रहेगा
1: और वही अच्छा लगता है।
0: जी, और वही अच्छा लगता है। तो चलिए सविता जी, जरूर एक दिन ऐसा भी आएगा, तो सुना देते हैं एक प्यारा सा गीत। तो इस गीत को सुनेंगे, सुनते रहिए,
1: मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो चंदा जी पांडे जो अभी 2-3 दिनों से लगातार आशियाना में बने हुए हैं, आज भी हमारे साथ है। चंदा जी आपका स्वागत है रेडियो मधुबन में।
1: नमस्कार।
0: अच्छा चंदा जी, आज आप हमारे श्रोताओं को क्या सिखाने वाले हैं?
1: आज पंचमेल की कढ़ी।
0: पंचमेल की कढ़ी,
1: हाँ।
0: क्या बात है, तो ठीक है, इसमें क्या क्या चाहिए?
1: इसमें 100 ग्राम बेसन होगा।
0: तो चलिए प्यारे श्रोता बंधु, आशियाना के किचन में तो आप पधारी जाइए पेन और डायरी लेकर के, और पंचमेल कढ़ी की जो सामग्री है वो आप लिखिएगा। 100 ग्राम बेसन 100 ग्राम बेसन लीजिएगा,
1: और 150 ग्राम पालक का साग।
0: 150 ग्राम पालक,
1: हाँ
0: जी।
1: और 50 ग्राम मेथी, मेथी के पत्ते जो आते हैं
0: साथ जी, मेथी की भाजी जो हम, हाँ। पालक की भाजी बोलते हैं, ऐसे ही मेथी की भाजी मिलती, हाँ। है उसके पत्ते ले लीजिए 50 ग्राम,
1: हाँ 50 ग्राम पत्ते, और 50 ग्राम सरसों की भाजी।
0: अच्छा, 50 ग्राम सरसों, हाँ। की भाजी,
1: और 150 ग्राम बथुआ की भाजी।
0: 150 ग्राम बथुआ की भाजी, क्या बात है, सारी भाजी आज आप मिक्स कर रहे हैं तो हाँ शरीर के लिए तो कितने फायदेमंद है।
1: हाँ जी सर।
0: चलिए, तब तो बहुत ही पौष्टिक बनेगी है ना कड़ी।
1: ये बहुत पौष्टिक है। और 100 ग्राम चने का साग भी चाहिए।
0: चने की भाजी,
1: हाँ चने की भाजी।
0: जी हाँ, चने की भाजी भी मिलती है, तो 100 ग्राम चने की भाजी।
1: और एक थोड़ा सा हींग चाहिए, एक डिल मतलब जैसे एक चुटकी डालते हैं ना।
0: जी बस, जी, चुटकी भर हींग।
1: हाँ चुटकी भर हींग। और एक गांठ अदरक भी चाहिए।
0: जी, छोटा सा पीस अदरक,
1: हाँ,
0: ले लीजिए।
1: छोटा सा चला। और उसके लिए 50 ग्राम घी चाहिए, उसमें
0: वघार के लिए, कड़ी छोंकने के लिए 50 ग्राम घी ले लीजिए।
1: नमक मिर्च हल्दी ये सब अपने अंदाज से डाल लेंगे।
0: जी हाँ बिल्कुल, नमक मिर्च तो हमारे श्रोता बंधु, हाँ। कोई तीखा पसंद करते हैं, हाँ, कोई मीडियम पसंद करते हैं, तो आप अपने टेस्ट, हाँ। के हिसाब से ले सकते हैं।
1: और धनिया पाउडर भी उसमें थोड़ा सा रहेगा,
0: धनिया पाउडर, साबुत धनिया पाउडर भी ले लीजिए, आधा चम्मच ले सकते हैं।
1: हाँ आधा चम्मच धनिया पाउडर, ज्यादा नहीं।
0: जी अच्छा, तो बस ये सामग्री है,
1: हो गई आपकी।
0: हरी मिर्च चाहिए?
1: हाँ हरी मिर्च चाहिए जी आप, हाँ हरी मिर्च है ना, कोई तीखा खाए को जैसा खाए, या कोई लाल मिर्च भी चाहे तो वो भी डाल सकते हैं।
0: दोनों भी डाल सकते हैं, दोनों पसंद करते हो तो हरी मिर्च 2-3 ले लीजिए, और लाल मिर्च चाहिए उतनी ले लीजिए,
1: वो भी ले सकते हैं।
0: और हरी मिर्च ज्यादा तीखी है तो आप 1-2 ही लीजिए, वो आपके टेस्ट पर आधार है। तो चलिए सामग्री आपको सुना चुके हैं, बथुआ की भाजी, पालक की भाजी, चने की भाजी, और मेथी की भाजी, सरसों की भाजी,
1: सारी भाजियां मिलती है, वो सारी चाहिए इसके लिए।
0: जी आप तो पत्तेदार भाजी जो भी मिलती हो, जैसे कि ये 4-5 ही आराम से आप लीजिए, 100-100 ग्राम, कोई 50 ग्राम लेनी है, और सभी की समान मात्रा लोगे तो ही चलेगा।
1: हाँ समान मात्रा ही, हाँ समान ही रख दीजिए, समान बेसन और समान सभी भाजी, 100-100 ग्राम सभी।
0: जी तो 100-100 ग्राम ये सारी भाजी ले लीजिए, और बेसन
1: 50 ग्राम क्योंकि वो कड़वा होगा ना इसलिए,
0: मेथी थोड़ी कड़वी लगती है, लेकिन इन सभी के बीच में मिक्स हो जाती है पता ही नहीं चलता है, फिर भी हमारे श्रोता बंधु अपने पसंद से ले सकते हैं 50 ग्राम। जी और बाकी 100 ग्राम बेसन ले लीजिए, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर लेना है, और नमक मिर्च और हल्दी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए, चुटकी भर हींग लीजिएगा, और घी लेना है आपको 50 ग्राम। तो ये सारी सामग्री इकट्ठी करिए, तब तक के लिए गीत सुना देते हैं। गीत सुनाने के बाद कैसे हम पंचमेल की कड़ी बनाएंगे वो भी चंदा जी जरूर सिखाएंगे, तो बने रहोगे आप आशियाना में, सुनते रहिए
1: मुस्कुराते रहिए।

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।
2: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बन रही है पंचमेल कड़ी। पंचमेल कड़ी के लिए सामग्री आपको लिखवा चुके हैं, फिर भी एक नज़र डाल दीजिएगा। बथुआ की भाजी, चने की भाजी, पालक की भाजी, मेथी की भाजी और सरसों की भाजी, फिर हरी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ये सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। चपटी भर हींग और घी लेना है बघार के लिए, और साबुत धनिया पाउडर ये आपको लेना है। तो बस ये सामग्री हो गई, बेसन तो लेना ही है।
3: हाँ,
2: तो ये सारी सामग्री हो गई। अब हमको चंदा जी सिखाएंगे कि पंचमेल कड़ी कैसे बनाई जाती है। अच्छा चंदा जी, क्या करना होगा? अब
4: पहले सभी साग को धो लेंगे साफ सुथरा करके।
2: जी हाँ।
4: और उसको उबाल लेंगे।
2: जी, सभी भाजी को।
4: हाँ, सभी भाजी
2: मिक्स कर देना।
4: हाँ,
2: है
4: मिक्स करके उबाल कर लेंगे और फिर सब ठंडा होने पे उसको सभी को मिक्सी में पीस देंगे ताकि अच्छी तरह सब आपस में मिक्स हो जाए।
2: तो पहले उबाल करके अच्छी तरह मिक्सी में पीस लो।
4: हाँ, उबाल के पीस लेंगे मिक्सी में अच्छी तरह से सारे। उसके बाद फिर हम कढ़ाई चढ़ा के बेसन घोल के तैयार रखेंगे पहले से।
2: बेसन किस में घोलना है?
4: बेसन दही में घोलना है। एक चीज छूट गया, दही बोलना था कि दही में ही आप बेसन घोलिए। कोई टमाटर भी डाल सकते हैं, नहीं तो दही भी डाल लेंगे।
2: नहीं, कड़ी वैसे प्रॉपर दही छाछ में हो तो अच्छी लगेगी। तो दही या छाछ जो भी अवेलेबल हो
4: आपके पास,
2: उसमें आप कड़ी तो बनाते ही हैं, सिंपल कड़ी। तो इस तरह बेसन का घोल तैयार कर लीजिए।
4: बेसन का घोल तैयार, उसके जो हम घी दिए उस घी का कढ़ाई में डालेंगे गर्म हो जाने पे। और फिर जो ये हींग है इसको चिटकी भी डालते हैं, फिर अदरक डालेंगे और मिर्ची भी डालेंगे उसमें छौंक में।
2: जी, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट करके छौंक में डालना है।
4: हाँ, हींग बाद में हींग डालेंगे।
2: जी, जो चुटकी भर हींग ली है। हाँ, वो भी गरम गरम घी में ही डालना है।
4: हल्दी और धनिया पाउडर भी अभी ही डाल देंगे छौंक में ही।
2: जी,
4: और फिर उसके बाद फिर जो हम घोल के रखे हैं बेसन उसमें छौंक लगा देंगे।
2: जी,
4: कढ़ाई के अंदर।
2: हाँ,
4: जब बेसन पक जाए ना, थोड़ा आधा आधा पक जाए कढ़ी, तो फिर जो हमने साग का बेसन तैयार करके साग का जो पेस्ट की उसके अंदर डाल देंगे।
2: अच्छा।
4: हाँ, 10 मिनट के वह पके, उसके बाद हो गया उस।
2: अच्छा, तो इस तरह कढ़ी बन गई। बहुत ही अच्छा तरीका है। प्यारे श्रोता बंधु, आप सबसे पहले क्या करोगे, घी रखिएगा कढ़ाई में, और घी गर्म हो जाए तो हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट तैयार कर लीजिए, और इस पेस्ट को आप घी के अंदर थोड़ा सा फ्राई करिए। हल्का ब्राउन कलर का हो जाए फिर आप चुटकी भर हींग ली है जो डाल दीजिए, और जो हमने मिर्ची, हल्दी और नमक लिया है वो भी आप डाल दीजिए, ठीक है, इस बघार के अंदर। और फिर से थोड़ा सा फ्राई करिए 1 मिनट के लिए, और फिर हमने जो कड़ी वाला घोल कर रखा है उसको आप डाल दीजिए कढ़ाई में, और अच्छा पकने दीजिए। आधा पकाना है, ठीक है ना। कड़ी हम कितनी देर रखते हैं वो आप सभी जानते हैं, तो आधी देर, जो अच्छी तरह नहीं पकानी है। जब आधी पक जाए तो फिर हमने वो मिक्सर में पीस करके सारी भाजी, जो पालक की भाजी, बथुआ की भाजी, इन सभी को बॉईल करके मिक्सर में क्रश कर देना, पीस देना है ताकि एक रस हो जाए, और फिर ये जो मिश्रण है सारा कढ़ाई में डाल देना है और अच्छी तरह हिला देना है, और 5 मिनट और 5-7 मिनट तक गैस पे पकाना है। अच्छी तरह जब ये कड़ी पक जाए, खुशबू आने लगे, तो बस गैस बंद कर दीजिए, और हरा धनिया तो आप डाल ही सकते हैं ऊपर से। तो इस तरह पंचमेल कड़ी तैयार हो चुकी है। अब आप समझे, पंचमेल का मतलब 5 भाजियों की बनी हुई कड़ी। इसलिए इसका नाम पंचमेल पड़ा है। और वास्तव में ये महल ही है, क्योंकि पांचों ही भाजियां स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सब पत्तेदार सब्जियां, इससे हमको आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारे जो एनर्जी तत्व है वो सभी हमें मिलेंगे। तो इस तरह की सब्जियां और आप आराम से बना भी सकते हैं। अब इसके साथ आप चाहो तो बाजरे की रोटी बनाइए या मक्के की रोटी बनाइए, बहुत टेस्टी लगेगी। गेहूं की रोटी के बजाय आप मक्के की या बाजरे की बनाइए,
4: रोटी ज्यादा अच्छी लगेगी
2: जी। तो चंदा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छी कड़ी हमारे सभी श्रोता बंधुओं को सिखाई है, क्योंकि कड़ी तो सभी बनाते हैं और अच्छा है ना, इसमें टेस्ट भी आ जाएगा। और भाजी है तो आज हमारे श्रोता बंधु ज्यादातर खेती बाड़ी वाले हैं, तो अपने खेत से ही तोड़ के लेके आ जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। और प्यारे श्रोता बंधु, पांचों ही भाजी ना मिले तो जो मिले वही आप डालिए।
4: हाँ,
2: लेकिन कहते हैं कि पत्तेदार सब्जियां सर्दी के दिनों में ज्यादा खानी चाहिए, तो आप इस तरह बना सकते हैं। तो चलिए, बन भी गई है, आप भोग तो लगाएंगे ना, बाद में खाएंगे। तो फिर लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में आप एक कटोरी के अंदर कड़ी रखिए, और मक्के की रोटी या बाजरे की रोटी तो आपने बनाई ही होगी, तो लीजिए एक थाली में रखिए आप, और कटोरी को भी थाली में रखिए। तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए और ऊपर से ढकिए स्वच्छ थाल पोश, और आप अपने इष्ट देव को भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा पंचमेल कड़ी का। और साथ ही साथ सुना देते हैं एक गीत, तो सुनते रहिए,
4: मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब आपको सामान्य जानकारी देते हैं। ब्रेड का ज्यादा इस्तेमाल पड़ सकता है भारी, कैसे पड़ेगा भारी वो जानेंगे। देखिए, सुबह के नाश्ते से लेकर के हम क्या करते हैं, दोपहर के स्नैक्स में ब्रेड और डबल रोटी हम खूब खाने लगे हैं ना, फटाफट तैयार हो जाता है सैंडविच, ब्रेड जैम या ब्रेड मक्खन हमारे रोजमर्रा के खान पान का हिस्सा हो गया है। बीमार व्यक्ति को भी दलिया खिचड़ी की जगह हम क्या करने लगे, ब्रेड या डबल रोटी खिलाने लगे हैं। जबकि मैदे से बनी ब्रेड कई गंभीर रोगों का खतरा बढ़ाती है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं। अधिक मात्रा में ब्रेड खाने से कब्ज की शुरुआत होती है, जो धीरे धीरे आमाशय में छेद का कारण बन जाता है, जिसको पेप्टिक अल्सर कहा जाता है, इसका कारण बन जाता है। ब्रेड में हाई लेवल सोडियम है, जो कि ब्लड प्रेशर और हृदय रोग बढ़ाता है। ज्यादा ब्रेड खाने से शरीर में नमक इकट्ठा होता है और कई रोगों का खतरा बढ़ाता है। मैदे से बनी होने के कारण शरीर को इसे पचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स लीवर को क्षति पहुंचाते हैं। ब्रेड में पोषक तत्व बहुत कम है, ब्रेड खाने से फाइबर नहीं मिलता है। व्हाइट ब्रेड की जगह होल ग्रीन ब्रेड तुलनात्मक रूप से बेहतर है। ब्रेड में बहुत ज्यादा ग्लूटेन, जिसको हम लिसलिसा पदार्थ कह सकते हैं, जो ग्लूटेन है जो सीलिएक रोग का खतरा बढ़ाता है। ब्रेड खाने के बाद कई लोगों का पेट खराब हो जाता है, इसकी वजह है ग्लूटेन इंटॉलरेंस। अगर आप ब्रेड ज्यादा खाते हैं तो आपका वजन बढ़ेगा। इसमें मौजूद नमक, शक्कर और प्रिजर्वेटिव्स वजन बढ़ाते हैं। ब्रेड पोषक आहार नहीं है। ब्रेड खाने के बाद भी भूख शांत नहीं होती है, ये केवल फिलर का काम करती है। इसे आहार के रूप में मान्य करना भ्रम है। होल ग्रेन ब्रेड यानी आटे वाली ब्रेड में भी कोई पोषक तत्व नहीं है। इसे बनाने के प्रोसेस में आटे के सभी गुण खत्म हो जाते हैं। इसलिए प्यारे श्रोता बंधुओं, जितना हो सके ब्रेड के इस्तेमाल से बचिए, और आप इससे तो अच्छा है गेहूं की रोटी बनाकर खा लीजिए, लेकिन ब्रेड नहीं खाना है, ठीक है ना। तो चलिए, ये तो हुई सामान्य जानकारी। अब सुन लीजिए एक प्यारा सा गीत, तो सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, बहुत ही अच्छे आपको नुस्खे भी दिए हैं। तो खुशनुमा जीवन में सविता जी के साथ बहुत ही अच्छी बातें हुई है कि किस तरह सर्विस करने से तनाव बढ़ रहा है बहनों में, और किस तरह घर पर रहने वाली बहनें भी टेंशन में जीती है। तो इस बारे में बहुत ही अच्छी तरह आपको बताया है। नई व्यंजन भी आपको बहुत ही अच्छा सिखाया है कि पंचमेल कड़ी बनाइए और इसका नया टेस्ट लीजिए, और सामान्य जानकारी भी आपको अच्छी दी है। चलिए आप आज के अनमोल वचन सुना रही हूँ। नेक बनने के लिए ऐसी कोशिश करो जैसी कोशिश खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। अब मैं आपको एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है प्यारा मधुबन। आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खमा घनी सा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन। सुधाधार निस्रत हृदय की, सुधाधार निस्रत हृदय की, मस्ती गगन मनस्वी की, जीवन ज्योति सिक्त नयन और सच्ची लगन तपस्वी की। पावन कुमकुम भाल धरे पवित्रता की चंदन रोली, श्वेत चमकते परिधानों में मानस हंसों की टोली। श्वेत चमकते परिधानों में मानस हंसों की टोली। जीवन और सृष्टि की भोले कैसी रचना कर डाली, स्नेह और करुणा की थाती मधुबन की डाली। निर्झर धार ज्ञान की अविरल त्याग तपस्या सेवा निर्मल, तन मन महक उठा अब सारा, धवल धवल शिखर शिखर पर रजत पूर्णिमा स्वर्ण प्रभात जड़ित आंगन रत्न जड़े सद्गुण के सारे, आलोकित सारा कणकण निर्विकार यह मुक्त गगन नमन है शांति प्रदाता, नमन प्यारे मधुबन, नमन।

0: की जय हो। भगत विशल भगवान की जय हो।
1: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
2: क्या बात कर रहा है?
1: हाँ देख,
2: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
1: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
2: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
1: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
1: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
4: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है।

0: नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सा, शनिवार की सुप्रभातम। कैसे हैं सब? भले चंगे होंगे आशा करते हैं। तो भाई, आप सभी श्रोताओं का प्रभा पंडिताइन, आपका प्रोग्राम पंडिताइन में बहुत बहुत दिल से स्वागत करती है। और शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, और बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं आपको पितृदोष के बारे में। होते हैं ना, कई लोगों को कुछ कुछ दिमाग में ऐसा चलता है कि ये बात ऐसी हो रही तो इसके पीछे ये कारण होगा, ये बात हुई तो ये, अरे बहुत सारे हमारे खुपड़िया में दिमाग भर दी गई ये बातें कि ऐसे ऐसे करने से ऐसा ऐसा होता है, जबकि वो कुछ सही नहीं होता है। लेकिन फिर भी भाई, लोगों की मान्यता है, और हम तो अंधविश्वास के खिलाफ बोलने वाले आप जानते हैं, लेकिन फिर भी किसी की आस्था पे ठोस ना पहुँचे इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कहते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर बेटे का नाम उभरते ही सावित्री चौंक गई। बरसों बाद बेटे का फ़ोन आया रहा। उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। हेलो बेटा। हेलो माँ, कैसी हो?
1: मैं ठीक हूँ दीपक, तुम कैसे हो?
0: कुछ क्षण चुप रहने के बाद दीपक बोला, माँ सब कुछ ठीक नहीं है। सावित्री की चिंता बढ़ गई।
1: क्या हुआ बेटा?
0: माँ, तुमसे एक बात पूछनी थी, ये पितृदोष का होता है? सावित्री कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, अचानक ही सवाल काहे पूछ रहे हो? दीपक ने लंबी सांस ली। पिताजी के जाने के बाद से व्यापार लगातार घाटे में जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई भी ठीक से नहीं चल रही, घर में हर समय तनाव रहता है। मैंने इंटरनेट पर एक पंडित से बात की, उन्होंने कहा कि हमारे घर में पितृदोष है। बोले इसका उपाय हरिद्वार में होगा और उसके लिए बहुत धन लगेगा, सोचा पहले तुमसे पूछ लूँ। सावित्री की आँखें भर आई, वो कुछ देर तक चुप रही, फिर बहुत शांत स्वर में बोली, बेटा पितृदोष का अर्थ केवल ग्रह नक्षत्रों से जोड़कर मत देखो, मेरे लिए इसका एक और अर्थ है जो शायद तुमने कभी समझने की कोशिश नहीं की। दीपक चुप रहा। सावित्री बोली, तुम्हारे पिता ने पूरी जिंदगी तुम्हारी हर आवश्यकता पूरी करने में लगा दी, तुम्हारी पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत की, तुम्हारे सपनों को अपना सपना समझा, तुम्हें अच्छे विद्यालय में पढ़ाया, तुम्हारे लिए घर बनाया और तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी इच्छाएं तक छोड़ दी। उन्हें बस एक आशा थी कि बुढ़ापे में बेटा उनके पास रहेगा, उनके दुख सुख में साथ देगा। सावित्री की आवाज़ भर आ गई, लेकिन तुम बड़े हुए तो तुम्हारे सपने बड़े हो गए, तुम विदेश चले गए, नई दुनिया, नया जीवन और नई जिम्मेदारियां मिल गई, तुम्हारे पिता वहीं रह गए, उसी घर में, उन्हीं दीवारों के बीच। दीपक की आंखों के सामने पिता का चेहरा घूम गया। सावित्री आगे बोली, जब तुम्हारे पिता बीमार पड़े थे तब उन्हें तुम्हारी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, वो बार बार कहते रहे दीपक को बुला लो, दीपक को बुला लो, लेकिन तुम काम में व्यस्त थे, तुमने फ़ोन पर हाल पूछ लिया और समझ लिया कि तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो गया। जॉन पिता ने तुम्हें चलना सिखाया, वो अपने अंतिम दिनों में तुम्हारे कदमों की आहट सुनना चाहते थे। फोन के दोनों ओर गहरी खामोशी छा गई। सावित्री ने आंसू पोंछते हुए कहा, और जब वो चले गए तब भी तुम उनके अंतिम संस्कार में नहीं आ सके, किसी अजनबी ने उन्हें शमशान तक पहुँचाया। बेटा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा पितृदोष है, जब माता पिता जीवन भर संतान के लिए जीते हैं और अंत में उसी संतान के समय के लिए तरस जाते हैं। दीपक फूट फूट कर रो पड़ा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। सावित्री भी रो रही थी, लेकिन उसने स्वयं को संभाला, माफ़ी मुझसे नहीं, अपने पिता से मांगना, और अगर सच में पितृदोष का उपाय करना चाहते हो तो केवल किसी अनुष्ठान में धन खर्च मत करना, अपने बच्चों को धन के साथ संस्कार देना, उन्हें सिखाना कि माता पिता की सेवा कोई बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य है,
1: और हाँ, यदि तुम्हारे पिता की कोई अधूरी इच्छा है तो उसे पूरा करने की कोशिश करना। किसी ज़रूरतमंद वृद्ध की सहायता करना, अपने माता पिता के नाम से किसी भूखे को भोजन कराना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अपने बच्चों के लिए ऐसा उदाहरण बनना कि वो कल तुम्हें अकेला ना छोड़े। दीपक की आवाज़ कांप रही थी। माँ, मैं वापस आना चाहता हूँ। सावित्री ने कहा, बेटा, घर का दरवाज़ा आज भी खुला है, माँ का दिल भी। कुछ दिनों बाद दीपक भारत लौट आया। पिता की तस्वीर के सामने बैठकर उसने देर तक से झुका रखा। उस दिन उसे समझ आया कि पितरों को केवल जल अर्पित करना ही श्रद्धा नहीं है, उनके दिए संस्कारों को अपने जीवन में उतारना भी सच्ची श्रद्धांजलि है। पितृपक्ष हमें केवल अपने पूर्वजों को याद करने का अवसर नहीं देता, बल्कि ये भी पूछता है, क्या हम अपने माता पिता के साथ वो कर रहे हैं जिसकी आशा हम अपने बच्चों से करते हैं। याद रखिए, माता पिता की सेवा जीवन में ही कर लीजिए, जीते जी ही कर लीजिए। काहे कि मृत्यु के बाद किया गया पछतावा कभी उनके चरणों तक नहीं पहुंचता। सच्चा पितृ दोष वही है जब माता पिता जीवित हो और संतान के पास उनके लिए समय ना हो। माता पिता का सम्मान कीजिए, यही सबसे बड़ा संस्कार है, यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। आशा करते हैं आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। कई बार हम दुनिया का दिखाए के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक उनकी वैल्यू नहीं करते। और सही में पितृ दोष, मातृ दोष ऐसे देखें तो कुछ भी नहीं होता है। वो जो माता पिता की अतृप्त इच्छाएं होती है उनको हम जीते जी पूरा करें, मरे के बाद नहीं। मरने के बाद तो पछतावा होता है और पता नहीं वो पहुंचता भी है कि नहीं। यानी आप जीते जी जो कुछ करते हैं वही आपकी सच्ची प्रॉपर्टी है। ईश्वर समय पर देता है, इसलिए देर भी कृपा ही होती है। ईश्वर कोई भी चीज़ समय पर देता है, इसलिए देर भी कृपा ही होती है। मोह इतना ना करें कि बुराइयाँ देख ना पाएं, और घृणा इतनी ना करें कि अच्छाइयाँ देख ना पाएं। खोई हुई चीज़ें हमेशा सुंदर लगती, जैसे वक्त और बचपन। सोने की कीमत बाजार बताता है, लेकिन इंसान की कीमत उसका व्यवहार और संस्कार बताता है। बच के रहो थोड़ा इस दुनिया के लोगों से, बच के रहो थोड़ा इस दुनिया के लोगों से, यहाँ समझाने वाले कम भड़काने वाले ज़्यादा हैं। आप भी हमारी बात से सहमत होंगे, इस दुनिया में हो रहा है। अगर मैं दूसरों की कमियां मन में रखती हूँ तो वो शीघ्र ही मेरी बन जाएंगी। जो चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वो हमारे अंदर उतर जाती है। कभी कभी आपको मिलने वाली सफलता देर से मिलती है, इसलिए विश्वास में स्थिर रहें। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग। कहा है कि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। जब भीतर चलने वाली सांसें भी अपने हिसाब से चल रही है तो बाहर के लोग आपके हिसाब से काम करें ये अपेक्षा छोड़ दो। कहा है कि यही सबसे बड़ा दुख का कारण है, दूसरे से अपेक्षा रखना, एक्सपेक्टेशन नहीं, सिवाय अपने आप से और किसी से नहीं और अपने परमात्मा से। जिनका हाथ खुद ऊपर वाला थाम लेता है उनकी कश्तियाँ अपने आप किनारे लग जाती है। जरूरत से ज़्यादा मिलता रहे उसे नसीब कहते हैं। सब कुछ है फिर भी हमेशा रोता रहे उसको बदनसीब कहते हैं। और जो थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहते उसको खुश नसीब कहते हैं। अपने हिस्से की खुशियाँ बेचकर भी जो मुस्कराया है, अपने हिस्से की खुशियाँ बेचकर भी जो मुस्कराया है, यकीन मानिए उसे कभी कोई दुख नहीं हरा पाया है, कभी दुख हरा नहीं पाया है। चलिए भाई, यही बात पर एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर बतियाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, 12 बजे तक प्रभा पंडिताइन आपके साथ है। सुनिएगा मधुर गीत।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: दरवाजे पर दस्तक का शुल्क। शहर के एक शांत मोहल्ले में रमेश नाम का एक युवक प्रतिदिन घर घर समाचार पत्र पहुंचाया करता था। एक दिन वो देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति के घर की डाक पेटी पूरी तरह भर चुकी थी। समाचार पत्र डालने की जगह ना होने के कारण रमेश ने दरवाजा खटखटाया। कुछ क्षण बाद लगभग 80 वर्ष के श्री बैनर्जी ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। हेलो, रमेश ने पूछा, बाबूजी आपकी डाक पेटी इतनी भरी हुई है, क्या आप समाचार पत्र नहीं पढ़ते? बैनर्जी मुस्कराए और बोले, नहीं बेटा, मैं समाचार पत्र पढ़ने के लिए नहीं मंगवाता। रमेश को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, फिर प्रतिदिन समाचार पत्र क्यों लेते हैं? बुजुर्ग ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम प्रतिदिन मेरा दरवाज़ा खटखटाओ, घंटी बजाओ, समाचार पत्र मुझे अपने हाथों से दो। रमेश ने कहा, लेकिन बाबूजी इससे आपका भी समय जाएगा और मेरा भी। बैनर्जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें हर महीने 500 रुपये अतिरिक्त दूंगा। इसे समाचार पत्र पहुंचाने का नहीं बल्कि मेरे दरवाजे पर दस्तक देने का शुल्क समझ लेना। रमेश ने हंसते हुए पूछा, इतनी सी बात के लिए आप इतना 500 रुपया काहे देंगे? इस बार बुजुर्ग की आंखों की चमक अचानक बुझ गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मेरे घर में अब कोई नहीं रहता बेटा। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी का कई वर्ष पहले निधन हो चुका था और उनका बेटा विदेश में रहता था। बड़ा सा घर था, लेकिन उसमें अब केवल उनकी सांसों की आवाज़ गूंजती थी। फिर उन्होंने रमेश का हाथ पकड़ कर कहा, मुझसे एक और वादा करो। जी बताइए। जिस दिन तुम मेरा दरवाज़ा खटखटाओ और मेरी ओर से कोई उत्तर न मिले, उस दिन पुलिस को सूचना देना, मेरे बेटे को भी ये खबर दे देना, हो सकता है उस दिन मैं इस दुनिया में न रहूं। रमेश स्तब्ध रह गया। बनर्जी जी की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ता, मुझे तो बस तुम्हारे कदमों की आहट सुननी होती है। दरवाजे पर दस्तक होती है तो लगता है कि आज भी कोई मुझे याद करता है। कोई चेहरा सामने आता है तो लगता है कि मैं अभी इस दुनिया के लिए अनजान नहीं हुआ हूँ। उस दिन रमेश को समझ आया कि कभी कभी मनुष्य वस्तु नहीं खरीदता, वो अपनापन खरीदता है। उसके बाद रमेश प्रतिदिन समय निकाल कर बनर्जी के दरवाजे पर दस्तक देता, कुछ मिनट उनके पास बैठता, हालचाल पूछता और फिर आगे बढ़ जाता। समय बीतता गया। एक दिन रमेश ने हमेशा की तरह दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने दोबारा दस्तक दी, फिर घंटी बजाई, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। उस दिन बैनर्जी जा चुके थे। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने पुलिस को सूचना दी और उनके बेटे को भी खबर दी। उस दिन उसे 500 रुपये नहीं मिले, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सीख मिली किसी अकेले बुजुर्ग के दरवाजे पर की गई छोटी सी दस्तक भी उसके लिए जीवन का प्रमाण बन सकती है। आज हम संदेश भेजकर समझते हैं कि हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, लेकिन कभी कभी एक संदेश से अधिक मूल्यवान होता है। किसी के पास बैठना, उसका हाल पूछना और ये एहसास कराना कि आप अकेले नहीं हैं। इसलिए अपने परिवार और आसपास रहने वाले बुजुर्गों को समय दीजिए। सुबह का एक संदेश, शाम का एक फोन और कभी कभी घर जाकर मिल लेना, इन छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ा स्नेह छिपा होता है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन प्रसन्न है उसके पास ही वास्तविक संपत्ति है। किसी के दरवाजे पर दस्तक देते रहिए, क्योंकि हो सकता है वो दरवाजा किसी घर का नहीं, किसी अकेले हृदय का दरवाजा हो। हेलो,
3: ओम शांति। गुड मॉर्निंग दीदी,
2: ओम शांति। गुड मॉर्निंग, एकदम ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो?
3: हाँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, चार्टर से सुन रहा हूँ खुशी से और समझ कर, और बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। और आपको सभी को सुभाष भाई का नमस्कार और ओम शांति दीदी।
2: नमस्कार, ओम शांति। थैंक यू भैया फोन करने के लिए, ओम शांति। देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं, यदि शत्रु शांति की भाषा नहीं समझता है और धर्म या नीति को नहीं मानता है, तो उसके साथ छल कपट का प्रयोग करना पाप नहीं धर्म माना जाएगा। एक बहुत सुंदर कहानी है, अभी नहीं सुनाएंगे, लेकिन कहे का मतलब ये है कि कोई आप पे गलत करते रहे और आप माफ़ करते रहे नहीं, वहाँ पे कायर ना बने, वहाँ पर उसका प्रतिरोध करे। कहे कि सामने वाले की फिर हिम्मत बहुत बढ़ती जाती है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इशारे में बता दे कि जुबान तो भगवान ने हमारे मुंह में भी दी है, और जिस दिन बोलेंगे लगेंगे तो फिर वो डर जाएंगे कि अभी तो ये जाग गए हैं, यानी उल्टा जवाब दे सकते। अपनी इज्जत हर एक को प्यारी होती है। अनमोल विचार। परमात्मा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, चिंता हमेशा उलझाती है, अब प्रभु चिंतन हमेशा सुलझाता है। चिंता करोगे तो उलझे रहोगे, अब प्रभु चिंतन करोगे तो उलझे हुओं को भी सही रास्ता दिखाओगे। इसलिए चिंता छोड़, हमेशा प्रभु चिंतन करो। जिम्मेदारियों का बोझ आपको झुकाता नहीं है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आपकी वाणी और व्यवहार ही आपकी सच्ची सुंदरता है। खुश रहने का सबसे आसान तरीका, उम्मीद खुद से रखो, दूसरों से नहीं। जब आप दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने लगते हैं, तो आपके जीवन से उदासी का नामोनिशान मिट जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही परम शांति देता है। मन शांत हो तो हर परिस्थिति आसान लगती है, और विचार अच्छे हो तो जीवन सुंदर लगता है। इसलिए दूसरों को बदलने से पहले अपने विचारों को बदलना सीखिए। है कि नहीं सही बात? गलत बात तो हम कर्मे नहीं करते हैं, है कि नहीं भाई? बस इन बातों को सिर्फ कनवा से नहीं सुनिए, खुपरिया में भी इसको स्टोर करके रखिए, तभी ना काम आएगा जीवन में कभी भी। बार बार बार बार प्यार से और दया से रहने पर लगातार ध्यान दो। बार बार बार बार प्यार से और दया से रहने पर लगातार ध्यान दो। समय के साथ यही आपकी जीवन शैली बनकर आपको गर्व दिलाएगी। परमात्मा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, तीन चीज़ें जो एक बार चले जाने के बाद कभी वापस नहीं आती। पहला, बीता हुआ समय। दूसरा, बोले हुए शब्द। तीसरा, खोया हुआ मौका। इसलिए हमेशा समय, शब्द और मौके का सदुपयोग करो। आपके जीवन को बहुत खास बनाने की ताकत आपके अंदर ही है। हाँ, आप अनेक शक्तियों से भरपूर एक शक्तिशाली आत्मा हैं। अपने कर्म इतने मजबूत रखो कि आने वाला कल तुम्हारी मेहनत की कहानी सुनाए और किस्मत खुद तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाए। हमारा अस्तित्व हमारे कर्मों पर निर्भर होता है, किसी के नज़रिए पर नहीं। हर दिन थोड़ा समय अच्छे विचारों के साथ दूसरों का सहयोग और मदद करने में लगाओ। इससे मुश्किल हालात में आपको ईश्वर की पूरी मदद मिलेगी। कहते हैं ना, कर भला तो होगा भला, जीवन जीने की यही कला, तो आपसे भी ही कहते हैं। परमात्मा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, विश्वास वो ताकत है जो अंधेरे रास्ते में भी रोशनी महसूस करवा देती है। जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे, तब अंदर से एक ही आवाज़ आए कि सब ठीक होगा, वही विश्वास है। आपकी अच्छाइयाँ बेशक अदृश्य हो सकती हैं, लेकिन इनकी छाप हमेशा दूसरे के हृदय में विराजमान रहती है। आप जितना कम बोलेंगे उतना ही आपको लोग ध्यान से सुनेंगे। मजबूत बनना है तो ईश्वर की तरफ ध्यान में लग जाओ, बेफिक्र रहना है तो ईश्वर से प्रार्थना करो। किसी को कुछ देना चाहते हो तो दुआ दीजिए, वो दुआ जो जुबान से नहीं दिल से निकली हो। जिंदगी का रास्ता कभी बना बनाया नहीं मिलता है, जिंदगी का रास्ता कभी बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। तो देखिए भाई बहनों, इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखिए, और ध्यान में रख के चलिएगा तो जब भी कोई परिस्थिति आएंगी तो ये बातें आपके सामने आएंगी और आप फिर मजबूत होकर खड़े हो जाएंगे। चलिए एक गीत और सुनते हैं, के बाद आपके बताएंगे। बहन जी कौनो निकवा सा गीतवा सुनवा दीजिए ना।

0: माय नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रेय शेखटकर. मैं एक सैन्य अधिकारी हूँ, निवृत्त सैन्य अधिकारी. मेरा ये निवेदन है यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में कि माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, हमें मान्य है कि हम इस पूरी पृथ्वी को बगीचा नहीं बना सकते हैं. माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, बस कांटे ही कुछ कम कर दिए, निकले जिधर से हम. एक कांटा, एक कुरीति, एक कुप्रथा, एक गलत बात अगर यहाँ से निकल जाएगी तो ये माउंट आबू जो है, यहाँ का क्षेत्र जो है, पूरा राजस्थान है, ये स्वर्ग हो जाएगा. और यही मेरा निवेदन है, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है.
1: बेटा अपने बूढ़े बाप को अनाथ आश्रम छोड़कर वापस जा रहा था तो उसकी बीबी ने फ़ोन किया और कहा, अपने बाप को ये भी कह दो कि त्यौहार पर भी घर आने की आवश्यकता नहीं, अब वही रहे और हमें शांति से जीने दे. बेटा वापस मुड़ा और अनाथ आश्रम गया तो देखा कि उसका बाप अनाथ आश्रम के मैनेजर के साथ खुश होके गप्पों में व्यस्त है और वो यूं बैठे थे जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हो. बेटे ने पूछा, सर आप मेरे पिता को किस तरह और कब से जानते हैं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब ये अनाथालय से आपको गोद लेने आए थे. समझ गए, जो बाप ने उस लड़के को अनाथालय से ले जाके बड़ा किया, पाला पोसा, बड़ा होके वो बेटा उसी अनाथ आश्रम में बाप को छोड़ के गया. और बाप तो तब भी मस्त था और अब भी मस्त था, लेकिन का बीती होगी उस आज के सो कॉल जन जी पे. बहुत अपने आप को होशियार समझते हैं लेकिन जहाँ जो बोलना चाहिए वो बोल जाते हैं, नहीं बोलना वो बोल जाते हैं. ये समझ कौन देगा भाई? ठीक है, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आपकी बुद्धि बहुत तीव्र चलती है, लेकिन अपने संस्कारों को भी तो समझिए. बस्तर के किसी गांव में कालूराम नाम का एक किसान था. उसके पास लगभग 2 एकड़ का एक खेत रहा जिसमें खेती करके वो अपना परिवार का जीवन यापन किया करता था. वो वृद्ध हो चला था इसलिए उसकी खेती बाड़ी अब उसका इकलौता बेटा भोला देखा करता था. भोला ने देखा कि उनका खेत में बीचों बीच एक बड़ा महुए का झाड़ है जिसकी छाया

0: नीचे चारों तरफ लगभग आधा एकड़ की भूमि पर फसल नहीं उगा करती थी। एक दिन भोला ने कुल्हाड़ी से उस वृक्ष को काटने की कोशिश की, तभी गांव के कोटवार की शिकायत पर तुरंत ही वन विभाग के अधिकारी उसके घर आकर हिदायत देकर चले गए कि महुआ राज्य सरकार के प्रतिबंधित वृक्षों की श्रेणी में आने वाली वनोपज है, इसे काटना कानूनन जुर्म है। अब दोबारा से ऐसी कोशिश की तो सीधा जेल में डाल दिए जाओगे। डरा सहमा भोला उनके सामने कुछ न बोल सका। उसने बाद में सरपंच और ग्राम प्रधान से भी जानकारी प्राप्त की तो उनको पता चला कि इस प्रकार के वनोपज को काटने के लिए स्थानीय तहसीलदार की अनुमति आवश्यक है। भोला ने जैसे तैसे अपने गांव के पटवारी को अनुनय विनय करके महुआ का पेड़ काटने की तहसीलदार साहब से अनुमति प्राप्त करने के एवज में 1,000 रुपये देकर कहा कि जब मैं ये झाड़ काटूंगा तो इसकी आधी लकड़ियां आपको ही दूंगा। भोला 2 सप्ताह तक अनुमति की प्रतीक्षा करता रहा, मगर अनुमति तो नहीं मिली। उलट उस पटवारी का ही दूसरे गांव में तबादला होने से भोला के पैसे पानी में चले गए। मानसून सिर पर था, भोला को धान की फसल बोना था, लिहाजा उसने उस वृक्ष के छाया वाले स्थान सहित पूरे खेत की जुताई करके धान की रुपाई करना शुरू कर दिया। जिद्दी भोला आश्वस्त था कि कुछ ना कुछ करके वो धान की फसल बड़ी होने से पहले इस वृक्ष को काट ही लेगा। भोला ने शहर से महंगा खरपतवार नाशक जहर एवं अन्य विषैली रसायन उस वृक्ष की जड़ों में डालकर महुए को नष्ट करने का एक और प्रयास किया, मगर वो महुआ तो जंगली वनोपज था, उसे इन सब जहरीली रसायनों का कोई असर नहीं हुआ। वो महुए का पोड़ ज्यों का त्यों हरा भरा ही रहा। भोला धान की रुपाई करने के बावजूद भी उस महुए के छाया तले लगभग आधा एकड़ भूमि से कोई उत्पादन न कर पाने से हताश हो गया था। भोला को यूं हताश देखकर उसके पिता कालूराम ने कहा कि यदि तुम उस महुए के पेड़ को काटना चाहते हो तो मेरे अनुसार काम करो, पेड़ खुद ब खुद सूख कर गिर जाएगा। भोला ने कहा, ठीक है पिताजी, मुझे बताइए क्या करना है। कालूराम ने कहा कि सबसे पहले तो इस बार रबी की फसल को बाकी के भाग में ही बोना। अभी उस महुए के पेड़ के चारों तरफ गोल घेरा करके उसमें गोबर की खाद डालो और रोज ही उसे पानी देना शुरू कर दो। अरे, सितंबर अक्टूबर में कौन झाड़ों को पानी देता है, और वो भी उस महुए के पेड़ को जिसको मैं काटना चाहता हूँ। पिताजी, आप उसे कटवाने का प्लान बना रहे हैं या संरक्षित करने का? भोला ने हैरत से अपने पिता से पूछा। कालूराम ने मुस्कुराकर कहा, तुम सारे प्रयत्न करके देख चुके हो, अब मेरे हिसाब से भी एक बार करके देख लो, तुम्हें सफलता ना मिले तो कहना। अपने पिता का कहना मानकर भोला ने उस महुए के पेड़ के चारों ओर गोल घेरा बनाकर उसमें गोबर की खाद डालकर रोज एक ड्रम पानी देना शुरू कर दिया। हालांकि ठंड के समय में किसी भी पौधे को पानी की आवश्यकता नहीं होती, फिर तो महुआ एक जंगली वृक्ष था। भोला नहा कि उसे पानी दे रहा था, परंतु वो पिताजी का कहना नहीं न टाल सकता था। खरीफ की फसल भी कट चुकी थी, अब गर्मी पड़ना शुरू हो चुकी थी। वो महुए का पेड़ अन्य वृक्षों के उलट और भी ज़्यादा हरा भरा हो चुका था, परंतु भोला ने अपने पिता की आज्ञानुसार उस महुए के वृक्ष को खाद पानी देना जारी रखा। वन कर्मी रेंजर को ये संदेहास्पद लगा भी, परंतु किसी भी वृक्ष को खाद पानी देना कोई जुर्म तो था नहीं, इसलिए वो रेंजर भोला के पर्यावरण के प्रति जागरूकता की प्रशंसा करके चला गया। मई के मध्यान्ह में जब पूरे क्षेत्र में प्रचंड गर्मी पड़ने लगी, कालूराम ने अपने बेटा भोला को बुलाकर कहा, अब उस पेड़ को पानी देना बंद कर दो। भोला ने असमंजस की स्थिति में पिताजी के कहने के अनुसार उस पेड़ पर खाद पानी देना बंद कर दिया। वो सोच रहा था कि जब इससे पहले भी अति प्रचंड ग्रीष्मकाल में भी ये महुए का वृक्ष गर्मी के थपेड़े सहकर भी खड़ा था, तो अब पानी बंद करे से वृक्ष को क्या फर्क पड़ेगा। परंतु आश्चर्यजनक रूप से पहले 15 दिन में ही उस वृक्ष की सारी पत्तियां झड़ गईं। भोला ने पहले तो इसे पतझड़ के मौसम का असर समझा, परंतु जब एक एक करके उस पेड़ की शाखें और तना भी पूर्णतः शुष्क हो गया तो भोला को यकीन हो गया कि पिताजी की तरकीब काम कर गई है। जून की प्रचंड गर्मी वो महुए का वृक्ष बर्दाश्त नहीं कर सका। जुलाई में बरसात आने से सब तरफ हरियाली थी, मगर उस महुए के वृक्ष में न तो नए पत्ते आए न नई बयार। उस महुए के वृक्ष के ने दम तोड़ दिया था। इसी दौरान आए छोटे से तूफान को भी वो वृक्ष झेल न सका और स्वतः ही उखड़ कर गिर गया। इस घटना से हैरान परेशान भोला ने अपने पिता कालूराम से पूछा तो उन्होंने कहा, ये महुए का वृक्ष जंगली वृक्ष है, किसी भी तरह के मौसम में बदलाव को सहन करने के बाद ही इतना बड़ा हुआ है। हर गर्मी में इसकी जड़ें पानी के जल स्तर के अनुरूप नीचे ही बढ़ती जाती है, जिससे ये वृक्ष कभी भी नहीं सूखा करता था। परंतु जब तुमने इसे ठंड के मौसम से ही खाद और पानी देना शुरू कर दिया तो ये वृक्ष अपनी मेहनत की आदत छोड़कर मुफ्त में मिले खाद पानी के ऊपर निर्भर होता गया। हेलो
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते, ओम शांति। कैसे हो?
1: बहुत अच्छी।
0: बहुत दिनों के बाद फोन किया आपने। ठीक है,
1: चलो बात कर लेते हैं दीदी से।
0: हाँ हाँ, तबीयत पानी सब ठीक है?
1: हाँ, अभी तो मौसम की वजह से थोड़ा इसमें हो गया, अभी तो आराम हो। कार्यक्रम सुनते हैं, लेकिन अभी क्या
0: है,
1: काम करते करते सुनते हैं तो कभी कुछ याद रहता नहीं कार्यक्रम।
0: घर के काम भी रहते होंगे।
1: हाँ, अभी देखो पानी भी नहीं आता तो बाहर से भरना पड़ता है।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो टाइम कम मिलता है तो कई बार।
0: हाँ, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो बनी रहती है घर गृहस्थ में ना। चलो, इसी का नाम जीवन है। सब कुछ जीवन में करना पड़ता है ना। थोड़ा पर भगवान को याद करके करें तो वो थोड़ा
1: वो तो करते ही है।
0: हाँ,
1: तो याद करे बिना तो नहीं जीवन।
0: हाँ, तो थोड़ा हल्का हो जाता है। मदद भी मिलती है, मन भी थोड़ा शांत रहता है।
1: क्या है, जो सच्चे दिल से जीते है ना उसको परेशानियाँ भी ज्यादा।
0: हाँ
1: देखो, उनको कभी भगवान का नाम नहीं है उनके लिए, उनका जीवन ऐसे आनंद नहीं होता किसी को, लेकिन ये तो कर्मों का हिसाब किताब होता है।
0: जी जी जी,
1: हम तो ईश्वर का नाम ही लेते
0: हैं।
1: परिस्थिति हो,
0: हाँ, एक परमात्मा का नाम लेते रहना, उसकी मदद मिलते ही रहेगी। ठीक है, नमस्ते। तो देखिए भाई, हर गर्मी में इसकी जड़ें पानी के जल स्तर के अनुरूप नीचे ही बढ़ती जाती है, जिससे ये वृक्ष कभी भी नहीं सूख सकता। परंतु जब तुमने इसे ठंड के मौसम से ही खाद और पानी देना शुरू कर दिया तो ये वृक्ष अपनी मेहनत की आदत छोड़कर मुफ्त में मिले खाद पानी के ऊपर निर्भर हो गया, जिससे इसकी जड़ें क्षेत्रीय जल स्तर के अनुरूप नीचे की ओर न बढ़कर ऊपर से तुम्हारे द्वारा मिल रहे जल की तरफ अग्रसर हो गई। ये स्वावलंबी वृक्ष तुम्हारे द्वारा मिल रहे खाद पानी पर निर्भर होने से परावलंबी हो गया, और जब तुमने अचानक मई के मध्याह्न में इस महुए को खाद पानी देना शुरू कर दिया, इसके जड़ें मौजूदा जल स्तर से बहुत दूर हो चुकी थी, जिससे वृक्ष बिना पानी के सूख कर स्वयं ही नष्ट हो गया। हम सभी कभी न कभी उस जंगली महुए के वृक्ष की तरह स्वावलंबी थे, जो राह चलते कुएं नलकूप या नदी से बिना छना पानी पीकर भी बीमार नहीं होते थे। मिट्टी सने हाथ बिना डेटॉल के धोए भी स्वस्थ रहते थे। मीलों पैदल चलकर भी थकान महसूस नहीं होती थी। आज हम आर

राशन देकर इसी प्रकार महुए के वृक्ष के समान परावलंबी बना चुकी है। शहरों में यही हाल मुफ्त के बिजली पानी के लालच का दिया जा रहा है, जो मुफ्त का खाने का आदि होने की वजह से उसी सरकार को मुफ्त का अनाज दे चाहे उसके वज में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ही की लिप्त क्यों ना हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को इस महुए के वृक्ष की तरह परावलंबी बनाएंगे तो एक न एक दिन बेमौत मारे जाएंगे। इसलिए समय रहते स्वावलंबी बनने का प्रयास करें। स्वावलंबी का मतलब क्या है जानते हैं ना आप लोग? हम दूसरे पर निर्भर ना रहें, अपनी मेहनत अपनी बुद्धि उसके आधार पे हम जो कर सकते हो करें। दूसरा ला के दे तो हम खाएंगे, नहीं तो भूखे मर जाएंगे का नहीं। अपना खुद का कुछ करिए ना, काहे दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, है कि नहीं? तो चलिए अब इस पर से गीत सुन लेते हैं और उसके बाद फिर बतियाएंगे। सुनिएगा गीत।

0: पांच यूट्यूब वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख,

0: हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए। इट मींस ये जेन्युइन है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
2: क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
4: देखिए भाई, जीवन के इन तीन चरणों में दुखी न हूँ। पहला चरण 58 से 65 वर्ष, आप कार्य क्षेत्र से दूर हो जाते हैं। आप अपने कैरियर में कितने भी सफल थे, शक्तिशाली क्यों ना रहे हों, इस समय आपको एक सामान्य व्यक्ति के रूप में ही देखा जाएगा। इसलिए अपनी पुरानी नौकरी या व्यवसाय की मानसिकता और श्रेष्ठता की भावना को पकड़े ना रहें, समझ गए ना। दूसरा चरण 65 से 72 वर्ष, इस समय समाज धीरे धीरे आपको दूर करने लगता है। दोस्तों और सहकर्मियों की संख्या कम होने लगेगी। पुराने कार्यस्थल पर शायद बहुत कम लोग ही आपको पहचानेंगे। बात बहुत पते की कर रहे हैं। मैं पहले था या मेरा भी एक समय था, ऐसी बातें कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नई पीढ़ी को आपको जानने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। इससे दुखी ना हो, कई बार हम हो जाते हैं। तीसरा चरण 72 से 77 वर्ष, इस चरण में परिवार भी धीरे धीरे आपको दूर करने लगता है। आपके बच्चे या पोते पोतियां कितने भी हों, अधिकांश समय आप शायद अपने जीवन साथी के साथ या अकेले रहेंगे। जब वो कभी कभी आपसे मिलने आए तो इसे उनके स्नेह का प्रतीक समझें। वे कम मिलने आते हैं, इसके लिए उन्हें दोष न दें, क्योंकि वो अपने जीवन के कार्यों में व्यस्त हैं। आज की जनरेशन बहुत फास्ट बहुत कुछ करना चाहती है, और 77 वर्ष के बाद दुनिया आपको धीरे धीरे अपने से दूर करने लगती है। इस समय मन उदास या दुखी न करें, काहे कि ये जीवन का अंतिम चरण है और एक दिन हर किसी को यही रास्ते पर जाना है। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है, जीवन को आनंद से भरपूर बनाइए। आपको जो अच्छा लगे वो खाइए, पीजिए, खेलिए और जो मन करे वो कीजिए। सुखी रहिए, आनंद से जीवन बिताइए और हमेशा खुश रहिए। समझ गए तो? अरे भाई समझ गए तो अच्छा है, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो हम तो आगे की बात भूल भी नहीं करेंगे। इसके लिए आप खुद अपने समझ लीजिए। जिंदगी जीने के लिए दोनों तरह की योग्यता आवश्यक है, वक्त को बदलने की और वक्त के साथ बदलने की। किसी समस्या का सामना करना उसके समाधान की पहली सीढ़ी है। बहुत कुछ बदल जाता है बढ़ती उम्र के साथ। पहले जिद किया करते थे, अब समझौते किया करते हैं। जिंदगी ने सवालात बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले। हम तो आज भी वही हैं जो कल थे, बस लोगों ने अपने ख्यालात बदल डाले। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल 11 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: आयो साहिबो नहीं आयो सावण सुरंगो आयो साहिबो नहीं आयो तीजरड़ी मन लू भायो बादरड़ी बरसो बरसो पिया जीरा देश बिजरड़ी चमको चमको पिया जीरा देश आ तो आ भाई कंचन पाछा आपा गावरी बातें कार्यक्रम में सगला श्रोता बंधुरो स्वागत करा हाँ और देख भाई सावण महीना में एड़ा एड़ा गीत बोले कि मन तो अपने आप ही याद आवे एड़ा एड़ा गीत भी गावे
1: जरिस मुई हो सो रही हूँ के रतन हर बार कठाती गीत एक ती एक ले लावे
0: पर सावण में एड़ा गीत गावे तो याद हो जावे क्योंकि तीज त्योहार तो आ भी है तीज त्योहार पे अपने जमाई भाई है बेटिया की शादी कराए बाद पहली तीज वे वे तो जमाई भाई ने भी बुलाना पड़े बेटिया अपना घरे हुए
1: हाँ।
0: तो अपने आप ही पचे वहां के लिए कई बोला तो गीत याद आई जावे आपने भी देखो भाई राजस्थान रा माई ने एडी एडी परंपरा है कंचन कि आपने जमाई भाई आवे पहली बार त्योहार पे तो कतरो सम्मान करा
1: पहली बार तो खूब सम्मान हुई है
0: मन तो परंपरा अच्छी लागे
1: अच्छी लागे सही बात है
0: और आपने सावन महीना की बात चल रही सावन में त्योहार भी खूब आवे तो सावन महीना में सत्संग भी खूब आवे आपा सत्संग की भी बात कर रहा हाँ। देख भाई ठंठा है आपने ये 16 सोमवार जो करा ना मनसा महादेव का वे भी चतुर्थी चालू हो जावे
1: हाँ,
0: हाँ। जो ठेठ कार्तिक महीना तक रहे दीपावली का बाद जो चौथ आवे ने पर 4 महीना को चौमासो केवा चौमासा का स्टार्टिंग में या चतुर्थी आवे यदि मनसा महादेव का व्रत चालू हुए वो पाछे चौमासो खत्म वेवा आवे जदि चौथ आवे ने जदि पाछे संपन्न वेवे अवैणी में भी देखो भक्ति कड़क है हो सुबह वेगा उठ नाप स्नान ध्यान करो ठेठ माता का केसु लगा नेड़ी तक कई भी आपको धुलिया बगैर बाकी नहीं रहना छावे माथो धोनो पड़े
1: रोज
0: हर सोमवार पहली चतुर्थी आपा चालू कर दा ठीक है तो चौथ का दिन आपने सब पूजा की सामग्री ले जानी पड़े चूरमा बनावे ही में हर सोमवार चूरमा बनावे चौथ का दिन आपा स्टार्ट करा तो चौथ का दिन नु ये चालू हो जावे चूरमा तो अबे में अलग अलग भाई मान्यता है 2.5 किलो बनावे चूरमा जी का 4 भाग करे एक भाग पहली तो ठाकुर जी के सारो भोग लगाई पचे भी को 4 भाग करी एक भाग गाय के एक भाग बेन बेटी के एक भाग खुद व्रत करा जो खावा को और एक प्रसाद वितरण करवा को 4 भाग करे तो कोई 1.25 शेर को करे तो कोई 2.5 किलो को करे और असान 4 भाग करन बाटे और सुबह पहले स्नान ध्यान करन स्वच्छ कपड़ा जो कपड़ा धुलिया सका वेना छावे के पचे कोरा कपड़ा
1: औद कपड़ा
0: हाँ पर इमें यू है के आपके कोरा कपड़ा तो कोई भारी वेशन ये पेरवा की जरूरत नहीं है
1: सिंपल
0: हाँ सिंपल अनिवार्य से धुलुड़ा होना चाहिए और सुबह पहले आप स्नान ध्यान करते हैं तुरंत ही आप पूजा के लिए निकल जाओ कहवे भाई अटिनो अटिने बैठा पाछे कपड़ा पे दाग लागे पाछे अपन नाया ने गणित घेप पे जाओ तो वॉशरूम भी जाना पड़े
1: हाँ
0: तो कहवे की पूरी स्वच्छता का साथ में पूजा हुए तो आप नाते ही बस पचे कपड़ा पेरता ही माँ तो पूछता ही आप निकल जाओ पूजा करवा का लिए ताकि बनी टाइम पे तो पाचो न तो बाथरूम को प्रेशर बने न आप अटिन उठिने बैठा थाल अपने सजाई पूजा की रवाना हो जाओ
1: सही है
0: और चूरमो तो बनानो ही पड़े तो चूरमो पहली बना दो पचे इमें 2 बार स्नान वे पहली नहा लो पचे आप चूरमो बनाओ पचे पाचो नहाओ पर हाँ ये चतुर्थी शुरू हुए जो चतुर्थी का दिन खत्म हुए पहले और लास्ट में बीच में सोमवार ने तो आप पूजा पाठ करो और पूजा करें आप कई भी प्रसाद चढ़ाओ फ्रूट भी मिले केला लाओ आप इच्छा हुए जो फ्रूट लान चढ़ाओ तो चाले पर चौथ शुरू हुए चौथ का दिन ही समाप्ति हुए दो ही चौथ पे चूरमो छाई जाए
1: अच्छा तो थे का की दौड़ा है सोमवार
0: हाँ मैं की
1: दरे इस तन पूरो ध्यान है चलो तो, जन्ने करना भी बनो नहीं ठाबो पड़ी के वो सोमवार की गण करना है
0: हाँ
1: सही बात है ने
0: सही बात है तो ये मनसा महादेव के वे जमा 16 सोमवार वे 16 सोमवार जैसे 16 शुक्रवार करा ना वैसे 16 सोमवार
1: सही
0: हाँ गुजरात में भी खूब करे तो राजस्थान में भी खूब करे और भी अन्य राज्य में भी करता भी भाई बहन, क्योंकि शिव जी की पूजा ही सब ज्यादा हो सावन महीना, और झटी ने भी देखो सब शिवमय शिवमय हो जावे।
1: शिव जी रा तो सब भक्त है बोले बाबा, सब भगत भगत सबरा मोबाइल माते स्टेटस ही देखो तो सबरा शिवजी रा इस लागोड़ावे,
0: शिवजी का इस लागोड़ावे। मैं एक बच्चा हूँ बात वेरी ही, तो बच्चा भगवान का सामने भोलेनाथ की मंदिर में भोलेनाथ का सामने कह रहे आख्या बंद कर भगवान प्रार्थना कर रहे, हे भगवान अनी बार तो मारे 90% तो मनाना ही पड़ी हो, अगर 90% बन जाए तो मैं एक नारियल चढ़ाऊ। मैं कह अच्छा मैं सुन रही ही, मैंने हंसी आई छोटो बच्चो 7-8 साल को, वो हसान कह रहे पछे दी वो भक्ति कर काढ़ी निकलो लागे, तो मैं क्यों लाला हटाओ, तो क्या हाँ कही के वो आप, तो मैं क्यों अच्छा ये प्रार्थना की क्यों कर रहे हो, कि भगवान ने कह रहे हो ठाकुर जी ने मारे 90% छावे, क्योंकि भोलेनाथ का लिए सुनियो सको भोलेनाथ हर प्रार्थना पूरी करे। मैं क्यों कठे सुनियो तू, तो क्या हमारे दादाजी कहानी सुनावे न, तो भोलेनाथ की सुनावे, भोलेनाथ वरदान देवे, पछे मुश्किल पड़ जावे तो वहां में श्री विष्णु जी मदद करे। तो मैं भोलेनाथ ने कह दी तो 90% बना दीजो, अब वाको नहीं बनानी आई तो वे विष्णु जी बात करी।
1: देखो बच्चा ही केड़ी केड़ी बात करे है।
0: तो मैंने अतरी हंसी आई, वे क्या देखो बच्चा भी बुद्धि में बिठा रह गयो।
1: देखो बच्चों नहीं पर वो दादाजी बताई, दादाजी माते विश्वास, तो दादाजी झूठ नहीं बोले तो सही में, तो बच्चों तो यूज भी
0: हाँ, क्यों भाई दादाजी कहानी क्यों जदी तो सही है
1: सही है।
0: वे बच्चा भगवान तो अपना साथ में है, पर मेहनत तो कर जाए तो 90% भी बन जाए, पर मेहनत छाई जाए,
1: मेहनत तो करनी पड़ी।
0: हाँ यू है कि देखो कतरा भाव शुद्ध हो जावे, बच्चा का भी भाव केड़ा शुद्ध हो गया मानी वास्ते, वो कहे कि आपने अध्यात्म का प्रति तो रुझान वेणु ही छाई जाए, अपना भले छोटा वो बड़ा वो बच्चा ने ले जाओ आप, तो यहाँ का मैं संस्कार आई
1: बच्चों तो देखी फेस सीखी बच्चों हाँ। ने मंदिर ले जाइयो, सुबह ओपे अगरबत्ती दिया धूप करे यो, सबरा आदर करे यो, भगवान ने मंदिर जाओ तो बच्चा ही सीखे
0: सही है,
1: नहीं तो बच्चों ने कोई अनुभव नहीं रहता
0: बिल्कुल। और सावन महीना को देखो खाली जरूरी नहीं कि कोई 4 महीना व्रत करे, घना जना चौमासो नावे तो 4 महीना का व्रत करे, और झाको नी नानी आवे तो वे सावन महीना का व्रत करे,
1: सही है
0: आको सावन महीना का, तो कोई नियम करे तो हरी सब्जियां नहीं खावे,
1: नहीं खावे
0: हाँ, पचे दाल भाजी बेसन सूखी सागा चना कठोरी ऐसी चीजा खावे, पर हरी सब्जी नहीं खावे,
1: नहीं खावे तो सब अलग अलग तरह की करे
0: हाँ। और घना जना आजकल मैं तो देखियो हूँ कंचन के महिला सब ग्रुप मना मना अनभी स्नान पे जावे
1: हाँ।
0: कोई पुष्कर का स्नान लेवे
1: हाँ।
0: कोई हरिद्वार का स्नान लेवे
1: हाँ।
0: हरिद्वार हर पूनम के हर अमावस्या,
1: तू बोले रही है तो मने धीरे धीरे याद आवे रही हाँ, मैं दे मैं अड़ू देखी हुए
0: मारे फोन आयो मारी एक और सहेली है जी को हर अमावस्या पे स्नान करवा जहाँ तू आवे गई, मैं कह यार हर अमावस्या में बंधू नहीं, मैंने टाइम मिली तो मैं आऊ नहीं तो नहीं आऊ, अगर हाँ कर दू मैं बंद जाऊँ तो हर अमावस्या जरूरी नहीं है मारो आनी आवे, बोले ठीक है जत्रा करने आप उतरे कर जाए, मैं क्यों हाँ ठीक है, मैं पचे मैंने पूछो भाई तू डिटेल बता था क्यान करो, तो बोले कि मैं तो 4 महीना चौमासा का मतलब हर अमावस्या पूरा साल भर का हर अमावस्या पे स्नान करवा जानो,
1: अच्छा
0: कोई कह माँ पूनम पे जावा हर पूनम, और कोई पुष्कर जी जावे कोई कोई तो हरिद्वार जावे, तो क्या हरिद्वार, और अच्छा मतलब पूरा ग्रुप पे जावे तो आराम हो आप जाओ आओ एंजॉय भी, चलो अनी बहाने एक नारी शक्ति बहाने तो निकले घर का बहाने,
1: सही बात है,
0: नहीं तो आखो दन घर का काम कर का नन वाणी कमटाना ऊंची नहीं आवे,
1: कमटालो तो ऊंची नहीं आवे सही बात है, अन बहाने बाहर जावन मले
0: हाँ बहाने जावा पचार जने मिला माइंड भी फ्रेश हुए तो घर में भी वा पाछा आवा तो आराम आपन एक चेंज वे आवे तो एक अच्छो मूड वे जावे,
1: सबरे सबरे साथ घूमे सबरे साथ मिले बारे मलवाती एक माइंड फ्रेश हुए,
0: माइंड फ्रेश हुए माहौल चेंज वे जावे की चलो, और छूट भी देने चाहिए जे परिवार वाला ने, और क्योंकि घना परिवार वाला बांधन रखे हाँ नहीं नहीं नहीं नहीं था चले जाओ घर को काम कौन करी, अरे भाई घर को काम आकी जिंदगी करी सर ने, अरे 2-4 दिन की छुट्टी लेने जा रहे तो आपको परमिशन लेने जा रहे बहुत बढ़िया बात है, तो वहां छूट देनी चाहिए क्योंकि अमन भाई लोग आके जाना हुए तो फोन कर दे भाई मैं आज नहीं आऊ,
1: दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ तो पसे सही बात है।
0: हाँ, घरे भी केवा की जरूरत नहीं है, फोन करे नहीं कहते भाई हमारे तो अपन आवा को टाइम नहीं है, मैं
1: जा रही हूँ बनोरी जिंदगी अच्छी वे बनो के बार टेंशन कने नहीं।
0: ओई तो पछे एक महिला कई बिगाड़े, महिलाओं महिला साथ में जा रहे तो अच्छी बात है, मैंने भी बढ़िया लाग्यो, पर मैं क्यों हर अमावस्या नहीं बंदू आऊं जरूर
1: जानो जो जे कदी कदार जाओ, महिला यू बारे नहीं जाती वे एड़ा फन मौका माते इस बारे जाए।
0: और ये देखो एक धार्मिक प्रवृत्ति कई महिलाओं ने लागे भाई हरिद्वार जावा हर अमावस्या अमावस्या या पुनम उपनम तो परमात्मा मानी इच्छा पूरी करी घर परिवार में सुख शांति रही। भाई महिला सोचे तो पूरा परिवार के लिए,
1: परिवार के लिए वह मन्नत मांगी तो पूरा परिवार के लिए,
0: पूरा परिवार के लिए टाबर के लिए मांगे। तो चलो भाई कंचन टाइम भी हो गया अपना जावा को मन्नत तो मांग ले वहाँ पर पाजा टाइम पे तू जाए तो जीजा सा तन पाचा आवा दे।
1: हाँ सही बात कह रही है, मन तो द्योनी नहीं पड़ी हो समय वेगियो है। चल बाय मुझ जाऊँ। हाँ।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिलता है। तो आइए, कार्यक्रम सफलता का आधार मूल्य शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज के हमारे खास मेहमान राजेश जी हैं, जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। और पिछले एपिसोड में उन्होंने सफलता की वास्तविक सत्यता क्या है इस विषय को लेकर बहुत ही अच्छी बातें शेयर किया था। तो आज हम लोग चाहेंगे कि हम सफलता क्यों चाहते हैं। आज का हमारा जो विषय है, जो आप सभी को भी लग रहा होगा कि ये ऐसा कैसा विषय है ना, हम सफलता क्यों चाहते हैं, सभी सफल बनना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो चाहत है, क्या रीजन है कि हम सफल होना चाहते हैं या सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इसके इर्द गिर्द हम लोग बातचीत करेंगे। और आशा करूंगा आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, एक नया जो है आयाम आपको मिलने वाला है आज के इस विषय को सुनने के बाद। तो आइए राजेश जी, बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में सफलता का आधार मूल्य शिक्षा में।
1: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया।
0: चलिए, मेरा सवाल वही रहेगा कि हम सफलता क्यों चाहते हैं, इस विषय पे क्यों बोलना चाहते हैं आप?
1: आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सब सफल होना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम सफलता क्यों चाहते हैं, चाहना ही क्यों है।
0: हाँ।
1: ये इच्छा ही क्यों है कि हम सफल ही हों। तो इसके पीछे पहले हम थोड़ा, जैसे हमने हमारा जो पहला एपिसोड हुआ
0: जी
1: उसमें हमने चर्चा की थी, तो आज भी थोड़ा उसको आगे बढ़ाते हैं।
0: हाँ।
1: ताकि हम उसको क्लियर कर सकें और हमारे जो सुनने वाले श्रोतागण हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबको समझ लग सके और उसको हमारे पिछले एपिसोड के साथ वो लिंक कर सके। तो एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं।
0: जी
1: जैसे फॉर एग्जाम्पल, सफलता क्यों चाहते हैं लोग? वैसे दुनिया में देखते हैं कि लोग सफल हैं। एक बहुत बड़ा जो ड्रीम हमारे आजकल के यूथ्स के मन में है, या जो मीडिया में दिखाया जाता है, नॉर्मली एड्स में दिखाते हैं, कोई सफल व्यक्ति होता है तो दिखाते हैं उसने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी होती, कोट पैंट पहना होता है, बहुत बड़ी गाड़ी होती है, बहुत बड़ा घर होता है, बंगला होता है, वो ऐसे चलता है जैसे पता नहीं उसको दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति वही हो। तो बच्चों के मन में या स्टूडेंट्स के मन में, यूथ्स के मन में ये होता है कि सफलता माना कि बहुत सारा मेरे पास धन हो जाए, पैसा हो जाए, पैसा कमा लूंगा, या कोई मैं जो बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या जो उस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, वो मैं बन जाऊंगा। या फिर तीसरा एक तरह का हम कहें, जब हमने स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में जाकर के पूछा तो कहते हैं हम इसलिए सफल होना चाहते हैं ताकि हमारे पेरेंट्स का नाम होगा, मान होगा, शान होगा, या हमारा भी मान शान होगा। लेकिन अल्टीमेटली जब हम उनसे ये पूछते हैं कि भाई अगर आपके पास धन होगा तो क्या होगा, आप कहते हैं बहुत बड़ा पैसा होगा तो बहुत बड़ी गाड़ी होगी, अच्छे कपड़े होंगे, अच्छा उससे क्या होगा, बहुत बड़ी गाड़ी होगी तो फिर हम आराम से रहेंगे, घर होगा तो आराम से रहेंगे, बहुत बड़ा घर होगा तो अच्छा आराम से रहेंगे तो उससे क्या होगा,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अच्छा उससे हमें शांति रहेगी, खुशी रहेगी और संतुष्टता रहेगी, अच्छा खुशी रहेगी, शांति रहेगी, संतुष्टता रहेगी तो फिर क्या होगा, तो फिर उनके पास कोई उत्तर नहीं होता।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो अल्टीमेटली उनसे हम जब ये सवाल पूछते हैं कि अगर आप किसी प्रोफेशन में भी हो तो इंजीनियर बन जाओगे तो फिर क्या, सपोज वो कहता है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, अगर इंजीनियर बन जाएंगे तो फिर क्या होगा, अच्छा नौकरी मिल जाएगी बहुत अच्छी मेरे को, मैं बहुत अच्छी जॉब करूंगा, बहुत अच्छी से क्या मतलब है, जिसमें ज्यादा पैसे हो, ज्यादा पैकेज मिले, 40 लाख, 50 लाख, तो ज्यादा पैसे मिलेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वही बात कि बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, माँ बाप आराम से रहेंगे, फिर क्या होगा, फिर हम आराम से रहेंगे, आराम से क्या मतलब है, खुशी होगी, शांति होगी, संतुष्टता होगी। तो ऐसे ही जब उनको पूछते हैं, माँ बाप को इज्जत मिलेगी तो फिर क्या होगा, हमें भी इज्जत मिलेगी ना, अच्छा इज्जत मिलेगी तो क्या होगा, स्वाभिमान होगा, स्वाभिमान से क्या मिलता है, स्वाभिमान से अपने आप को संतुष्टता मिलती है, सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। तो अल्टीमेटली सफलता क्यों चाहते हैं, क्योंकि हम खुशी चाहते हैं,
0: शांति
1: चाहते, प्यार चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहां ये आ रही है कि हम बाहर से चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: हम दूसरों से चाहते हैं, हम चाहते हैं पैसे से हमको खुशी मिल जाए, हम चाहते हैं हमें प्रोफेशन से खुशी मिल जाए,
0: बिल्कुल,
1: हम चाहते हैं कि दूसरे हमें दें। जैसे उन्होंने कहा कि जब मैं बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा या मेरा बड़ा घर होगा, जैसे कई बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने हमें जवाब दिया कॉलेज में कि अपने लिए वो कुछ नहीं करना चाहते हैं, बट दे हैव ए ड्रीम फॉर द पेरेंट्स, अपने माँ बाप के लिए कुछ बन के दिखाना चाहते हैं। तो वो इज्जत चाहते हैं,
0: आई थिंक रिस्पेक्ट चाहते हैं। राजेश जी, आपने जो बात छेड़ी है और इस पर लग रहा है कि हम लोग अगर अल्टीमेटली हम खुशी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, लेकिन बात हो जाती है उसको, उसका जो मेन सोर्स है उसको ना जानकर हम आधारित हो रहे हैं, डिपेंडेंसी की तरफ जा रहे हैं। पैसा होगा तो ये होगा, फिर ये करने से ये होगा, मना ऑलवेज हम लोग डिपेंड कर रहे हैं बाहर की चीजों से,
1: राइट।
0: और हमेशा हमारी जो चाहना है वो अंदर की है, शांति प्रेम की,
1: राइट,
0: जो कहीं बिकती नहीं है और मिलती नहीं है बाहर में,
1: राइट।
0: तो शायद यहां ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, तब जाके हम लोग जो है सफल होने का सही अर्थ को समझ सकते हैं।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस,
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा हमारे विद्यार्थी मित्र, अगर आप सुन रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये जो विषय है, मैंने कहा था कि आपको एक अंतर्दृष्टि मिल जाएगा, एक इनसाइट की तरफ आपका जो है फोकस, राजेश जी आपको करना चाहते हैं, तो शायद आप उस फोकस की तरफ ध्यान देंगे। अगर आप अपना टारगेट क्या है, आपको क्या चाहिए, अगर इस पर आप अगर फोकस करेंगे तो वो चीजें तो बाहर से मिलनी ही नहीं है। फिर इसका मतलब हमारा जो, हम जो सफल होना चाहते हैं, चाहे पैसा कमा लिया, गाड़ी बंगलो वगैरह सब कुछ आ गया, उसके बाद भी हम कहीं ना कहीं फिर भी हमारा जो पर्पस है वो क्लियर नहीं होगा,
1: राइट।
0: तो उस पर्पस तक पहुंचने के लिए हमें जो है कुछ और चीजें करनी है, जो राजेश जी ही शायद बताने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग अब सफलता क्यों चाहते हैं ये तो आप समझ गए होंगे, इसके पीछे का जो मोटो है वो आपको पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, राजेश जी सुनाइए।
1: तो हमने सफलता को, जैसे हमने अभी जाना कि खुशी है, प्रेम है, शांति है, आनंद है, संतुष्टता है, हम ये चाहते हैं, लेकिन हम बाहरी रूप से चाहते हैं और हमने इसको कंडीशन्ड कर दिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कंडीशन माना ये होगा तो ये होगा, जैसे हमने कल माइंडसेट की बात की थी,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: कि मैं अगर 1000 रुपया कमाऊंगा तो ही मैं खुश होऊंगा, लेकिन हमने देखा था कि एक 210 रुपये कमाने वाला व्यक्ति भी, जिसने 800 रुपये कमाया, उससे क्या है, वो खुश है। तो हमने कंडीशन्ड कर दिया है अपने आप को,
0: बिल्कुल,
1: कि मैं अगर इंजीनियर बनूंगा तो ही मैं खुश हो सकता हूं, अगर मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा तो मैं खुश नहीं हो सकता। कंडीशन कर दी, शर्त रख दी हमने कि ये होगा तो ही ये होगा, लेकिन ये भी माइंडसेट है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो ये प्रश्न बहुत बड़ा है, तो फिर सच्ची शांति, खुशी, आनंद है कहां? बाहर तो हम भटकते ही रहेंगे,
0: बिल्कुल,
1: अगर आज ये है तो कल ये है, परसों ये, हमारी नई नई कंडीशंस बनती रहती हैं। अगर आज आपने, जैसे मान लिया 12th के स्टूडेंट है, आपने डिसाइड किया 90% मार्क्स आएंगे तो मैं खुश होऊंगा, नहीं आए तो आप दुखी, आ गए तो आप खुशी, उसके बाद आपने नई एक माइंड सेट कर लिया कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरे को यही IIT में एडमिशन चाहिए
0: और यही जगह पे चाहिए
1: और यही, और उस जगह पे नहीं मिला मेरे को, किसी छोटे से कॉलेज में मिल गया तो मैं दुखी। हमने तो यहां तक देखा है कि स्टूडेंट सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं, अरे मेरा तो लाइफ का ड्रीम ये था, लेकिन उनको ये समझ नहीं आती कि ड्रीम मेरा क्या है, क्या मुझे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है या अंदर जो मुझे चाहिए, क्योंकि बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो भी क्या होगा, मुझे खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, लेकिन अगर छोटे में भी मिल गया तो खुशी शांति वो कहां है, प्रश्न यही आता है ना, क्या बड़े कॉलेज में, ज्यादा पैसे में, बड़े घर में खुशी शांति आनंद है या कहीं और है? तो आजकल के स्टूडेंट जो है वो अपने आप को असफल समझते हैं, असफल इन द सेंस के मान लीजिए इंजीनियर नहीं बना, वो तो उसका मींस है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: खुशी शांति आनंद प्राप्त करने का जो आपने माइंडसेट कर लिया था वो तो उसका मींस है, लेकिन अल्टीमेट हमारा एम नहीं है। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि हमारा एम इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, अगर मैंने वो नहीं प्राप्त किया तो मैं क्या हूं, असफल हो गया, लेकिन सफलता वो नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: आज लोग पैसे को मींस मान रहे हैं, अपने प्रोफेशन को मींस मान रहे हैं, दूसरों से प्राप्त हुई इज्जत को मींस मान रहे हैं, तो यहां बहुत बड़ी गलती हो रही। इस चीज को हमें लिए समझना जो है वो बहुत बहुत बहुत जो है वो
0: जरूरी है,
1: जरूरी है।
0: राजेश जी, काफी अच्छा आपने बताया और मुझे लगता है कि यहां पर एक आत्मचिंतन की बात मेरे समझ में आ रही है कि हम लोग जो ड्रीम्स देख रहे हैं, हम लोग जो सपने सजाए हैं और जो छोटी छोटी हमारी गोल्स आते जाते हैं और हम लोग एक के बाद एक गोल्स हमारा नया बनता जाता है और उसमें कहीं ऊपर नीचे हो जा रहे तो हम डिप्रेशन में चले जा रहे हैं या सुसाइड कर रहे हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि हम लोग अपनी जो मेन जो पर्पस है उससे भटक कर और फिजिकल चीजों में कहीं ना कहीं हम लोग अपनी इच्छाओं को रख रहे हैं और वो पूरा नहीं होने के कारण हम लोग बहुत ज्यादा जो है डिप्रेशन में चले जा रहे हैं या सुसाइड केस जैसे आपने बताया ये सारी चीजें कर रहे हैं। कई बार माता पिता की भी अपेक्षा बच्चों से रहती है कि डिस्टिंक्शन में आना चाहिए, मेरा बच्चा बना सबसे हाई अच्छा एजुकेटर, तो अब वो बच्चा अगर हाई नहीं कर पाता है, डिस्टिंक्शन में उसका नंबर नहीं आता, तो माता पिता के डर से भी बच्चे सुसाइड कर सकते हैं।
1: उसका भी कारण ये है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों से, और एक्सपेक्टेशंस बचपन से डाल दी गई। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हमारा कंपटीशन का जमाना,
0: बिल्कुल,
1: तो कंपटीशन बच्चों में आया कहां से? कंपटीशन आया बचपन से। मुझे याद है एक बार मैं स्कूल में गया, वहां पेरेंट्स की मीटिंग हो रही थी, एक फर्स्ट ग्रेड का छोटा सा बच्चा होगा, तो जैसे पेरेंट्स मीटिंग खत्म होती है बच्चा बाहर निकलता है अपनी मम्मी के साथ, और जैसे ही उसकी मम्मी बाहर निकलती उसको मारना शुरू कर देती कि तू तो फेल हो गया मैथ्स में, मैंने तुझे इतने बढ़िया स्कूल में डाला, हम तेरे ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं, तू फेल हो गया। तो बच्चे को ये लग गया कि जब तक मार्क्स नहीं आएंगे
0: तब
1: मेरे को
0: माँ बाप
1: प्यार नहीं मिलेगा, मेरे को चीजें नहीं मिलेगी, मेरे को खुशी नहीं मिलेगी।
0: तो ये रॉन्ग प्रोग्राम भी क्रिएट हो गया उसके साथ,
1: ये रॉन्ग प्रोग्रामिंग, ये कंडीशनिंग जो अभी आपने भी बात की कि जो हमने कंडीशनिंग कर दी है
0: जी जी जी
1: कि खुशी कहीं और है, और हमारे समाज ने ही, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे सिस्टम ने उसको जो एक अनकंडीशन चीज है जिसकी हम बात करेंगे डिटेल में, उसके बारे में बात करेंगे। पहले इस पहलू को क्लियर करें, जैसे आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट रेज किया कि व्हाट आर द रीजंस, ये कंडीशनिंग के रीजंस क्या है, ये बचपन से हमें जो है वो
0: ये ऐसे लगता है कोई एडवर्टाइजमेंट हो गई भाई, फ्री में आपको ये मिलेगा, और छोटे अक्षर में लिखा रहता है कंडीशन सप्लाइड, और वो हम पढ़ते नहीं, हम तो ऊपर की चीजों को देख रहे हैं और जंप कर दिया। जब वो कंडीशन अप्लाइड में हमको सारी चीजें पता चल जाती, आ रही है तो गड़बड़ है। तो शायद मुझे लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं आज के समय में माता पिता हो या बच्चे हो, सभी लोग जो है ना एक टारगेट अचीव करने के चक्कर में अपने मूल्यों को, माता पिता को अपना बच्चों से प्यार है वो जताना है। जब एग्जाम में पास हो गए तो मैं अब अच्छा होगा, ऐसा थोड़ी अपन ने कंडीशन करके प्यार किया था इस बच्चे को जन्म देने का, ये थोड़ी तुमने एप्लीकेशन डाला था।
1: इसीलिए तो कोटा में बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, रीजन बीइंग कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स ने रखी है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में और बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, और उनको ये लगता है कि बच्चा मेरा आईआईटी में जाएगा, मेडिकल कॉलेज में जाएगा, एम्स में जाएगा, तो बहुत सारा धन कमाएगा, तो धन कमाएगा तो बहुत सारा पैसा होगा। हमने जो पेरेंट्स के मन में ये हमने जो मुश्किलें झेली हैं, दुख झेले, इनको ना झेलने पड़े, लेकिन वो दुख सुख जैसे हमने लास्ट एपिसोड में पाया वो कहीं और है, और उनके मन में भी ये गलत फहमी है, उन बेचारों को भी समझ नहीं है, इसलिए ना समझ होने के कारण वो ऐसा कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लैक ऑफ नॉलेज, माना खुद का नॉलेज नहीं है, और
1: ट्रू नॉलेज है वो नहीं है, सत्य नॉलेज नहीं है,
0: नॉलेज नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, जिसकी वजह से हमारा जीवन जो है एक दौड़ की तरह रन कर रहे हैं लेकिन कहीं शांति नहीं मिल रही।
1: राइट। और एक जो दूसरा कारण मैं बताना चाहूंगा, एक साइकोलॉजिकल रीजंस है, हम सफलता क्यों चाहते हैं, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स, लेकिन एक साइकोलॉजिकल रीजंस है। जैसे एक शब्द सफलता है, जैसे सफलता शब्द हमारे माइंड में आता है, हमारे मन में आता है,

0: जो है ब्रेन में एक पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: और उन चेंजेस को हम न्यूरो साइंटिस्ट जो है जब ब्रेन की एमआरआई की जाती है तो पता लगता है हमारे ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है उसमें एक्टिविटी बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: एग्जीक्यूटिव स्किल्स बढ़ जाती है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ जाती है, और जिसके कारण पॉजिटिव हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स हमारे ब्लड में जो है रिलीज होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन और उसका अपोजिट क्या है? नेगेटिव शब्द। जैसे सफलता का जो नेगेटिव शब्द है वो असफलता है। जैसे ही हमारे मन में असफलता शब्द आता है, या तो हमें वो दिखता है, मन में सोचते हैं, या हमारे पेरेंट्स हमको रियलाइज कराते हैं, या हमारे दोस्त या हमारे समाज हमको रियलाइज कराते हैं कि ये व्यक्ति असफल हो गया है, इसको इज्जत नहीं मिलेगी, वो हमें इज्जत नहीं देते, वो हमें खुशी नहीं देते। कई बार हम अपने अंदर अपने आप से नहीं डरते लेकिन दूसरों से डरते हैं। दूसरों का प्रेशर होता है हमारे ऊपर, पेरेंट्स का प्रेशर, समाज का प्रेशर, कि वो हमें इज्जत नहीं देंगे, हमें रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हमको बड़ा नहीं समझेंगे, हमें अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे। तो उनके डर के कारण ही भी व्यक्ति असफल नहीं होना चाहता। वो चाहता है कि मुझे चाहिए तो चाहिए, सफलता ही चाहिए। क्योंकि ये जो असफलता वाला शब्द है, ये जो नेगेटिव वर्ड है, जब हमारे अंदर जाएगा या तो हम उसको सोचेंगे, क्योंकि तीन कारण है, या तो आप सोचते हैं, या तो आप बोलते हैं, या आप सुनते हैं दूसरे, माना आपके माँ बाप आपको बोलते हैं, आपके दोस्त आपको बोलते हैं, आपको समाज वाले आपको बोलते हैं, तो वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है ब्रेन के ऊपर, जैसे पॉजिटिव इफेक्ट बोला पॉजिटिव वर्ड्स का, ऐसे उल्टा होता है नेगेटिव। तो जैसे पॉजिटिव वर्ड्स जाते हैं तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऐसे जब नेगेटिव शब्द जाते हैं तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल, ये जो है ये स्ट्रेस हार्मोन्स है, ये रिलीज होते हैं, जो कि हमें एंग्जाइटी पैदा करते हैं, स्ट्रेस पैदा करते हैं। और यही स्ट्रेस अगर लगातार बना रहे तो ये लॉन्ग टर्म एंग्जाइटी बन जाती है, टेंशन बन जाती है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे हमें चिंता हो जाती है, या कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कहेंगे वो उदास हो जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम असफलता शब्द को सुनना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली ये हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी, काफी अच्छी बातचीत आपने की आज, और मुझे लगता है कि सफलता क्यों चाहते हैं, ये आपने वास्तविक जो स्वरूप है उसके बारे में आपने बड़ी अच्छी तरह से बताया। इनसाइट मना हमारी अंतर्दृष्टि को आपने जगाने की कोशिश की इसके साथ में, और बहुत सारे पहलू हैं। मुझे लगता है कि आगे हम लोग अनेक पहलुओं पर बात करेंगे, और आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते राजेश जी, मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे।
0: मैसेज, जैसे हम चाहते क्या, खुशी चाहते हैं, हम चाहते हैं शांति, हम चाहते हैं आनंद, तो उसको प्राप्त करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट मैं चाहूंगा हमारे विद्यार्थियों से या जो भी हमारे श्रोतागण हैं वो करें। हम चाहते हैं खुशी, लेकिन हम ये भी बात कर रहे हैं कि वो हमने कंडीशन कर दी, लेकिन वो अनकंडीशन्ड होनी चाहिए, उसका निराधार होनी चाहिए, उसका कोई आधार नहीं चाहिए
1: होना चाहिए।
0: तो उसको हम बताने से पहले हमारे श्रोतागण, हमारे विद्यार्थी इसके ऊपर प्रयोग करें, और खुद ही खुद हम चाहते हैं कि वो समझें इसको, इससे पहले कि हम अगले एपिसोड में इसके बारे में बात करें, वो इसको खुद ही समझे और जान लें, और हम जो बातें बताएं वो हमारे साथ रिलेट कर सके कि हाँ ये जो बात करी हमने अनुभव कर लिया। तो उसके लिए एक उनको संकल्प देंगे कि आई एम ए हैप्पी बींग, मैं एक खुशी का सितारा हूं।
1: क्या बात,
0: आई एम ए हैप्पी स्टार। अपने आप को ये संकल्प भी देंगे और देखेंगे भी अपने मस्तिष्क के मध्य में, जैसे सितारे चमकते सबको बहुत अच्छे लगते हैं, खुशी देते हैं, तो मैं भी एक खुशी का सितारा हूं। आई एम ए स्टार ऑफ हैप्पीनेस। दिन में 10 बार इसको सोचें और समय मिले तो बैठ करके देखें अपने मस्तिष्क के मध्य में ये सितारा चमक रहा है, और बार बार उसका अनुभव करने की कोशिश करें, रियलाइज करने की कोशिश करें, न केवल स्वयं को लेकिन जो भी व्यक्ति सामने आता है घर में, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, जैसे वो सामने आए, जैसे मैं खुशी का सितारा हूं, सामने वाला भी खुशी का सितारा है। और दिन में कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करें, और सुबह भी 10 बार लिखें उठते ही, रात को सोने से पहले 10 बार लिखें, और मैं समझता हूं नेक्स्ट डे व्हेन यू विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे तो आप अपने अंदर एक अजब सी खुशी, एक अजब सी सफुर्ती, एक अजब सा उमंग और उत्साह पाएंगे।
1: चलिए राजेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया, और जो बातें आपने बताई हैं वो मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि हमारा जो सफलता का

सफलता क्यों चाहिए, उसके पीछे का रीजन उनको समझ में आ गया। और आखिरी में जो संदेश में आपने बताया कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, निराधार है खुशी, प्रेम, शांति, आनंद पाने के लिए आपको किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को थॉट दीजिए, जिस तरह के थॉट राजेश जी ने बताया, आई एम अ हैप्पी सोल, मैं बहुत ही खुशनुमा आत्मा हूं, इस तरह से अपने आप से कनेक्ट होते रहें, प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह की नई बातें लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। और फिर से एक बार राजेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और आप सभी को अपने निराधार खुशी सफलता को प्राप्त करने के लिए ढेरों खुशियां। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: पता है मैं बड़े होके ना अपनी पूरी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी।
1: हाँ रखूंगी तो मैं भी, पर बड़ी होके तुम क्या बनोगी?
0: मैं बड़े होके ना एक अच्छी से है ना डॉक्टर बनूंगी, जो सब लोगों का अच्छे से ख्याल रखा करेगी, बिल्कुल फ्रेंडली डॉक्टर बनूंगी।
1: और मैं बड़े होके तो अपने देश के लिए कुछ करूंगी। बड़े होके क्या करेंगे, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है ना आपसे?
2: हाँ जी,
1: है ना, बार बार पूछते हैं ना, बड़े होके क्या बनोगे क्या बनोगे, स्कूल में भी पूछते हैं, जो मिलते हैं वो भी पूछते हैं, ऐसा होता है?
2: हाँ
1: होता है ना। तो क्या बनेंगे वो तो चलो एक बात है, लेकिन बड़े होना होता कैसा है? चलो एक काम करते हैं, बच्चों की दुनिया में आज देखते हैं बड़ों की दुनिया कैसी होती है। आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में? ठीक है
2: हाँ।
1: ठीक है, चलो तो फिर एक बार बता दो आज हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप लोग?
3: मेरा नाम राघव है, मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ।
4: मेरा नाम हर्षिता है, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ।
5: मेरा नाम शिक्षा है, मैं क्लास 10th में हूँ।
2: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
1: ओके, तो आप लोग को क्या लगता है बड़ा होना, मतलब मैं आपसे ये नहीं पूछ रही हूँ कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, लेकिन बच्चे होने और बड़े होने में क्या अंतर होता है, क्या लगता है आप लोगों को?
4: जब हम बड़े होते हैं तब जिम्मेदारियाँ बढ़ती है, और जब हम छोटे होते हैं जिम्मेदारियाँ कम होती है। अगर हम कुछ गलती करते तो वो माफ भी हो जाती है।
1: ओके,
2: नहीं जब छोटे होते हैं ना तब मतलब खेलने कूदने में ज्यादा ध्यान रहता है, ऐसा नहीं रहता कि हाँ घर का काम करना ये करना, बट जब हम बड़े हो जाते हैं ना फिर ऐसे होता है हाँ अब खेलना कूदना कहाँ है, अब तो बस घर का काम ही है।
1: ओके,
3: दीदी जब छोटे होते तो ऐसा लगता है बड़े बंदों की लाइफ आसान होती होगी, और जब बड़े होते हैं तो लगता था कि छोटे बच्चे ही होते हैं।
1: नहीं अभी तो, अभी जैसे आप छोटे हो, अभी आप बच्चे हो, ठीक है। अच्छा बड़े होना क्या होता है, क्या लगता है कितनी एज में बड़े हो जाते, जिसको हम कह सकते हैं कि अभी आप बड़े हो गए?
3: 18+।
1: ओके, आप लोगों को क्या लगता है कब बड़े हो जाते हैं?
0: दीदी जब जॉब करने लगते हैं तब बड़े हो जाते हैं, 20।
1: ओके, जब जॉब करने लगते हैं। ओके, कब बड़े हो जाते हैं?
2: वैसे तो कभी बड़े होते नहीं अपने पेरेंट्स के लिए, पर मेरे को 25 लगता है।
1: ओके, आपको क्या लगता है?
4: मुझे 17+।
1: ओके, ठीक है, तो जब आप लोग 17, 18, 20, 25 के हो जाओगे तब कैसे होगे आप लोग, क्या क्या करोगे? ऐसी कोई चीजें हैं जो तब कर सकते हो और अभी नहीं कर सकते, या फिर आपको ऐसा लगता है अब ज्यादा चीजें कर सकते हो और तब शायद नहीं कर पाओगे?
3: दीदी जब 18+ के हो जाते हैं तो हमारा गाड़ी का लाइसेंस बनता है, तो हम गाड़ी भी चला सकते हैं।
1: ये तो है,
4: और हम वोटिंग भी कर सकते हैं।
1: वोटिंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल। और क्या लगता है बड़े होना ज्यादा अच्छा है कि बच्चे होना ज्यादा अच्छा है, मतलब इंटरेस्टिंग क्या है?
4: बच्चे रहना ज्यादा अच्छा होता है।
1: ओके,
2: बच्चे रहना ही होता है, क्योंकि बच्चे जब रहते हैं तब अगर कोई गलती भी कर दे बड़ी छोटी तो माफी मिलती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब बच्चे होते हैं ना फिर ही हम मतलब अच्छी लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं उस टाइम कोई मिस्टेक कर दें या कोई बड़ी गलती कर दें तो माफ़ी मिल जाती है, या फिर डांट पड़ जाती है थोड़ा। तो अगर जब हम बड़े हो जाते हैं फिर उसके बाद अगर वही गलती रिपीट करें तो उस बात की हमें बड़ी सज़ा मिलती है।
1: ओके, शिक्षा आपको क्या लगता है?
0: दीदी छोटे होना ही अच्छा है, क्योंकि छोटे में ना मम्मी पापा का प्यार मिलता है कितना, बड़े हो जाते हैं फिर तो बिजी हो जाते हैं, मम्मी पापा के लिए टाइम ही नहीं होता है किसी के पास।
1: ओके, वैलिड पॉइंट है, टाइम बचपन में ज्यादा मिलता है ना मम्मी पापा के। राघव आपको क्या लगता है बड़े होना अच्छा है कि बच्चे होना अच्छा है?
3: बच्चा होना अच्छा है।
1: क्यों?
3: क्योंकि उधर हम खेल सकते हैं, और खेलते हैं तो सबको खुशी भी मिलती है।
1: खेलने में मजा तो आता है ना, तो बड़े लोग नहीं खेलते क्या?
3: नहीं वो कभी कभी खेलते हैं, ऐसे ज्यादा नहीं खेलते,
2: वो बस कोई महीने में एक दिन खेलते हैं, कोई मतलब जिस दिन छुट्टी हो या फिर कहीं उनको कहीं बाहर काम ना हो फिर ही खेलते हैं, और उस टाइम भी अगर उनको कुछ और काम अर्जेंट आ गया तो वो भी नहीं खेलते।
4: और मतलब जब उनके ग्रुप्स होते हैं फ्रेंड्स के उस टाइम पे महीने में एक बार कभी दो बार जाते हैं, तो उस टाइम पे सिर्फ, या फिर उस टाइम पे कोई अर्जेंट काम आता तो
1: तब नहीं खेल पाते हैं।
4: नहीं,
1: शिक्षा आपको क्या लगता है बड़ों के लिए खेल होते हैं या बच्चों के लिए ही होता है?
0: दीदी खेल तो कोई भी खेल सकते हैं, क्योंकि खेल है ना सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बनाए गए हैं, खेल तो बड़े लोग भी खेलते हैं, बस वो बिजी रहते हैं इस वजह से नहीं खेल पाते हैं।
1: बट खेलना अच्छा लगता है बड़े लोगों को, लगता है आपको?
0: हाँ उनको खेलना अच्छा लगता है।
3: दीदी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें ना मॉल में खेलने के लिए जगह बना रखी थी तो सब बड़े है ना खेल रहे थे, फिर ऐसा लग रहा था कि वो अपने बचपन की लाइफ ही जी रहे हैं, मतलब वो बारी बार खेल ही रहे थे,
1: इतना मजा आ रहा था। ओके अच्छा, आप लोगों को लगता है बड़े होने के कुछ फायदे होते हैं जो सिर्फ बड़े होके ही मिलते हैं, अभी नहीं मिलते हैं आप लोगों को, ऐसा लगता है? बोलो।
2: बड़े होके वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, गाड़ी का लाइसेंस बन जाता है, वोटर आईडी कार्ड बन जाता है, बहुत सारे कार्ड्स मिल जाते हैं जो बस हमें बड़े होने के बाद ही मिलते हैं, छोटे बच्चे में नहीं मिलते।
1: तो कुछ फायदा क्या है लेकिन इसका, फायदा क्या लगता है आपको?
2: फायदा वोटिंग का तो ये फायदा है कि हाँ हम अपनी खुद की जो हमारा जो लीडर है हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ हमारा लीडर ही यही होगा। और
1: पर्सनल लाइफ में कोई फायदे लगते हैं आप लोगों को बड़े होने के?
5: दीदी बड़े होके हमारी खुद की एक आईडी बन जाती है, जैसे कि लोग जब हम छोटे होते हैं तो जानते हैं कि है ना उनकी बच्ची है, ऐसे बड़े होते हैं ना तो मतलब ऐसे बड़े हो जाते हैं तो पहचानते हैं, खुद के नाम से पहचाने जाते हैं,
1: खुद के नाम से पहचाना जाता है। हाँ
2: और अगर हम बड़े होके कुछ बन भी जाते जैसे कोई आईएएस आईपीएस, तो मतलब पहले जब हम अपने पेरेंट्स के नाम से जाने जाते थे तो हमारे पेरेंट्स को भी हमारे नाम से जाना जाता होगा,
1: कुछ बन जाते हैं
2: हाँ, ताकि हाँ ये उनके पापा हैं उनकी मम्मी हैं,
1: तो अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है।
2: हाँ ऐसे लगता है कि उस क्या बताएं।
1: ओके अब बोल रहे थे
4: बड़े होने के बाद मतलब अपनी एक प्रॉपर्टी, अपना मतलब जो भी है घर में थोड़ा बहुत अपना चलने लग जाता है, बचपन में ऐसे कुछ नहीं, ये जो मम्मी बोलती है वही करना है।
1: अपनी चलती नहीं है ना बचपन में?
4: नहीं।
1: और बड़े होके अपनी बात कह सकते हो?
4: बात कह सकते हो
1: और जो करना है वो कर सकते हो।
4: हाँ।
1: ओके राघव क्या लगता है आपको?
3: दीदी बड़े होना ज्यादा अच्छा नहीं है पर अपनी खुद की आईडी बनती है वो एक अच्छी चीज है।
1: वो एक अच्छी चीज है। ओके और जैसा अभी हर्षिता ने भी बोला ना कि अपनी आप थोड़ी चलती है अपनी, अभी तो सिर्फ सुनना पड़ता है ना, बच्चों को तो बड़ों की बात माननी भी चाहिए क्योंकि बड़े अनुभवी होते हैं ना, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है, क्या लगता
4: है? हाँ, ये भी ठीक है कि बड़े मतलब उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, मतलब ज्यादा ये होता है सब, तो उनकी बात मानना भी अच्छी बात है।
1: लेकिन अपनी कोई बात अगर आपको सही लगती है तो उनके सामने बोलनी चाहिए या नहीं?
4: नहीं बोलनी चाहिए, नहीं तो वो गुस्सा करते हैं।
1: गुस्सा करते हैं
4: या फिर मम्मी डांटेगी कैसे नहीं बोलना चाहिए था।
1: लेकिन अगर हम कायदे से प्यार से बोले तो
4: हमें हाँ। पहले से प्यार से बोले, लड़ते हुए नहीं बोलेंगे तो फिर अच्छी बात है, फिर वो कभी मतलब कभी कभी ऐसे हाँ ये भी बराबर है ऐसे
1: बोल सकते हैं ना, तो मतलब बड़ों से हम अपनी बात थोड़ा प्यार से अलग से जाके बोल सकते हैं, पर अपने दिल की बात तो बोलनी चाहिए,
4: ऐसा तो करना ही है,
1: करना है ना। बिल्कुल। और क्या लगता है आप लोगों को बड़े होने के फायदे और क्या होते हैं, पर्सनली बताओ, क्या नुकसान लगते हैं तो नुकसान भी बता सकते हो?
2: नुकसान तो बस यही है कि अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा मतलब टाइम नहीं बना पाते, जैसे बचपन में जैसे हम मतलब उनके साथ बैठते थे, टाइम स्पेंड करते थे, उनके साथ खाना खाते थे, फिर बड़े होके वो सब नहीं मिलता क्योंकि बड़े होके मतलब जॉब में लग जाते हैं, किसी काम में लग जाते हैं, तब पूरे दिन तो अलग ही रहते हैं, मतलब अलग कहीं जॉब पे जा रहे तो उधर रहते हैं, रात को आते हैं तो लेट आते हैं तो पेरेंट्स खाना खा चुके होते हैं या फिर कई बार नहीं खाया होता, तो बस एक बाय चांस कोई एक दो टाइम ऐसा होगा जिससे एक साथ बैठ के खाएंगे, और छुट्टी के दिन भी कई ऐसे कई लोग होते हैं कि छुट्टी होती है तो हाँ चलो आज बाहर घूमना चल पड़ते, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर पाते।
1: ऐसा हो जाता है। और कोई फायदा नुकसान बड़े होने का जो लगता है?
5: दीदी है ना बड़े होने का नुकसान तो है कि देखो सबसे बड़ी बात तो जब छोटे थे तब पेरेंट्स के साथ कितने अच्छे से रहते थे, उनके साथ खाते थे, बड़े हो जाते तो इतनी जल्दी में रहते हैं कि साथ में बैठ के खा भी नहीं पाते हैं। अभी है ना जैसे कि मेरे पापा हैं वो दादी से मिलने भी है ना बहुत टाइम निकालना पड़ता है उनको, या फिर है ना एक दिन वो है ना लेट चले जाएंगे अपनी दुकान पे काम के लिए, कभी कभी ऐसा दिन होता है रात को वो बहुत लेट सोने के जगह दादी से मिलने चले जाते हैं क्योंकि वो मिल नहीं पाते उनसे इतने बिजी रहते हैं। दादी इसीलिए पापा से कभी कभी काम की भी नहीं कहती है क्योंकि वो इतना बिजी रहते हैं कि वो फोन लगाती हैं तो अभी बात नहीं हो पाती है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि बड़े होके अपने पेरेंट्स से भी अच्छे से बात नहीं कर पाते।
1: ये तो अच्छा नहीं लगता है, सही बात है, क्योंकि मम्मी पापा तो मम्मी पापा हैं चाहे कितने भी बड़े हो जाए ना।
2: हाँ जब हम छोटे होते हैं तब हमारी पढ़ाई भी बहुत कम होती है और जब हम बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे पढ़ाई बढ़ती जाती है छोटे होने के टाइम कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े चलेगा, पास हो जाते हैं. बट जब हम बड़े हो जाते हैं ना तब पास से बस कुछ नहीं होता. पास हुए तो बस यही मानते कि फेल के बराबर ही माना जाता है अब तो. पहले पास तो मतलब टॉप पे था पहले के टाइम पे, अब पास मतलब फेल के बराबर है. रैंक आना चाहिए टॉप 10 में. तो अब पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा वो हो जाता है,
1: कंपटीशन बहुत आ जाता है
2: और स्ट्रेस भी बहुत बढ़ जाता है बड़ों को फिर. जैसे मतलब यूपीएससी का एग्जाम है उसमें कितना स्ट्रेस हो जाता है कि हाँ फर्स्ट पे आना है सेकंड पे आना है, बट स्ट्रेस बहुत हो जाता है. फिर कई बार हेल्थ भी खराब हो जाती है स्ट्रेस के चक्कर में.
1: तो अभी नहीं लगता आप लोगों के पास स्ट्रेस है?
2: अभी तो बस स्ट्रेस स्टार्ट हुआ है, फिर तो बढ़ता जाएगा अब तो आगे आगे चल के.
1: ओके
4: दीदी, मेरे एक मामा और मामी है वो दोनों जॉब करते हैं. इतना स्ट्रेस है कि मेरी जो मामी की आंखें है ना वो पूरे ऐसे काजल जैसे लगाते हैं ना वैसे पूरे एकदम काली काली हो गए. उनको इतना स्ट्रेस होता है और कभी कभी ना वो मेरे अंकल के से हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं इतना मतलब वो स्ट्रेस होता है वो जॉब का.
1: तो आपको ऐसा लगता है कि बड़े होके मतलब स्ट्रेस बढ़ जाता है ना?
4: हाँ, अगर कोई अपने को मतलब बड़े होके कुछ तो मतलब IAS बनना है या फिर DM बनना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वैसे कुछ बनना है तो फिर बहुत स्ट्रेस आ जाता है.
1: वो कंपटीशन भी है, स्ट्रेस भी लगता है.
4: और जैसे कि उसने कहा कि बड़े होने के बाद मतलब

0: वो टेंशन बढ़ता ही चला जाता है, टेन से शुरू होता है तो टेंशन बढ़ता है।
1: तो कभी कम होता है आपको लगता है, बड़ों का टेंशन कम भी होता है कभी?
0: हाँ कभी कभी ऐसे हो सकता है,
1: वरना बढ़ता है ज्यादातर
0: तो बढ़ता ही है।
2: दीदी फैमिली का टेंशन में मतलब जो जॉब वगैरह करता है उसका टेंशन तो तभी कम होता है जब अपनी फैमिली के साथ बैठे, अपना स्ट्रेस वगैरह क्या उसको है ना, मतलब जो बात दिल में होती है वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं तब अच्छा लगता है। मेरे पापा को इतना स्ट्रेस रहता है कि उन्हें लगता है कि अब तो उन्हें दादी के पास जाना ही पड़ेगा टाइम निकाल के, फिर वो वहाँ पे जाएंगे। जिस दिन उन्हें स्ट्रेस होगा ना वो हम लोगों से भी हंसते नहीं है सामने में, वो बस ऐसे सोचते रहेंगे कुछ ना कुछ, पापा से बोलो पापा खाना खा लो, हाँ खा रहे खा रहे, वो मतलब बिल्कुल खोए रहते हैं अपनी बात, अपने संकल्प चलते रहते हैं उनके। वो दादी के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, फिर दादी के यहाँ से बड़े अच्छे से मुस्कुराते हुए आते हैं, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है।
1: मम्मी तो मम्मी है ना, चाहे कितने भी बड़े हो जाएं।
0: हाँ जैसे कि उसने कहा कि अभी वो दादी के पास जाते हैं तो फिर उनका स्ट्रेस कम हो जाता है, पर जब हम पेरेंट्स के पास जाते हैं तो फ्रीली जाना चाहिए, उनको अभी उतना सा टाइम देके जा रहे हो तो अभी उनको टेंशन में भरा रहे हो, हाँ ऐसे था फिर क्या करूँ मैं अब, तो फिर पेरेंट्स के पास ऐसे जाना ही नहीं मिलता जिसमें अगर हम फ्रीली बात करें कि हाँ कैसे हो कैसे हो, वैसे नहीं टेंशन में जा रहे हम लोग वैसे।
1: तो पेरेंट्स को भी टेंशन हो जाती है?
0: हाँ उनको भी थोड़ी टेंशन आ जाती है, मतलब वो पहले से टेंशन है उनको, मतलब वो बड़े थे उस टाइम पे भी टेंशन था, अभी उनके ये भी उनको टेंशन दे रहे हैं, पर अगर उनको ऐसे अच्छा लग रहा है कि मतलब वो उनको अच्छा फील करवा सकते हैं, फिर उनको अच्छा लग रहा है तो फिर ठीक है, मतलब वो जैसे उसने कहा कि मुस्कुराते हुए आते फिर
1: कितनी अच्छी बात है मुस्कुराना तो अगर, लेकिन फिर टेंशन तो कम करनी पड़ेगी, कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा ना?
0: वो तो है, कोई तरीका भी ढूंढना पड़ेगा।
1: ठीक है, तो और तरीके ढूंढ सकते हैं मतलब?
0: और टेंशन कम करने के ऐसे नहीं कि एक तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि अगर आपका एकदम मूड सैड है, एंग्री हो आप, तो आपको मतलब कभी कभी बुरा लगता है ना, कोई बात नहीं करता है, तो फिर उससे अच्छा आप मतलब मुस्कुराते रहो तो कोई बात करेगा तो फिर अपने आप वो टेंशन भूल ही जाओगे आप।
1: ओके, मुस्कुरा के बात करोगे तो टेंशन भूल जाओगे।
3: दीदी जैसा कि अभी इन दोनों ने कहा, इसने मतलब शिक्षा ने कहा कि पेरेंट्स को बता के हमारा स्ट्रेस दूर हो जाता है, फिर हर्षिता ने कहा कि पेरेंट्स को बताने से उनका टेंशन बढ़ जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, उनका टेंशन नहीं बढ़ता बल्कि हमें एक सजेशन मिलता है कि हाँ उस टेंशन को कम कैसे करें। वो पेरेंट्स बात अपने दिल तक नहीं लेके जाते, वो उसका सॉल्यूशन ढूंढ के अपने बच्चों को बताते हैं, थोड़ा टेंशन लेंगे तो ही सॉल्यूशन बताएंगे। अब जो उनके बेटे हैं उनको इतना टेंशन है, उनको कुछ और सूझ नहीं रहा है, अब जो उनके पेरेंट्स हैं वो फ्री माइंडेड हैं, उनको थोड़ा सा टेंशन मिलेगा तो उनको सॉल्यूशन आराम से मिलेगा, तो उनको टेंशन थोड़ा सा देना ही, मतलब उनके लिए टेंशन वो थोड़ा सा है, बट जो उनके बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा है, वो सॉल्यूशन देंगे फिर वो।
1: राघव आपको क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता राघव को बड़ों के बारे में, कुछ बड़े होने के बारे में फायदा नुकसान कुछ तो लगता होगा, बड़े होकर ये करूंगा कभी नहीं सोचा? कभी नहीं, बस बच्चे होना ही अच्छा है।
0: हाँ।
1: चलो वो भी अच्छी बात है।
2: दीदी बड़े होकर एक फायदा भी है कि हम जब बड़े हो जाते हैं ना तो अपने पेरेंट्स की बहुत केयर कर पाते हैं, जैसे वो हमारी करते थे वैसे हम भी उनके लिए कभी कुछ लेके आते हैं तो वो कितना खुश होते हैं, फैमिली के लिए जैसे कभी कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके आओ, पापा आए घर पे आपके लिए कुछ लेके आए, ऐसे मतलब वो बड़े हो जाते हैं तो वो जब उनके है ना इनकम हो जाती है, वो जब कमाने लगते हैं तो वो गिफ्ट्स वगैरह देते हैं सबको, तो उनको भी खुशी मिलती है अंदर से कि हमने कुछ तो अच्छा किया है,
1: कुछ करना है मतलब बड़े होके ना पेरेंट्स के लिए।
0: हाँ।
1: वो चीज अच्छी है।
0: हमारे ना जब फोर्थ का गैदरिंग था ना तब एक थीम थी, उसमें मेरी एंकरिंग थी, वो ना एक फर्स्ट की छोटी बच्ची थी और उसकी और मेरी एंकरिंग थी कि छोटे रहना ज़्यादा अच्छा होता है, कि छोटापन कभी नहीं भूलना चाहिए। जिंदगी में तीन टाइम आते हैं, पहला है बचपन, दूसरा है जवानी और तीसरा है जो बूढ़े होते हैं वो, तो और मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं हम हमारे पेरेंट्स की केयर करते हैं जैसे वो हमारी केयर करते थे, तो वैसे ही कह सकते हैं।
1: ओके, दैट्स ऑल्सो नाइस। तो मतलब आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, ऐसा कभी लगता है?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं लगता।
1: किसी को लगता है?
0: नहीं।
3: दीदी लगता नहीं है, बस बड़े होते जाते हैं, कब पूरा साल बीत जाता है पता ही लगता है। ऐसे लगता है कि अभी तो कल नया साल शुरू था और आज खत्म भी हो गया।
2: और दीदी मतलब बचपन में ऐसे लगता है जब हम फर्स्ट सेकंड में होते कि यार वो फोर्थ के बच्चे फिफ्थ के बच्चे कितनी शाइनिंग मारते हैं, हमको भी उनके जैसे बड़े होने, पर बड़े होने का ऐसा लगता है यार अभी बच्चे ही अच्छे थे, हम क्यों नहीं बच्चे हैं।
1: ओके, और शिक्षा को क्या लगता है, बड़े होने का मन करता है कि नहीं करता है?
2: दीदी मुझे नहीं होता बड़े होने का मन, क्योंकि मुझे तो है ना बस अपने मम्मी पापा के साथ रहना है। बड़े हो जाते हैं तो कॉलेज या जॉब के लिए दूर जाना होता है उनसे, मुझे उनसे दूर नहीं जाना।
1: और
4: दीदी हमको ना मतलब टाइम तो निकालना ही चाहिए, जैसे कभी हम रात को लेट आते हैं और अगर वो उठे होते हैं तो हमको उनके पास जाना चाहिए, और अगर वो सो रहे होते हैं तो हमको सुबह जल्दी उठ के जितने बजे अपने पेरेंट्स उठते हैं हमको उनके पास जाके नमस्ते करना चाहिए और उनके पैर छूने चाहिए।
1: बिल्कुल, उनका आशीर्वाद तो हमें हमेशा चाहिए ना, चाहे कितने भी बड़े हो जाए। बिल्कुल सही बात है,
3: माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है।
1: हाँ, क्योंकि उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो सच में कितनी प्योर होती हैं हमारे लिए, कितनी पावरफुल होती हैं, उससे ज्यादा हमारा भला और कौन सोच सकता है।
2: मेरे जो मामा मामी उनको लिटरली टाइम भी नहीं मिलता अपने पेरेंट्स के पास जाने, वो मतलब दूर रहते तो है बारामती में, पर वो मतलब एक्चुअली बारामती में रहते हैं बचपन से, पर अभी वो जॉब करने के लिए बैंगलोर पुणे ऐसे मतलब कंटिन्यूसली उनकी ये होता है मतलब इधर से उधर उधर से इधर, फिर बॉस की सुनो। वैसे लगते में तो ऐसे लगते कि बहुत अच्छा पैसा है उनके पास, पर उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितना करना पड़ता है, वो नहीं लगता अपने को।
1: बहुत मेहनत होती है, बिल्कुल।
4: दीदी एक बार ना मैंने यही सुना था कि ना माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है, तो मैं उनके पैरों के अंदर देखने लग गया था, फिर मैंने उनसे पूछा स्वर्ग नहीं दिख रहा मुझे,
1: तो मिला नहीं मिला फिर?
4: नहीं मिला।
1: जो क्या बोलते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है ना कि वो लिटरल नहीं होती है, है ना, कि वो देखने में नहीं पता चलता है, लेकिन उनका मीनिंग भावना से जुड़ा होता है ना। तो अगर माता पिता का हम आशीर्वाद लेते हैं तो समझ लो हम स्वर्ग मतलब क्या, बहुत सुंदर दुनिया है ना।
2: हाँ।
1: तो उनके पास हमारी सबसे सुंदर दुनिया होती है, हमारा जिसमें भला ही भला होता है, हमारा जिसमें अच्छा ही अच्छा होता है, थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता।
4: दीदी हमको बड़े होके ना कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, मान लो कि हमको किसी ने नौकरी से निकाल दिया और हमको किसी से कहीं से भी पैसे नहीं मिल रहे, तो हमको चोरी नहीं करनी चाहिए, हमको नौकरी ढूंढती रहनी चाहिए।
1: हाँ, बड़े होके कभी कभी गलत काम करने लगते हैं ना हम, बच्चे होके तो सुन लेते हैं, किसी ने डांट दिया तो मान भी लेते हैं गलती।
4: दीदी कई कई बच्चे भी चोरी करते हैं।
1: बच्चे भी करते हैं मतलब?
4: दीदी हमारे स्कूल में एक बच्चा है वो भी चोरी करता था, तो हमारी एक म्यूजिक मैम है उन्होंने बोला कि पुलिस को बुलाया हमने, और पुलिस मतलब किसी काम से आई थी तो मतलब उनको कोई डॉक्यूमेंट, तो उसको सच्ची लगा कि पुलिस आ रही है तो वो जाके छुप गया कहीं।
1: तो बच्चों को डरा दिया जाता है ना कभी कभी, लेकिन बड़े नहीं समझते ऐसे, पर बड़ों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा आपने बताया ना कि जॉब ढूंढते रहना चाहिए लेकिन गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए।
3: दीदी वो पुलिस तो काली का पेट्रोलिंग यूनिट आई थी।
1: अच्छा।
3: गर्ल्स से मिलने आई थी वो।
1: ओके, तो बच्चे को डरा दिया कि ताकि वो नहीं करे ना इसलिए।
3: बच्चे को डरा दिया पर वो मिलने गर्ल्स से आए थे।
2: तो दीदी वो मतलब कहते हैं ना कि अगर किसी मतलब किसी पर्सन के पास मतलब सब कुछ है, एक भी कमी नहीं है उसकी जिंदगी में, पर अगर मम्मी पापा का प्यार नहीं है ना तो उसके पास मतलब कुछ नहीं है, जैसे कि वो बेघर है ऐसे।
1: तो मतलब बड़े भी हो जाओ तो मम्मी पापा से मिलते रहना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, है ना। और आप लोग जैसे बड़े हो जाओगे ना तो कभी कभी आप बिजी भी हो सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम टाइम नहीं निकाल सकते। जैसा आपने बताया ना आपके पापा निकालते हैं टाइम, स्पेशली निकालते हैं, तो अगर निकालना चाहें क्यों नहीं निकाल सकते हैं, है ना। आप लोग भी देखते हो अपने घर पे निकालते हुए।
2: दीदी मतलब जैसे कि मैंने अभी कहा कि उनका जो प्यार होता है ना वो ऐसे होता है कि जैसे हम मतलब सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ मतलब मेरी मम्मी या फिर मेरे पापा मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे जैसे अच्छा लगता है, वो एक अलग ही फीलिंग होती है।
1: बिल्कुल सही कहा। तो चलो अभी तो वक्त हो गया है गुड बाय करने का, कुछ बोलना चाहते हो? अच्छा, बड़ों को मान लो आपको आपके बड़े वर्जन को फ्यूचर में जाके कुछ कहने का मौका मिले तो उनको क्या बोलोगे?
2: दीदी मैं तो ये कहूंगी कहना चाहे कितना भी है ना बिजी हो जाओ, कितना भी कितने भी दूर चले जाओ, पर कभी मम्मी पापा को नहीं भूलना, अपने पेरेंट्स को हमेशा उनकी केयर करना है दूर रह के भी।
3: पेरेंट्स को तो भूलना ही नहीं है, पर अपने बचपने को भी कभी नहीं भूलना। अगर बचपना मर गया तो जीना ही बेकार है।
0: और मतलब जो मम्मी पापा का मतलब मम्मी पापा के पास हम जब भी जाते हैं पेरेंट्स को दूर भी रहते हैं ना, तो एक बार दो बार कम से कम कॉल तो कर लेना चाहिए, वीडियो कॉल। एक मतलब एक महीने में नहीं, एक हफ्ते में एक बार कर लो सिर्फ।
1: आप क्या बोलोगे अपने फ्यूचर सेल्फ को, बड़े राघव को क्या बोलोगे?
0: मुझे
1: अभी आपको मान लो यहाँ पे एक विंडो मिले जिसमें से जाओगे तो आपको बड़ा राघव मिलेगा जो 18 प्लस होगा, 20 इयर्स का होगा, तो उसको क्या बोलोगे?
4: मैं उसको बोलूंगा कि ना अपने बचपने को कभी मत भूलना, जैसे हमने बचपन में मस्ती की थी वो कभी मत भूलना, और ऐसे ही चलते रहना।
1: ऐसे ही चलते रहना, बस बचपन वाले राघव को छोड़ नहीं देना है ना,
4: और मम्मी पापा से भी मिलते रहना।
1: मम्मी पापा को भूल नहीं जाना। ओके ठीक है।
3: कभी भी पैसों के पीछे भी नहीं भागना, पेरेंट्स के साथ ही रहना। अगर पैसों के पीछे भागना शुरू कर दिया तो पेरेंट्स दूर हो जाएंगे।
1: तो पेरेंट्स के पास रहना, पैसों के पीछे नहीं।
4: दीदी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें था कि मतलब है ना एक बंदा था और वो पैसे कमा रहा था सिर्फ, और वो पैसे कमाते कमाते बूढ़ा हो गया, मतलब उसने कभी पैसे खर्च ही नहीं किए।
1: तो इसीलिए मतलब उनको स्पेंड भी करना, क्या कहना चाहते हो आप फिर?
4: कि हमको अपने मम्मी पापा के लिए गिफ्ट भी लेना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए।
1: तो फ्यूचर राघव अपने मम्मी पापा के लिए गिफ्ट जरूर लेना है ना, और उनका केयर करना, भूलना नहीं है। ओके डन। तो चलिए जब आप लोग बड़े हो जाएंगे ना तब फिर ये सुनिएगा, तब आपको याद आ जाएगा कि आप बचपन में अपने को क्या कहना चाहते थे। तो ये वाले जो एपिसोड है ना ये आप लोग जब बड़े हो जाएंगे तब आपको सुनाएंगे, तो आपको याद हो जाएगा कि बड़े कैसे होना है आपको।
3: जैसे कि अब हम अभी रेडियो में आते हैं वैसे हम आते रहेंगे, और 9 ईयर्स बाद हम यही ऑडियो सुनेंगे।
1: अच्छा 9 ईयर्स बाद या 10 ईयर्स बाद कैसे होगे आप, कैसे क्या वैल्यूज होंगे, क्या चीज होगी जिस पे आप फोकस करोगे, कैसे होगे, क्या लगता है क्या कर रहे होगे उस टाइम या कैसे होगे उस टाइम?
2: दीदी ये तो पता नहीं क्योंकि ये तो फिर फ्यूचर हो गया है।
1: फ्यूचर सोच के बताओ क्या लगता है फ्यूचर शिक्षा कैसी होगी?
3: दीदी ये तो भविष्यवाणी हो जाएगी फिर तो।
1: आपको क्या लगता है ताकि आप बाद में जब सुनोगे ना तो आपको लगेगा अच्छा मुझे ऐसा लगता था।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी, मम्मी पापा के लिए टाइम तो जरूर निकाल पाऊंगी।
1: ओके कैसे होगे, क्या वैल्यूज होंगे आपके अंदर, कैसे रहते होगे, कहाँ रहते होगे, क्या करते होगे, कुछ लगता है?
3: दीदी मैं तो मेरा बचपना तो कभी नहीं भूलूंगी, जैसे अभी हंसती खेलती रहती हूँ वैसे भी बड़े होके भी रहूंगी और बड़े होके देश के लिए कुछ करूंगी।
1: ओके
4: दीदी जब भी हम दोनों फ्री आएंगे तो हम तो खेलने चले जाएंगे बैट और बॉल उठा के,
1: बड़े होके भी ना। तो ये फ्यूचर सेल्फ से प्रॉमिस है भाई, बैट बॉल नहीं उठाना भूलना। हाँ
3: दीदी फुटबॉल उठाना भी नहीं भूलेंगे।
1: पक्का?
3: पक्का प्रॉमिस।
4: दीदी बास्केटबॉल भी नहीं
0: तो और दीदी बैडमिंटन भी नहीं।
1: ओके मतलब बड़े होके गेम्स खेलना जरूरी है।
0: यस उससे स्ट्रेस भी कम हो जाएगा और अच्छा भी फील होगा।
1: गेम से
4: दीदी उससे हमारी फिटनेस भी बनी रहेगी।
1: बड़े होके फिट रहना है। ओके
0: ऐसे नहीं कि ज्यादा भी ओवरवेट हो गया या फिर एकदम पतले हो गए।
1: ओके ओके तो कर ली हमने ढेर सारी बातें और थोड़ा फ्यूचर में भी विजिट करके आ गए, तो मुझे लग रहा है जब बड़े हो जाएंगे बच्चे तो बिल्कुल अभी जैसे रहने वाले हैं और बहुत प्यार से रहने वाले हैं और बहुत इन्जॉय भी करने वाले हैं, पेरेंट्स को कभी नहीं भूलने वाले हैं और ढेर सारे गेम्स खेलने वाले हैं।
4: दीदी अभी जैसे नहीं रह सकते तब तो बैट और बॉल भी फ्यूचर वाले आ जाएंगे।
1: हाँ तो फ्यूचर वाले टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट वाले बैट बॉल से खेलना।
0: दीदी आपने हम सबसे तो क्वेश्चन पूछ लिया, अब एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, आपको बड़े होके कैसे लगता है और क्या कैसे लगता है कि बचपन ज़्यादा अच्छा होता है फिर बड़े होना ज़्यादा अच्छा लगता
1: है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आप लोगों को लगता है ना सेम, बचपन ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि बचपन में हम बहुत केयर फ्री होते हैं, बहुत ईजी होती है हमारी लाइफ कि हमें पढ़ना है खेलना है यही दो चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, लेकिन बड़े होके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हम सिंपल कर सकते हैं बट कभी कभी हम भूल जाते हैं उसको सिंपल करना, है ना?
0: और कुछ अथॉरिटीज़ बताइए जिसको आप बड़े होके बाद आपको मिली है।
1: हाँ, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे आप डिसीजन ले सकते हो कि आप करियर में क्या करना चाहते हो, है ना, आप कैसे रहना चाहते हो, आप किस चीज को, किस तरीके से आप रिलेशंस को अपने बनाना चाहते हो, निभाना चाहते हो, है ना, बहुत सारी चीजें मिलती हैं आपको. और हाँ, जैसे आप लोगों ने बात की वोटिंग राइट्स, और वो सब आप डिसाइड कर सकते हो कि आप देश के लिए क्या करना चाहते हो, आप सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हो, वो भी आपको एक बेनिफिट होता है.
3: दीदी आप बड़े ही हो, तभी तो आप हमारे साथ बच्चों की दुनिया में बातें कर रहे हो.
1: हाँ बिल्कुल सही कहा, तो मुझे तो पीछे जाना पड़ेगा और आप लोगों को फ्यूचर में. हाँ. चलो अभी फिलहाल तो वक्त हो गया है गुड बाय कहने का दोस्तों को, क्योंकि हम भाई आगे के प्रोग्राम्स भी तो सुनाने हैं उन्हें, और हम मिलेंगे बच्चों की दुनिया की अगली कड़ी में. तब तक के लिए बाय बाय.
5: बाय बाय.
6: आप सुन रहे हैं जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी.

भाग पांच। इस प्रकार के गीत गागा कर सभी गोप गोपियां अथवा सत्संगी भाई बहन खुशी में झूमते रहते थे। कई बार जब दादा सत्संग पूरा करके उठते थे तो सभी बहनें और माताएं और भाई उठकर दादा के सामने खड़े हो जाते थे। दादा की पवित्र पितृवत दृष्टि सभी आत्माओं पर पड़ती और सभी के प्रति बेटी या बच्ची ये मधुर शब्द निकलते थे। सभी उपस्थित जन अनुभव करते थे कि जैसे कि वे आत्मा के रूप में आत्मा के पिता, जगत पिता अथवा धर्म के पिता के सम्मुख खड़े हैं। सभी के मन में बच्चों की तरह स्नेह का उद्रेक होता था और उनकी अंतःचेतना बोल उठती कि ये हमारे बाबा हैं। वे भी उन्हें ओम बाबा कहकर पुकारते थे। कई बुजुर्ग और मुखी या चौधरी लोग जो कि बाबा को पहले से ही जानते थे, वे भी जब बाबा के सम्मुख आते तो ऐसा अनुभव करते जैसे कि बिछड़े हुए बच्चे बाप से मिल रहे हों। कई माताएं बहनें अथवा पुरुष जो पहली बार इस सत्संग में आकर सम्मिलित होते, उनकी यदि पहले से ही बाबा से जान पहचान नहीं भी होती थी तो भी वे जब बाबा को देखते तो उनकी आंखों से प्रेम के आंसू टपक पड़ते और सहसा उनके मुख से नहीं नहीं उनके जिगर से बाबा बाबा ये प्रेम से भीगे हुए शब्द निकल पड़ते। बाबा उनको कहते, ओ बेटी ओ बेटा, बाबा तुम्हारे सामने खड़े बोल रहे हैं, बच्ची क्या कहती हो? और वह कहती, बाबा आप कहाँ थे? क्या आप हमको भूल गए थे? आप इतने वर्षों के बाद आकर हमें मिले हो? बाबा ओ बाबा, हम कभी भी आपको नहीं भूलेंगी। बाबा आप जल्दी से जल्दी हमें इस गंदी विकारी दुनिया से कहीं बहुत दूर ले चलो। दोस्तों, उन्हीं दिनों एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजता था जिसमें भरा हुआ गीत कुछ इस प्रकार का था। इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, चित्त चैन जहां पाए, ले चल वहीं ले चल। इस आवाज की दुनिया से कहीं दूर ले चल, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। जब यह गीत सत्संग में आने वाली माताओं कन्याओं ने सुना तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके लिए ही परमपिता परमात्मा ने किसी द्वारा वह रिकॉर्ड बनवाया है। यह गीत गा गा कर वे बाबा से कहती, बाबा बस अब हमें अपने साथ शांति धाम में ले चलो। बाबा बहुत

इस अवस्था में उन्होंने एक मधुर गीत बनाया जिसे वे मिलकर सभा में भी गाते थे। गीत गाते गाते और सुनते हुए उन्हें ऐसा लगता कि वे कुंजों की तरह इस संसार से उड़कर बहुत ऊपर जा रहे हैं, निज आत्माओं के धाम में जा रहे हैं। उनके गीत के पद कुछ इस तरह से होते, उड़ी ओम में जाती है ये गाती ब्रह्मा ज्ञान, तन मन धन की सुध विसार कर जाती है निज धाम, ज्यों थककर चिड़िया संग संग उड़ती जाती है निज ठाव, त्यों सखियां थककर जन्म मरण से होती हैं उपराम। ये दुखियारी भटक रही थी भूली थी निज धाम, ओम मंडली ने लक्ष्य बताकर मिलाया मुझे घनश्याम। अमृत प्याला भर भर पीती नित करती ज्ञान स्नान, ज्ञान अविनाशी गाते गाते चली जाती सुख धाम। बस इस सुख शांति में जीवन का अनुभव करते करते वे शरीर की सुध-बुध भूल जाती थीं। वे सारा दिन एक अलौकिक मस्ती में रहती थीं। उनके जीवन में सुख और परिवर्तन देखकर शहर के काफी बुजुर्ग पुरुष भी अपने पुत्र पुत्रियों आदि के साथ अर्थात समस्त कुटुंबी सत्संग सुनने आते थे। उनमें भाई रिझुमल जी, भाई रतनचंद जी, भाई दयाराम जी और बाद में भाई विश्व किशोर जी भी थे जो कि हैदराबाद के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। और सब परिवार ज्ञान रत्नों की खुशी में और ज्ञानामृत तथा पवित्रता के नशे में उमंग से चल रहे थे। इस सत्संग में आने वाले भाई बहनों ने यह अनुभव युक्त गीत बनाया था और इसे वे सभी मिलकर गाया करते थे। ज्ञान नगर में बिताऊंगी तजके पांच विकार, प्रेम नगर में बिताऊंगी तजके अशुद्ध विचार, ज्योति नगर में बनाऊं घर तजके देह अहंकार, ज्ञान के गहने ज्ञान के भूषण ज्ञान ही सब श्रृंगार, ज्ञानी माता ज्ञानी पिता ज्ञानी है कुटुंब परिवार, ज्ञान के संग बिताती हूँ जीवन योग ही प्राण आधार। साथ ही वे दूसरा गीत गाते, ज्ञान से है इस जग में आनंद निराला, ज्ञानी को होता है अनुभव सुख का, ज्ञान स्वरूप युगल की रीति है न्यारी, परम पिता है सच्चा सदगुरु शांति की भंडारी, सखी पाओ तुम सदा ज्ञान अमृत का प्याला, ज्ञान से है इस जग में आनंद निराला। उस समय सभा की शोभा ऐसी होती थी कि जैसे कि इंद्र सभा लगी हो अथवा हंसों का झुंड बैठा हो। सभी कन्याएं माताएं जो पहले बहुत ही फैशनेबल थीं, श्रृंगार प्रिय थीं, हीरे जवाहरातों से सजी रहती थीं और अशुद्ध खान पान वाली थीं, अब वे इस पवित्र गीता ज्ञान को सुनकर अपने आप ही पवित्रता के रास्ते पर आ रही थीं। बाबा अथवा पिताश्री के जीवन का सभी पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उनके प्रैक्टिकल जीवन से प्रेरणा लेकर उनके जीवन में भी त्याग की भावना आ गई थी। अब उनका जीवन सादा जीवन था, उनके उच्च विचार थे, बोल मधुर, दृष्टि ज्ञान युक्त और वृत्ति सात्विक होने लगी थी। उन्होंने पवित्र जीवन का अच्छा रस लिया था, इसलिए अब उन्हें काम वासना वाला जीवन दुर्गंधपूर्ण, विषैला अथवा पलीद जीवन लगता था। ज्ञान अमृत के घूंट भर भर पीने से उन्हें एक नया जीवन मिला था जिसका निराला ही सुख था। अतः उन्होंने मन ही मन प्रण किया कि अब ब्रह्मचर्य व्रत में रहकर प्रभु में मन बसाकर हम योगियों जैसा जीवन व्यतीत करेंगे, घर में रहेंगे परंतु कमल पुष्प के समान जीवन बनाएंगे, हम विकारों के कीचड़ से ऊपर उठकर रहेंगे। अब बाबा ने जब सत्संग अथवा ईश्वरीय ज्ञान की क्लास का यह विकसित रूप देखा और परमात्मा की करामात देखी तो उन्होंने ओम राधे को इस सत्संग अथवा ईश्वरीय विद्यालय के लिए अवैतनिक इंचार्ज नियुक्त किया और उनके साथ 8-10 अन्य ज्ञान निष्ठ कन्याओं और माताओं की एक कार्यकारिणी समिति बनाई और अपना समस्त धन और अपनी संपत्ति माताओं की उस कमेटी को अर्पित कर दिया। इस विषय में बाबा ने दिनांक 17 फरवरी 1938 को लिखा है, मैं अपना सब जर जेवर जमीन मुतहरक और गैर मुतहरक जायदाद यानी चल और अचल संपत्ति इन माताओं की कमेटी को समर्पित करता हूँ ताकि यह इस ईश्वरीय सेवा अर्थ कार्य में लगाई जाए। अतः अब माताएं ही सारे कार्य को संभालने लगी। अब यह सत्संग बहुत ही उन्नति को प्राप्त होने लगा, लोगों में यह ओम मंडली के नाम से विख्यात हो गया क्योंकि यहाँ ओम की ध्वनि की जाती थी और उसके अर्थ स्वरूप में स्थित किया जाता था। कश्मीर से लौटने के बाद बाबा ने देखा कि अनेक माताओं बहनों तथा पुरुषों के जीवन में ईश्वरीय शक्ति की झलक आ रही है।
उनके जीवन में पवित्रता और आनंद आ गए हैं। यह देखकर बाबा को बहुत खुशी हुई। उन्हें यह देखकर आश्चर्य भी होता था कि किस प्रकार उन्हें निमित्त बनाकर गुप्त रूप से परमपिता परमात्मा स्वयं नरनारी का जीवन ज्ञानमय बनाने का कार्य कर रहे हैं। परमात्मा के सिवा किसी मनुष्य का तो यह कार्य हो ही नहीं सकता। वही तो उनके शरीर के माध्यम से आत्माओं की जन्म जन्मांतर की ज्ञान पिपासा बुझा रहे थे। अब परमपिता परमात्मा शिव अर्थात गीता के भगवान ने उनके मुख कमल द्वारा 5000 वर्ष पहले की तरह ये महावाक्य उच्चारण किए। उन्होंने कहा कि काम विकार नर्क का द्वार है। वे उन्हें समझाते थे कि ब्रह्मचर्य के बिना ज्ञान अमृत की पूरी धारणा नहीं हो सकती। काम विकार को ही ग्रंथों में मूत पलीति कहा गया है। यही हलाहल विष है जो आत्माओं को पतन के गर्त में धकेलता है। सत्संग में आने वाले नरनारी ने ज्ञान अमृत का रस चख लिया था। उन्हें पवित्र जीवन का आनंद मिल चुका था। अतः उन्होंने तो स्वतः ही मन में सोच लिया था कि अब वे पवित्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। उन्हें काम विकार वाला जीवन तो अब बिल्कुल गंदा लगता था और वासना भोग उन्हें मृत्यु से भी अधिक दुखदायक महसूस होती थी। अब परमपिता परमात्मा शिव जो कि तीनों कालों को जानते हैं, उन्होंने ओम बाबा के तन में प्रवेश करके सभी को यह निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी अपने पिता, पति, अभिभावक अथवा संरक्षक के पत्र ले आए जिनमें यह लिखा हो कि वे अपनी पुत्री, बहू अथवा पुत्र को ओम राधे के पास जाकर ज्ञान अमृत पीने पिलाने अथवा अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए खुशी से छुट्टी देते हैं। जिन माताओं, कन्याओं अथवा बालकों के माता पिता या परिवार के सभी जन आते थे, उन्हें तो ऐसा पत्र लिखवा कर लाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। परंतु जिस जिस महिला का पति इस सत्संग में नहीं आता था तथा जिस जिस के अभिभावक का खान पान, व्यवहार और संस्कार तमोगुणी, भौतिकवादियों जैसा या पाश्चात्य सभ्यता से पूरी तरह रंगा हुआ था, उन्हें ऐसा पत्र लाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। एक ओर तो वे नित्य ज्ञान अमृत पिए बिना रह नहीं सकती थी, परंतु दूसरी ओर उन्हें पत्र भी नहीं मिलता था। यही अवस्था नाबालिग कन्याओं तथा कुमारों की भी थी। परंतु प्राय हरेक ने अपनी उच्च धारणाओं, अपने मनोपरिवर्तन, सादा जीवन आदि का प्रभाव डालकर ऐसा पत्र ले ही लिया ताकि उन्हें भी ऐसे उत्तम सत्संग में प्रवेश मिल सके। वास्तव में कुछ लोग यह समझ ही नहीं सकते थे कि यह किस प्रकार का सत्संग है। एक ओर तो वे वहां आने जाने वाले नर नारियों के जीवन में आशातीत परिवर्तन देखकर बहुत खुश भी होते थे और आश्चर्यचकित भी होते थे, परंतु दूसरी ओर वे वहां दिव्य साक्षात्कारों की भरमार देखकर इस सोच में पड़ जाते कि ऋषि मुनियों को भी साक्षात्कार का होना बहुत कष्ट साध्य था। यहाँ छोटे बड़े सभी लोगों को सहज ही श्री कृष्ण का साक्षात्कार, बैकुंठ का साक्षात्कार तथा कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार कैसे हो जाता है। वे स्वयं आहार व्यवहार की शुद्धि तथा ब्रह्मचर्य के नियमों का पूरी तरह पालन नहीं कर पाते और ज्ञान के रहस्यों को अपने मलिन विचारों के कारण समझ भी नहीं पाते थे, इसलिए वे बहुत रुकावट डालते थे। उनमें से कई लोग तो इस पत्र के कारण संपर्क में आते और उनके अपने जीवन में भी सहज ही परिवर्तन हो जाता। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी ने अपना अनुभव इस प्रकार व्यक्त किया है। एक दिन बाबा ने कहा कि आप सभी अपने लौकिक माता पिता से या सास ससुर से चिट्ठी लेकर आओ जिसमें लिखा हो कि हम अपनी बच्ची या स्त्री को खुशी से छुट्टी देते हैं कि वह ओम मंडली और ओम राधे के पास जा सकती है। मैंने भी अपने लौकिक पिता से इसके लिए आवेदन किया। वे मांसाहारी थे, शराब खूब पीते थे तथा उनके संस्कारों में धर्म की ओर झुकाव नहीं था। वे भी यह सुनकर बहुत ही गर्म हो गए और बोले, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं लिख कर दूंगा। मैं सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा। बाबा चिट्ठी के बिना सत्संग में प्रवेश नहीं देंगे और पिताजी लिखकर नहीं देंगे। मैं ज्ञान अमृत के बिना वैसे ही तड़प कर मर जाऊंगी जैसे मछली जल के बिना तड़प कर मर जाती है। मैं मन ही मन प्रभु को याद करके कहती थी, प्रभु आप ही मेरी सहायता करो। आखिर एक दिन मैंने अपने लौकिक पिता को कहा, आपको बाबा ने याद किया है। यह बात सुनते ही हमारे पिता का मन मोम की तरह पिघल गया। वे कहने लगे, दादा इतने बड़े व्यक्ति हैं, यदि वे मुझे बुलाएं तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ना जाऊं। मैं आज ही आपके साथ चलता हूं। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े कुल के थे और मेरे ससुराल का भी हैदराबाद में अच्छा मान था।
परंतु दादा की ओर से मिलने का संदेश सुनकर उन्हें सम्मान देते हुए मेरे लौकिक पिता मेरे साथ चले। मैंने बाबा को जाकर समाचार दिया कि लौकिक पिता आए हैं, साथ ही यह भी बताया कि वे कुछ दिन पहले मुझे पत्र लिखने से बिल्कुल इनकार करते थे। बाबा ने उनसे कहा, क्या आप जानते हैं कि आपकी पुत्री यहाँ क्यों आती है? आज इसके जीवन में जो शांति है वह इसे कैसे मिली? बाबा ने उन्हें थोड़ा ज्ञान दिया और फिर ओम राधे को कहा कि वह उन्हें और अधिक विस्तार से ज्ञान स्पष्ट करें। ओम राधे ने उन्हें समझाया कि आप एक चेतन आत्मा है, यह शरीर आपका एक मंदिर है। क्या मंदिर में कभी मांस का भोग लगाया जाता है? कभी मूर्तियां या जड़ चित्रों को शराब की भेंट करते हैं? इस प्रकार ओम राधे जी ने उन्हें ऐसा प्रभावशाली तरीके से समझाया कि उनका जीवन ही पलट गया। उन्हें अपनी अंतरात्मा में ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने मांस शराब आदि का सेवन करके तथा क्रोध और अशुद्ध व्यवहार आदि से बहुत पाप किए हैं। साथ ही साथ उन्हें इस बात का मनन करते हुए एक अनोखा आत्मिक नशा भी चढ़ा कि मैं शरीर रूपी मंदिर में रहने वाला अपने आदि स्वरूप में एक चेतन देवता हूं। मन में दोनों लहरें लेकर वे घर आए और उन्होंने शराब की बोतलें उठाकर बाहर सड़क पर फेंकनी शुरू कर दी। वे विलायती शराब की बहुत कीमती बोतलें थीं। उन्हें बोतलें फेंकता देखकर उनका लौकिक भाई बोला, दादा आप इन्हें सड़क पर क्यों फेंकते हो, हमको दे दो। मेरे पिताजी ने कहा, जो पाप का काम हमने छोड़ दिया वह आपसे भी नहीं कराना। उस दिन से लेकर पिताजी शाकाहारी बन गए और घर में अशुद्ध भोजन का निषेध हो गया। जब मैंने देखा कि हमारे लौकिक पिता के मन में अब ज्ञान का रंग लग गया है तो मैंने फिर वह पत्र लिख देने के लिए कहा। मेरी लौकिक बहन जी तथा माता जी भी चिट्ठी लेना चाहती थी। हमें आश्चर्य भी हुआ और बहुत खुशी भी हुई जब पिताजी ने कहा, मैं आपको भी अभी ज्ञान अमृत पीने पिलाने की छुट्टी देता हूँ और साथ में यह चिट्ठी भी लिखकर देता हूँ कि मैं स्वयं भी ज्ञान अमृत पिया करूंगा। उन्होंने हमें सहर्ष पत्र लिखकर दे दिया और बाद में हमारा सारा कुटुंब ही इस ईश्वरीय ज्ञान में तन मन धन सहित अर्पण हो गया। यह था बाबा द्वारा मिलने वाले इस ज्ञान का सच्चा चमत्कार, जिससे शीघ्र ही संस्कार बदल जाते थे और विषय वासना की लत छूटकर आत्मा की प्रभु से सच्ची लगन लग जाती थी और सहज ही शांति और सुख की प्राप्ति होती थी। इस प्रकार बहुत सी कन्याएं, माताएं अथवा भाई पत्र लिखवा कर लाए थे। स्वयं बाबा ने अपनी लौकिक पुत्री को, बहु राधिका को तथा अपनी धर्मपत्नी जसोदा को ऐसे पत्र लिखकर दिए थे। जो कुटुंबी ओम मंडली में आते थे उनके बुजुर्गों ने इच्छा प्रकट की कि बच्चों और बच्चियों की शिक्षा के लिए भी ऐसा प्रबंध होना चाहिए। उन्हें लौकिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या भी पढ़ाई जाए। स्वयं बाबा का तो पहले से ही यह विचार रहता था कि यदि छोटे बच्चों को बचपन से ही ज्ञान की लोरी दी जाए और उनके लिए सच्चे गुरुकुल की तरह वातावरण हो तो उनका बहुत ही कल्याण हो सकता है। अतः बाबा ने बालकों और बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी व्यवस्था की। प्रातः और सांय सत्संग तो होता ही था, परंतु बीच के समय में अर्थात 8 बजे से 12 बजे तक कन्याओं को शिक्षा मिलती थी। उन्हें लौकिक विद्या, आध्यात्मिक विद्या तथा सिलाई सिखाई जाती थी। ओम मंडली में बच्चों की शिक्षा के बारे में यह गीत गाया जाता था, है माता के हाथ बच्चे का खुशगवार बचपन, है माता के हाथ बच्चे का भविष्य का जीवन, होती है जिंदगी की पहली बहार बचपन, माँ बाप ज्ञान रास्ता बच्चे को घर सुनावे, बच्चे को धर्म विद्या शुरू से जो पढ़ावे, गीता का सार अमृत वह ज्ञान जो दिलावे, आत्मा और देह का भेद बचपन से ही समझावे, माता मदलसा सम अध्यात्म जो सिखावे, बन जाए फिर तो बच्चे का विदेह मुक्त जीवन, है माता के हाथ बच्चे का आनंद रूप जीवन, कुमाता के हाथ बच्चे का है दुख रूप जीवन। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ यह अगले भाग में सुनिए।

और कहते थे, ओम बाबा, अब हमने सुखधाम की राह देख ली है। बाबा, अब हम शांति धाम में पहुंच गए हैं। बाबा, अब हम इस पतित एवं विकारी दुनिया में, इस मृत्यु लोक में नहीं जाएंगे।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम यशस्वी भारत में। हम हमेशा भारत की ऐसी यशस्वी लोगों के साथ रूबरू होते हैं और जानते हैं उनका क्या योगदान है, उनकी अपनी फील्ड में ऐसा क्या एक्सलेंसी किया है भारत को यशस्वी बनाने में। चलिए दोस्तों, आज हम बातचीत करते हैं समीर शेंदे जी से। आप एक्स सेकेंड इन कमांडर है होमगार्ड्स के, और इसके साथ साथ आपने बहुत सारे प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स भी जीते हैं और वर्तमान समय में एक ऐसी स्कूल की व्यवस्था आपने बनाई है जिसका आप सुनेंगे तो सोचेंगे कि बिना किताबों का कोई स्कूल हो सकता है क्या। ताजुब है ना। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने जो ग्रुप ऑफ स्कूल्स बनाए हैं, जैसे गैलेक्सी एजुकेशन सोसाइटी है और आप डायरेक्टर है यूनिवर्सल कमर्शियल सर्विसेज की, फाउंडर डायरेक्टर है शाइनिंग स्टार्स कॉन्सेप्ट स्कूल CBSE की, और उसके साथ साथ आप फाउंडर भी हैं ब्लूबेरी बिजनेस इंटरनेशनल। इस तरीके से बहुत सारी वैरायटी सेवाओं की आप धनी हैं। तो बातचीत करते हैं और उससे पहले हम स्वागत करते हैं समीर शिंदे जी को आज के इस कार्यक्रम यशस्वी भारत में। समीर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन में।
1: थैंक यू दीदी।
0: ये बहुत खुशी की बात है कि आज हम आपसे स्टूडियो में रूबरू हो पा रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि इतनी सारी वैरायटी आप सेवाएं कर रहे हैं और आप किसी का फाउंडर है, किसी का CEO है, किसी का डायरेक्टर है, तो इतनी सारी बिजनेसेस एक बार कैसे आप हैंडल कर लेते हैं?
1: दीदी, मुझे एक बात बताते हुए बड़ा मुझे हर्ष हो रहा है कि एक वाक्य रतन टाटा जी ने कहा था, आप जीवन में व्यवसाय मत करिए, आप ऐसा काम करिए जिससे समाज का कुछ ना कुछ फायदा हो। तो आप मेरे प्रोफाइल में जितनी सारी चीजें देख रहे हैं, ये सारी चीजें मैंने ब्रेड एंड बटर के साधन के लिए नहीं की। मैं जब समाज में घूम रहा था, जब मैंने देखा जहां पर जो मुझे प्रॉब्लम नजर आ रहा था, उसी बात को पकड़ के मैंने उस एरियाज में काम करके उस एरिया को मैंने बेहतरीन बनाने का प्रयास किया। वो चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, जिसमें मैंने पिछले 12 वर्ष में लगभग 5,000 लोगों को रोजगार दिया है यूनिवर्सल कमर्शियल सर्विसेज के माध्यम से, वो चाहे फिर शिक्षा का क्षेत्र हो, जहां पर मैंने देखा कि 3 साल के छोटे बच्चों के ऊपर जितना प्रेशर डाला जाता था जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, तो वहां पर मुझे लगा कि काम करना चाहिए, फिर वहां पर मैंने काम किया। और ऐसी अन्यत्र बहुत सारी चीजें जहां पर अभी हम देख रहे हैं कि आज ब्रह्म कुमारीज में जिस तरीके से काम हो रहा है पूरे अक्रॉस द ग्लोब, तो एक व्यक्ति से ये कार्य का निर्माण हुआ। वैसे समाज में हर व्यक्ति का ये परम कर्तव्य है कि उसने अपने सामने जो भी चीजें दिख रही है उसको अनदेखा न करे, और जहां जहां मुझे ऐसी चीजें दिख रही थी कि यहाँ पर फोकस देके ध्यान करने की जरूरत है, वो फील्ड में मैंने काम किया। लेकिन आज मेरा पूरा का पूरा फोकस शिक्षा पर है। अगर आप मुझे पूछेंगे कि आप आने वाले समय में और ज्यादा कहाँ फोकस करना चाहेंगे, तो मेरा इसमें उत्तर यही रहेगा कि शिक्षा के जैसा कोई कार्य नहीं है। आप एक व्यक्ति को एक बार शिक्षित कर दो, पूरे जीवन भर उसके जीवन में प्रकाश में रहेगा
0: जी। सो ये जो आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं, उसके पीछे एक बहुत लंबी जर्नी है। तो सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपकी कहानी, आपकी जुबानी कि वो सफर कहाँ से वैसे शुरू हुई है, बचपन से आपको ऐसी क्या चीजें इन्फ्लुएंस किया है जो आज यहाँ पर हम आपसे बैठे हैं, समीर शिंदे जी जो डायरेक्टर, CEO, फाउंडर, ये सारी पदों को, और आपने प्रेसिडेंट से भी अवार्ड लिया है, तो फिर वो जो छोटा सा नन्ना सा बच्चा जो समीर शिंदे जी और आज एक CEO है, इस बीच का जो सफर है उसके बारे में थोड़ी सी झलकी
1: जी। ऐसा बोला जाता है कि आप जितना ज्ञान में डुबकी लगाएंगे उससे और थोड़ा सा खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि और भी कुछ हो लाइफ में हासिल किया जा सकता है, या और भी ज्ञान इसके भी आगे कुछ है। मुझे याद है कि मैं मेरी जब प्री प्राइमरी और प्राइमरी की जब शिक्षा चल रही थी, तो एक नन्हे से बालक के दिमाग में जीवन का उतना विजन नहीं रहता, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, मतलब कक्षा 10वीं तक तो उसके लाइफ में सिर्फ माता पिता और मित्र रहते हैं, और तब इतनी समस्याएं भी लाइफ में नहीं रहती। लेकिन असली समस्या चालू होती है जब पहली बार वो बोर्ड के एग्जाम देते हैं, और वहां से उसके जीवन की शुरुआत होती है। तो ऐसा नहीं था, ऐसा बोला गया है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे बहुत सारी असफल कहानियां होती हैं। तो मेरा अर्ली डेज का जो शिक्षा थी वो उतनी सफल नहीं थी। आई वॉज अ मोस्ट एवरेज स्टूडेंट इन माई स्कूलिंग डेज। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि क्या मेरा लाइफ ऐसे ही बीतते रहेगा कि और आगे कुछ मैं कर सकता हूँ। तो मैं जब 12वीं कक्षा में था तब मुझे कुछ मार्क्स कम आए, कुछ सब्जेक्ट में मुझे काफ़ी कम, लोअर देन एक्सपेक्टेशंस आए। तो उससे मेरे घर वाले थोड़े नाराज़ हो गए कि देखो, मेरे घर में जो मेरी सिस्टर थी वो तो मेरिट थी और मुझे बिल्कुल बिलो एवरेज मार्क आए। तब मैंने किताब पढ़ी, उस किताब का टाइटल था आत्मविश्वास की कुंजी, और उसके लेखक थे स्वेट मॉडर्न। उनकी एक लाइन का मेरे मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा असर हुआ। उन्होंने कहा कि आपके अंदर हिम्मत हो और आत्मविश्वास हो तो आप पहाड़ों को भी हिला सकते हो। मैंने कहा यह क्या बात हुई, अपनी बुद्धिमत्ता तो उतनी आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन ये तो कह रहे कि आप आगे बढ़ सकते हैं, तो ऐसी कौन सी बात है। तो वहां से मुझे ऐसा लगता है मेरे जीवन ने एक टर्निंग पॉइंट लिया, और उस दिन से मैंने किताबें पढ़ना चालू की। और दीदी मुझे ये बताते हुए बड़े गर्व महसूस हो रहा है कि आज मेरे पास लगभग 4000 किताबें हैं। आज भी मैं यहाँ पर हेडक्वार्टर में आया हूँ माउंट आबू के, जहाँ पर वर्ल्ड समिट चल रही है। आज सुबह से मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ कि मैं सारी अच्छी अच्छी किताबें मैंने चुन चुन के ली हैं आज। तो जिस तरह से एक हनी भी क्या करती है कि मधुमक्खी के छत्ते पे जाने से पहले हर एक फूल से वो अपना अपना ये निकालती है, मधु निकालती है, वैसे मैंने मेरे लाइफ में क्या किया कि जहां से मुझे जो प्राप्त हो सके वहां से मैंने वो प्राप्त किया, और उसका इम्प्लीमेंट मैंने रियल लाइफ में लेना चालू कर दिया। एक आम अवधारणा है कि आप एक अच्छा शिक्षण ले लेते हैं, अच्छी डिग्री ले लेते हैं, तो आपको बेसिक हर घर में यही कहानी होती है कि पहले अच्छी शिक्षा हो, फिर अच्छी नौकरी हो, और फिर अच्छे घर में इसकी या बहू लेकर आए। तो ये जो आम अवधारणा है, इससे भी आगे मुझे ऐसा लगता था कि इससे भी आगे जीवन है। पहले तो मेरे मन में था कि शादी ना करें, मैंने शादी नहीं की थी, लेकिन उसके बाद मेरे जीवन में जो मेंटर्स आए, गुरु आए, उन्होंने कहा कि आपको शादी करके ही समाज सेवा करनी पड़ेगी। क्योंकि जितने लोगों की शादी होती है वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, वो अपना परिवार, अपने बाल बच्चे बीवी यहीं तक उनकी विचारधारा केंद्रित हो जाती है। लेकिन मेरा जो पहले से विचारधारा थी कि वसुधैव कुटुंबकम, ये जो वसुधा है, ये जो ब्रह्मांड है, ये पूरी एक परिवार की जैसे है, या आपस में जितने मतभेद है ये इंसान ने तैयार किए हैं। और जैसे जैसे ये मेरी विचारधारा बढ़ती गई, एक अच्छा कनेक्शन मेरा समाज के साथ में बढ़ते गया, और फिर मैंने पहले ही जैसे आपको कहा कि आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन बनता है। मतलब जो अच्छा ड्राइंग बचपन से बना रहा था वो एक अच्छा चित्रकार बनता है, जो बचपन से म्यूजिक में जिसका रुचि है वो अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है। तो मुझे लोगों से मिलके, लोगों से बातें करके बड़ा मजा आता था। तो फिर मेरी जो सारी जीवन जो बना, फिर यही आधार रहा कि लोगों से मिलते मिलते मेरे व्यवसाय खड़े होते गए, जिसमें मैंने सबसे पहले यूनिवर्सल कमर्शियल सर्विसेज की स्थापना की, और फिर वहां से मैंने पीछे मुड़के नहीं देखा।
0: सो ये जो यूनिवर्सल कमर्शियल सर्विसेज है, इसमें क्या होता है सर, क्या करते हैं आप इसका?
1: इसकी भी एक रोचक कहानी है कि मैंने लगभग 2000 में मुझे होमगार्ड्स का ऑफर आया कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, और उस होमगार्ड का जो वो पद दिया जाता था, समाज के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता था, उसके पहले मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। तो वो एक अच्छा बायोडाटा था मेरा। तो एज अ सोल्जर पहले मैंने ज्वाइन किया, और मेरी पहली एग्जाम हुई मुंबई में घाटकोपर में। वहां पर मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन का पद मिला, इसमें 3 स्टार मुझे मिले। ये कार्य करते करते मुझे 3 साल हो गए, और 3 साल के बाद मेरा काम देख के मुझे पहला मेरा प्रमोशन मिला डेप्यूटी कमांडेंट का, जो कमांडेंट की एक स्टेज नीचे होता है। कुछ काम के वजह से मेरे जो कमांडेंट थे वो छुट्टी पे चले गए, और 45 दिन के लिए मेरे पास चार्ज आया। तो मैंने क्या किया, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जनता का दरबार लगाया, और सब जगह में गया, और सब लोगों ने मुझे कहा कि सर हमारे पास जॉब नहीं है, हमें रोजगार तो मिलता है लेकिन कब मिलता है, गणेश उत्सव, नवरात्रि उत्सव या फिर ईद, ऐसे वक्त रोजगार मिलता है, लेकिन बाकी दिन में हम लोग खाली रहते हैं। तो मैंने कहा आपको रोजगार मैं दूंगा। तो देखिए वही बात है कि समाज में जो चीज चाहिए वो देना चाहिए आपको, ना कि आपको अपने हिसाब से। और मेरी रुचि भी थी, और वहां पर मैंने एक गवर्नमेंट का लाइसेंस रजिस्टर्ड किया, जिसको पसारा लाइसेंस बोला जाता है। ये जो पसारा एक्ट है, ये सोसाइटी पुलिस के साथ में पैरेलली काम करती है। आप आपकी सिक्योरिटी यूनिफॉर्म दे सकते हो, बैचेस दे सकते हो, और गवर्नमेंट को सारा इसका रिपोर्टिंग करना पड़ता है कि आपके पास में कितने गार्ड्स हैं। तो मेरी इसकी शुरुआत सिर्फ दो गार्ड से हुई थी, 2012 से मैंने इसकी शुरुआत की थी, और इसका कारवा बढ़ते बढ़ते बढ़ते लगभग 500 के करीब ये गार्ड पहुंच गए सिर्फ 12 साल में। और इन दिनों में मुझे इस बात का बड़ी खुशी है कि लोग आते थे जाते थे और कारवा बनते गए, और लगभग 5000 से भी ज़्यादा लोगों को अभी तक इस प्लेटफॉर्म से हमने रोजगार दिया, और आगे भी इसका काम जारी ही है।
0: जी, और जैसे आपका वो नन्हे से बालक के अंदर स्काउट्स एंड गाइड्स का जो रुझान थी, जिस कारण से आपको 1992 में शंकर दयाल शर्मा जी ने आपको बेस्ट स्काउट ऑफ महाराष्ट्र का भी पुरस्कार दिया है, तो जब आप उस नन्हे से बालक के रूप में प्रेसिडेंट हाउस में गए, उस समय की क्या जर्नी रही है और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है?
1: ये बात तो सच में मुझे बड़ा बताते वक्त खुशी महसूस हो रही है। बचपन में अगर आपको कोई बड़ी अच्छी चीज देखने को मिलती है तो उसका गहरा असर पूरे जीवन भर रहता है। मैं जब पहली बार राष्ट्रपति भवन गए तो हमको सारे प्रोटोकॉल समझाए गए कि राष्ट्रपति के सामने आपको कैसे जाना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, और वो जब पुरस्कार देंगे तब आपको कैसे खड़े रहना है, वगैरह वगैरह। और वो सारा जो मंजर था वो मेरे दिमाग में आज भी ऐसे सामने आ रहा है। जब पहली बार मैंने देखा शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति भवन से जैसे पहली बार बाहर आए, तो देश का राष्ट्रपति बाहर आता है तब तब राष्ट्रगान होता है, तो वो राष्ट्रगान की जो गूंज है आज भी मेरे कानों में पहुंच गई। तो इतना मुझे मतलब गर्व से ये बात मुझे लग रहा था कि क्या बात है, ये है हमारा देश और ये है देश के राष्ट्रपति। और दूसरी बात, जब आप देश के इतने बड़े मुकाम पहुंचे ऐसे व्यक्ति से आप मिलते हो, तो उनका जो ऑरा है, उनका जो आभा मंडल है, उनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीति से आपके जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो वो नन्हे से बालक जो टीनेजर्स पे था, उसका असर उस बालक के दिल पे पड़ गया कि जीवन में श्रेष्ठ सफलता तभी हासिल की जा सकती है जब आप कुछ करते हो। तो लगभग लगभग मैंने मेरे स्कूलिंग डेज में 100 से ऊपर कैंप्स किए, जिसमें हमको हर चीज पढ़ाई जाती थी, मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम बेसिक डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। आप खाना कैसे पकाना चाहिए, आपका जो टेंट है वो कैसे सजाना चाहिए, ड्रिल एंड डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग। और वो हमारी जो एग्जाम थी वो इतनी हार्ड थी, जिसमें सबसे पहले राष्ट्रपति अवार्ड से पहले आपको राज्यपाल अवार्ड प्राप्त करना पड़ता है, वो कंडीशन थी उसकी। तो पहले मुझे जो है वो, तब हमारे राज्यपाल हुआ करते थे पीसी अलेक्जेंडर साहब, तो पहले मुझे राज्यपाल अवार्ड मिला। और जैसे आपको वो अवार्ड मिलता है देन यू आर क्वालिफाइड फॉर राष्ट्रपति अवार्ड। तो वो दोनों अवार्ड के बीच की जो कहानी थी वो बहुत डिफिकल्ट थी, क्योंकि पुणे में हमारे प्रेसिडेंट अवार्ड की एग्जाम हुई थी, और वहां पर जो एग्जामिनर जो लोग बैठे थे उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली वो एग्जाम ली। लेकिन उसके बाद जो हमारे प्रोफाइल में वो जो बात लग गई कि प्रेसिडेंशियल अवार्ड विनर, तो मेरे लाइफ पर उसका बहुत अच्छा गहरा प्रभाव पड़ा, और मेरे सारे जीवन में उसकी बहुत अच्छी गहराई और सफलता मुझे मिली। तो अर्ली डेज का किया हुआ जो कर्म रहता है वो लाइफ टाइम काम में आता है। अगर आपके जीवन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरे जीवन पर उसका असर अच्छा हो सकता है। इसलिए जब भी आप कोई कर्म करते हो तो उसका प्रभाव, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा।
0: जी सही कहा आपने, इसलिए बचपन से हम सभी को माँ बाप यही सिखाते हैं कि बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो और बुरा ना सुनो। और यहाँ पर हमें आध्यात्मिक मार्ग में ये सिखाते हैं कि बुरा ना सोचो, क्योंकि ये तीनों चीज़ों की शुरुआत होती है सोच से, देखना सुनना बोलना। अगर हम बुरा सोचना ही बंद कर देते हैं तो फिर बुरा देखना सुनना भी बंद हो जाता है। तो शिंदे जी, जैसे आपने एक लंबे अरसे की सक्सेसफुल लाइफ की लीड की आपने, कभी ऐसा हुआ आपके जीवन में कोई उतार चढ़ाव या फेल्यूर्स आए, आपने फिर उसको हैंडल करना पड़ा?
1: देखिए, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस।
0: हां जी।
1: और जैसे हम लोग देखते ना ईसीजी, जब हमारा ब्लड प्रेशर काउंट किया जाता है तो उसमें उतार चढ़ाव ही रहता है।
0: जी जी।
1: तो लाइफ इज लाइक दैट।
0: यस।
1: तब आप जब सोचते हो कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूं और बहुत अच्छा सफलता मुझे मिले, और दूर से जब किसी सफल व्यक्ति को लोग देखते हैं कि यार इसके जीवन में तो कितनी अच्छी ऊंचाई को छू रहा है, लेकिन अगर ऐसी कोई किताब रहती या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री बना सकता था कोई कि उसके लाइफ के दुख दर्द और उसने जो हार्डवर्क किया उसका अगर कोई फिल्म बना सकता था तो वो रियल फिल्म होती थी जीवन की। आमतौर पर क्या होता है, लोगों को सिर्फ सक्सेस स्टोरीज दिखती है, लेकिन सक्सेस स्टोरीज के पीछे वो जो हजारों रातें, मतलब थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स, जैसे अपन बोलते हैं ना कोई स्कॉर्पियो जब आपको काटता है तो कितना दर्द होता, तो वैसे एक सफल इंसान के पीछे इतने बार उसको तकलीफ होती है, लेकिन वो हर बार वो बाउंस बैक जो करना सीख जाता है। सफल और असफल इंसान में, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा। वो जो एक्स्ट्रा काम करता है, जैसे आमतौर पर जब मैं बिजनेस पे जाता था या जब मैं जॉब भी करता था, लोगों की जॉब की शुरुआत या बिजनेस की शुरुआत 10 बजे हुआ करती थी और मैं 7 बजे घर से निकल जाता था।
0: अच्छा।
1: तो 3 आवर्स बिफोर मेरा काम होता था।
0: जी।
1: जहां पर लोग 6 बजे काम बंद करते थे वहां पर मैं रात को 10 बजे काम करता था।
0: ओके।
1: तो वो जो एक्स्ट्रा माइल मेंटेलिटी जो होती है कि आपको जब लॉन्ग जर्नी करनी है या आपको अबव एवरेज जाना है तो अबव एवरेज आपको काम भी करना पड़ेगा। ये मेरे पढ़ने में ये बात आई थी कि अगर आपको अबव एवरेज जीवन करना है तो एवरेज लोग 10 से 6 काम करते हैं, तो आपको 6 से रात को 12 बजे तक काम करना पड़ेगा, तब आप अबव एवरेज जाएंगे। तो ऐसा मैंने लगभग मेरे 30 साल में, मुझे पता नहीं कि जिस दिन मैं रात को बेड पर सोता हूँ मेरे शरीर में दर्द ना हो। नो पेन नो गेन। अगर जिस दिन आपके शरीर में दर्द नहीं है, इसका मतलब वो दिन आपने काम किया ही नहीं। और लोगों को मैं, मतलब एक आम अवधारणा है कि हार्डवर्क का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज हम देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी कितना काम करते हैं, वो ट्रैवल करते हैं 4 घंटा 3 घंटा, वो सिर्फ फ्लाइट में सोते हैं, देश विदेश में घूमते हैं, तो ऐसे देश को चला नहीं रहे। वैसे एक इंसान जब अपने खुद के लाइफ को भी लीड कर रहा है, यू आर द CEO ऑफ योर लाइफ, आपसे मिलने के बाद आप किसी को कैसा इंप्रेशन देते हो, वो क्या आपको लाइफ टाइम ध्यान में रखेगा या आपको भूल जाएगा, ये 1-5 मिनट में आप उसको क्या इंप्रेशन दे रहे हो इस पर डिपेंड करता है। तो मैंने दीदी जब भी एक दिन का इस्तेमाल 24 घंटे जिसमें होते हैं उसका इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया, इतने लोगों से मैंने कनेक्टिविटी बनाई कि आज लोग मुझे बोलते कि तूने इतना सारा नेटवर्क कैसे बनाया। तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि मैं लोगों से मिलता हूँ, और मैं जब मैं किसी को मिलता हूँ तो उसमें मेरी अपनेपन की भावना होती है। तो ऐसे करते करते करते करते जिस फील्ड में काम किया उस फील्ड में एकदम 0 to टॉप मोस्ट लेवल, और जिस फील्ड में हमने काम किया उस फील्ड में पूरा ध्यान लगन और मनन से, मतलब R&D करके काम किया। मतलब कोई भी काम अगर आप एवरेजली करते हो तो लोग आपकी कदर नहीं करेंगे, लेकिन वही काम अगर आप रिसर्च करके करते हो और लोगों के सामने रिसर्च पब्लिश करते हो कि देखिए इसके पीछे ये चीजें हैं, तो लोग आपके पास में आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए नॉर्मल वैसे सफलता नहीं मिलेगी, हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं देश में, लेकिन अगर आपको उसके ऊपर जाना है तो आपको आपके अंदर से चीजें निकालनी पड़ेगी, आपका USP दिखाना पड़ेगा लोगों को कि आपके अंदर यूनिक कौन सी चीजें हैं। आप किसी के कॉपीकैट करके कभी भी बड़े व्यक्ति नहीं बन सकते।
0: नहीं बन सकते। जी सही बात है। सो शिंदे जी, आपने जीवन में इतनी सारी उतार चढ़ाव की जो एसेंस है उसको, जीवन के अनुभव को आप अपने आप के लिए एक शिक्षा बनाया, और वो शिक्षा को आपने याद रखा और अब मुश्किलों को भूल गए हैं और उससे आप आगे बढ़ते गए हैं। तो ये जर्नी कब शुरू हुआ कि जहाँ पे आपने स्कूल की व्यवस्था बनाई या स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट किया, जहाँ पर बिना किताबों का स्कूल चलता है?
1: मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि आपने इतने कम समय में जीवन की शुरुआत की और मेरा जीवन मोस्टली आध्यात्मिक रहा है। मुझे याद है कि मैं 16-17 साल से मैं बाहर मेरी एक बैग हर पे अटैची भर के रहती थी। तो मेरे जीवन का जब कोई चैप्टर लिखा जाएगा या जब मैं फ्यूचर में मेरी ऑटोबायोग्राफी बनेगी, उसमें सबसे बढ़िया पेजेस जो रहेंगे वो शिक्षा के रहने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शिक्षा ही वो जरिया है जिसके वजह से आप समाज की निर्मित या नव निर्माण आप कर सकते हो। फिर से इसकी भी कहानी है कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि भाई शिक्षा में ये इट वॉज नॉट रिटन इन माई पर्सनल गोल बुक कि मैं शिक्षा में आऊँगा या ऐसा कुछ काम करूँगा। जैसे गांधी जी को साउथ अफ्रीका में जब ट्रेन से धक्के मार के उतारा गया, निकाल दिया गया, तो नेगेटिव जो धारणा रहती है एक तो रहता है रिवेंजफुल एटीट्यूड या अभी के अभी मैं जवाब दे दूँ इनका। लेकिन गांधी जी ने क्या किया? तभी के तभी जवाब नहीं दिया। उन्होंने वहाँ से एक लेसन लिया, जैसे मुझे यहाँ पर नेगेटिवली इन लोगों ने ट्रीटमेंट दिया, मैं मेरे देश के लोगों को गुलामगिरी से मुक्त करूँगा। तो ऐसे मेरे जीवन में जब मेरी शादी हुई और मुझे मेरा जो बेटा, बड़ा बेटा एक स्कूल में पढ़ता था और वहाँ पर मैंने वहाँ का जो माहौल देखा, मुझे लगा कि इतने एडोलसेंस एज में बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। वो एक बात मेरे सबकॉन्शियस माइंड में गई, मैंने कहा इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि समाज में दो तरह के लोग हम देखते हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो या फिर उसमें आप कुछ कर सकते हो तो करके दिखाओ। वन डे आई वॉज सिटिंग इन माई ऑफिस, बहुत जोर से बारिश गिर रही थी बाहर, मैंने कहा क्या किया जाए। तो मेरे अंदर के अंदर आत्मा से मुझे आवाज़ आई कि शिक्षा में काम करने की ज़रूरत है, आप शिक्षा में काम करिए। उस आवाज़ को मैंने नहीं दबाया, उसको और उसकी जो अग्नि है प्रज्वलित की और मैंने मेरी एक डायरी निकाल के लिखना चालू किया कि आज के दौर में समाज में किस तरह के स्कूल की ज़रूरत है। इसमें सबसे पहले मैंने कुछ बातें लिखी, मैंने कहा इसमें नॉन कंपैरिजन एजुकेशन पॉलिसी आनी चाहिए। जब देखते हैं कि एक क्लास में 30-40 बच्चे पढ़ते तो कंपैरिजन होती है, तो बच्चों को कंपैरिजन पसंद नहीं है। एवरी चाइल्ड इज अ यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड, तो मैंने कहा कंपैरिजन नहीं चाहिए। दूसरा, इनके ऊपर प्रेशर नहीं चाहिए, ये जैसे है, क्योंकि एक बच्चा जो है वो उमलती हुई कली है, आप जितना उनको प्यार से प्रेम से पढ़ाएंगे उतना वो फुल बेहतरीन बनने वाला है, तो हम उन पर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। तीसरा, सेल्फ लर्निंग प्रोसेस हम लाएंगे, मतलब आप देखिए हर घर में बच्चों के पीछे माता पिता ऐसे डंडा लेके पढ़ते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो सिर्फ पढ़ाई करके बोलने से बच्चे लोग पढ़ाई नहीं करते, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे वो खुद होके पढ़ाई करने लगेंगे। और चौथा चीज़ हमने इंट्रोड्यूस की हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी, जिसमें हार्वर्ड गार्डनर ने एक थ्योरी इंट्रोड्यूस की, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का बेस हमने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि हर कोई मैथ में ठीक अच्छे नहीं है, हर कोई लैंग्वेज में अच्छे नहीं है, कोई म्यूजिक स्मार्ट है, कोई स्पोर्ट्स स्मार्ट है, कोई किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, किसी का मैथ अच्छा है, तो जिसमें जो चीज़ अच्छी है उसको वो चीज़ पढ़ने में आप प्रमोट करो। तो ये सारी अवधारणाएं हमने किताब इस पर लिखी और इसमें दो डिवाइड किया कि प्री प्राइमरी एजुकेशन अलग है और प्राइमरी अलग है, मतलब 3 से 6 साल का जो टाइम है ये अलग है। तो प्री स्कूल का अलग हमने एक सिलेबस डिज़ाइन किया और प्राइमरी का एक अलग डिज़ाइन किया, जो गवर्नमेंट के तरफ से नॉमिनेटेड सिलेबस रहता है। प्री स्कूल के लिए गवर्नमेंट का ऐसा कोई वो नहीं है बॉदरेशन, आप अपने हिसाब से पढ़ा सकते हैं। इसमें हम लोगों ने मॉन्टेसरी मेथड को इंट्रोड्यूस किया और आज मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि आज से लगभग 11 वर्ष पहले हमने जो वर्धा में पहली प्री स्कूल इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें नो स्कूल बैग और नो होमवर्क, एक बच्चा जब स्कूल में आता था वो सिर्फ अपना टिफिन लेके आता था और बाकी सारी की सारी शिक्षाएं हम लोग स्कूल में करते थे। और मुझे याद है कि सबसे पहले वर्धा में लोगों ने मुझे कहा था कि आपके स्कूल में होमवर्क नहीं है, किताबें नहीं है, फिर भी शिक्षा कैसी होगी? तो उसका जवाब मैंने दिया कि आप एक साल आप हम पर ट्रस्ट करके देखिए। और दूसरे वर्ष से मुझे जो रिस्पॉन्स मिला वो इतना बढ़िया मिला, 10 एडमिशन की मल्टीपल एडमिशंस, और आज हम लोग वर्धा में टोटल 5 स्कूल चला रहे हैं, जिसमें 4 प्री स्कूल है और एक बड़ी स्कूल है CBSE, जिसमें 1st to 12th तक के बच्चे पढ़ रहे हैं।
0: ये बात तो अच्छा है कि आपको प्रेरणा मिली शिक्षा के जगत में काम करने की, लेकिन जब स्कूल में किताबें नहीं लेके आते हैं तो बच्चे पढ़ते क्या है?
1: ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, हमारे प्राचीन गुरुकुल पद्धति में जब शिक्षाएं होती थी, आपको क्या लगता है, तब के बच्चे किताबें लेके आते थे क्या?
0: बात तो सही है।
1: अरे हमारे देश में हमने जीरो दिया वर्ल्ड को हमारे ऋषि मुनियों ने,
0: यस।
1: क्वांटम फिजिक्स दिया हमारे ऋषि मुनियों ने,
0: यस।
1: हवाई जहाज दिया हमारे ऋषि मुनियों ने। अब हुआ ये कि यहाँ से हमारी चीजें पाश्चिमात्य देश में चली गई और उन्होंने उसको ब्यूटीफुली पैकिंग करके हमारे सामने पेश की, और 150 वर्ष हमारे देश में जो अंग्रेजों का राज चला उसमें हम लोगों का जो माइंडसेट है वो चेंज हो गया पूरा। तो हमारी गुरुकुल पद्धति पर जो अंग्रेजों ने सबसे पहले ये जो खत्म कर दिया, उनको पता था कि आप भारतीय लोगों पर कभी राज नहीं कर सकते जब तक आप इनकी शिक्षा पद्धति नहीं चलाएंगे। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि तब भारत वर्ष में 118,000 गुरुकुल थे, मतलब जितने गांव थे उतने गुरुकुल थे, और इस गुरुकुल में क्या नहीं पढ़ाया जाता था, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, मतलब ये एटॉमिक्स के सारे सब्जेक्ट, एस्ट्रोलॉजी, क्या नहीं पढ़ाया जाता था। हमारे शरीर के भीतर जितने सारे केंद्र बिंदु है, मूलाधार से लेके स्वादिष्टान और सहस्त्रार तक, ये सारा इनके माध्यम से, योग के माध्यम से उनको ये सारा पढ़ाया जाता था, मेडिटेशन का आधार लिया जाता था। धन्वंतरी शास्त्र जो है, हमारे सुश्रुत जो है सबसे पहले सर्जन होकर गए, सर्जरी के वो सबसे बड़े मास्टर थे। तो ये सारी पद्धतियां तब, तो तब कोई किताबें नहीं थी,
0: सही बात,
1: तब किताबें नहीं थी, तब शब्द से उनको ज्ञान दिया जाता था, स्पर्श से सिखाया जाता था। तो हमने यही चीज इंट्रोड्यूस की स्कूल में, और ये चीज मुझे बताते हुए बड़े हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने सेंसोरियल वे से बच्चों को पढ़ाया। अब सेंसोरियल में कितने सेंसेस है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 सेंसेस है। तो शब्द से हम पढ़ाते हैं, सेंसोरियल मतलब स्मेल से हम लोग, हमारे पास स्मेलिंग की एक्टिविटीज है, टच की एक्टिविटी है। अब एक बच्चे को जब सैंड पेपर पे आप ए पढ़ाते हो, ए पढ़ाते हो दो उंगली के माध्यम से, दिस इज ए, तो ये जो दो उंगली से जो बच्चा ट्रेसिंग पेपर पे ए करता है ना, लाइफ टाइम उसके दिमाग में मेमोरी प्रिंट हो जाती है। ऐसे हम लोग उनको स्मॉल ए टू सेड पढ़ाते हैं, और ऐसे हम लोग उनको कर्सिव भी पढ़ाते हैं, ये सैंड पेपर पे पढ़ाते हैं। तो ये सेंसोरियल ऑर्गन जो है ना, ये सबसे बड़े कारीगर साबित होते हैं। और अध्यात्म भी यहाँ कहा गया है कि अगर आपने आपके कर्मेंद्रियों पर अगर काबू कर लिया तो आपको बुद्धत्व प्राप्त हो सकते हैं। इसी तरह से अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों को सेंसोरियल के थ्रू एजुकेशन देंगे, तो वो बच्चा कल का एक बहुत बड़ा जिम्मेदार नागरिक भी बनेगा और प्रबुद्ध भी बनेगा। हर क्षेत्र में उसकी एक वैल्यू रहेगी, और वो जहां पर जो काम करेगा उसका इनर नॉलेज रहेगा।
0: जी सर, ये जो आप बात कह रहे हैं, ये बातें तो मॉन्टेसरी स्कूल में, जो प्राइमरी स्कूल में जब बच्चा आता है उस समय ये सभी चीज़ें मीनिंगफुल रहता है, और समझ सकते हैं कि ये बेसिक एजुकेशन जो हम उसको दे रहे हैं वो सिर्फ रट करके आगे बढ़ने की बात नहीं, लेकिन वो सेंसेस के द्वारा समझ के करने की बात है। लेकिन क्या जब बच्चा बड़ा होता है, जब 12वीं कक्षा तक पढ़ता है आपके स्कूल में, तब भी यही बिना किताबों का होता है, या फिर उस समय तो फिर आप, वो जर्नी कैसी है?
1: ये भी अगेन इट्स अ वेरी माइलस्टोन क्वेश्चन। देखिए, 3 से 6 साल का जो एजुकेशन है वो इनफॉर्मल एजुकेशन है, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, इसमें चॉक्स भी नहीं है, बुक्स भी नहीं है, बोर्ड भी नहीं है, किताब भी नहीं है, फिर भी पढ़ाई है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वी प्रिपेयर अवर स्टूडेंट्स फॉर स्टैंडर्ड फर्स्ट। अब देखिए, जितने भी गवर्नमेंट के सिलेबस है वो फर्स्ट से चालू होते हैं। अब फर्स्ट से चालू होता है उसका फॉर्मल एजुकेशन। तो हम लोगों ने स्कूल में ऐसा सिस्टम बनाया कि सारे उनके अलग अलग ये बनाए कबर्ड्स, जहां पर उनका सारे बुक्स रखते हैं हम लोग। किताबें साल में एक बार स्कूल में लेकर आ जाते हैं, प्रॉपरली उनका नेम और उनका सारा किताब पर लिखा जाता है और एक जगह उनके रखे जाते हैं। डेली उनके पास में हम लोग सिर्फ 2 बुक्स देते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने ये भी बात बोली है कि आप बच्चों का स्कूल बैग का जो वेट
0: है
1: कम करिए, इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है? आप देखिए दीदी, पिछले कई सालों में बच्चों को, अभी जो सीनियर बन रहे, सर्वाइकल के प्रॉब्लम आ रहे हैं, स्पॉन्डिलेसिस के प्रॉब्लम आ रहे हैं, जॉइंट्स के प्रॉब्लम आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस हैवी स्कूल बैग। अच्छा, गवर्नमेंट ने इसका जीआर भी निकाला है, लेकिन इम्प्लीमेंट कितने लोग करते हैं ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हम लोगों ने जेन्युइनली उसको इम्प्लीमेंट किया, स्कूल में सारे बुक्स रखे और एक ऐसा टाइम टेबल बनाया जिसमें लैंग्वेज भी हो, साइंस भी पढ़े, मैथ्स भी पढ़े और हफ्ते में 2 दिन बुक्स घर पे जाए। पेरेंट्स को भी हम लोग फर्स्ट डे पेरेंट्स मीटिंग लेके समझाते हैं हमारा पढ़ाने का तरीका यह है। दूसरी बात, किसी विधि को जब आप क्लासरूम में समझाते हो तो वो विधि बच्चे भूल सकते हैं, लेकिन यही विधि जब वो करके देखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, अगर मैंने आपको चाय की विधि कैसे करना ये अगर थ्योरी में लिख कर दिया और वही आपको कहा कि चाय ऐसी बनती है, तो प्रैक्टिकल करने के बाद आप चाय बनाना कभी नहीं भूलेंगे।
0: जी
1: ठीक है। हमारे बच्चों को ये बात पता नहीं कि हम एक जमाने में हम लोग चूल्हे पे खाना पकाते थे।
0: जी
1: हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग में ये पढ़ाते हैं स्कूल में बच्चों को। दीदी बच्चों को हमने सलाद कटिंग से लेके रॉ फूड क्या होता है, फिर त्योहारों के साथ में जैसे राखी आती है उसके साथ में हमारा क्या सिलेबस है, पोला आता है उसके साथ में क्या है, दिवाली है तो उसके साथ में क्या है, इसका पूरा एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मॉडल बनाया। लैंग्वेज में एक लेसन है जैसे बकरी की शादी, हिंदी का लेसन है। एक्चुअल उस दिन बकरी की शादी होती है स्कूल में।
0: अच्छा।
1: बच्चे लोग मस्त कपड़े पहन के आते हैं, मिठाइयां लाते हैं, शादी लगाते हैं और उसके बाद सेकंड डे उस टॉपिक पर उनकी टेस्ट होती है, ओरल एंड रिटन।
0: ओके।
1: दीदी आप सुन के हैरान रहेंगे, बच्चे लोग इतने बढ़िया तरीके से लिखते हैं, इतना बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। ये वातावरण हमने स्कूल में बनाया। ये जानकर आप हैरान होंगे कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं अभी। और बच्चों को ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। असली शिक्षा जो चालू होती है, मतलब जिसको हम कह सकते हैं जिसको थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है, वो होता है 7th स्टैंडर्ड। बस वहां से हम लोग थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चालू, लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग वे हम लोग कभी नहीं छोड़ते, एक्सपीरियंस देके ही पढ़ाते।
0: तो फिर 7वीं कक्षा के बाद स्कूल में बुक्स लेके जाते हैं।
1: अभी हम लोगों का स्कूल जो है वो नर्सरी से चालू हुआ था, अभी हम लोग नेचुरली 6th स्टैंडर्ड तक पहुंच गए।
0: ओके।
1: अभी हर साल एक एक क्लास ऐड होती जाएगी।
0: आपने जो कहा कि वो 12वीं कक्षा तक आपका
1: परमिशन गवर्नमेंट की 12th तक आ गई है।
0: ओके।
1: लेकिन हमारे जो स्टूडेंट वो नेचुरली एक एक क्लास
0: अपग्रेड करते जा रहे हैं।
1: जी।
0: ओके। वेरी नाइस, वंडरफुल सर। सो जिस तरीके से आपने ये शिक्षा पद्धति को इंट्रोड्यूस किया है, तो कहाँ से आपने ये आइडिया लिया कि हमें इस तरीके से पढ़ाना चाहिए? और जब आप एक कन्वेंशन स्कूल से एक अलग तरीके से हटके पढ़ाते हैं, तो फिर पेरेंट्स की सपोर्ट कैसे रही, समाज में आपके लिए सपोर्ट कितना मिला और कहीं पे आपको कॉन्फ्लिक्ट्स या इस तरीके से सामना करना नहीं पड़ा?
1: नहीं, आप देखिए, आप किसी के बच्चे को जब आप इस तरह से पढ़ाते हैं तो हमको समाज से इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला
0: जी।
1: और कुछ स्कूलों ने फिर हमको फॉलो करना भी चालू किया कि इस तरीके से अगर हम पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो जहाँ तक सवाल है, पेरेंट्स का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया कि यस इसी डायरेक्शन में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आपने एक सवाल मुझे पूछा कि भाई आपने ये कहाँ से किया, तो सबसे पहली बात तो यही है कि हम लोग सिर्फ रूटीन्स पर चलते हैं या जिस तरीके से सारी बातें चल रही है उसी बातों पर हम लोग कदम रख के आगे बढ़ते हैं। हमने ऐसा नहीं किया, हम लोगों ने एक एक स्टैंडर्ड में R&D की हमारी खुद की, एक एक सब्जेक्ट की R&D की, ये टॉपिक बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग वे में कैसे पढ़ाना चाहिए। तो इसके लिए हमने कुछ बातें की, वो मैं बताना चाहता
0: हूँ। जी जी जी।
1: वो बात में सबसे पहले नंबर की बात है कि हम लोगों ने एक थिंक टैंक का कल्चर इंट्रोड्यूस किया टीचर्स के लिए, और एक स्कूल में हमारा एक जर्नल रखा है जिसमें डेली टीचर को एक क्रिएटिव आइडिया नोट डाउन करना है सब्जेक्ट को लेके। अब उसका असर यह हुआ कि 250 डेज में 250 आइडियाज आ गए हमारे पास।
0: जी।
1: दूसरा, एवरी टीचर को साल में 2 एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज उनकी सब्जेक्ट की कंपलसरी बनाना हमारे स्कूल में मैंडेटरी है, और वो उन्होंने अपना रिसर्च करके सबमिट करने विद थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, वो आना चालू हो गई। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो मॉड्यूल है स्कूल का वो हर साल अपग्रेड होता गया, और हर साल नई नई एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज आती गई सब्जेक्ट्स को लेके, और नया नया आते गया, और इससे हमारा सिलेबस बहुत अच्छे प्रॉपरली डिजाइन।
0: मतलब अगर आप सीबीएसई बोर्ड को फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन उसी सिलेबस को कैसे आप एक्सपीरियंशियल तरीके से बना सकते हैं, बच्चों को प्रैक्टिकली समझ में आए, घर जाने के बाद उनको होमवर्क के बोझ से फिर वो पढ़ाई के प्रति जो रुचि है या रुझान है उसमें कमज़ोरी ना कम ना हो, उसके ऊपर आपने ये बहुत अच्छा ध्यान रखा है। जब आप एजुकेशन फील्ड में हैं और आज के समय में भारत में देखा जाए तो एजुकेशन एक बिजनेस बन गया है, तो इस चीज़ का बैलेंस कैसे करते हैं आप?
1: ये देखिए, संसाधन करने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है। बीच में कोरोना भी आ गया था और उस वक्त लोगों के पास में पैसे नहीं थे, तो सबसे पहले स्कूल किसने ओपन करना चाहिए और किसने नहीं ओपन करना चाहिए, यह सवाल आना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है, शिक्षा ये व्यवसाय हो ही नहीं सकता, ये वो पवित्र काम है विद्यादान का। ऐसा माना गया है कि तीन जो क्षेत्र है वो स्वयं परमात्मा ने बनाए, जिसमें पहला है डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को एंजल्स ऑफ गॉड कहा गया है, कि जब किसी पेशेंट को बीमारी आती है तो बोलते कि अब भगवान, तो आप भगवान आप ही हो सब कुछ। दूसरा जुडिशरी, जब कोई न्यायाधीश के कुर्सी पे बैठ जाता है तो उनको भी हम भगवान के रूप में देखते हैं, क्योंकि पहले उनके आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी कि भाई न्याय देवता है, तो वो भी जो प्रोफेशन है वो गॉड्स का प्रोफेशन है। और तीसरा शिक्षा का, क्योंकि एक पीढ़ी को अगर गलत दिशा में पढ़ाया जाए, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं मैं कि अगर आप टू व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हो और गाड़ी चलाने वाले में फॉल्ट है तो दो तीन लोगों की जान जा सकती है। अगर आप फोर व्हीलर चला रहे हो और उसको अच्छे से फोर व्हीलर नहीं चला रहे तो चार लोगों की, पांच लोगों की लाइफ खतरे में है। अगर आप हवाई जहाज चला रहे हो तो 300 लोगों की जान खतरे में है। और अगर आप एक टीचर हो और वो भी अगर आपके भीतर वो टीचर को पढ़ाने की अगर खूबियां नहीं है और बच्चों को आपने रॉन्ग वे में पढ़ाया तो पीढ़ियों का नुकसान हो सकता है, पीढ़ियों का,
0: देश का भविष्य भी है।
1: इसीलिए अब्दुल कलाम जी ने उनकी किताब में लिखी ये बात, सिर्फ और सिर्फ उच्च जिनके भीतर प्रतिभा है ऐसे ही व्यक्तियों ने टीचर बनना चाहिए। और दूसरी वे में अगर ये बात मैं आपको कहूं, सिर्फ और सिर्फ अच्छे विचारधारा, उच्च मानसिकता और आध्यात्मिकता के, जिन्होंने अपने जीवन का मूल्य आध्यात्मिकता के ऊपर पूरी विचारधाराएं बनाई, ऐसे लोगों ने स्कूल का निर्माण करना चाहिए। स्कूल ये व्यवसाय हो ही नहीं सकता। और ऐसे स्कूलों से जो बच्चे बाहर निकलते वो आप देखेंगे कि वो भविष्य खतरे में है। वो बच्चों को सिर्फ यांत्रिक की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, वो अंदर से नर्चर्ड नहीं है। इसलिए शिक्षा का पूर्ण आधार जो है वो विद्यालय होता है, और विद्यालय जो होना चाहिए वो आत्म संशोधन का केंद्र बिंदु होना चाहिए, जहाँ पर अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग बच्चों को तैयार करना चाहिए। और एक शिक्षक पूर्ण रूपे न वहाँ पर समर्पित भाव से, ना कि सैलरी के लिए, ना कि धन के लिए, समर्पित भाव से। और ऐसे चीज़ों पर हमने बहुत काम किया, मैंने खुद अभी तक हजारों वर्कशॉप की टीचर्स पर जी। अगर मैं सिर्फ टीचर्स ट्रेनिंग पे बात करूं तो मैं पूरा दिन बात कर सकता हूं। एक अध्यापक कैसे होना चाहिए, एक टीचर कैसे होना चाहिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए
0: जी।
1: तो मेरा ऐसा मानना है इसमें संतुलन होना चाहिए, जितना आपको लगता है उतना फीस लीजिए, जितना खर्चा उतना खर्चा कीजिए, आपके टीचर्स को भी अच्छे से तनख्वाह दीजिए और बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाइए।
0: बहुत सुंदर सर। अभी हम कार्यक्रम की अंत की ओर पहुंचे हैं, हम एक छोटा सा गेम खेलना चाहते हैं आपके साथ, एक रैपिड राउंड, जहां पे जो एक शब्द के सवाल है उसका भी हम एक शब्द या फिर एक वाक्य में आप उस चीज का जवाब दें। सेवा क्या है?
1: समर्पण, आत्मसमर्पण, पूर्ण रूपे
0: जी। भारत क्या है?
1: संस्कृति
0: जी। बहुत सुंदर। शिक्षा क्या है?
1: शिक्षा की परिभाषा मैं एक लाइन में बताना चाहता हूँ
0: जी।
1: एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन.
0: वंडरफुल, बहुत सुंदर. पेरेंट्स का रोल क्या है?
1: गाइड. एक पेरेंट अपने बच्चों को अगर गाइड करते रहेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक गंतव्य तक पहुंच जाएगा.
0: जी.
1: डोंट इंटरफेयर इन देयर लाइफ.
0: जी. विद्यालय.
1: आत्म संशोधन का केंद्र. हु एम आई, मैं कौन हूँ.
0: जी, बहुत सुंदर. समीर शिंदे जी कौन है?
1: आई बिलीव ऑन क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी का मतलब है टू क्रिएट एक्टिविटी. आई ऑलवेज क्रिएट समथिंग फॉर द सोसाइटी, इन वन लाइन.
0: बहुत सुंदर सर. आपकी इतनी जीवन की उपलब्धियां और इतनी व्यस्ततम समय से आपने बहुत अमूल्य समय लेकर के आज यहाँ पर आए हैं. आध्यात्मिकता से जुड़ने का आपने एक प्रयास किया है, तो शिक्षा का, अध्यात्म का, विद्यालय का क्या कनेक्शन है?
1: बहुत बड़ा गहरा कनेक्शन है. शिक्षा, अध्यात्म और विद्यालय, तो ये ट्रायंगल आपने बनाया. दूसरा ट्रायंगल हमने भी बनाया, टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट.
0: जी.
1: तो शिक्षा का मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा.
0: जी.
1: जितनी बार उसको पढ़ाएंगे उतनी बार उसके जीवन का अंधकार नष्ट होगा. अध्यात्म का मतलब है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है.
0: जी.
1: और विद्यालय का रोल जो है इन सब बातों का संतुलन बनाए रखना. ये तीनों बिंदु अगर आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो ये कनेक्टिंग डॉट बन सकता है.
0: जी.
1: जैसे रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद जी को बनाया, वैसे ही जैसे अब्दुल कलाम जी ने उनके नारायण मूर्ति जो शिक्षक थे चौथी कक्षा में, जैसे एक राष्ट्रपति को बनाया, वैसे हर स्कूल से एक देश का राष्ट्रपति निकल सकता है, एक देश का पंत प्रधान निकल सकता है, एक देश का सरपंच निकल सकता है और एक देश का समाज सेवक निकल सकता है. तो तीनों के केंद्र बिंदु, उसके जीवन में समन्वय संतुलन अगर साधना हो तो ये कनेक्टिंग डॉट करना ही होगा. और इसमें सबसे ज्यादा आज के दौर में दो चीजें बताना चाहूंगा मैं. बच्चे का स्पिरिचुअल क्वेश्चन पावरफुल होना चाहिए और बच्चे का इमोशनल क्वेश्चन पावरफुल होना चाहिए.
0: जी.
1: बाकी चीजें ऑटोमेटिक आ जाए.
0: बहुत सुंदर सर. व्यक्तिगत रूप से आप अपने आप को आध्यात्मिकता से कैसे जोड़ते हैं?
1: हमारे भारत में विदेश से लोग आते हैं अध्यात्म सीखने के लिए.
0: सही बात है.
1: और आज ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हमने हमारे देश की संस्कृति को और अध्यात्म कैसे पकड़ के रखना चाहिए. उन लोगों ने हमारे यहाँ पर अगर पीएचडी की और हु एम आई को भी देखा, आत्म साक्षात्कार भी किया. मैंने अपने आप को ये सब करते वक्त एक ही चीज देखी कि जब हम किसी के सामने आते हैं तो हमारा ओरा बात करता है, ना कि आपकी जब मुख से आप बात करते हैं. और आपका ओरा तब बनता है जब आप गहरी ध्यान में डुबकी लगाकर बाहर आते हो. और वो गहरा ध्यान तब लग सकता है जब आप ईश्वर के साथ में कनेक्शन बनाते हैं. क्योंकि परापश्यन्ति मध्यमा और वैखरी वाणी के चार प्रकार जो है, जिसमें परावाणी ईश्वर की वाणी बोली गई. परावाणी में इंसान का शब्द नहीं चलता है, तो वैखरी से कंठ से वो बात करता है, लेकिन परा की जो वाणी है वो ईश्वर की है. तो परावाणी प्राप्त करना है आपको, ईश्वर के साथ में कनेक्शन बना के रखना पड़ेगा. तो ऐसा कहा गया है कि पावर ऑफ एसोसिएशन, आप जैसा एसोसिएशन करेंगे वैसे आप बनते जाते हो. अगर आप निरंतर ईश्वर के साथ सानिध्य बना के रखते हो तो धीरे धीरे धीरे वो ईश्वर तुमको समहाउ किसी ना किसी से मिलाते रहेगा, किसी ना किसी से ज्ञान देता रहेगा, और कभी कभी वो डायरेक्टली आपसे बात भी करेगा. वो जो बात करता है वो वाइब्रेशन से बात करता है, और उसकी अनुभूति मैंने ली है. और शिक्षा में मैंने जो भी आज काम किए हैं वो किसी कॉपी नहीं की है. परमात्मा ने मुझे जो भी उसके बारे में ज्ञान देते थे वैसा वैसा मैं करते गया. तो इन शॉर्ट, विदाउट स्पिरिचुअलिटी आप कुछ भी नहीं कर सकते. ईश्वर से संबंध बना के रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट.
0: बहुत सुंदर सर. इसी मैसेज के साथ आज के इस कार्यक्रम को भी हम यहाँ पे विराम करते हैं. आप इतने बहुमूल्य समय लेकर के हमारे बीच में आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: थैंक यू
0: सो मच। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे समीर शिंदे जी को। आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, बिजनेसमैन भी हैं और यूनिवर्सल पीस एम्बेसडर भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे उपलब्धियों के धनी समीर शिंदे जी को आपने अभी तक सुना है। तो ऐसे ही अनुभवों को आप सुनते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे रेडियो मधुबन 107.8।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: बस सरिता, मैंने कहा ना एक बार, तुम दोनों हमारे साथ चल रहे हो, बस बात खत्म।
2: हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो। यहाँ अब ना कोई सहारा है, ना कोई सिक्योरिटी। एक तो जमाना ऐसा है, ये रोज अखबार में क्या क्या सुनते हैं।
1: और नहीं तो क्या, अभी पति गया है और ये अकेली औरत शहर में। उधर गांव के लोग क्या कह रहे हैं, बात मत पूछो।
3: दीदी, रोहन का कॉल आया है, आपसे अभी बात करनी है उसे।
4: अच्छा। हाँ रोहन बेटा, सब ठीक है?
5: दीदी, मामा और दादी घर पे सारा सामान पैक कर रहे हैं।
4: क्या, ऐसा क्यों?
5: वो कह रहे हैं कि अब पापा ही नहीं रहे तो हम उनके बिना अकेले यहाँ कैसे रहेंगे, इसीलिए दादी के साथ गांव जा रहे हैं। मेरा एडमिशन भी गांव के स्कूल में ही करवा रहे हैं।
4: अरे, हम हैं ना आपके साथ।
5: हाँ, लेकिन दादी तो मानती ही नहीं है और मम्मी भी कुछ नहीं बोल रही हैं।
4: ठीक है रोहन, तू चिंता मत कर, मैं अभी आ रही हूँ।

0: पर अभी ऐसे अचानक सब कुछ छोड़कर छोड़ना ही पड़ेगा। ना आदमी रहा ना सहारा, अब यहाँ किसके सहारे रुकेंगे? गांव चलो, घर किराए पे दे देंगे, दुकान भी आगे चल के बेचेंगे।
1: हाँ, वहाँ सब जान पहचान वाले हैं और रोहन का भी देखभाल अच्छे से हो जाएगा।
0: सरिता, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ।
2: ओम शांति। किस बात की तैयारी चल रही है
0: बहन जी? अब ये दोनों यहाँ नहीं रहेंगे, हम इन्हें अपने साथ लेके जा रहे हैं। अब बहू अकेली क्या करेगी यहाँ?
2: अकेली क्यों, भगवान है ना साथ में।
0: हाँ हाँ, भगवान साथ होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज के जमाने में घर का राशन पानी, रोहन का पढ़ाई का खर्चा, ये सब अकेली कैसे संभल पाएगी ये?
2: इसका मतलब आप भगवान से अभी भी नाराज हैं? लेकिन विश्वास रखिए, परमात्मा की याद में ही जीवन की हर समस्या का समाधान है।
0: हाँ तो बोल दो आपके भगवान को, ला दे मेरे बेटे को वापस।
2: माता जी शांत हो जाइए, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। जो चला गया उन्हें तो अब हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन समस्या से भागकर उसका हल भी तो नहीं मिलता ना।
1: हम कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहते, साथ में रहेंगे तो हमें भी चिंता नहीं रहेगी।
0: यहाँ ये अकेली एक औरत मतलब कर भी क्या सकती है?
1: हम गांव चले जाएंगे और दुकान किराए पे दे देंगे, इससे इनका भी खर्चा निकल आएगा।
2: आपका कहना है कि क्या सिर्फ पुरुष ही सहारा है? आज के समय में महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे हैं, अपना जॉब भी कर रही है, घर भी संभाल रही है।
3: वही तो, मेरे फ्रेंड की मम्मी भी तो दुकान चलाती हैं।
1: लेकिन सरिता को तो इतना अनुभव नहीं है ना।
2: जब जिम्मेवारियां आती है तो इंसान खुद ही सब कुछ सीख जाता है, और सरिता जी तो फिर भी पढ़ी लिखी है, वो गांव में जाकर करेगी भी क्या?

0: यहाँ रहेगी तो अपना साड़ी का दुकान चलाएगी।
1: हाँ, बात तो आपकी सही है, हम भी भला कब तक साथ दे पाएंगे, लेकिन ये हिम्मत रखे तब ना।
0: क्या आपने महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी की जीवन कहानी सुनी है?
2: जो हमारे प्रेसिडेंट है उनकी कहानी?
0: हाँ, उनकी जीवन कहानी।
2: हाँ, मैंने न्यूज में देखा था, वो उड़ीसा के एक छोटे से गांव की आदिवासी समाज की साधारण सी महिला हैं, लेकिन आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं।
0: हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, वो आज जिस पद पर है वहाँ वो ऐसे ही नहीं पहुँचे हैं। उनका जीवन भी बहुत संघर्ष वाला रहा है। उन्होंने भी जैसे अपना सब कुछ खो दिया था, पहले अपने दो जवान बेटे और फिर अपना पति, क्या गुजरी होंगी उनके ऊपर। लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और आज वो हमारे देश के सबसे बड़े पद को संभाल रहे हैं। तो एक घर परिवार संभालना क्या बड़ी बात है।
1: आपकी बातें सब ठीक है, लेकिन इसमें उतनी हिम्मत होनी चाहिए।
3: हाँ दीदी, मेरे अंदर अब बात ही नहीं रही।
0: हाँ जी बिल्कुल, उनका भी कुछ ऐसा हुआ था, वो भी अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। लेकिन उन्होंने कई बार अपने अनुभव में सुनाया है कैसे परमात्मा से योग लगाकर उन्होंने खुद को अबला से सबला, शक्ति से शिव शक्ति संपन्न बनाया।
2: क्या ये राजयोग मैं और मम्मी भी सीख सकते हैं? पापा भी तो यही चाहते थे ना।
0: जी जी, क्यों नहीं, ये तो हर किसी को सीखना चाहिए। राजयोग माना ईश्वर से अपना मन और बुद्धि को जोड़ना, जिससे जीवन के हर कठिन परिस्थिति में फिर से खड़ा होने के लिए शक्ति मिलती है।
3: दीदी, हम जरूर सीखेंगे उसे, मैं भी अब हार नहीं मानूंगी। वैसे भी रोहन के पापा के साथ कई बार दुकान जाती थी, अब मैं भी धीरे धीरे सब संभाल लूंगी।
1: लेकिन लोग क्या कहेंगे, अभी अभी पति मरा है और ये औरत दुकान चला रही है।
0: ऐसा क्यों, स्त्री हो या पुरुष, ये शरीर तो सिर्फ वस्त्र मात्र है, हम तो सब एक शक्ति स्वरूप आत्माएं हैं और पिता परमात्मा हमारे साथ है, तो डरने की क्या बात है।
3: हाँ जी दीदी, मैं समझ गई, अब मैं डर कर नहीं हिम्मत के साथ जीऊंगी, दुकान संभालूंगी और रोहन को यही पढ़ाऊंगी।
1: क्या आप गारंटी लेती है कि ये अकेली सब कर लेंगे?
0: सिर्फ मेरी गारंटी नहीं माता जी, स्वयं भगवान की गारंटी है, जिसके साथ ही है भगवान उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान।
2: ये हुई ना बात, दीदी आपने तो सबकी सोच ही बदल दी।
4: दीदी आप बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन हमारे गांव में ऐसा कोई सेंटर ही नहीं है। क्या आप वहाँ पे आकर के ये बातें सिखा सकते हैं क्या? बहुतों की सोच बदल जाएगी।
0: क्यों नहीं, आपके गांव में भी हम 7 दिन का राजयोग कोर्स शुरू करेंगे। हमारी सोच बदलती है तभी तो हमारी जिंदगी बदल जाती है।
4: मैं जाकर सब तैयारी करता हूँ, पहले सिर्फ सरिता के लिए सोचता था, अब समझ गया पूरा गांव बदल सकता है।
1: बहन जी, आपका कैसे शुक्रिया करे समझ नहीं आ रहा है, न कोई रिश्ता, न कोई नाता, न कोई स्वार्थ, फिर भी आपने इतना प्यार से समझाया, अब तो मैंने भी ठान लिया है, अब कुछ दिन यही रहूंगी और आपसे ये राजयोग सीख कर ही गाँव जाऊंगी।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी कुछ दिन आपका साथ मिलेगा।
5: आज की नारी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं निभा रही, वो अपने जीवन की दिशा भी खुद तय कर रही है। लेकिन याद रखिए, नारी या पुरुष होना सिर्फ शरीर रूपी वेश है, हम सभी पहले आत्मा हैं, न कि सिर्फ शरीर। आत्मा जो शक्तिशाली है, अजर है, अमर है। आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता और ये आत्मा उस परमात्मा की संतान है जो स्वयं शक्तियों का सागर है। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तब हम इस आत्मबल को फिर से जागृत कर सकते हैं। यही आत्मबल आज की हर स्त्री को सीमाओं से ऊपर उठने की ताकत देता है। यही राजयोग है। राजयोग कोई कर्मकांड नहीं, ये एक आत्मा परमात्मा मिलन की शुद्ध अनुभूति है। ये एक जीवन जीने की सच्ची कला है।

0: चांद मिश्रा, आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहें, सुनाते रहें, जन जन तक प्यार बरसाते रहें।
1: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। शास्त्र अनुसार विधिवत नियम और कठिन अनुशासन मानकर संगीत परिवेशन करना ही शास्त्रीय संगीत है। जैसे कि ध्रुपद, धामर, ख्याल इत्यादि शैली इस शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत होते हैं। साधारण श्रोता में अल्पज्ञ संगीत धारणा होती है तो इसमें सहजता से प्रविष्ट नहीं कर सकते। इसके लिए कठिन साधना की जरूरत है, तब सफलता अनिवार्य मिल सकती है। तो आइए शास्त्रीय संगीत के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हर बार की तरह मौजूद है हमारे साथ श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: हाँ, जितने सारे संगीत प्रेमी हैं, विद्यार्थी हैं, सबको मैं नमस्कार करती हूँ।
1: श्यामली जी, हमने आज शास्त्रीय संगीत के बारे में कुछ जानकारी दी, शास्त्रीय संगीत की और महिमा में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: हाँ, शास्त्रीय संगीत जैसे हमारा नींव है,
1: नींव है
2: घर की, जो नींव होता है, या बचपन में जब बच्चे बड़े होते हैं, माता पिता उसको जब पहले शिक्षा देते हैं, माता पिता गुरु है, उसके बाद जब शिक्षा लेते हैं तो वो नींव हो गया ना, उसी संस्कार बैठ जाते हैं। वो जैसे जितना सुंदर संस्कार, जितना सुंदर शिक्षा मिलते हैं, वो उसको अंदर बैठ जाते हैं, उसी से वो बाकी जिंदगी में सफलता लाते हैं।
1: बचपन में माता पिता के द्वारा मिले हुए संस्कार इतने पक्के हो जाते हैं जो जीवन भर काम आते हैं।
2: इसलिए तो उनका तो उत्तरदायित्व है ही माता पिता की। तो कोई भी बच्चे अगर उस टाइम में नींव को मजबूत कर लेते हैं तो बाकी जिंदगी में सफलता तो अनिवार्य होते हैं।
1: वैसे संगीत में भी शास्त्रीय संगीत,
2: संगीत में भी शास्त्रीय संगीत ऐसी है जिसको हाथ पकड़ के कोई भी संगीत प्रेमी चल सकता है। संगीत शिक्षा देने में या करने में सफलता मिलते है उसको। ठीक है,
1: तो माना शास्त्रीय संगीत सीखना अनिवार्य हो जाता है।
2: अनिवार्य है, जैसे बचपन में ओ आ ई ई अगर नहीं सीखेंगे
1: तो शब्द कैसे आएंगे, वाक्य कैसे बनेंगे।
2: कोई भी शिक्षा में तो ये तो पहले तो है ही, प्राइमरी जो सेशन होता है वो तो चाहिए ही चाहिए ना। ये शास्त्रीय संगीत ऐसी ही है।
1: अच्छा, मालकोस राग हम 2 हफ्तों से उसके बारे में सीखते आए हैं।
2: हाँ जी,
1: आज आप आगे हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
2: हम तो विलंबित ख्याल सिखा दिया, थोड़ा इतना कम टाइम में नहीं होता है, तब भी अगर शुरू करते हैं तो अच्छा है
1: जी।
2: तो आज क्या करेंगे, वैरवी ठाट है, तो इसमें रे और पा वर्जित है। इतना सुंदर, हर राग में पा होता ही है, यूज होता ही है, लेकिन इस राग में पा वर्जित है, पा रे वर्जित है, तो इसलिए माँ को वाइटल स्वर, माँ को उसके ऊपर डिपेंड करके हमको चलना है। जैसे सा पा सा होता है, अभी क्या करके सा मा सा। अगर रे पा वर्जित है, ऐसे भी भैरवी ठाट जो है, भैरवी राग भी ठाट भी इतना सुंदर इसका जो चलन है, तो जो मालकोस राग है रे पा वर्जित है और गा नी धा कोमल है, तो हमने पहले बताया। तो अभी आज क्या करेंगे, 3 ताल के ऊपर छोटा ख्याल दे देंगे। स्वरलिपि पहले अगर लिसनर लिख लेते हैं तो अच्छा है, किताब पेंसिल लिख लेते हैं तो मैं पहले बताना चाहती हूँ कि स्वरलिपि क्या है। ठीक है, 3 ताल के ऊपर है। पहला जो लाइन है, पहले जो बंदिश का जो लाइन है, 2 लाइन में है, थोड़ा डिफर है, बाकी कुछ नहीं है। पहले लाइन है जैसे फाक से शुरू होता है, मा गा सा सा नी सा धा नी सा आ मा आ गा मा गा सा। लिसनर जरूर ध्यान देंगे, गा धानी कोमल है
1: जी।
2: फिर वही लाइन दूसरा है, गा गमा गा सा धानी, ये जो धानी है नीचे का नी है, धानी सा आ मा आ गा आ मा आ। फिर से बताती हूँ, मा गा सा सा नी सा धानी, ये निशा धानी जो है नीचे का है, सा आ मा आ गा मा गा सा। नेक्स्ट लाइन, गा गमा गा सा धानी नीचे है, सा आ मा आ गा आ मा, ऊपर की तार स्वर की है। सेकंड लाइन, सा आ सा सा नी सा नी धा मा धा नी ई धा नी धा मा आ, यह स्थाई का स्वर लिपि है
1: जी।
2: अभी हम अंतर की स्वर भी बताते हैं, मा मा गा गा मा आ धा आ नी सा गा नी सा, ये सा भी है गा भी है ऊपर की है। नेक्स्ट लाइन सा आ नी धा, सा है तार स्वर की, मा धा नी ई धा नी धा मा, मा मा गा गा मा मा धा धा नी सा गा गा, ये जो है गागा ऊपर की है, नीसा गागा मा गा सासा ऊपर की है मा गा सासा। लास्ट लाइन सा आ नीसा नी धा मा धा नी ई धा नी धा मा, ये चार लाइन है अंतरा की और दो लाइन है स्थाई का, लेकिन पहला जो लाइन है दो लाइन जो है अलग अलग कर सकते हैं
1: जी।
2: ठीक है, तो हम करके सुनाते हैं। तो पहले अरोहण अवरोहण पकड़
1: जी करते।

0: की लाइन दो बार अलग अलग है,
1: अलग अलग कर
0: तो सकते। हमने ऐसे ही सुना है कि अगर करते, क्योंकि अभी ऊपर चढ़ रहे हैं ना
1: जी,
0: थोड़ा कठिन तो चाहिए ना, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी तो प्राइमरी में नहीं है ना, थोड़ा बेसिक नॉलेज तो चाहिए, तो ऊपर उठना चाहिए। इसमें दो लाइन, पहला जो लाइन है इसमें दो अलग अलग ढंग से हमने किया है, उसके बाद सेकंड लाइन है सा सा सा, इसमें अगर आकर सहित करते हैं तो बहुत अच्छा है।
1: ऐसे भी प्रैक्टिस करने के लिए तो आकर सहित ही करना
0: करेंगे
1: पड़ता है।
0: तो उसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में बंदिश दे देंगे।
1: अच्छा।
0: तो बहुत सहजता से उठा सकते हैं।
1: श्यामली जी, यहाँ ही हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में हमारे सभी श्रोता मित्रों को मालकोस राग से संबंधित गीत सुनाते हैं। आप सभी श्रोता मित्र इसका आनंद लीजिए। हम पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4 FM।

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक से पहले मालको सराग के आरोहण अवरोहण पकड़ के बारे में हमने श्यामली जी से जानकारी ली और भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक ही स्थाई का अलग अलग रीत से हमको सिखाया भी कि किस प्रकार हम अलग रीति से भी गा सकते हैं। श्यामली जी आगे आप हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
1: अभी ये जो बंदिश जो है अंदर भी उठा देती हूँ।

0: हमने क्या किया, स्वर लिपि जो दिया है पहले स्थाई अंतरा, स्थाई का दो लाइन, अंतरा जो है चार लाइन की है। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको बंदिश बैठा देंगे।
1: अच्छा, मगर इस एपिसोड में आगे हमको मालकोस में क्या सिखाएंगे?
0: आगे हम क्या करेंगे, छोटा सा मालकोस की जो बंदिश, अच्छा, मैं सुना देती हूँ।
1: मैंने सिखाने वाली नेक्स्ट एपिसोड में सिखाएंगे, अभी यूं
0: अभी ऐसे बहुत सुंदर एक बंदिश है।
1: बंदिश सुनाकर आप उसकी सुंदरता को
0: और भी बढ़ाते हैं, और भी बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल
0: ठीक है।

0: हमको भी आप जो इतनी सहजता से गा लेते हैं इसको सुन सुन के सिर्फ मन ही मन में मुस्कुरा ही सकते हैं, हम गा नहीं सकते आपकी जैसा।
1: आपको पहले एपिसोड में बताया कि ये जो राग जो है इसका समय है मध्यरात्रि का।
0: जी जी,
1: तो मध्यरात्रि में क्या हुआ कि कृष्ण जी राधा जी जब रास करते थे, निद्रा देवी क्या करते थे उस टाइम, सबको निद्रा में पहुंचा देते थे, तो उस टाइम सब निद्रा में चले गए। लेकिन इनका दोनों में जो मिलाप है, राधा और कृष्ण जी को मिलाप है, हर जगह में आप देखना श्रृंगार भाव है, मन ही मन में मुस्काए जाते। जो राधा कृष्ण जी का ये भाव जो है वो मध्यरात्रि का ही होता है। इसलिए मध्यरात्रि में इस गीत सुनने से क्यों नींद आते हैं, इसका राज यही है। इसलिए मैं सोचती हूँ इसलिए शायद ये मध्यरात्रि का शास्त्रीय संगीत है।
0: ओके श्यामली जी, आज जाते जाते इसी बंदिश के साथ साथ और भी क्या सुनाना चाहेंगे आप?
1: आज बहुत सुंदर एक फिल्म है नवरंग।
0: अच्छा,
1: बहुत पुरानी फिल्म है,
0: बहुत फेमस है।
1: आशा जी और महेंद्र कपूर जी ने ये निभाए है गीत। आधा है चंद्रमा रात आधी, ये राग जो मालकस के ऊपर है ये गीत आधारित है। मैं करना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि कोशिश करना भी चाहती हूँ। बहुत सुंदर गीत है।
0: ऐसे भी पहले भी आपने ये राग के बारे में बताया कि ये मध्य रात्रि में गाया जाना वाला राग है, और ये गीत भी उससे ही कुछ संबंधित है। जी,
1: आप देखना मालकस राग की जैसे जैसे गीत चलता है वो ऐसे ही होता है।
0: जी,
1: राग की समय।

0: बहुत सुंदर, हमारी मुलाकात भी आधी ही रह गई।
1: सुंदर है आधे को लेकर सब ये गीत
0: आधा राधा
1: सब कुछ,
0: जितने भी शब्दों का प्रयोग किया
1: तो मध्यरात्रि का ये गीत जो है कितना इसके साथ कितना मिलजुलते हैं
0: जी
1: समय के अनुसार।
0: जी जी बहुत सुंदर श्यामली जी, यहाँ ही हम लेते हैं इजाजत, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत विषय, तो आप जरूर हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9414151415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM।

0: जीना इसी का नाम है। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। दोस्तों, जीना इसी का नाम है। क्या है ऐसी बातें जिसे हम कहें जीना इसी का नाम है। हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसे मोड आते हैं और उसको हम कैसे सामना करते हैं, उसे हम आउटस्टैंडिंग बन जाते हैं और उनका जीवन एक आदर्श बन जाता है। चलिए कुछ ऐसे ही अनुभवों से और उदाहरणों से आज हमारे बीच में है आदरणीय गंगाधर बाई जी। आप पिछले 5 दशकों से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और 4 दशकों से अधिक समय से अब अपने संपूर्ण जीवन को इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया है। आज के इस कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन में गंगाधर बाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो मधुबन का भी बुलाने के लिए आपको भी बहुत बहुत स्वागत।
0: शुक्रिया भाई जी। हम सबसे पहले आपकी वो जर्नी जानना चाहेंगे जो आपका बचपन है, कहाँ पे बीता, आपकी मात पिता क्या कर रहे थे, आपकी जो लौकिक जीवन है, और फिर वहाँ से अध्यात्म के प्रति रुचि कैसे आई।
1: मेरा जन्म एक छोटे से गांव गुजरात में भुज कच्छ में नखत्राणा में हुआ और बचपन में हमारे जो घर में एक स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए थे हम सभी, हम गीता पाठी थे और हमारे घर में हमारे पिताजी और हम सभी कुटुंब में बहुत अच्छा एक नियम था कि गीता का पाठ पठन करना है और पाठ पठन करने के बाद ही भोजन मिलता था। तो हमें भी वो नेचुरली वो संस्कार, हमें वर्षे के रूप में भगवान को याद करना और उसके बाद ये भोजन करना, ये बचपन से ही संस्कार। और फिर हमारी पढ़ाई हुई और पढ़ाई के बाद मैं एसएससी तक, एसएससी मैंने टॉपर किया गुजरात में ही। गुजरात से फिर मैं वहाँ से जाना हुआ, हॉस्टल में रहे, हॉस्टल में फिर अहमदाबाद के पास में एक धनसुरा करके गांव है आज मोड़ासा डिस्ट्रिक्ट के बाद में, तो वहाँ हम रहे और वहाँ टॉपर करके फिर अचानक हम व्यवसाय हमारा नागपुर में था, परिणाम स्वरूप मुझे वहाँ जाना पड़ा और वहाँ मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। और पहले मेरा कॉमर्स साइंस था, फिर मैंने कॉमर्स किया क्योंकि व्यवसाय होने के कारण व्यवसाय का भी काम संभालते थे और पढ़ाई भी पढ़ते थे। ऐसे में भक्ति मार्ग का जो संस्कार था कि हम वहाँ पर एक केंद्र चलता था स्वाध्याय परिवार का, जो पांडुरंग आठवाले जो बॉम्बे में उसका मेन हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पर जब हमारे घर में कोई ऐसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन हमारे गांव में ही पूरे ऐसी शिक्षा नहीं थी, जो अपने जो भी खेती बाड़ी का वो सारा व्यवसाय करते थे, लेकिन मैं ही एक ऐसे, मेरे को बहुत रुचि थी पढ़ाई में तो मैं फिर वहाँ जाके पढ़ाई भी किया और साथ साथ धंधा भी।
0: उस दौरान घर में आप अकेले थे या आपके और भाई बहने भी थे?
1: हाँ, घर में हम 4 भाई और 3 बहन है हमारे पिता के संतान थे और मैं सबसे छोटा था। और हाल ही में हमारे कोरोना काल के दरमियान हमारे 2 साल में 3 भाइयों ने शरीर छोड़ा। माता पिताजी ने तो पहले ही शरीर छोड़ दिया और व्यवसाय भी चल रहा था तो, और मैं तो यहाँ आ गया था और सभी अच्छे व्यवसायी घराने के, अभी एक उसके बच्चे हैं, सभी व्यवसाय करते हैं, कोई हैदराबाद में है, कोई व्यवसाय किसी का नागपुर में और कोई एक में फार्म हाउस है जहाँ गुजरात में,
0: मतलब सभी बिजनेस करते।
1: हाँ, सभी बिजनेस करते हैं। और हम गीता पाठी होने के कारण हम वहाँ फैक्ट्रियों में जहाँ हमारा व्यवसाय था तो बुधवार की छुट्टी रहती थी और वो छुट्टी रहने के कारण हम लोग गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए हर एक घर में जाते। हमारे एक उसको भाई कहते जो हमारा बड़ा लीडर था, तो वो भाई कहते थे उसको, स्वाध्याय परिवार में भाई कहते थे। तो बहुत अच्छा था और हम लोग प्रचार प्रसार के लिए हर बुधवार को वहाँ जाके गीता के बारे में प्रसार प्रसार करना, बताना, ये सब करते थे। लेकिन ऐसे में भक्ति मार्ग तो थी और हमें समाज में हमारा बहुत नामाचार भी था क्योंकि हम पढ़ाई भी पढ़ते थे और भगवान का नाम लेते थे, तो लोगों में बड़ा उत्साह था कि ये तो बहुत अच्छे लड़के हैं, देखो भगवान का नाम लेते हैं, गीता का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ऐसे में फिर एक समय ये हुआ, अच्छा लगता था लेकिन जब एक दिन में शाम को करीब 6-7 के बजाय होगा, मैं एक ऐसे जा रहा था तो वहाँ एक छोटा सा एक जिसको ब्रह्मा कुमारी इसकी पाठशाला कहते हैं, पाठशाला के रूप में वहाँ था, जहाँ हम रहते थे उससे दूरी पर, थोड़ी दूरी पर। तो वहाँ लिखा था कि अब दुनिया का परिवर्तन होगा और सत्ययुग आएगा, और ऐसे स्वस्तिक का चित्र बना हुआ बाहर में ऐसे बड़ा लगा हुआ था। तो मैंने सोचा कि कुछ यहाँ ज्योतिषी वगैरह होंगे, तो मैं 7 बजा था तो जा रहा था, अंदर कुछ लोग बैठे थे, लाल लाइट लगी हुई थी और अंदर 30-40 भाई बहने होंगे और वो योग कर रहे लाल लाइट में, और बड़ा अच्छा। पहले ही जैसे मैं प्रवेश कर, और बहुत पुराना घर था, जैसे जर्जरी भूत के अवस्था में, लेकिन अंदर क्लास अच्छा चल रहा था, तो मैं भी पीछे बैठ गया। बैठ जाने के बाद थोड़ा टाइम हुआ, 2-3 मिनट ही हुआ होगा, और लाल लाइट में से वाइट लाइट हो गई, और सामने एक भाई था जो बैठा था संदली पर, तो उन्होंने उठा तो सब जाने लगे, तो मैं भी जाने लगा। तो संदली पर जो भाई था, जिसका नाम गजानन भाई थे, अभी भी है वो, तो उन्होंने मुझे बुलाया, अरे आप कहाँ से आए हो, जैसे नए कोई आते हैं तो पूछते हैं ना, तो मुझे भी पूछा कि आप क्या करते हो, किस लिए आए हो, क्या है, जो भी है। और मेरे को बोले आपको 5 मिनट थोड़ा हमें टाइम दीजिए, मैं ये हमारा ये चित्र लगा है वो, मैं क्योंकि दीवारों में चित्र लगे थे जिसको ब्रह्मा कुमारी का जो साप्ताहिक पाठ्यक्रम में वो चित्र है वो सारा लगे हुए थे, तो बड़े व्यवस्थित लगा हुआ था, एक आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, फिर सर्व आत्माओं का पिता, उसके बाद झाड़, उसके बाद सीढ़ी, और इस तरह से लगा हुआ। तो मुझे वो समझाने लगे, तो पहला तो आत्मा, चलो आत्मा ठीक है, फिर परमात्मा का परिचय दिया, वो भी ठीक है क्योंकि चित्र में स्पष्ट दिखता भी था, और हम भी गीता पाठी होने के कारण वो सारी हमें समझ में आती थी बात। फिर आगे जाके ऐसे चलते चलते झाड़ का, ये सृष्टि का उत्थान पतन की कहानी, सीढ़ी में जो भारत कैसे ऊंचा था, बनता है, नीचा होता है, ये सारी बातें आई। फिर एक बहुत सुंदर चित्र हमारे मेरे मनपसंद का आया, जिसमें एक गीता के बारे में लिखा था, उसमें लिखा था गीता में वर्णित युद्ध, हिंसक या अहिंसक। तो जब ये बात आई तो हम गीता पाठी होने का मेरा ध्यान वहाँ गया, और उसमें बहुत सुंदर चित्र बताया हुआ कि एक परमात्मा की किरणें आ रही है, नीचे एक शक्ति दल खड़ा है, प्रजापिता ब्रह्मा वहाँ है, और ऐसे सामने में राक्षस जा रहे हैं इस तरह से। तो वो बड़े चाव से बताने लगा कि गीता में जो वर्णित युद्ध है वो कोई युद्ध नहीं है, ये तो हिंसक है। भगवान अगर हिंसक का ज्ञान देता है या समझ देता है तो फिर हिंसा करने वाले को तो कोई दंड नहीं मिलना चाहिए। ये बात मुझे अपील की, भाई अहिंसक युद्ध। फिर उन्होंने सारी बातें कही कि जो हम मन से जो सोचते हैं, देखते हैं और जो करते हैं, जो विकृत मानसिकता को लिए हुए चलते हैं, इसको भी हिंसा कहते हैं। ये बात मुझे ज्यादा अपील करी, और मुझे तुरंत याद आया कि हम तो गीता पाठी है। जैसे मैंने पूर्व में कहा कि हम एक घर चॉइस करते थे और वहाँ गीता ज्ञान करने जाते थे, तो एक तरह से हंसी की बात तो ये हुई कि समझ में आई कि मुख मेरा बगल में छुरी वाला काम हम करते थे, कि मन में हमारी कुछ विकृत भावना, क्योंकि हम यंग थे तो विकृत मानसिकता लेकर भगवान का मुखोटा लेकर हम ज्ञान देने जाते, ताकि लोग समाज में हमारा अच्छा नाम था। ओके, उसके बाद ये बात जैसे ही पकड़ में आई तो फिर मैंने फिर सारा समझा के 5 मिनट में बोले आप आओ 7 दिन का कोर्स करिए। लेकिन हुआ क्या, मैंने कहा हमारे पास टाइम नहीं है, तो बोले कि आप आधा आधा घंटा भी आइए, ये हम सारा समझा देंगे। फिर मेरे को एक किताब दी उसने, उसमें उस टाइम 3-4 रुपये की वो किताब दी, पथ प्रदर्शन, जो ब्रह्मा कुमारी का बेसिक कोर्स की समझानी है उसमें, तो वो मुझे दिया। तो मैं फिर लेके गया घर, कि पढ़ाई तो करते थे, तो रात को जैसे ही उस किताब को मैंने लेके पढ़ने लगा तो बहुत अच्छा लगा कि भाई ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। अब भूल कहाँ हो रही है, ये बात मन में गूंजती रही, अरे यार ये तो मेरा मन में अंदर एक है, बाहर एक है, ये बात बहुत खटकती रही। भगवान के नाम से मेरा पाप हो, भगवान के नाम से मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान मुझे श्रापित करेंगे। तो ये बात रात
0: को क्यों लगा आपको?
1: मुझे इसलिए लगा क्योंकि भक्ति मार्ग में अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन भक्ति मार्ग में हम स्थूल रूप में सब करते हैं, और स्थूल रूप में जैसे तिलक लगाया, थोड़ा सा अच्छे मीठा बोल बोला, तो लोगों को लगता है कि भक्ति भाव वाला आदमी है, तो लोगों की श्रद्धा होती है, तो हमें आदर सत्कार से देखते हैं। लेकिन ये जैसे ही फिर मैंने ये बात आई कि भाई ये काम तो मुझे नहीं करना चाहिए, तो मुझे इसको अच्छे से स्टडी करना चाहिए, तो फिर मैंने 7 दिन का कोर्स तो नहीं किया, लेकिन ये सारा अच्छे से फिर से पढ़ा, ऐसे 2-3 दिन पढ़ा, और पढ़ने में ये बात समझ निष्कर्ष तक पहुंचा कि नहीं, आज के बाद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: मतलब इनसाइड आउट होना चाहिए, हाँ, जो अंदर है वही बाहर।
1: अभी
0: एक मुखौटा पहन करके नहीं,
1: मुखौटा पहन कर देने से तो खुद को भी धोखा है और समाज को भी धोखा है, और एक अच्छा कर्तव्य नहीं मानेंगे। तो ये जो बातें आई सामने, उसके बाद मैंने स्टडी करके कोर्स तो करने का मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि हमारा व्यवसाय था तो सुबह सुबह फैक्ट्री खोलनी है और फिर शाम को लेट होते थे, तो इस तरह से, और दिन में कॉलेज जाना है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे ये करना चाहिए, ये ठीक नहीं। ये मन में अंदर ही से विचार आया और अंदर दृढ़ किया, नहीं अभी मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना, मुझे ये ठीक लग रहा है तो ये जीना चाहिए। संस्कार थे भक्ति भाव के, तो फिर ये ज्ञान मिला और ज्ञान को फिर उसको श्रवण करने लगे और समझ में आया, समझने आया तो अब बड़ा एक ये ज्ञान ऐसा रियल में जीना जीवन तो बड़ा चमत्कारिक है, जैसे जीवन एक मृदु भाषी जैसा हो जाता है, बहुत साइलेंटली चलना, अनावश्यक चीजों को अपने आप ही दरकिनार हो जाती है।
0: सो जिस तरीके से आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने से वही गीता पाठी भक्ति मार्ग में करते हुए भी आपको दोनों में अंतर समझ में आया, और प्रैक्टिकली लाइफ क्या है, प्रैक्टिकली गीता क्या है, वो आपको समझ में आया। तो गए तो आप अकेले, और वो स्वस्तिक ने आपको अट्रैक्ट किया और ज्योतिष समझ करके गए। फिर जब आपके घर में ये पता चला कि आप आश्रम में जाते हैं, तो फिर आपके भाई बहने, आपके परिवार वाले इसको स्वीकृति दी या फिर?
1: ये बड़ी कहानी है, बहुत मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे ही मैं कहा ना कि जैसे उसमें चलते थे तो समाज में हमारा बड़ा नाम और आदर थे, और लोग हमें बड़े चाव से बड़े प्यार भी करते थे, सम्मान भी मिलता था। कहते हैं ना, जब दुनिया की जिस हवा चलती है उस तरफ चलते हो तो जमाना आपको साथ साथ देता है, लेकिन जब खुद को जानने के खुद से चलने लगे तो जमाना सारा विरोध हो जाता है। बस वैसा ही मेरे जीवन के साथ घटा। तो हम चलते थे, लेकिन अब उस समय काल में ब्रह्मा कुमारी के सेवाएं इतनी ना होने के कारण मिस भ्रांतियां बहुत थी। तो और हम ये चलने लगे, रेगुलर मुरली सुनने लग गए, तो बाबा की जो मुरलियों बड़ी जादुई है, जादुई इन द सेंस बड़ी स्पष्ट है, जैसे कि दर्पण है, तो वो बहुत खिंचाव होता था। बाबा का क्लास और योग ना करे, वो जैसे कि अंदर से जैसे बेचैनी होती थी, मतलब
0: तो परमात्मा को याद करना, महावाक्यों को
1: महावाक्य सुने बिना मना बेचैनी। और मजे की बात यह है कि ब्रह्मा कुमारी इसमें या तो शाम को क्लास होता है या तो सवेरे अर्ली अर्ली होता है, योग भी अर्ली अर्ली होता है। और हमारा भी समय था, वो भी

0: मन वैसा मन, जैसा सोचेंगे वैसा बनोगे, ये बहुत स्पष्ट आता था। और करी करी इसी टॉपिक पर 10-10, 15-15 दिन वही मुरली की धारा चलती। इसलिए आप भगवान की सुने, निश्चय हो गया तो फिर
1: जी। तो अभी भी वो लोग आपको विरोध करते हैं या फिर वो सहयोगी है आपके?
0: विरोध तो बहुत हुआ, ये बात थोड़ी मैं अगर
1: जी
0: तो मैं बता दूं, तो ये जब प्रत्यक्ष हुआ तो अभी ये ज्ञान में चलने से ये सारी नकारात्मक जो प्रवृत्ति है जीवन से धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो कहीं कहीं घर वालों को ऐसा लगा, अरे ये तो पढ़ा लिखा बच्चा हमारा, किसी ने कुछ जादू कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया ऐसे करके। तो हमारा बड़ा भाई के साथ, हाँ हमारे एक पिताजी तो गुजरात में रहते थे, फिर कभी आते थे कभी जाते, तो बड़े भाई ने हमारे पीछे CID लगाई थी।
1: अच्छा।
0: तो CID ये लगा दी कि उनको थोड़ा लगा कि थोड़ा ये हमारे अनुसार तो इनका जीवन नहीं दिख रहा है, बड़ा साइलेंट रहता है और अपने में मस्त रहता है। तो कहते हैं ना कि इसका स्क्रू ढीला हो गया। तो उसी तरह से एक मान्यता होने के कारण उसका भी अच्छा स्नेह था। स्नेह इसीलिए कि कोई भी बड़ा है जो जहाँ हम गार्डियन है, वो नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे का इस तरह से कुछ हो जाना। तो उसने तहकीकात करने के लिए ऐसे लगा दिया 4-6 लोगों को और फिर ये सब चीज़ें। लेकिन वो सुबह सुबह मैं जाता था तो पता तो चल जाता था सुबह कहीं जा रहा है, तो पीछे पीछे पता है वो तो सोए रहते थे, मैं निकल जाता था। 6:30 से 7:30 मुरली चलती, तो 6:30 के पहले 6 बजे योग में जाना होता, आधा घंटा बैठना है। तो मतलब मैं 4:30-5 बजे स्नान पानी आदि करके, तो ये लोगों को अलग लगता था, वो लोग सोए और मैं तैयार होकर चला जाता, तो वो बदलाव उसको पता चला। तो बढ़ते बढ़ते ये क्या हो गया कि उनको पता चल गया कि ये तो ब्रह्मा कुमारी। तो ये कहते कि ब्रह्मा कुमारी ये कौन सा धर्म है, नहीं तुम, हम तो लक्ष्मीनारायण के वंशज है, हम लक्ष्मीनारायण की पूजा करते हैं। हमारे घर में अगर आप यहाँ से कच्छ के साइड में जाओगे तो वहाँ हर गांव में लक्ष्मीनारायण के बहुत बड़े बड़े मंदिर मिलेंगे, तो लक्ष्मीनारायण का ही हम वंशज है, तो लक्ष्मीनारायण की पूजा करना चाहिए देवी देवताओं। तो उस तरह से चलता था। तो फिर ये तो बदलाव आ गया, तो उन्होंने फिर मेरे को बाधित करने की कोशिश की। लेकिन बाबा की ये बात मैंने, वो जो हमें मुरली सुनाते थे, उस भाई को बताई कि हमें ऐसा विरोध करते हैं और इस तरह से बात है, और यहाँ तक भी नहीं रुके, मारपीट भी करते, छोटा थे और वो उसका हाथ, तो हमें जब वो मारते थे हमें बाबा की महावाक्य याद आता कि किसी का दोष नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पिताजी आपको बंधन है, तो उनका चश्मा जिस परंपरा से जिए उससे थोड़ा अलग दिखते हैं, तो उनको वो भाव से कि भाई इनका कल्याण ना हो, बड़ा हो कि भाई इनका जीवन खराब ना हो, तो उस भाव से करते। तो हमारे मन में वो मारते थे थोड़ा बहुत, तो हमें बुरा नहीं लगता था, कुछ बोल दिया, थोड़ा अपशब्द कह दिया, वो कर दिया, तो मतलब वो तकलीफ नहीं होती थी। तो हमें वो बाबा कहते वो राम की भावना रखो, इनको पता नहीं हमें कौन मिला है, वो ज्ञान ऐसा जैसे कि हमें तो भगवान मिला है, हम भगवान को जान गए, ये तो अभी तक ये भक्ति मार, इस तरह से मन में आ जाता था और गुस्सा रिएक्ट नहीं करते। परिणाम स्वरूप ये बढ़ता गया। फिर हम जो हमारी समाज है जो पटेल कास्ट, तो वहाँ क्या हुआ कि हम लोग पढ़ाई करते थे तो घर में उठ के तो विघन बढ़ते गए, बहुत मारपीट तक आ गए। तो ऐसे में क्या हुआ कि हमारे सारे समाज में हमारी वॉच रखने की कि भाई ये तीनों को मिलने नहीं देना, तीन भाई थे, तो आपको मेरे पूर्व में आपको आप जानते होंगे कि हम वसंत भाई करके थे जो संगम भवन में, वो भी नागपुर से थे, और ऐसे एक रामजी भाई करके थे, हम तीन कुमार निकले और बड़ा नशा था बाबा के ज्ञान के लिए। तो अब क्या करें, तो हमारे बीच में सबको एक अनाउंसमेंट कर दिया कि ये तीनों अगर मिलते हैं पढ़ाई के नाम से, हम घर में नहीं सोने के बदले हम बाहर सोने लगे, मना फैक्ट्रियों में एक रूम होता था तो हम वहाँ सोते थे, क्योंकि हमने बहाना बनाया कि हमें पढ़ाई करना है तो हम रात को पढ़ाई करते हैं, तो हम वहाँ सोएंगे फिर सुबह आएंगे नाश्ता पानी। लेकिन हुआ क्या, बहुत वंडरफुल बात ये हुई कि हम पढ़ाई के नाम से जो भाई ने हमें गाइडेंस दिया था, तो कि जो अगर आपको बहुत ऊंचा जाना है तो आपको 2 से 5 योग कर, तो तुम्हारा विघ्न सारे भगवान खत्म कर देंगे। ये भाई हमने गीता पाठशाला जो चलाते थे उन्होंने बताया। अब

0: 5 योग करना है तो हमने ये बहाना बनाया कि हम घर में नहीं रहेंगे, पढ़ाई के अर्थ वो उनकी फैक्ट्री में रहता था, वो उनकी फैक्ट्री में ना, मैं मेरी फैक्ट्री, ऐसे करके सुबह 2 से 5 योग स्टार्ट किया। और कहाँ करते थे? गीता पाठशाला। हम करीब 25 कुमार थे, तो ऐसा उन्होंने 25 हाँ इसका विघन है तो योग करें, तो हम करते थे। हमने लगातार 3 साल विदाउट फेल 2 से 5 योग। उस दौरान की बहुत अच्छी एक घटना घटी प्रत्यक्षता की, कि तो फैक्ट्री में जहाँ हमारा माल आता है, जो वुड प्रोसेसिंग की जो फैक्ट्री थी, तो रात को गाड़ियाँ आती थी, तो उसका कागज लेना होता है और सारा, और वहाँ चौकीदार भी होते हैं। तो मैं 2 बजे गाड़ी आई होंगी, 2-3 बजे हम तो चले गए योग करने, तो पीछे से जो गाड़ी आई तो मैंने कागज लिए नहीं। तो सुबह जब हमारा बड़ा भाई जब ऑफिस में पहुंचे फैक्ट्री में, तो कह के भी वो कहाँ थे, जो मेरा छोटा भाई यहाँ रहता है, तो वो तो रात में पढ़ाई करने जाता है, हम जाते थे योग करने। तो तीनों भाई वो अपने फैक्ट्री में वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर जाते थे। तो ऐसे करके फिर ये प्रत्यक्षता हुई, और फिर जो हमारी सारे विरोधाभास और खलबली मच गई, सारे ये ऐसा है वैसा है, तो फिर भी बाबा की जो आकर्षण थी कि मुरली मिस नहीं करना, मुरली के बिना खाना नहीं खाना, योग करना, इसी से तो मूछ बनेंगे और भगवान तुम्हें प्यार करेगा, ये सारी बातें मन में गूंजती रहती थी, तो उसके कारण हम जाते थे। फिर एक दिन सुबह क्लास कर रहे, तो मेरा पिता भाई आया, बड़े भाई, और बड़ी लकड़ी एक लेके आया, और मैं पीछे थोड़ा लेट गया था, मैं हमेशा फर्स्ट जाता था, लेकिन उस टाइम थोड़ा लेट हो गया था तो पीछे बैठा था, और 35-40 भाई बहन और मुरली चल रही थी, उन्होंने आते ही पहले मैं बस बैठा था पीछे से थोड़ी सी लकड़ी लगाई, और सामने भाई मुरली चला रहा था, वो चौकन्ना हो गया, तो सभी शांत हो गए, मुरली चलाना बंद हो गया, मेरे को मार रहा है और फिर घसीटते लेके जा रहा है, घसीट कर खून निकल रहा है हाथ में से, मैंने थोड़ा सा उनको कि भाई ये चंगुल में फंस गया है, उनका ये प्यार, उनको तो ये पता नहीं ना, तो फिर भी मतलब ठीक है। फिर हम
1: उन्होंने कभी आपसे ज्ञान सुनने समझने की कोशिश
0: उस टाइम नहीं की, क्योंकि उनको तो वो ही परंपरा से जिए थे, तो वो उसे। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद फिर मैं चला गया, लेकिन फिर से हमें नहीं, योग मिस नहीं करना, ये विघन अभी जाएगा, क्योंकि भगवान ने बोला 2 से 5 योग करते तो विघन चला। तो वो जो क्लास में जो भाई बहने थे वो कुछ नहीं बोले, योग में बैठ गए सब, वो मार रहे कर रहे छुड़ा रहे, कोई छुड़ा नहीं, और जैसे कि मुझे ठीक है नहीं आओ। तो इस तरह से मेरा आना हुआ, और फिर बाबा से योग लगा के हम ऊंच पद पाएंगे, ये मन में नशा रहता था। तो 3 साल हमने योग किया, उसका परिणाम ये हुआ, करीब हम 81 से 83-84 तक हमने ये योग किया। फिर ये सब प्रत्यक्षता होने लगी समाज में, फिर हमने सोचा कि अभी क्या करें, बाबा के बिना तो हम रह नहीं सकते, बाबा की पड़ी खींच, शाम को 6:30 बजे सुबह 6:30 बजे तो कशिश होती थी कि नहीं सेंटर पे जाना चाहिए, सेंटर एक ही था नागपुर में, और हमारे यहाँ से 15-20 किलोमीटर हम एक सीट पूर्व में रहते थे, सेंटर पश्चिम में था, तो पूरी सिटी क्रॉस करके जाना होता था, तो गुरुवार को जाते थे। एनी हाउ तो हम कहते हैं ना यहाँ ब्रह्मा कुमारी की भाषा में ये कहते हैं कि बंधेले कुमार माना इसको विघन है, तो माँ बाप से छुट्टी नहीं है।
1: दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कहानी बीच में क्यों रुक गई है, आगे क्या हुआ है, बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, बहुत सारे सवाल है मन में जानने को लिए। लेकिन समय की सीमा है कि यहीं पर हम रुकना होगा, और आगे की कड़ी में हम सुनेंगे कि ऐसा क्या जिद था और क्यों उन्होंने इसी जीवन को जीने का ठान लिया है। जो जीवन आमतौर पर सोचते हैं कि बहुत ही कठिन रास्ता है, सांसारिक जीवन को त्यागना, सुख सुविधाओं को त्यागना और सिर्फ एक परमात्मा के प्यार में लीन होना, देश के लिए जीना या मानवता के लिए जीना कितना कठिन काम है, लेकिन इनके लिए बहुत ही आसान लग रहा था, और उसके लिए किसी भी हद तक किसी भी चीज को सहन करने के लिए वो तैयार हो गए हैं। जो अभी तक आपने सुना है गंगाधर भाई जी की अपने जीवन की कहानी को, कहाँ से उनको वो प्रेरणा मिली समर्पित होने का, और जब उन्होंने वो संकल्प लिया और वो ज्ञान मार्ग में चलने लगे, किस प्रकार की बाधाएं उनको सामना करना पड़ा। तो दोस्तों अगले हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा, अभी हम लेते हैं आपसे विदाई, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नई दुनिया नया जमाना इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज नई दुनिया नया जमाना इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक नए विषय पर बात करेंगे। वैसे तो आप सभी सतत विकास के जो 17 गोल्स से लक्ष्य है उसके बारे में जानते ही हैं। रेडियो मधुबन लगातार प्रयास कर रहा है आप सभी के पास ये मैसेज और ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए कि हमारे पास यूनाइटेड नेशंस के कितने लक्ष्य हैं जो इस विश्व को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो उनमें से एक गोल है 3 नंबर, यानी कि SDG 3, जो इंश्योर करता है कि हेल्दी लाइफ होना चाहिए, हमारे हेल्थ और वेलबींग को ये प्रमोट करता है। वैसे एक और गोल है गोल नंबर 6, जो ये इंश्योर करता है कि हर व्यक्ति को, हर इंसान के पास जो वाटर है, जो पानी है, मूलभूत सुविधाएं, तो वो फ्रेश वाटर और सही पानी मिले और इसके साथ साथ सैनिटेशन भी अच्छा हो, हाइजीन भी अच्छा हो। तो क्लीन वाटर और सैनिटेशन के लिए गोल नंबर 6 भी उपलब्ध है। तो नई दुनिया बनाने के लिए, नया ज़माना लाने के लिए एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के साथ साथ लोगों की हेल्थ और स्वच्छ पानी भी ज़रूरी है और स्वच्छता भी ज़रूरी है। तो अनेक NGO है जो इस के लिए कार्यरत है निरंतर। तो हमारे आबू रोड में ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड, ये NGO यहाँ के हेल्थ एंड सैनिटेशन के लिए कार्य कर रहा है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें से हेल्थ को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता कितना ज़रूरी है ये समझाते हैं, खास करके जो बालिकाएं हैं उनको समझाते हैं, और स्कूल्स में जाकर, सरकारी स्कूल्स में जाकर भी उन्हें, वो लोगों को इसके बारे में जागृत करते हैं, स्कूल के बच्चियों को, बच्चों को भी। तो हमारे आबू, पिंडवाड़ा, सिरोही, शिवगंज और रेवदर में ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड ये NGO कार्यरत हैं। और हमारे आबू रोड ब्लॉक में असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में खुशबू जी कार्यरत हैं, जो हमारी इस आबू रोड शहर से ही हैं। तो आज ये स्टूडियो में मौजूद हैं खुशबू जी। आइए खुशबू जी से बात करते हैं, और ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड क्या कार्य करता है और कैसे हेल्थ एंड हाइजीन पर ये प्रोग्राम्स करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। खुशबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
1: मेरा नाम खुशबू है और मैं ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड इंस्टीट्यूट में काम करती हूँ, और हमारा काम बच्चों को स्वच्छता और हाइजीन इस सब संबंधित, हम 90s स्कूल में काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा आबू रोड और रेवदर ब्लॉक, आबू रोड की 90 स्कूल और रेवदर की 30 स्कूल्स में हम काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में, जिसमें हम बच्चों को हाइजीन और हेल्थ रिलेटेड बच्चों के साथ सेशन लेते हैं, जिसमें बच्चों को बताते हैं कि स्वच्छता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने स्वच्छ मस्तिष्क के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए। तो हम इस पे स्कूलों में जाके बच्चों के साथ कार्य कर रहे हैं, तो उससे बच्चों में थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए, ताकि जो बच्चे MDM जो स्कूल में चलता है, तो हम चाहते हैं कि उसमें थोड़ा सा बदलाव आए, क्योंकि MDM मतलब बच्चे जो खाना खाते हैं ना,
2: मिड डे मील,
1: तो उसमें हम चाहते हैं कि बच्चे खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते हैं, तो हम चाहते हैं कि उस आदत को बदलने के लिए, कि बच्चे खाना खाने से पहले जो मिड डे मील लेते हैं, वो खाना खाने से पहले हाथ धोने की आदत उनमें आ जाना चाहिए।
2: तो क्या स्कूल में व्यवस्था है नल वगैरह के, और कहीं साबुन है, और वो है?
1: कहीं स्कूलों में व्यवस्थाएं नहीं है, कहीं स्कूलों में व्यवस्थाएं हैं भी हैं, लेकिन जहां व्यवस्थाएं नहीं है वहां पर हम टीचरों को बोलते हैं कि जहां व्यवस्था नहीं है तो वहां पर हाथ धोने के लिए, जैसे वो बाल्टी भर के रखते हैं, लेकिन वो चीजें व्यवस्थाएं नहीं होते हुए भी फिर भी वो उन चीजों को करते हैं
2: आपके बोलने के बाद
1: में, जागरूक करने के बाद में। तो बच्चों में कहीं कहीं स्कूलों में कुछ बदलाव आया है, कहीं कहीं बच्चे जो बिल्कुल निचले स्तर से या आर्थिक स्थिति से कमजोर है, तो बच्चे उसी प्रकार से स्कूल में भी आते हैं, तो वो नहीं भी कर पाते हैं, है ना।
2: तो आपने रिसर्च किया है और आप यहाँ के स्कूलों को देख रहे हैं, तो सबसे पहले जब आप गए स्कूलों में, बच्चों को देखा, क्या हालत था आबू रोड में गवर्नमेंट स्कूल्स में?
1: गवर्नमेंट स्कूल में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बच्चे बिल्कुल बिल्कुल भी सफाई से नहीं आ रहे थे। और टीचर भी बोलते थे, मैडम हम रोज़ बोलते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं ना तो पेरेंट्स हमको आके बोलते हैं कि आप रोज़ रोज़ हमारे बच्चों को परेशान करते हो कि नहाना है, ब्रश करके आना है। तो थोड़ा सा उनको भी फील ऐसा होता था कि हमारे बच्चों को क्यों बोल रही है टीचर। तो हम बोलते थे तो वो गाँव के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं था। लेकिन मैं जब वहाँ पर गई तब मैंने बच्चों को ऐसे नहीं बोला कि आप लोग हाथ धो के आओ, मुँह धो के आओ, आप लोग गंदे आते हो, ऐसे नहीं। बिल्कुल बच्चों को नॉर्मली वे में कि बच्चे अपन को ऐसा करने से ये फ़ायदा होगा, ऐसे करने से ये होगा। तो आज की स्थिति ऐसी है कि जहाँ बच्चे बिल्कुल गंदे आते थे तो वहाँ पर उनकी स्थिति बेटर हुई है।
2: जी मतलब बोलने की
1: तरीका बदला मैंने। और स्कूल में भी ये फ़र्क पड़ता है कि जब एक टीचर खुद बोलता है ना तो वहाँ पर बच्चे नहीं सुनते, लेकिन जब कोई बाहर का आके उनको कोई चीज़ें बता के जाता है तो बहुत फ़र्क पड़ता है।
2: जी,
1: तो
2: जी।
1: बच्चों में ये बदलाव आया है।
2: अच्छा खुशबू जी, ये बताइए कि ममता फाउंडेशन और आप जैसे यहाँ पर कार्यरत हैं तो बच्चों से ही शुरुआत क्यों कर रहे हैं?
1: हाइजीन बहुत ही सेंसिटिवली नीड है, तो उन्होंने देखते हुए कि सबसे ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, हाइजीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द पार्ट ऑफ लाइफ।
2: जी
1: तो वो उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ों को तो ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाइजीन अपने बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन छोटे बच्चे इन चीज़ों को नहीं समझते। तो उन्होंने स्कूलों में, आंगनवाड़ी में, कम्युनिटी में, वहाँ जाके रिसर्च किया, तो उनको लगा कि हाइजीन और हेल्थ के ऊपर हमको बच्चों के साथ काम करना चाहिए।
2: जी, जी।
1: तो मोस्ट ऑफ उन्होंने प्राइमरी बच्चों को लिया है ताकि वो बच्चों के साथ काम कर सकें और बच्चों की ही नींव हम शुरू से ही पक्की कर सकें। क्योंकि अगर हमने ये आदतें बच्चों में अभी से फर्स्ट से फिफ्थ तक के बच्चों में कर दिया तो उनको आगे हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब नींव पक्की हो जाएगी तो आगे जाके घड़ा एकदम मजबूत हो जाएगा। नींव पक्की करना चाहते हैं ताकि बच्चों में शुरू तक फिर वही आदतें रहें, क्योंकि हमारा खुद का भी यही है कि एक छोटा जो मटका होता है बचपन में, कच्चा जो होता है, तो उसको हम कैसे ही ठोक के उसको जैसे घड़ना चाहें तो उसको घड़ सकते हैं।
2: तो लेकिन आप संस्कार पक्का करा रहे हैं,
1: संस्कार पक्का करा रहे हैं कि बच्चों में ये आदतें आ जाए हाइजीन की।
2: जी जी,
1: हाइजीन सुधरेगा तो हेल्थ अपने आप सुधर जाएगी,
2: हाइजीन सुधरेगा तो हेल्थ अपने आप
1: बेटर
2: हो जाएगी,
1: बेटर हो जाएगी।
2: जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज भी क्या चुनौतियां हैं आबू रोड के आसपास के गांव में स्वास्थ्य को लेकर के, हाइजीन को लेकर के, जो आदिवासी बच्चों में आप देख रहे हैं?
1: बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सबसे मेन तो पानी नहीं है कहीं बच्चों के पास। कुछ आर्थिक रूप से मजबूर हैं, जैसे माँ बाप कमा रहे हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वो बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो बच्चे स्कूल, अपने बड़ा बच्चा जो होता है फिफ्थ क्लास का, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे को तैयार करके स्कूल लेके जाता है।
2: ओके,
1: तो फिफ्थ क्लास का बच्चा यानी कि मिनिमम
2: 10 साल के अंदर
1: होता है, तो वो एक 5 साल के बच्चे को या 4 साल के बच्चे को अगर तैयार करके लेके जाएगा तो वो क्या ही कंडीशन में लेके जाएगा। तो वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि अवेयरनेस कम्युनिटी में नहीं है। है ना, सबसे मेन तो प्रॉब्लम वहां आती है कि कम्युनिटी में वो चीजें नहीं है, और कम्युनिटी में भी उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे वो आर्थिक रूप से मजबूर हैं, तो वो सब चीजें मूलभूत उनकी आवश्यक पूरी ना होने की वजह से वो इन सब चीजों से वंचित रह जाते हैं।
2: ओके जी, तो हेल्थ और सैनिटेशन की सुविधाएं उनके पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गांव में लोग नहीं रहते, खेतों के पास रहते हैं। अगर इकट्ठा रहते तो इकट्ठे कुएं खोद सकते हैं या फिर
1: कुछ कर सकते हैं,
2: नल का कनेक्शन हो सकता है। लेकिन ये चैलेंजेस है आज भी आबू रोड में है। जी, तो आपके जो हेल्थ एंड सैनिटेशन प्रोग्राम आबू रोड में कैसे शुरू हुई, इसके बारे में जानना चाहेंगे?
1: हेल्थ और हाइजीन वाला जो प्रोग्राम है ये ऑलमोस्ट पहले से ही 2022 या 23 में लगभग सिरोही डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हो गया था। तो वहाँ पर सिरोही और पिंडवाड़ा में 50-50 स्कूलें थी, तो वहाँ पर से ये शुरू हुआ। फिर अभी 2025 में आबू रोड ब्लॉक लिया गया जिसमें अपने 90 स्कूल हैं।
2: Okay.
1: तो इन स्कूलों में काम हो रहा है, और 2026 में रेवदर और शिवगंज ब्लॉक अभी नया लिया है।
2: जी, तो सबसे पहले जब आप जाते हैं तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं आप?
1: सबसे पहले हम स्कूल में जाते हैं तो प्रिंसिपल से बात करते हैं कि भाई हमें सेशन लेना है बच्चों के साथ, फर्स्ट टू फिफ्थ के साथ। तो हम सब बच्चों को इकट्ठा करते हैं हॉल में, तो जाते ही तो हम बोलते नहीं है कि आप स्वच्छ रहो, ऐसे करो ऐसे करो, कुछ बच्चों का वातावरण बनाना पड़ता है, तो वातावरण बनाने के लिए जैसे बच्चों से कविताएं करवाते हैं, तो बच्चे हाइजीन से हम रिलेटेड कविताएं करवाते हैं, है ना, बच्चे बोलते हैं, फिर हम उन कविताओं के माध्यम से बच्चों को पूछते हैं कि भाई आपने ब्रश किया, नाखून काटे, अच्छा ये सब चीजें क्यों जरूरी है। तो पिछले एक साल से तो मैं आबरूण में काम कर रही हूँ, तो बच्चे अब थोड़ा थोड़ा सा जवाब देते भी हैं कि मैडम ब्रश ऐसे करना चाहिए, ब्रश यूं करना चाहिए, अच्छा क्यों जरूरी है। तो जो WHO का है हाथ धोने का तरीका 6 स्टेप, तो वो हम मोस्ट ऑफ बच्चों को सबसे ज्यादा वो जाके बताते हैं कि 6 स्टेप में हाथ धोना चाहिए। अब वो धोना क्यों जरूरी है, हमारे पास कुछ पपेट वीडियो भी हैं, एनिमेशन वीडियो भी हैं, तो वो वीडियो हम बच्चों को दिखाते हैं उनके साथ, और हमारे पास ICI मटेरियल है उसको हम लेते हैं उपयोग में, तो उसमें हम बच्चों को बताते हैं, और हमारे ग्लास एक्टिविटी होती है तो उसमें हम बच्चों को बताते हैं कि हाथ जब अपन साबुन से नहीं धोते हैं तो कितनी गंदगी उस पानी में आती है, और जब हाथ धो लेते हैं तब वो बिल्कुल साफ पानी हो जाता है। तो कुछ कुछ एक्टिविटीज हम उनको करके बताते हैं, डायरेक्ट भी जाके उनको नहीं बोलते कि आप गंदे आते हो, आप लोग हाथ नहीं धोते हो, आप मुंह नहीं धोते हो, तो बच्चे थोड़ा सा वो
2: अच्छा
1: नहीं लगता है। तो हम उनको खेल खेल के माध्यम से भी ये सब चीजें बता देते हैं कि ये सब चीजें होनी चाहिए, तो बच्चे ये सब चीजें करते भी हैं और कई स्कूलों में इम्प्रूव आया भी है। जैसे पांडुरी स्कूल की मैं बात करूं तो वहां पर जब मैं गई थी, PS स्कूल है, तो वहां पर बच्चे बिल्कुल गंदे आते थे, बिल्कुल भी नहीं नहाना, ना मुंह धोना, बाल भी नहीं बनाना, क्योंकि थोड़ा सा कम्युनिटी का भी थोड़ा सा था, तो वहां पर टीचर ने भी कई प्रयास कर लिए थे, लेकिन वहां पर यूं था कि टीचर बोलती थी तो कम्युनिटी को भी बुरा लगता था कि मेरे ही बच्चे को या मुझे ही, हमारे को ही क्यों बोल रही है। लेकिन जब मैं वहां पर गई, मैंने सेशन लिया बच्चों के साथ, उनको मैंने डायरेक्ट भी नहीं बोला कि आप लोग गंदे आते हो, उनके साथ खेल खेले, कविताएं करी और उनके साथ एक्टिविटियां करी, तब जाके अब जाके पूरे साल भर में अब जाके उन बच्चों में सुधार आया है।
2: तो अब वो
1: बिल्कुल एक साल मेहनत लगी है, टीचर भी जब वो हम जाते थे तो वो बोलते थे मैडम आप थोड़ा बोलो तो ही ये कुछ करेंगे, मैं बोलूंगी तो ये मुझे बुरा समझते हैं कि ये हमें क्यों बोलती हैं। तो वहां पर अब जाके उन बच्चों में सुधार आया है, तो वहां के टीचर्स भी खुश हैं और बच्चे भी खुश हैं। अब वो नहा कर आते हैं, है ना, खुद से ही नहाते हैं, वो ब्रश करके आएंगे।

0: है ना, बाल बना के आएंगे, अब उनको खुद को भी अच्छा नहीं लगता है कि हम स्कूल गंदे जाएं।
1: राइट, तो उनको पता होना चाहिए कि गंदे रहने से क्या फर्क
0: क्या
1: पड़ता
0: फर्क
1: है
0: पड़ता है,
1: और स्वच्छ रहने से कितना फ्रेश
0: कितना
1: लगता है, कितना
0: फ्रेश
1: अच्छा
0: अच्छा
1: लगता
0: लगता है।
1: है।
0: तो
1: तो
0: उनको मैं बताती भी हूँ कि देखो जब आप बिना नहाए दो स्कूल में आते हो तो एक तो आप बिल्कुल सुस्त सुस्त रहते हो, ना तो पढ़ाई में मन लगता है, ना ही आप खेल कूद कर पाते हो। एक आप नहा के आओ और फिर आप पढ़ने बैठो तो वो बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि नहीं हाँ मैडम, तो वो करते भी हैं,
1: करते
0: दूसरे
1: हैं
0: दिन नहा
1: फिर।
0: के आएंगे फ्रेश होके आएंगे और बिल्कुल वही चीजें करते हैं। तो उनको फर्क पड़ा है, काफी फर्क पड़ा है। एक स्कूल है धामसरा फली गिरवर, तो वहां पर वो बच्चे बहुत एक्टिव थे, स्कूल स्टाफ बहुत एक्टिव था, पर वहां पर चैलेंज ये था कि वो स्कूल क्षतिग्रस्त हो गई। अब
1: जी
0: वो क्षतिग्रस्त होने के कारण उसको दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वहां पर सबसे बड़ा फर्क ये आया कि जैसे जब वो स्कूल के जो बच्चे थे ना जब दूसरे स्कूल में गए तो उनकी आदतों को देख के दूसरे स्कूल के जो बच्चे थे उनमें काफी बहुत बड़ा फर्क आया। तो
1: जी
0: वहां वो स्कूल के टीचर बोलते हैं मैडम यहाँ जब ये बच्चे वहां से यहाँ है ना इस स्कूल में तो इनको देख के इनकी आदतों में सुधार आ गया, यानी कि
1: जी
0: वहां मुझे जाना नहीं पड़ा।
1: बहुत बड़ी उपलब्धि है
0: ये
1: ये।
0: बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि हमने एक साल के अंदर अंदर ये इतना बड़ा चेंजिंग जो आया है बहुत ही बढ़िया है कि यानी कि पूरे स्कूल के क्षतिग्रस्त जो स्कूल थी उसको दूसरे स्कूल में
1: शिफ्ट किया
0: शिफ्ट किया
1: गया
0: गया, तो
1: और
0: उन बच्चों को देख के दूसरे बच्चों में सुधार आया है,
1: मतलब बच्चों ने बच्चों को सिखा
0: बच्चों को
1: दिया।
0: सिखा दिया, वहां
1: जी
0: मेरी जरूरत नहीं पड़ी। तो वहां जब मैं स्कूल विजिट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास 90 स्कूल है तो पॉसिबल नहीं होता है कि मैं हर एक स्कूल में जा पाऊं, तो
1: राइट,
0: मेरा टर्न आता है तो वो 2 महीने से 2.5 महीने लगभग हो जाते हैं एक
1: ओके,
0: स्कूल में,
1: एक
0: क्योंकि
1: स्कूल में।
0: मुझे पर डे स्कूल 2 करनी पड़ती है। तो दूसरे स्कूल का जब टर्न आता है तो वो 25 से 30 दिन पूरे हो जाते हैं या 30 से 35 भी हो जाते हैं, क्योंकि कई संडे भी आ जाते हैं, छुट्टियां भी हो जाती हैं। तो 2 2.5 महीने मुझे लगभग दूसरे स्कूल में पहुंचने में, दूसरा टर्न विजिट होने में बहुत टाइम हो जाता है। तो वहां जब मैं गई तो उन्होंने मुझे ये बोला, बोले मैडम आप नहीं आए लेकिन हमारे को ये फायदा हुआ है कि ये जो बच्चे आए ना इनको देख के हमारे बच्चे सुधर
1: सुधर
0: गए,
1: गए जी,
0: इनको देख के हाथ धोना सीख गए,
1: यही सफलता है
0: ये सफलता
1: एक्चुअली।
0: है। तो ये बहुत बड़ा हमने चेंजिंग आया है।
1: जी आपको पर्सनली क्या बेनिफिट हुआ है जब आप बच्चों के साथ बात करते हैं, वो आदत सीख जाते हैं, खुशी तो होती है,
0: खुशी होती
1: लेकिन
0: है,
1: और क्या महसूस करते हैं आप?
0: मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जो हमने टारगेट लिया या जो मैंने मेहनत करी वो आज मेरी मेहनत सफल हो रही है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि बच्चे बिल्कुल वाकई में स्वस्थ रहें, है ना। जो ठीक है सरकार जो काम कर रही है वो ठीक है करने दो, लेकिन बच्चों में वाकई में ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि आज मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी तो अपने बच्चे को ये सब चीजें सिखाती हूँ ना कि नहीं हाथ धोने चाहिए या जो भी अच्छी आदत है वो आनी चाहिए। तो क्यों ना हम उन बच्चों के लिए काम करें जो बिल्कुल उस स्तर से उठकर आते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं तो मेरा तो खुद का यही रहता है कि मैं जहां जाऊं ना अपना कॉन्सेप्ट पूरा करूं और कुछ ना कुछ बच्चों को सिखा के ही आऊं
1: जी
0: और उनमें कुछ ना कुछ बदलाव
1: बदलाव
0: आए।
1: आए हैं।
0: 100% नहीं कह सकती लेकिन ठीक है, 100 में से 20 भी आ गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है,
1: जी बिल्कुल,
0: 50
1: और
0: भी नहीं कहती मैं तो।
1: ऑलरेडी कर रहे हैं आप और
0: कर रही
1: सफलताएं
0: हूँ,
1: भी आपके
0: सफलता है
1: सामने
0: और मेरे
1: हैं।
0: सामने है, और टीचर्स का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। यहाँ के अपने CBO हैं, टीचर्स स्टाफ है, PO हैं, बहुत अच्छा स्टाफ रहता है। वो खुद बोलते हैं कि मैडम आप बच्चों के साथ तो करते ही हो लेकिन जो हमारे जो मिड डे मील का जो खाना बनाते हैं ना उनको भी आप ये चीजें बता दो तो और भी ज्यादा बेस्ट है,
1: सही बात है।
0: क्योंकि साफ सफाई का पार्ट तो सबके लिए है।
1: हाँ राइट, तो यहाँ के
0: तो
1: जो समुदाय हैं, महिलाएं हैं, तो क्या गलत धारणाएं आप देख रहे हैं जो स्वच्छ नहीं रहते हैं वो लोग, क्या अवधारणाएं हैं उनके अंदर?
0: उनकी अवधारणाएं ये है कि उनको लगता है कि कुछ नहीं होता है, बीमारी जैसा कुछ है नहीं, ठीक है हमारे बच्चे गंदे भी रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हालांकि माएं उनको इतना ज्यादा रखती भी नहीं है। गलत धारणाएं तो है उनकी कि क्या ही सफाई, सफाई से कुछ नहीं होता है, हम जैसा रह रहे हैं हमारा जो कल्चर हम पहले भी तो रहते थे तो ये आज हमको क्यों आके हाथ धुलवा रहे हैं,
1: जी
0: वो उनकी धारणा है
1: जी
0: कि
1: उनको नहीं
0: सफाई
1: समझ
0: उनको
1: में आ रहा
0: नहीं
1: है कि
0: समझ में आता
1: पॉल्यूशन
0: है,
1: ये वो
0: पोल्यूशन है
1: सब।
0: ये सब चीजें हैं कि हाँ वाकई में मेरा बच्चा गंदगी की वजह से बीमार होता है, वो थोड़ा उनका अंधविश्वास भी रहता है कि नहीं पता नहीं क्या ही कुछ हो गया है मेरे बच्चे को, तो वो डॉक्टर के पास ना ले जाके पता नहीं वो कहीं ले जाते हैं बच्चों को
1: भोपा भोपी के
0: वो
1: पास।
0: पाप, हाँ वो सबसे ज्यादा वो करते हैं। तो वो चैलेंजिंग है, कम्युनिटी के साथ है, लेकिन
1: जी
0: जैसे जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं तो वो खुद में बदलाव लाते हैं।
1: जी जी बिल्कुल। उनके पेरेंट्स के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है जो बच्चों के लिए आप काम करते हैं तो?
0: बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना स्कूल में, भले ही उनके साथ चाहे मारपीट हुई हो चाहे अच्छी बात हुई हो, वो जाके घर पे पेरेंट्स को बताते ही हैं।
1: हाँ बिल्कुल,
0: कुछ भी घटित होता है ना उनके साथ तो वो घर पे जाके पेरेंट्स को बताते ही हैं कि आज हमारे स्कूल में ये मैडम आई थी, उन्होंने हमें ये बताया था, ये बताया था, ये करवाया था, तो वो बहुत फर्क पड़ता है। तो कई कई पेरेंट्स जागरूक भी हुए हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं सबके लिए नहीं कह सकती कि नहीं वो जागरूक नहीं है, लेकिन हाँ कुछ पेरेंट्स कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर वाकई में अवेयरनेस को लेके बहुत अच्छी चीजें हुई हैं। आज भी जैसे कई गांवों में ऐसा था कि बच्चों को साफ सफाई से नहीं रखते थे, है ना, जहां बैठते वहां उनकी आदत थी कि थूकना है, गंदगी करनी है ना, ये सब चीजें थी। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग आया है, वो बच्चों को लेके थोड़ा सा अवेयर हुए हैं कि हाँ हमें बच्चों को सफाई से रखना है ताकि ये बीमार ना हो। तो नहलाने की आदत है उनको, सफाई से रखने की आदत है, तो वो हुई है, तो मैंने भी देखी है।
1: जी बिल्कुल। और एक सवाल ये है कि लोग सोचते हैं कि शौचालय और साफ पानी उपलब्ध करा देना ही पर्याप्त है स्वच्छता के लिए, या लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना जरूरी है, आप बताइए।
0: लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ठीक है गवर्नमेंट ने बनाए हैं शौचालय, लेकिन आज उन शौचालयों का कहीं प्रयोग नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि शौचालय में प्रयोग करेंगे तो हमारे पास गंदगी आएगी, तो वो खुले का प्रयोग करते हैं,
1: उल्टा
0: उल्टा
1: सोचते
0: सोचते हैं वो कि ये पता नहीं गवर्नमेंट ने, वो आज शायद गवर्नमेंट ने बना के भी दिए हैं शौचालय, तो मैंने कई जगह कई गांवों में देखे हैं वो उसका उपयोग ना करके उसमें उन्होंने भूसा भर दिया है,
1: भूसा,
0: कहीं भेड़ बकरी बंधे हुए हैं, कहीं वो है, तो उनकी मानसिकता ये है कि ठीक है कि ये तो खाद बन जाती है, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि कितनी गंदगी फैलती है,
1: पानी में मिल जाता है,
0: पानी में मिल जाता है, ग्राउंड
1: वाटर
0: हो जाता है, तो वो थोड़ी सी उनकी मानसिकता है। लेकिन हम शौचालय बना के देना ये सॉल्यूशन नहीं है, उनको अवेयरनेस की सबसे ज्यादा जरूरत है, बदलाव की ज्यादा जरूरत है, जागरूकता, यूज कैसे करना है, ये सब चीजें। लेकिन जैसे हम कम्युनिटी में जाते हैं ना, तो खुले का शौच का भी उनको प्रयोग का जो ये करते हैं उनके बारे में भी हम उनको बताते हैं कि आप जो खुले में शौच करते हैं ना वो बहुत सबसे ज्यादा घातक बीमारियों का वो
1: कारण है,
0: कारण है कि आप जब खुले में शौच करते हैं, तो वो हम उनको उदाहरण देते हैं, मक्खी का देते हैं और किसी भी चीज का देते हैं कि आप जब ये करते हैं ना तो वो आपके खाने पर आके बैठती हैं, आपके पानी पे जाके बैठती है, तो वो अपने साथ बहुत सारी गंदगियां लेके आपके खाने पे बैठती हैं।
1: सही बात है।
0: तो हम उनको बताते भी हैं कि अगर आप भले ही खुले में शौच करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको मिट्टी से ढक दो ताकि वो दूसरी जगह गंदगी ना फैला सके, लेकिन उनके मन में तो जो होता है वो वही करते हैं।
1: धीरे धीरे बदलाव,
0: धीरे धीरे बदलाव कम्युनिटी में, धीरे धीरे बदलाव आएगा, थोड़ा समय और लगेगा अवेयरनेस को लेकर, लेकिन जहां पर लोग जो पढ़े लिखे जो अभी की जनरेशन है वो इस चीज को समझती है, जो पुराने लोग है वो नहीं समझते, लेकिन जो अभी की जनरेशन है जो पढ़े लिखे
1: अभी स्कूल में है,
0: स्कूल कर चुके हैं, क्योंकि वो उन चीजों को समझते हैं, लड़कियां हैं लड़के हैं तो खुले में शौच तो नहीं करती,
1: क्योंकि आजकल इंटरनेट
0: ज्यादा देखते हैं,
1: तो देखते लोग कैसे रह रहे
0: हैं, तो वो थोड़ा सा फर्क तो है, अभी इतना खुले में शौच है, लेकिन वो जो बिल्कुल मानसिकता उनके पुराने लोग हैं वो लोग करते हैं, लेकिन अभी की जनरेशन तो नहीं करती है। पहले लड़कियां खुले में नहाती थी, आजकल लड़कियां खुले में नहीं नहाती हैं,
1: उनको पता है
0: कि
1: कितना दुरुपयोग
0: हो सकता है
1: अगर हम खुले में,
0: सोशल मीडिया का उनको डर रह गया है कि नहीं अगर कहीं हम खुले में नहा लेंगे, नहीं तो पहले जब मैं फील्ड में काम करती थी तब मैं देखती थी हेडपंप पे लड़कियां औरतें ऐसे ही नहा रही होती है,
1: जी,
0: तो आजकल अब वो चीजें नहीं है,
1: अब वो वॉशरूम वगैरह,
0: अब वो वॉशरूम का, हाँ वो भले ही चार ऐसे साड़ियों का या जैसे भी तिरपाल का बना लेते हैं और उसी में नहाते हैं और शौच का भी वो प्रयोग करते हैं,
1: जी
0: करते हैं,
1: अभी अवेयरनेस धीरे धीरे
0: धीरे धीरे आ रहा है, 100% तो नहीं कहेंगे, 50 भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 35 तो कह ही सकते हैं कि इतना तो है।
1: जी जी, तो क्या आप बच्चों को वेस्ट मैनेजमेंट भी सिखाते हैं?
0: बिल्कुल,
1: हेल्थ एंड हाइजीन के साथ,
0: हाइजीन के साथ साथ उनको सिखाते हैं कि जैसे अपने जो कचरा होता है उसको आप यूज में भी ले सकते हो, आप जैसे मान लो कई चीजें वो डब्बे वगैरह हैं तो वो फेंक देते हैं, कर देते हैं, तो उसको हम वहां जाके कूड़ेदान बना देते हैं उसका जाके,
1: जी
0: कि आप इसको फेंको मत,
1: हाँ
0: इसको आप यूज में लो,
1: जी
0: है ना, या आप कचरा भी फेंकते हो तो उसको भी यूज में लो। आर्ट जो होता है ना अपना कोलाज,
1: जी
0: वो हम कोलाज करवा देते हैं उनसे काम, कि आप इसको फेंको मत, कोई भी चित्र बनाओ और इसको कोलाज की तरह इसका उपयोग कर लो,
1: जी
0: तो वो बच्चे करते हैं। और कुछ डब्बे हुए तो उनका हम कूड़ेदान बनवा देते हैं, या कुछ उनसे ही कुछ क्रिएटिव करवा लेते हैं तो वो करते हैं। वेस्टेज का तो हम बताते हैं,
1: वेस्टेज का आप उनको
0: बिल्कुल।
1: बताते हैं। तो यानी कि आप सिर्फ SDG 3 और 6 के साथ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सस्टेनेबल सिटीज या कम्युनिटीज,
0: बिल्कुल,
1: रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन कैसे होगा,
0: कैसे
1: उसका
0: होगा,
1: प्रोडक्शन, ये हेल्थ एंड सैनिटेशन के साथ भी जुड़ जाता है,
0: जुड़
1: यानी कि
0: जाता
1: SDG
0: है।
1: 11 और 12 पे भी आप कार्यरत हैं। तो आपके काम के दौरान जैसे आप कहानी बता रहे थे, तो ऐसी कौन सी कहानी है जो सबसे आपके हृदय के करीब हो, जो आपको इसके रिजल्ट सुन के जान के अच्छा लगा है?
0: आवली फली एक स्कूल है, मैं मेरी नजरों में वो सबसे बेस्ट है
1: जी
0: आवली फली। वहाँ के टीचर्स एंड बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, वहाँ के स्टाफ इतना बढ़िया काम करते हैं, बहुत अच्छा। मेरे लिए तो वो बेस्ट है, और बहुत, यानी कि उनको, यानी कि कई स्कूलों में ऐसे बोलने का तरीका बच्चों का, लेकिन वहाँ के बच्चों का बोलने का तरीका, वहाँ पर बच्चे ऐसे बोलते हैं मैडम जी,
1: जी अच्छा ओके, रिस्पेक्टफुल बात करते
0: रिस्पेक्टफुल
1: हैं।
0: बात करते हैं। आप कोई भी हो, अनदर पर्सन या टीचर हो, कोई भी हो, तो वो रिस्पेक्टफुल बात करेंगे, मैडम जी हमने ये किया, मैडम जी हमने वो किया। मैं वहां जाती हूँ तो मुझे वो आने नहीं देते हैं,
1: जी प्यार करते हैं
0: बिल्कुल,
1: बहुत।
0: बहुत प्यार करते हैं कि मैडम जी आप जाओगे नहीं, आप यहीं रहोगे, आप 1 बजे तक यहीं रहोगे, आप हमारे साथ ये एक्टिविटी करोगे, आप ये एक्टिविटी करोगे। वो पहले से तैयार रहते हैं कि मैडम आप क्या करवाने वाले हो हमसे,
1: बहुत उत्सुकता से
0: इस
1: इंतजार करते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: उत्सुकता से इंतजार करते हैं कि आज मैडम आई है तो क्या करवाएंगी।
1: जी
0: शायद मुझे लगता है मेरा तो टैग भी चेंज हो गया है, मेरा नाम खुशबू है, लेकिन मुझे बोलते हैं हाथ धुलाने वाली मैडम आ गई।
1: हाथ धुलाने वाले मैडम जी, लेकिन कोई फर्क नहीं
0: कोई
1: पड़ता
0: फर्क
1: है,
0: नहीं
1: अच्छा
0: पड़ता है,
1: लगता होगा
0: अच्छा
1: और
0: लगता है कि चलो ठीक है, कुछ तो मेरे लिए, कुछ तो टैग मिला है कि हाँ कुछ तो करती हूँ ना जाके। टीचर्स भी देख के खुश हो जाते हैं, और बच्चे मुझे, मैं अंदर एंटर स्कूल में होती हूँ, मुझे दूर से पहचान जाते हैं, चाहे
1: मैडम
0: मैंने
1: आ गई
0: चेहरा
1: हैं,
0: बांधा हुआ होता है, चाहे कुछ भी होता है, दूर से पहचान जाते हैं, हमारी खुशी दीदी आ गई है,
1: खुशी दीदी बुलाते
0: खुशी
1: हैं।
0: दीदी बुलाते हैं, हमारी खुशी दीदी आ गई है, हमारी हाथ धुलाने वाली मैडम आ गई है, अब तो
1: जी
0: कुछ नया करवा के ही जाएंगी। तो वो बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो कहीं ना कहीं ठीक है, अपन काम कर रहे हैं, काम करके दे रही हूं, वो बात अलग है, लेकिन जो मन को
1: सुकून और
0: सुकून
1: शांति,
0: शांति जो देती है ना, वो वहीं जाके बच्चों की चेहरे की खुशी।
1: खुशी जी, आपके नाम भी सार्थक हो जाते
0: हाँ बिल्कुल,
1: हैं।
0: मेरा नाम सार्थक हो जाता है, टीचर्स भी बोलते हैं मैडम आपको देख के बच्चे ऐसे खुश हो जाते हैं, आपके जो नाम है ना वो आप खुशबू फैला जाती है बोले
1: सही
0: स्कूल
1: बात है,
0: आके,
1: सही बात है, सही बात
0: ऐसा
1: है,
0: है। तो वो
1: बिल्कुल
0: मुझे
1: सही।
0: भी बहुत खुशी मिलती है कि ठीक है, जो मैं काम कर रही हूँ, कम से कम कुछ तो उसका परिणाम मुझे मिल रहा है, या कुछ तो बच्चों में मुझे देखने को मिल रहा है।
1: जी जो यूथ सुन रहे हैं आपको इस वक्त, जो चाहते हैं कि हमारे आबू रोड में बदलाव हो, स्वच्छ हो, और स्कूल्स में खास करके हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान रखा जाए, तो वो कैसे जुड़े आपके साथ?
0: मैं तो ये कहूंगी, अगर जुड़ना ही है तो अपने आसपास के बच्चे हैं, आसपास की कम्युनिटी है, तो उनको थोड़ा सा अवेयरनेस के प्रति जागरूक करो, क्योंकि कोविड जब आया था ना तो हमने स्वच्छता का ही ध्यान रखा था, है ना, कोविड आया था तो हमने स्वच्छता का ही ध्यान रखा था, कि हम कैसे हाथ धो रहे हैं, बार बार हमने हाथ धोए थे ताकि अपन को कोविड ना हो। तो मैं चाहती हूँ वो महामारी फिर से ना आए, वो पूरी स्वच्छता के ऊपर ही थी, कि बार बार हाथ धोना है, सब्जियों को ला रहे हैं तो हाथ धोना है, फल फ्रूट खा रहे हैं तो हाथ धोने, फल फ्रूट धोने हैं, सब्जियां धोनी है, एटलीस्ट कई ने तो साबुन से फल फ्रूट धोए थे, सरफ से फल फ्रूट धोए थे। तो मैं चाहती हूँ वो महामारी फिर से ना आए, क्योंकि स्वच्छता अपनी लाइफ का बहुत बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है और पार्ट भी है। अगर हम अपने खुद की स्वच्छता है, अपने आसपास की स्वच्छता रखेंगे तो हम खुद ही स्वस्थ हो जाएंगे।
1: बिल्कुल
0: तो मैं तो
1: बिल्कुल
0: यही कहना चाहूंगी यूथ को, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें ताकि हम स्वस्थ रहें,
1: स्वस्थ रहे।
0: स्वस्थ
1: तो आम
0: रहें।
1: नागरिक को भी यही आप बताना चाहेंगे, क्या 3 स्टेप हम अपना सकते हैं अपने आसपास को स्वच्छ रखने के लिए?
0: स्वच्छ रखने के लिए 3 स्टेप यही है कि हम अपने आसपास गंदगी एक तो जमा ना होने दें, है ना, और बच्चों में आदतें डाल दें कि वो कहीं से भी बाहर से आए, चाहे कुछ भी खाएं, तो वो हाथों को जरूर धोएं, और डेली बेसिस पे नहाना और ये सब तो होता ही है, और अपने आसपास गंदगी ना होने दें,
1: जी तो ये 3 बातों का
0: तीन बातों
1: ये
0: का बिल्कुल ध्यान
1: ध्यान रख
0: रखें।
1: सकते हैं हम। अभी वक्त हो गया यहाँ से अलविदा कहने का, तो आप जाते जाते क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश
1: स्वस्थ
0: रहें,
1: रहें, मस्त रहें और खुशबू जी के तरह खुश
0: खुश
1: रहें।
0: रहे
1: और जितना सहयोग आप कर सकते हैं हमारे कम्युनिटी के लिए, हमारे आसपास के जो बच्चे रह रहे हैं, आम नागरिक रह रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: एंड बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि आगे भी हम आपके साथ जुड़ करके
0: बिल्कुल
1: कार्य करेंगे और नई दुनिया नया जमाना लाने की कोशिश करेंगे, और जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसे हम हमारे रेडियो के माध्यम से श्रोताओं तक तो पहुंचाने
0: बिल्कुल
1: की प्रयास करेंगे। धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो यहीं पर रुकना चाहेंगे नई दुनिया नया जमाना इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आपने खुशबू जी को सुना, आपको कैसा लगा आज का कार्यक्रम? आप हमें बता सकते हैं 9414-1415 पर। ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड, इस संस्था से जुड़ करके आबू रोड के आसपास खुशबू फैला रहे हो, यानी कि स्वच्छता को कैसे हम बरकरार रखें और हेल्थ और सैनिटेशन के ऊपर ध्यान दें, उस बात के लिए वो प्रयास कर रहे हैं एकदम ग्राउंड जीरो लेवल पर। तो नई दुनिया के हमारे श्रोताओं के लिए आपने जो संदेश दिया, बिल्कुल इस पर हम गौर करेंगे और बदलाव की शुरुआत हम अपने आप से करेंगे। यहीं पर रुकते हैं। नमस्कार।

0: उंगलियों के बीच में सफाई थोड़ी कर लो,
1: उंगलियों के बीच में सफाई थोड़ी कर लो,
0: उंगलियों के बीच में सफाई थोड़ी कर लो,
1: उंगलियों के बीच में सफाई थोड़ी कर लो,
0: अंगूठे को गोल गोल के गोल गोल के धो लो,
1: अंगूठे को गोल गोल के गोल गोल के धो लो,
0: नाखूनों को अच्छे से सफाई थोड़ी कर लो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शुभा। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे पर्यावरण प्रहरी उपस्थित हैं जिन्होंने केवल बातें नहीं की बल्कि अपने कार्यों से ये साबित किया कि यदि संकल्प मजबूत हो तो प्लास्टिक का कचरा भी समाज के लिए उपयोगी संसाधन बन सकता। जी हाँ, कार्यक्रम है नई दुनिया नया जमाना। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पर्यावरण प्रेमियों के साथ बात करते हैं, इस प्रकृति को बचाने के लिए जो कार्यकर्ता कार्य करते हैं, उस धरती माता के सपूत बच्चों से हम बात करते हैं। तो हमारे आज के विशेष अतिथि हैं पर्यावरण प्रेमी संरक्षण समिति के संस्थापक श्री अनिल कुशवाहा जी, जो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा से हैं। लगभग 40 साथियों की टीम, जिसमें महिलाएं भी सक्रिय रूप से जुड़ी हैं और साथ मिलकर के पॉलीथिन मुक्त अभियान, इको ब्रिक्स निर्माण, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और वेस्ट बैंक और बर्तन बैंक जैसी अनूठी पहले चला रही हैं। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि इको ब्रिक्स से बनाया गया आई लव ब्यावरा इस सेल्फी पॉइंट को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस कार्य के लिए सराहा भी। तो आइए बिना देर के स्वागत करते हैं श्री अनिल कुशवाहा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में।
1: जी मैडम, आर
0: थैंक यू सर। और सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे सर, पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
1: जी मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। तो हमारे संघ में पंच परिवर्तन को लेके पूरे देश भर में काम चल रहा है, जिसमें एक पर्यावरण को लेके भी हम काम करने वाले थे पूरे देश भर के अंदर। तो उसमें पॉलीथिन को लेके एक विशेष करके एक अभियान पूरे देश भर में चल रहा है कि प्लास्टिक और पॉलीथिन का कम से कम उपयोग हो, इस दिशा में काम करना था
0: जी।
1: तो इसकी प्रेरणा संघ से मिली।
0: जैसे आपको तो प्रेरणा मिली संघ से, तो ये समिति बनाने की सोच आइडिया कहाँ से आया?
1: अब पर्यावरण को लेकर देश भर में विभिन्न जगह पे लोग अपने स्तर पे पेड़ लगाने का, जल संरक्षण का काम करते हैं, प्लास्टिक पॉलिथिन मुक्त को लेकर भी कई जगह लोग काम करते हैं। लेकिन मैंने विचार करा, अगर इस काम को मैं इकल्ला अगर अपने अगर इस काम को करूंगा तो हो सकता है लोग मेरा सहयोग करें ना करें ऐसा। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना एक टीम बना के ये काम करा जाए, क्योंकि जब तक किसी काम को बड़ा काम करने के लिए ज्यादा ज्यादा लोग नहीं रहते तो दिक्कतें आती है, काम करने में कठिनाइयां होती है। तो मैंने कुछ लोगों को से बातचीत करके एक ऐसी योजना बनाई कि यार अपन एक पर्यावरण संरक्षण समिति करके एक टीम का निर्माण करते हैं जो अपन पॉलिथिन मुक्त की दिशा में काम करेंगे। तो लोगों का रुझान भी मिला, सहयोग भी मिला, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए तो ये बहुत अच्छा लगा।
0: जी जी जी बहुत खूब। तो जब आपने लोगों को अप्रोच किया, जोड़ने के लिए कोशिश किया, या उनको आपने कन्विंस करने की कोशिश किया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे विचार है, तो क्या ये सहज सफर था या फिर थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा?
1: जानते हैं कि कोई से भी काम सहज नहीं होता, जब तक उसकी सफलता आपको नहीं मिल जाती तो कठिनाइयां तो आती हैं। कई टीम के जो मेरे मेंबर थे उनको भी एक समय ऐसा लगा कि क्या काम है पॉलिथीन बीनना, इको ब्रिक्स बनाना और अपने करने से क्या होगा। फिर कई प्रकार के कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। फिर लोग मेरे को, मेरी टीम के कुछ मेंबर थे, तो जब मैं शाम को जाता था रात को, क्या चलो आज अपन को पॉलिथीन इकट्ठा करके इको ब्रिक्स बनाएंगे, तो मुझे देख के वो भग जाते थे वहां से। तो इधर उधर काल पे फोन लगा के और वो क्योंकि भैया मैं आ रहा हूँ भोजन करके, आज खाना खा के नहीं आया मैं, तो मैं आता हूँ फिर। पर मैंने अपने अपना मनोबल को बढ़ाए रखा, उसको तोड़ा नहीं। फिर जब सफलता मिलते रहे, लोगों का सहयोग मिलता रहा, तो उनको भी लगा कि नहीं यार भैया जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम है, हम सबको सहयोग करना चाहिए। फिर धीरे धीरे जो लोग इधर उधर चले जाते थे उनकी भी रुचि बढ़ती गई और फिर वो भी एक बढ़िया सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका में इस समिति में योगदान देने लगे।
0: जी जी जी बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने चैलेंजेस फेस किया कि पहले पहले लोगों को लग रहा होगा कि ये एक ऐसा काम है जैसे आपने कहा, और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जब सफलता मिली तो लोग फिर जुड़ते गए। तो आपने एक इको ब्रिक्स की बात करी यहाँ पे, तो इको ब्रिक्स तो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन इको ब्रिक्स एक्चुअली क्या होता है, आप कैसे करते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया जो है हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में बताइए।
1: ये बहुत एक सरल और एक सिंपल कार है, ये हम घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं आजकल जितना भी पैकेजिंग जो सामान है, किराने का अन्य उपयोगी सामान, वो सारा सारा पॉलिथीन के अंदर आता है। तो अब वो आता है तो अपन उनको यूज करके बाहर फेंक देते हैं, तो आप बढ़िया उनको इकट्ठा कीजिए अपने घर पे, पानी की बोतलें गर्मी में सब जगह आती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, माजा वगैरह की, ये सब सारी चीजें बॉटल गर्मी में आती है घर पे, तो बढ़िया उसको पॉलिथीन को इकट्ठा करके और जो खाली बोतलें हैं उनके अंदर उन पॉलिथीन को ठूस ठूस के उनको दबा दबा के भरते जाए। जैसे एक पॉलिथीन दबाई उसको बढ़िया, एक लकड़ी ली और उसको दबा दबा के उसको भरा अपन ने, तो बढ़िया वो कम से कम 250 से 300 ग्राम उसका वजन हो जाता है एक बोतलों का। तो ऐसा काम अपन घर पे भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि चार लोगों को मिलके काम करना है अपने को, अपन घर पे भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं।
0: जी, तो ये इको ब्रिक्स मतलब पॉलीथिन से भरा हुआ ईंट कह सकते हैं आप इसको।
1: हाँ, ईट कह सकते हैं, प्लास्टिक के ईट का निर्माण हो जाता है।
0: जी, और ये जैसे बॉटल्स हम यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के, इसके पानी के बॉटल्स, तो उसके अंदर पॉलीथिन भरना होता है। कौन से पॉलीथिन,
1: हाँ,
0: रैपर
1: सिंगल
0: की, किस प्रकार के
1: यूज
0: पॉलीथिन?
1: पॉलिथीन, सिंगल यूज जो पॉलिथीन है जो किराने के माध्यम से आती है, सब्जियों के माध्यम से जो अपन बाजार से सामग्री वगैरह लेके आते हैं, वो सारी पॉलिथीन को अपन उसके अंदर भर सकते हैं।
0: सिंगल यूज
1: मल्टीपेल जो,
0: प्लास्टिक।
1: हाँ, जो चिप्स वगैरह के रेपर होते हैं, बिस्किट वगैरह के जितने प्रकार के रेपर, उन सबको उसके बोतलों के अंदर भर के बड़े एकोब्रिक्स बना सकते हैं अपन, जिससे अपन घर
0: जी
1: पे भी उपयोग कर सकते हैं। बढ़िया पेड़ गार्डन हो तो उसके गार्डन की क्यारी बनाने के लिए, किसी पेड़ की क्यारी बनाने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए बढ़िया उस पर कलर वगैरह करो तो अच्छा, तो एक ईट की जगह उपयोग कर सकते हैं उसका, जिससे प्लास्टिक मुक्त भी हो जाएगी और अपना पर्यावरण का भी संरक्षण हो जाएगा।
0: जी तो ये स्ट्रांग होती है ईंट जैसे, या कैसा रहता है?
1: स्ट्रोंग होती है मैडम, मजबूत हो जाती है, क्योंकि तो इसमें पॉलिथीन जाने के बाद बाहर नहीं निकलती उसमें से।
0: जी, ओके। तो घर में और क्या क्या उपयोग कर सकते हैं हम? मान लीजिए गार्डनिंग के लिए हमने उपयोग किया, गमला भी बना सकते हैं इसको, और कैसे
1: हाँ
0: उपयोग कर
1: बिल्कुल,
0: सकते
1: अभी एक आपने देखा होगा मैंने वीडियो भेजी थी आपको, एक मुर्दा बनाया हमने बैठने के लिए, जो अपने
0: हैं?
1: कोल्ड
0: यस
1: ड्रिंक्स
0: यस
1: की जो 2 लीटर की बाटल होती है,
0: यस
1: बढ़िया उसको ठोस ठोस के भर लिया अपन ने।

0: वो उसको कवर सारी बॉटलों के, 9 बॉटलों को अपन ने सेट बना के उसको चिपका लिया गोंद से, फेविकोल वगैरह से, और
1: जी
0: बढ़िया उसको एक कवर करके उसको बड़े बैठने के एक मुड्ढा बना सकते हैं। हमने बनाया है भी एक मुड्ढा उसको बैठने के लिए,
1: तो
0: तो बढ़िया
1: वेस्ट कपड़े
0: फर्नीचर
1: को
0: के
1: लेकर
0: डिजाइनिंग
1: के
0: अपन काम कर
1: ढक
0: सकते हैं। हाँ
1: के। जी ओके, मतलब पहले आपने बॉटल्स लिए, फिर आपने उसको गूंद चिपकाया, और
0: हाँ
1: एक समान साइज के आपने बॉटल्स लिए, और उसके
0: समझ
1: बाद
0: सकते
1: उसको
0: हैं।
1: चिपकाने के बाद फिर आप कोई भी वेस्ट कपड़े को उसके ऊपर ढक के सिलाई कर सकते हैं, या
0: हाँ
1: ऐसे ही ढक के
0: बताओ,
1: उसको स्टूल बना सकते हैं।
0: कवर बना के उसका बढ़िया अच्छा है बिल्कुल
1: ओके, उसका कवर बना के आप उसे बैठने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जी
0: बिल्कुल।
1: जी जी बहुत बढ़िया सर। सर अब तक आपने 700 से अधिक इको ब्रिक्स लगाए हैं, तो इसमें सबसे यादगार परियोजना कौन सी रही है? मतलब आपको सबसे अच्छा क्या लगा जब आपने इको ब्रिक्स का इस्तेमाल किया?
0: हमने पहला एक हमारे वो शिशु मंदिर है, विद्यालय है बच्चों का, वहाँ पे हमारे सर्वप्रथम एक पेड़ की क्यारी बनाई। तो
1: जी
0: पहला पहला एक वो काम था पेड़ की क्यारी बनाना, तो बड़े जुनून भी था। तो वहाँ के जो टीचर वगैरह और बच्चे थे सब देख रहे थे कि ये क्या है, तो उनको बताया सब सारी चीजें। तो उनका भी कुछ जो उसमें मैम वगैरह भी थी टीचर्स वगैरह, तो उनको भी सब पता है इसके बारे में। बढ़िया रहा, पर सोशल मीडिया पे हमारा भी एक चैनल है जो आपने देखा है, पर्यावरण
1: जी
0: प्रेमी करके। तो जब
1: जी
0: उसको जो सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम यूट्यूब पे उसकी वीडियो डाली, तो लोगों का रुझान चेंज हुआ कि यार ये पॉलिथीन और ये प्लास्टिक जिसको अपन कचरा समझ के बाहर फेंक देते हैं, इसका इतना अच्छा भी उपयोग हो सकता है। तो लोगों के बढ़िया, जो हमारे जो नगर में रहने वाले जो कुछ साथीगण है, महिलाएं वहां तक सकती है, उनका रुझान बढ़ा। तो उनके फोन आने लगे कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं। तो उनको बताया कि ऐसे इस प्लास्टिक की बॉटल से इको वृक्ष बना के इनको अंदर बॉटल के अंदर पॉलिथीन भर के हम बढ़िया इस प्रकार की क्यारी बनाई है। तो लोग उसको देखने गए, तो उन्होंने कह रहे ये क्या नया प्रयोग क्या करा इन्होंने। तो
1: जी
0: वो सबसे अच्छा यादगार रहा मतलब हमारा, जिससे हमें भी मतलब एक मोटिवेट हुए, पूरी टीम को भी एक बहुत अच्छा लगा कि वो सोशल मीडिया पे जब वो पहली वीडियो जब हमारी यूट्यूब पर डली, तो वो 3 घंटे में 5,000 लोग उसको देख चुके थे।
1: जी क्या बात है सर। जी ग्रेट, आपने इंस्पायर किया सबको। हमें लगता है कि छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे परिवर्तन कर रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन एक बड़ा बदलाव लेकर के आता है। आपको देख करके और लोग भी प्रयास करते होंगे, और आपके साथ
0: मेरा
1: महिलाएं
0: जी
1: भी मिल रहे हैं अभी। जी बताइए
0: जी
1: सर,
0: मतलब
1: आप
0: मैं सोचना है मेरा कि जैसे कोई सा काम बड़ा नहीं होता, अपन कहते हैं कि जो एक दिन में नहीं होने वाला काम वो एक दिन जरूर होता है, लेकिन आप कंटिन्यू करते रहेंगे उस काम को, तो वो एक दिन में नहीं होने वाला काम एक दिन जरूर होगा।
1: यस बिल्कुल, एक दिन जरूर होगा। इस सोच के साथ, इस लक्ष्य के साथ हम काम करेंगे तो परिवर्तन जरूर होता है। सर आपके साथ महिलाएं भी शामिल हैं, और जो आपने सेल्फी पॉइंट बनाया था आई लव
0: जी
1: व्यापरा करके, प्रधानमंत्री जी भी आपकी जो महिलाएं हैं टीम में उनकी कार्य को सराहा उन्होंने, और मन की बात में भी ये सराहना की गई आप लोगों के कार्य को। तो उस पल का
0: जी
1: अनुभव कैसा था?
0: अब क्या इतना एक विश्वास नहीं था कि हमारे काम के इतने कम समय में, क्योंकि जिस दिन मोदी जी ने हमारे काम की प्रशंसा की उस दिन हमको उस काम को करे हुए 6 महीने फिक्स हुए थे। उस दिन मतलब जो 28 तारीख शायद, हाँ 28 तारीख के का कार्यक्रम था मोदी जी का वो, तो इतनी मन में प्रसन्नता हुई कि मैं बता नहीं सकता आपको। जो हमारे साथ जो महिला है, जो हमारी दीदी वगैरह हमारे साथ इस काम में सहयोग कर रही है हमको, वो भी इतनी खुश हुई उस काम को देख के। और मतलब वो कह सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं इस भावना को कि एक देश के, एक पूरे विश्व के एक इतने बड़े नेता, और उन्होंने इस छोटे से काम की प्रशंसा की, तो एक सबके मन में एक भूतपूर्व मतलब बढ़िया एक खुशी का पहल था। वो पूरा दिन मतलब सबके चेहरे पे खुशी थी।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, और प्रेरणा भी मिली होगी कि और आगे ऐसा कार्य हम करते रहे।
0: सब जो टीम के और अन्य मेंबर थे, दीदी वगैरह, वो इतने उस काम मोदी जी के प्रेरणा से इतने मोटिवेट हुए, तो उन्होंने लक्ष्य बना लिया अपना कि इस काम को और आगे लेके जाना।
1: जी बहुत बढ़िया सर। आपकी टीम में जो महिलाएं हैं वो कैसे आपके साथ जुड़ी, और उनकी क्या भूमिका है आप बता सकते हैं?
0: हाँ क्या है, वो हमारे टीम में क्या एक मेरी दीदी हैं, हमारे मोहल्ले में रहती है एक पिंकी दीदी करके। तो
1: जी
0: मेरा क्या है, जन्मदिन था जिसे इस काम की शुरुआत करी मैंने 26 जनवरी को, एक दिन पहले। तो सब लोगों के फोन वगैरह आए मेरे पास उनकी बधाई देने के लिए, तो उन्होंने की भाई साहब आपका जन्मदिन मनाना है। तो मैंने कहा केक वगैरह तो काटते नहीं है अपन, पर मुझे गिफ्ट चाहिए आपसे। तो उन्होंने की बताओ आपको क्या गिफ्ट चाहिए। तो मैंने कि मेरे को केवल एक बोतल के अंदर पॉलीथिन भर के आप दे सकते हैं क्या। तो वो सोचने में पड़ गए, उन्होंने कि बोतल के अंदर पॉलीथिन भर के, तो उन्होंने कि इसको क्या, मैंने कि इसको इको ब्रिक तो बोलते हैं, तो आपके घर में जो जितनी भी पॉलीथिन वगैरह है उसको इकट्ठा कीजिए और एक बोतल मेरे को भेंट कीजिए मेरे जन्मदिन पे, यही मेरा उपहार है मेरे जन्मदिन पे।
1: क्या
0: तो वो
1: बात है
0: लेके
1: जी।
0: आ, और भी जो साथीगण थे वो भी एक सब लेके आ, जैसे 20-25 बॉटल उस दिन मेरे जन्मदिन पे इकट्ठी हो गई। तो दीदी को फिर मैंने बताया कि दीदी ऐसा ऐसा अपन एकोब्रिक से बढ़िया निर्माण करने वाले हैं मैं, तो उनकी भी 4-5, उनकी क्या बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी मोहल्ले में हमारे। तो वो क्या
1: जी
0: है कि कोई से भी कार्यक्रम करना महिलाओं का, तो 15-20 महिलाएं सहज में इकट्ठी हो जाती थी। किसी धार्मिक कार्यक्रम वगैरह करना है, भजन भजन जो भी सब सारी चीजें, तो उनके क्या है कि लीडरशिप करने की एक उनके अंदर क्वालिटी थी, तो वो तुरंत उस काम में लग गई तो उनको अच्छा लगा। तो ऐसे ही ब्यौरा में हमारे अनिला गुजराती करके दीदी हैं, वो इस काम को 1 साल पहले से कर रही है। वो अपने स्वयं के व्यक्तिगत प्रयास से अपने 100 इको ब्रिज की वाटर लगा चुकी है पहले। तो जब उन्होंने सोशल मीडिया पे मेरे 27 तारीख को जब वीडियो डाला हमने, तो उन्होंने वीडियो देखा तो उनका फोन आया मेरे पास। उन्होंने बताया कि भाई साहब मैं ये काम तो 1 साल हो गया मुझे करते करते, और आपको
1: जी
0: शुभकामनाएं, जन्मदिन की बधाई भी दी उन्होंने मेरे को। तो मैंने बोला दीदी मेरे को बधाई नहीं चाहिए जन्मदिन की, मैंने आप ये काम कर रहे हो तो मुझे तो आपसे इको ब्रेक चाहिए। तो उन्होंने 9 वाटल मेरे जन्मदिन पे मुझे सप्रेम भेंट की इको ब्रेक की।
1: क्या बात है सर जी।
0: तो ऐसा नहीं है कि अपन ही कुछ अनोखा काम कर रहे हैं, संसार में बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं लेकिन दिखते नहीं है।
1: राइट
0: उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली, अनिला दीदी है वो, अनिला गुजराती, उनसे भी प्रेरणा मिली। तो आज वो भी हमारी टीम में, तो ऐसे महिलाएं जुड़ते गई एक दूसरे के माध्यम से, सबको अच्छा लगा। तो आज बढ़िया एक महिलाएं भी, 15-20 महिलाएं हमारी टीम में हैं युवाओं के साथ।
1: क्या बात है जी सर, बहुत बढ़िया कि महिलाएं भी आपके साथ मिलकर के ये कार्य कर रहे हैं। उसके साथ साथ बर्थडे वाले दिन आपने जो गिफ्ट्स मांगी सबसे, ये
0: जी
1: अनोखे तरीके से एक पर्यावरण प्रेमी ही कर सकता है सेलिब्रेशन इस प्रकार से। तो आपने इसे सेलिब्रेट किया इको ब्रिक्स उपहार में लेते हुए, और इस कारवा को आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं, बहुत खूब सर। तो आपसे जानना चाहेंगे, प्लास्टिक से जो ट्री गार्ड वगैरह बनाते हैं आप, डस्टबिन भी बनाते हैं, पेन बॉक्स जैसी उपयोगी वस्तुएं भी आप बनाते हैं, तो ये धीरे धीरे धीरे धीरे आपने किया होगा, तो कैसे किया और कहाँ स्कूलों में कहाँ आप इसका उपयोग करते हैं, ये भी हमारे श्रोताओं को।
0: ठीक है, ये ध्यान में ऐसे आया, मेरे मित्र हैं, मेरे खास 2 मित्र हैं एडवोकेट तरुण जी सेन और काना कुशवा। तो इन्होंने बोला कि भैया अपन इको ब्रिज कब तक बनाएंगे, ये एक स्थायी विकल्प इसका नहीं है। क्योंकि तो क्या है कि उस समय जब हम उस काम को कर रहे थे तो लोगों का जुड़ना और वो हमारा सहयोग करना, तो और फिर हमारी भी टीम थी जो 25-30 लोगों की उस समय टीम हो गई थी। तो जब हम रोज
1: जी
0: आते तो सहज में 20-25-30 बॉटल इको ब्रिक्स हम रोज पर डे बनाते थे, पर वो ढेर लगने लगा। तो उन्होंने कहा भैया ये स्थायी समाधान नहीं है, तो अपन इसको रिसाइकिल करने पे ध्यान देते हैं। तो तरुण जी ने और काना ने दिमाग लगाया, यूट्यूब पे रिसर्च वगैरह करा, क्या इसको अपन मेल्ट करके बढ़िया इससे विभिन्न प्रकार की चीजें वैसे बना सकते हैं अपन। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा ये बात भी सही है। तो
1: जी
0: जब हमने रिसर्च करा, ध्यान यूट्यूब वगैरह पर सर्च करा, तो देखा तो इससे विभिन्न प्रकार की चीजें अपन बना सकते हैं, जो भारत में भी और अन्य विदेशों में भी इसको रिसाइकिल करके चीजें बन रही। तो हमने भी ट्रिगार्ड, एक पेट जो आपने देखा होगा तख्ती जिसको बोलते हैं हम, जो पेपर वगैरह देने जाते थे उसको लेके जाते थे उस समय, तो वो तख्ती का एक
1: जी
0: निर्माण करा उसको बढ़िया, उसको चूरा वगैरह करके उसका पॉलिथीन का। तो सबसे पहले हमने वो बनाया। तो हमारे ब्यावरा नगर पालिका के पास भी कुछ जानकारी मिली, तो मशीनरी वगैरह उनके पास थी, तो हमने सीएमओ साहब से, यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हमारे पवन जी कुशवा जी हैं, तो उनसे भी बातचीत की। तो बोला भाई साहब आपके पास
1: जी
0: मशीनें हैं, इसका उपयोग हम इस प्रकार से रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो उनका पूरा सहयोग रहा, पूरा उनका सपोर्ट रहा। तो उन कुछ मशीनें थी उनके पास, उसका उपयोग करके बढ़िया हमने तख्ती और ये ट्रिगार्ड वगैरह उसी से बनाया। तो
1: जी
0: इसका
1: सर
0: उन्होंने फिर बोला भी है कि आप बनाइए, फिर इसका अपने विभिन्न प्रकार के जगहों पे जहाँ पे पेड़ नगर पालिका के माध्यम से लगते हैं, तो वो ट्रिगार्ड जाली वगैरह वो लगने वाली है।
1: जी सर आपने डस्टबिन भी बनाया, पेन बॉक्स भी बनाया, ये किस प्रकार से बनाते हैं?
0: ये पेन बॉक्स भी ये हमने इसका तख्ती का बनाया, सीट बनती है इसकी, तो अब जो सीट बन गई तो आपका पूरा फर्नीचर बन गया, कुछ भी बना सकते हैं
1: जी
0: आप उससे, बैठने के लिए बेंच भी बना सकते हैं, टेबल अलमारी वगैरह कुछ भी बना सकते हैं।
1: ओके सर, आपने जगह जगह बॉटल शेप में रखा है, इसको डस्टबिन तो नहीं कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इको ब्रिक्स के बॉटल बैंक बोलेंगे, तो
0: बहुत अच्छा
1: वो
0: प्रश्न था
1: आइडिया कहाँ से आया?
0: ये, क्या
1: जी
0: है कि मन में विचार आया कि इको वृक्ष बनाना है, तो इको वृक्ष बनाने के लिए बाटल तो चाहिए, तो बाटल कहाँ से लेके आएंगे। तो मैंने क्या बाटल को कलेक्ट करने के लिए, हम देखते हैं हमारे शहरों में बस स्टैंड वगैरह, रेलवे स्टेशन पे, अन्य जगहों पे, चौराहों पे क्या है वो यात्रीगण पानी पी के बाटलों को फेंक देते हैं। तो ये नोटिस करा जगह जगह बाटल, तो हम बाटल भी कलेक्ट करते थे। और मैंने क्या रोज कलेक्ट करने जाना, इसके लिए लोगों को समझाने के लिए अपन कुछ कर सकते। तो मैंने क्या एक बोटल जैसा, एक डस्टबिन के मतलब एक बोटल जैसा, बोटल को कलेक्ट करने के लिए एक डस्टबिन हमने नाम दिया उसको, बोटल बैंक नाम दिया हमने, डस्टबिन नहीं बोला उसको, बोटल बैंक बोला। तो लोगों को बताया वहां के जो दुकानदार थे, जिनकी दुकान थी, पानी वगैरह बोतल बेचते थे, वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उनको

0: जो बिक्री पड़ी रहती थी उसको बोतलों में डालते थे। फिर लोगों ने देखा, धीरे धीरे समझ में आई लोगों के कि हाँ यार, ये बोतलों को कलेक्ट करने के लिए इन्होंने डस्टबिन लगाया है। तो फिर आज हमने पूरे कम से 11 डस्टबिन अभी पूरे नगर में हम लगा चुके हैं।
1: जीसस
0: और
1: ग्रेट।
0: वहाँ पे देख ध्यान में भी आया कि लोग उसका उपयोग भी करते हैं कम से कम। और एक अनुमान में बताऊं आपको, तो कम से कम 3 से 4 हजार बाटल उन डस्टबिनों के माध्यम से हम प्राप्त कर चुके हैं इन 6 महीनों के अंदर।
1: ग्रेट सर, ग्रेट सर। ये भी आप खुद बनाते हैं बॉटल बैंक, या खरीद सकते हैं इसे हम मार्केट से?
0: ये हमने बनवाया, मतलब बिल्डिंग लोकल का जो बिल्डिंग वाला है उनसे बातचीत करके उसको बताया पूरा कि भैया इस प्रकार से एक सेप देना है अपने को, तो मटेरियल खरीद के उससे फिर वो आगे लेके हमने निर्माण करवाया। तो आप भी
1: जी
0: लोग, सब
1: हाँ
0: लोग भी अन्य जगह पे बनवा सकते हो, कोई नहीं।
1: जी सर, बहुत खूब। और सर, आपने कैलेंडर भी बनाया है, वो कैसे बनाया आपने?
0: हाँ, वो जो बोतलों का ढक्कन होता है, ये मैंने एक वीडियो देखी थी उसकी, तो मैंने कहा ये वीडियो ढक्कनों से कैलेंडर, तो फिर मैंने भी प्रयास करा उसका, तो बढ़िया। जो पानी पीने के बाद अपन बाहर फेंकते हैं, तो ढक्कनों का भी कैसे उपयोग हम कर सकते हैं इस दिशा में हमने क्या, आपने घर पे भी एक वो कैलेंडर का निर्माण करा, आपको मतलब आपने भी देखा उस कैलेंडर को, तो
1: जी,
0: अच्छा वो सा एक बढ़िया कैलेंडर का भी हमने बनाया मेरी संस्था के सभी लोगों ने, और बढ़िया जब वीडियो उसकी डाली हमने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, तो कुछ लोगों ने अपने घर पे भी बनाया वो कैलेंडर।
1: आपसे इंस्पायर होके। जी
0: जी
1: जी बहुत खूब सर। और जो आप लोगों ने सेल्फी पॉइंट बनाया, उसके पीछे क्या विचारधारा था? कैसे आइडिया आया कि हम ऐसे सेल्फी पॉइंट बना सकते हैं, और कैसे बनाया आपने?
0: उसका विचार क्या है, जब हमारे पास क्या बहुत सारी बॉटल इकट्ठी हो गई, तो मैंने जब कुछ क्या बहुत सारे पेड़ों की क्यारी वगैरह बना दी हमने, मतलब क्यारी बनाना मैंने कहा कुछ नया नवाचार के लिए क्या कर सकते हैं, तो पूरी टीम के लोगों ने विचार करा कि यार कुछ ना कुछ नया करते हैं, बड़ा करते हैं हम।
1: जी
0: तो धीरे धीरे विचार आया कि अपन बड़ा एक वो बैठने के लिए टेबल बनाते हैं। मैंने कहा टेबल बैठने के लिए सार्वजनिक लगती है सीमेंट वाला की जो होती है बैठने के लिए, तो हमारे वो काना भैया है, काना कृष्णा, उनके मन में विचार आया कि भैया अपन एक इससे बढ़िया ब्यावरा लिखवाते हैं बहुत अच्छा। तो फिर इसे विचार चला, काना ने बोला कि भैया ब्यावरा लिखवाते हैं अपने बोतलों से, तो बढ़िया हमने उसकी फ्रेम बनवाई। तो फिर वो विचार में आया तरुण जी के, तो उन्होंने बोला कि नहीं अपन आई लव ब्यावरा लिखवाते हैं बढ़िया, तो ये बढ़िया एक सेल्फी
1: जी
0: पॉइंट हो जाएगा, तो वो बढ़िया हो गया। तो उसका निर्माण करा, एक बिल्डिंग वालों को पकड़ा, तो उसने बढ़िया पूरा उसका आकार दिया तार वगैरह से, फिर उसके साइज वगैरह से पूरा, तो उसको लगाया तो बहुत अच्छा रहा। हमको भी उम्मीद नहीं थी कि वो आई लव प्यावरा हमारे लिए एक बढ़िया गर्व का विषय बन जाएगा, हमारे नगर के लिए गर्व का विषय बन जाएगा।
1: एब्सोल्युटली जी सर,
0: जी
1: बहुत खूब सर। सर, आप बर्तन बैंक भी आपने शुरुआत किया है, तो इसका क्या उद्देश्य होता है?
0: ये हमारा उद्देश्य ये है कि कम से कम हमारा जो नगर है, हमारा तो उद्देश्य प्लास्टिक मुक्त को है, लेकिन प्लास्टिक मुक्त कहने से तो होगा नहीं, वो करने से होगा। तो हमारा और हमारी जो संस्था है पूरी टीम का ऐसा सोचना है कि प्लास्टिक मुक्त के लिए एक बर्तन बैंक का हम शुभारंभ करते हैं। तो ऐसे आपको मतलब कुछ क्या बर्थडे है, शादी है, या अन्य किसी प्रकार के जो फंक्शन है, वो प्लास्टिक के डिस्पोजल वगैरह ले, धोने पत्तल वगैरह लेने से अच्छा हमारी संस्था से बर्तन लेके जाए, और जो उनका जो इच्छा है क्या शुल्क रहेगा वो, मतलब जो उनकी इच्छा है जितना शुल्क दे के चले जाए, और वो वापिस साफ करके हमको दे के चले जाए, ऐसा एक इस दिशा में सोचना रहा है हमारा। क्योंकि तो कुछ
1: जी
0: चीजें क्या है कि प्रैक्टिकल करके बताना पड़ता है, जमीन पे उतरना पड़ता है, उसके लिए कहने से तो नहीं होगा ना। अब कुछ पैकेजिंग सामान है मान लो, अब वो तो पैकेज में आएगा,
1: जी सर,
0: इसलिए बर्तन
1: तो
0: बैंक का
1: बर्तन
0: शुभारंभ।
1: किस प्रकार से बर्तन आपसे वो लोग लेके जाते हैं, फिर वापस करते हैं?
0: वो क्या है उनको मान लो, सब 200 लोगों का एक कार्यक्रम है, तो 200 बर्तन इनके ले जाना, जो उनको आवश्यकता है मान लो थाली गिलास कटोरी चम्मच ऐसा पूरा एक सेट है हमारा, वो उनको देते हैं, वो गिन के ले जा, वो ले जाते हैं गिन के, और गिन के वापस साफ करके हमको दे जाते हैं।
1: ओके, तो इससे पर्यावरण साफ रहता है और प्लास्टिक प्रदूषण या अन्य डिस्पोजेबल के प्रदूषण नहीं होता है।
0: जी बिल्कुल नहीं, जी
1: ओके, तो आप स्टील के बर्तन उन्हें देते हैं, फिर वो वापस आपको रीयूज करने के
0: वापिस
1: लिए
0: कर।
1: देते
0: जी
1: हैं। जी, बहुत खूब। तो सर, अगर कोई युवा आपकी संस्था से जुड़ना चाहे, या फिर ऐसे अपने गांव और शहर को बनाना चाहे, तो आप उसको क्या सलाह देंगे, कहाँ से शुरुआत करें?
0: हम बिल्कुल सहयोग करेंगे उनका, उनकी मदद करेंगे, अगर वो हमारे नजदीकी घर के आसपास रहने वाले हैं तो यथासंभवता हम हमारे टीम के साथ वहां पे जाएंगे भी सही उनके लिए, उनको बताएंगे, उनका पूरा पूरा सहयोग करेंगे। और छोटे
1: ओके
0: स्तर से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने इकोवृक्ष का एक बढ़िया से मतलब किसी को गाँव में करना है, तो बढ़िया जो भी अब गाँव में छोटे 50 को परिवारों की एक बस्ती रहती है, तो काम करने में आसानी।

0: थी शहर के अपेक्षा गाँव में।
1: जी, क्योंकि कम्युनिकेशन सुविधा होती है, हम लोगों के साथ जाके डायरेक्टली बात कर सकते हैं और हम अपने मन के भाव उन तक पहुंचा सकते हैं। ओके, तो आगे क्या विचार है, क्या लक्ष्य है आपका पर्यावरण को लेकर के, इको ब्रिक्स और प्लास्टिक मुक्त अभियान को लेकर के?
0: हमारा लक्ष्य है कि हमारा नगर के साथ साथ पूरा जिला, पूरा प्रदेश और पूरा भारत एक दिन प्लास्टिक मुक्त हो, और लोग समझेंगे इस चीज को और लोगों के ध्यान में भी आता है, लोग समझ भी रहे हैं इस चीज को। आज जिस गति से मोदी जी ने मन की बात में हमारा जो उदाहरण पूरे देश को बताया है, तो लोगों के फोन भी आ रहे हैं। तो मेरा भी यही कहना है और हमारी संस्था की पूरे टीम से भी मेरा यही कहना है कि इस काम को आगे बढ़ाना है, लोगों को समझाना है कि वो प्लास्टिक मुक्त के लिए अपने से जुड़े, या उनके स्तर पे भी वो लोग प्रयास करें। कोई जरूरी नहीं किसी टीम के साथ जुड़ के हमको काम करना है, हम हमारे स्तर पे भी घर पे भी कम से कम पॉलिथीन प्लास्टिक का उपयोग करें, कार्यक्रमों में कम से कम पॉलिथीन प्लास्टिक का उपयोग करें, हो सकता हो तो ही उपयोग करें ना कि नहीं करें।
1: जी सर। सर, जैसे आप भी नगर पालिका के साथ जुड़ करके प्रयास किया और उनके साथ मशीनरी उपलब्ध थे उनके पास, तो आप उसका यूज कर पाए, तो क्या जो युवा साथी चाहें तो भी वो अपने अपने नगर पालिका क्षेत्र के साथ जुड़
0: हाँ,
1: करके
0: कर
1: ये
0: सकते
1: कार्य
0: हैं
1: कर सकते हैं?
0: जी, क्योंकि हर एक नगर पालिका का अपना MRF प्लांट होता है, यानी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। हर नगर पालिका अपने कचरे का सेग्रीगेशन कर उसको अलग अलग कर उसको रिसाइकिल करती है, तो वहां पे भी कर सकते हैं, जो युवा साथी वहां पे करना चाहते हैं नगर पालिका के साथ जुड़ के भी कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, तो जो साथी इस वक्त सुन रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान दे सकते हैं कि हर नगर पालिका के पास अपने मशीनरी होता ही है सेग्रीगेट करने के लिए कचरा, और उसको रिसाइकलिंग करने के लिए कुछ मशीन भी होता है, तो आप उनके सहयोग भी ले सकते
0: ले
1: हैं।
0: सकते, वो नगर
1: जी
0: पालिका भी
1: सर,
0: आपका सहयोग करेगी, करती है ये सब जगह।
1: जी जरूर। तो आप रेडियो मधुबन के जरिए जो इस वक्त श्रोता आपको सुन रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: मैं इसे आपके चैनल के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूंगा कि आप भी कम से कम पॉलिथीन प्लास्टिक का उपयोग करें, अपने घर पे आने वाली पॉलिथीन को बाहर ना फेंकें, जिससे अपना पर्यावरण सुरक्षित रहे। क्योंकि हम देखते हैं, हमने सुना होगा कहीं ना कहीं कि जब हम हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं मकान बनाया है या बनाते थे, तो वो उनके मन में एक उम्मीद रहती थी कि जब हम नीम खोदते थे तो एक मन में लालसा रहती थी कि यार कहीं ना कहीं इसको नीम को खोदेंगे तो इसमें से एक सोने चांदी हीरे जवाहरात निकलेंगे। लेकिन आज अब जब देखेंगे, जब हमारी आने वाली पीढ़ी जब उस भवन का निर्माण करेगी, तो वो उस नीम के अंदर केवल प्लास्टिक प्लास्टिक और पॉलिथीन के अलावा कुछ भी निकलने वाला नहीं है। आज इतना अच्छा वातावरण पूरे देश के अंदर हम देखते हैं, हमारे आसपास देखते हैं, इसके पीछे का कारण यह है कि हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं संघर्ष करा है। आज जो पेड़ से जो फल निकलते हैं, जो हवा हम एक जो वातावरण जो देखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का हमारी देन है। आज हम जो करके जाएंगे आने वाली पीढ़ी के लिए, वो आने वाली पीढ़ी हमारा धन्यवाद देगी। तो मेरा इससे ही एक सभी से निवेदन है कि कुछ अच्छा करके जाएं।
1: जी बिल्कुल, तो अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा संदेश आपने दिया यहाँ पर कि कुछ अच्छा करके जाए। अगर हमारे पूर्वज ढूंढते थे इन संकल्पों के साथ कि मिट्टी के अंदर हमें सोना मिलेगा या कुछ ऐसे खनिज मिलेगा जो हमारे लिए भी उपयोगी है और पर्यावरण के लिए भी उपयोगी हो, तो हम भी ऐसा कुछ कार्य करें ताकि आगे आने वाले जनरेशन को प्लास्टिक और प्लास्टिक ही ना मिले जब मिट्टी खोदा जाए। तो बहुत बहुत
0: जी
1: धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप के कार्य को हम सल्यूट करते हैं, ऐसे आप औरों को भी प्रेरित करते रहें, आपके साथ और भी साथी जुड़े, आप पर्यावरण के लिए जो कार्य कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं,
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद। तो अनिल जी ने ये साबित किया है कि बदलाव की शुरुआत किसी बड़े संसाधन से नहीं बल्कि एक छोटे से संकल्प से होती है। आपके प्रेरणादायक कार्यों के लिए पूरी टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं फिर से। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही, याद रखिए स्वच्छ पर्यावरण केवल सरकार की नहीं हम सभी की जिम्मेदारी है। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ, सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.4।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में करियर ऑप्शन। इस कार्यक्रम में जीवन कौशल, इस कार्यक्रम को आप हर हफ्ते सुनते हैं और हर हफ्ते हम एक नए विषय को लेकर आपके साथ जुड़ते हैं। साथियों, आप सब के लिए आज हम विषय लेकर आए हैं वेटनेरियन, पशु चिकित्सक। जी हाँ, एक बहुत ही सुंदर करियर है, एक समर्पित, सम्मानजनक और सेवा प्रदान करियर है ये। निश्चित तौर पे आप अगर मेडिकल फील्ड से जुड़ना चाहते हैं तो ये भी एक सुंदर विकल्प है कि आप वेटनेरियन बने। पशु चिकित्सा यानी वेटनेरियन वो व्यक्ति होता है जो पशुओं के स्वास्थ्य उपचार, देखभाल और रोग नियंत्रण का कार्य करते हैं। जैसे मनुष्यों के लिए डॉक्टर होते हैं, वैसे ही पशुओं के लिए पशु चिकित्सक भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, जहाँ पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, पशु चिकित्सकों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ये करियर केवल नौकरी नहीं बल्कि सेवा, संवेदना और विज्ञान का सुंदर संगम है। जो लोग पशुओं से प्रेम करते हैं, उनके दर्द को समझते हैं और समाज के लिए कुछ उपयोगी करना चाहते हैं, उनके लिए ये क्षेत्र आदर्श है। तो साथियों, ये एक बहुत ही नोबल करियर है। मैं चाहूँगा कि आप इस पर ज़रूर मंथन करें, चिंतन करें और अपने करियर को इस ओर ज़रूर ले जाइए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आज हम पशु चिकित्सा के बारे में ही पूरी जानकारी आपको देंगे। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर जीवन कौशल। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में, और बातें होंगी आज पशु चिकित्सा के बारे में। साथियों, सबसे पहले मैं आपको एजुकेशन के बारे में बताना चाहूँगा, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। एक तो 12वीं साइंस स्ट्रीम से आपको पास करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी जिसको PCB कहते हैं, ये अनिवार्य है। इसके बाद BVSC एंड AH बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, 5.5 वर्षों का ये कोर्स इंटर्नशिप सहित होता है। और इसके बाद इच्छुक छात्र MVSC भी कहते हैं, मास्टर डिग्री भी या PhD भी कर सकते हैं। अब इसमें जो परीक्षाएं होती हैं वो तो नीट, UG भारत में मुख्य रूप से, और राज्य स्तरीय प्रदेश परीक्षाएं भी, प्रवेश परीक्षाएं भी होती है। तो इन सभी में आपको भाग लेना है और अपने आप को साबित करना है, पास करना है और आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो शिक्षा है, वो आपको ज़रूरी है। इसके बाद आप बिल्कुल तैयार हो जाते हैं एक चिकित्सक के रूप में, पशु चिकित्सक के कार्य के लिए। पशु चिकित्सक का अर्थ है केवल पशुओं का इलाज करना नहीं, बल्कि उनके संपूर्ण स्वास्थ्य और समाज की भलाई से जुड़ा हुआ कार्य भी करना है। जैसे आप देखेंगे, मुख्य कार्य अगर मैं कहूँ पशुओं की बीमारी का निदान और उपचार, ये तो है ही है। इसके साथ में आता है टीकाकरण, वैक्सीनेशन। तीसरी बात आती है पशु शल्य चिकित्सा, सर्जरी। चौथी बात आती है डेयरी और पोल्ट्री प्रबंधन, और छठवीं बात आती है पशु आहार और पोषण सलाह। सातवीं बात आती है जूनेटिक जो है रोगों को, जो पशुओं से मनुष्यों में फैलता है, उसकी रोकथाम करना, ये बहुत ज़रूरी है। जेनेटिक जिनको अंग्रेजी में कहते हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि आप समझ ही गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है और किस तरह से आप जो है अपना कार्य कर सकते हैं। साथियों, ये एक नोबल यानी एक बहुत ही सुंदर सेवा कार्य है जब आप इसमें काम करते हैं। तो आज के समय में जैसे गाँव में डॉक्टर की ज़रूरत है पशु डॉक्टर की, वैसे ही शहरों में भी बहुत सारे वेटनेरियन की ज़रूरत पड़ती है, और आप देखेंगे उनकी भी अच्छी चलती है और अच्छा जो है उनका बिजनेस होता है। अब यहाँ पर शहरों में जो आजकल बहुत सारे लोगों को शौक है, कुत्ते बिल्ली इन सभी चीज़ों को पालते रहते हैं, और बड़े घर में देखेंगे आप बड़ा सा कुत्ता होगा, फिर उसका डाइट अलग होगा, उसका फिर चेकिंग होता है, उसके वैक्सीनेशन की बात आती है, और ये कुत्तों का जो है या फिर बिल्ली या फिर कोई और प्राणी जो लोगों को पसंद आता है उसे अगर वो रखते हैं। तो यहाँ शहरों में भी इस तरह की चीज़ें हमने देखी हैं और यहाँ पर अच्छा से कमा सकते हैं। गांव में जाते हैं तो आप पशुओं के गाय बैल ये सारी चीज़ें तो है ही हैं, बकरियाँ हैं, हाँ, तो इन सभी की सेवा भी आपको करनी होती है। तो अब जहाँ भी आप रहेंगे वहाँ आपके लिए संभावनाएँ खूब है। तो आइए आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर, जी हाँ, करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मस्कराते रहो।

नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आप सभी का जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और बात करते हैं हम लोग पशु चिकित्सा क्षेत्र में रोजगार की जो संभावना है वो व्यापक है। जैसे मैंने थोड़ा सा जिक्र किया आपको, पहली बात है सरकारी पशु चिकित्सा वेटनरी ऑफिसर के रूप में आपको काम मिलता है। दूसरा, प्राइवेट क्लिनिक हॉस्पिटल्स वगैरह खोल सकते हैं। तीसरा, डेयरी फार्म पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं। एनजीओ और पशु कल्याण संगठन से जुड़ सकते हैं। रिसर्च और शिक्षण क्षेत्र में काम कर सकते हैं। फूड सेफ्टी और एनिमल इंस्पेक्टर के रूप में काम कर सकते हैं। आर्मी और पुलिस डॉग स्क्वाड के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। आशा करूँगा कि आपको समझ में आ गया होगा आपका वर्कआउट कहाँ कहाँ और कैसे किस किस क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आप वेतन और भविष्य की बात करें तो यहाँ पर 30,000 से लेकर 50,000 प्रति महीना आपको वेतन मिल जाता है शुरू में, और फिर अनुभव होने के बाद 80,000 से 1.5 लाख रुपया या उससे अधिक भी होता है। और स्वयं का क्लिनिक होने पर आय की कोई सीमा नहीं रहती, आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। आज के समय में पेट केयर जो है इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक डेयरी और एनिमल वेलफेयर के बढ़ते महत्व का कारण इस क्षेत्र में भविष्य जो है बहुत उज्जवल है। आप बहुत सारा काम कर सकते हैं क्योंकि पेट केयर इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है और ये शहर से कनेक्टेड है, इसलिए अच्छा पैसा मिलता है। ऑर्गेनिक डेयरी का भी ये पूरी दुनिया में कनेक्टेड रहता है, इसलिए यहाँ पर भी बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। और देखते हैं सरकार भी इसके लिए एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के लिए काम करती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। पशु चिकित्सा में आवश्यक गुण जो है पशुओं के प्रति प्रेम और करुणा हो, धैर्य और संवेदनशीलता हो, वैज्ञानिक सोच हो, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने की बहुत इच्छा आपकी हो, सेवा भाव हो, तो आप इन चीज़ों को बखूबी कर सकते हैं। और मैं इस पर एक बहुत ही सुंदर जो है कुछ खास डॉक्टर जो एनिमल वेटनेरियन रहे हैं, पशु चिकित्सक रहे हैं, उनकी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक सबसे बड़ी प्रेरणी, एक बहुत ही सुंदर प्रेरणादायी कहानी है डॉक्टर रामेश्वर सिंह का। गांव से ग्लोबल पहचान तक उनकी जो है यात्रा हुई। और डॉक्टर रामेश्वर सिंह बिहार के एक छोटे से गांव में आते थे। वहां से आते और बचपन में उन्हें देखा गया कि उनकी गांव में पशुओं की सही चिकित्सा न होने के कारण किसानों को भारी नुकसान होता था। एक बार उनकी प्रिय गाय की मृत्यु ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया और ये घटना उनके जीवन में पशु चिकित्सक बनने के लिए प्रेरित हुआ। निश्चय ही वे पशु चिकित्सक बनेंगे, अर्थात आर्थिक कठिनाई के बावजूद उन्होंने मेहनत से पढ़ाई की और BVSC की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई पूरा करने के बाद उन्होंने बड़े शहरों में नौकरी करने के बजाय अपने गाँव लौटने का फैसला किया और आज डॉक्टर रामेश्वर न केवल एक सफल पशु चिकित्सक है बल्कि उन्होंने आसपास के 50 से अधिक गांवों में निशुल्क टीकाकरण अभियान, पशुपालक परीक्षण शिविर और मोबाइल वेटनरी सेवा शुरू की है। उनके प्रयासों से सैकड़ों किसानों की आय बढ़ी और पशुधन सुरक्षित हुआ। दूसरे एक डॉक्टर है अनन्य शर्मा। जी हाँ, पशु प्रेम से करियर की ऊंचाई तक इनकी कहानी बयां कर सकते हैं। डॉक्टर अनन्य शर्मा को बचपन से ही जानवरों से बहुत गहरा लगाव था। घर में घायल पशुओं और आवारा कुत्तों की सेवा करना उनकी आदत में शुमार थी। समाज में कई लोगों ने कहा कि ये क्षेत्र महिलाओं के लिए मुश्किल है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नीट पास कर उन्होंने पशु चिकित्सा की पढ़ाई की और बाद में पेट एनिमल केयर का विशेषज्ञता हासिल की। फिर क्या था, आज वे एक बड़े शहर में आधुनिक पेट क्लिनिक चला रही हैं, जहां न केवल इलाज होता है बल्कि एनिमल थेरेपी, काउंसलिंग और रेस्क्यू सेवाएं भी दी जाती है। और डॉक्टर अनन्य का मानना है कि जब आप किसी बेजुबान की पीड़ा कम करते हैं तो वो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और एक जीवन में अथाह सुख प्राप्त करने का जरिया भी। समाज के लिए योगदान भी आप कर सकते हैं साथियों। यहाँ पर पशु चिकित्सक केवल पशुओं के डॉक्टर नहीं होते बल्कि किसानों के सहायक होते हैं, जन स्वास्थ्य के रक्षक होते हैं, प्राकृति और जैविक विविधता के संरक्षक होते हैं, मानवता के सच्चे सेवक भी होते हैं। देखिए, कभी कभी हम लोग अगर जानवरों से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं और वो मनुष्यों में प्रवेश कर जाती है तो एक बहुत बड़ा जो है बीमारी का
वो सैलाब आ जाता है। तो ऐसे में एक पशु चिकित्सक ही इसका माध्यम बनता है और पशुओं को ठीक करके मानव जाति को भी शांति और सुखद सुख का अनुभव कराता है। तो निश्चित तौर पे एक माध्यम है मानव और पशु के बीच का जो जरिया है, दोनों को सिक्योर स्वस्थ और बेहद अच्छा रखने के लिए पशु चिकित्सक का कार्य है। साथियों, आप ये करियर छोटा मत समझिएगा, ये जीवन को बेहतर करने के साथ साथ सामाजिक सेवा में सबसे आगे आता है। पशु चिकित्सा वेटनेरियन का करियर सम्मान, स्थिरता और आत्मसंतोष से भरा हुआ है। ये क्षेत्र उन लोगों के लिए है जो सेवा को पेशा और करुणा को शक्ति मानते हैं। अगर आपके दिल में भी पशुओं के प्रति प्रेम है और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये करियर आपके जीवन को सार्थक बना सकता है और बेजुबानों की सेवा ही सच्ची मानवता है। साथियों, आइए आगे बढ़ते हुए कुछ और दो डॉक्टरों का मैं जिक्र करने वाला हूँ थोड़ी देर में, लेकिन यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूं फिर से करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। हम लोग आज बात कर रहे हैं वेटनेरियन के बारे में, पशु चिकित्सा के बारे में। साथियों, पशु चिकित्सक बनना कितना सम्मान का करियर है ये आपने समझ लिया है। अब आइए बात करते हैं एक और कहानी जो आपको हम सबको मोटिवेट करेगा। डॉक्टर जेम्स हैरियट, पशु चिकित्सा को मानवता से जोड़ने वाले महान डॉक्टर। डॉक्टर जेम्स हैरियट दुनिया के सबसे पॉपुलर पशु चिकित्सकों में गिने जाते हैं। उनका असली नाम जेम्स अल्फ्रेड वाइट था। वे ब्रिटेन इंग्लैंड के रहने वाले थे और 20वीं सदी में उन्होंने पशु चिकित्सा को केवल एक पेशा नहीं बल्कि संवेदना और सेवा का माध्यम बना दिया। डॉक्टर हैरियट ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रामीण इलाकों में पशु चिकित्सा के रूप में चिकित्सक के रूप में काम करना शुरू किया। उस समय गाँव में सुविधाएँ बहुत कम थी। कई बार उन्हें रात में बारिश या बर्फबारी में मीलों दूर बीमार पशुओं के इलाज के लिए जाना पड़ता था। उनके मरीज गाय, घोड़े, भेड़, कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर होते थे, लेकिन उनके असली मरीज किसान और पशुपालक भी थे जिनकी आजीविका पशुओं पर बिल्कुल निर्भर थी। डॉक्टर हैरियट की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे पशुओं को सिर्फ शरीर नहीं भावना वाला जीव मानते थे। वे हर जानवर से प्यार और धैर्य के साथ पेश आते थे। कई बार इलाज के बदले उन्हें पैसे की जगह दूध, सब्जी या केवल दुआएं मिलती थी, लेकिन उन्होंने कभी सेवा भाव नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने अनुभवों पर आधारित कई किताबें लिखी, जिनमें सबसे पॉपुलर है ऑल क्रिएटर्स ग्रेट एंड स्मॉल। ये किताब पूरी दुनिया में पढ़ी गई और बाद में इन पर टीवी सीरीज भी बनी। इन रचनाओं ने लाखों युवाओं को पशु चिकित्सक बनने के लिए प्रेरित किया था। साथियों, डॉक्टर जेम्स हैरियट ने सिखाया कि एक अच्छा पशु चिकित्सक वही है जो जानवरों के साथ साथ इंसानों के दिल को भी समझे। साथियों, देखा आपने, डॉक्टर हैरियट जी हैं जो पशु चिकित्सा में एक अहम भूमिका निभाया था। आइए इसी तरह का एक और कहानी मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। यहाँ पर डॉक्टर इयान डनबर को नहीं भूल सकते। ये खास करके शहरों में होने वाली चीज़ों को समझते थे और शहरों में जहाँ पर कुत्तों के व्यवहार को समझने वाले विशेष विशेषज्ञ पशु चिकित्सक माना जाता है इन्हें। तो डॉक्टर इयान डनबर एक बहुत ही पॉपुलर वेटनेरियन रहे और एनिमल बिहेवियर स्पेशलिस्ट इनकी खासियत थी। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर के अपने स्पेशलाइजेशन होता है, तो इन्होंने पशु चिकित्सा में एनिमल बिहेवियर स्पेशलाइजेशन किया। वे मूल रूप से ब्रिटेन से ही हैं, लेकिन इन्होंने अमेरिका में रहकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। डॉक्टर डनबर का काम खास तौर पर पालतू कुत्तों, पेट डॉग्स के व्यवहार परीक्षण और इंसान जानवर संबंधों पर केंद्रित रहा है। डॉक्टर डनबर ने देखा कि बहुत से पालतू कुत्ते बीमारी की वजह से नहीं बल्कि गलत परीक्षण और गलत समझ के कारण छोड़ दिए जाते हैं। ये आक्रामक हो जाते हैं। उन्होंने ये महसूस किया कि केवल दवा देना ही काफ़ी नहीं है बल्कि मालिकों को ये सिखाना भी ज़रूरी है कि कुत्ते को कैसे समझे और उनसे कैसे व्यवहार करें। उन्होंने कुत्तों के लिए पॉजिटिव ट्रेनिंग

0: मेथड को लोकप्रिय बनाया जिसमें मार डांट की जगह प्यार, धैर्य और समझ का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर डनबर ने दुनिया का पहला पप्पी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जिससे लाखों कुत्तों की ज़िंदगी बेहतर हुई। साथियों, वे कई प्रसिद्ध पुस्तकों के लेखक हैं और आज भी ऑनलाइन कोर्स, सेमिनार और वर्कशॉप के जरिए लोगों को जागरूक करते हैं। उनकी वजह से आज पशु चिकित्सा में एनिमल बिहेवियर एक महत्वपूर्ण और सम्मानजनक क्षेत्र बन चुका है। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि एनिमल बिहेवियर कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर रहा जो लोगों के लिए और कुत्तों के बीच में उनका व्यवहार को समन्वय किया और उनके जीवन को यानी मालिक और उनके कुत्तों के लिए बेहतर साबित हुआ। डॉक्टर इयन बार का संदेश है कि जब आप जानवर का व्यवहार समझ लेते हैं तो आधी समस्याएं अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। साथियों, डॉक्टर जेम्स हैरियट और डॉक्टर इयान डनबर दोनों ने ये साबित किया कि पशु चिकित्सक होने के केवल इलाज करना नहीं बल्कि करुणा, समझ, शिक्षा और समाज सेवा का कार्य है। इनकी कहानियों पर उस विद्यार्थी के अनेक विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलती है जो पशु चिकित्सक को अपना जीवन साथी, जीवन पथ बनाना चाहते हैं। साथियों, आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आशा करूंगा पशु चिकित्सा के बारे में, वेटनेरियन के बारे में एक अच्छा करियर विकल्प आपको समझ में आया और साथ ही साथ मानवता की सेवा से जुड़ा हुआ ये करियर है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपकी रुचि है इन इस विषय में, पशु के प्रति आपका प्यार है, तो निश्चित तौर पर आप इस करियर को अपना ध्येय बनाएं और अच्छे से प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस करते रहें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं ढेर सारी खुशियों के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

ओम मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।

0: दोस्तों को मेरा सलाम और नमस्कार। आपका फेवरेट होस्ट एंड दोस्त फॉर योर रेडियो स्टेशन मधुबन रेडियो, दिस इज शरद त्रिपाठी फॉर योर फेवरेट शो जुनून। तो जुनून में फिर से आज बात करेंगे एक जुनूनी के साथ और जानेंगे कि इंसान को क्यों पालता है कोई जुनून और क्यों निकल पड़ता है एक नई राह पर, किस पर। फिर से मिलते हैं कुछ जुनूनी। तो हमारे साथ हैं जुनून में इस बार सूर्य नगरी देवाराम। सूर्य नगरी से देवाराम जी हमारे बीच में हैं। देवाराम जी के साथ हम बातचीत करेंगे। देवाराम जी एक जुनूनी है और मैराथन के जुनूनी हैं। ये उस ट्रैक पे अपना पसीना बहाते हैं जिस पर शायद हम चल भी ना पाए। तो उस ट्रैक पर इनकी क्या जिंदगी है, क्या बात करेंगे। ये ट्रैक पर है भी कि नहीं ये भी हम जानेंगे। तो आइए मिलते हैं देवाराम जी से। देवाराम जी आपका स्वागत है हमारे फेवरेट रेडियो स्टेशन पे, रेडियो मधुबन पर।
1: धन्यवाद सर।
0: तो देवाराम जी आप को ये जुनून, हमारा फिर से वही सवाल होता है, बहुत पहला सवाल होता है हम किसी भी जुनूनी से बात करते हैं, ये जुनून आपको कैसे आया?
1: सर ये जुनून मैं स्टार्ट 9th 10th क्लास में जोधपुर आ गया सर, घर गाँव से जोधपुर। और फिर मेरे एक मामा जी का लड़का है वो सर ट्रैक पे दौड़ता था, उसका एक बार उसका अखबार में नाम पढ़ा था मैंने, उसके कोई डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन हुए तो मैंने उसको देख के गेम शुरू किया। मैंने उसको पूछा जाके भाई मैं आप ठीक दौड़ते हो, मुझे भी दौड़ना है। तो उसने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया कि तू कर ही नहीं सकता है। तो वहीं से मेरा वो जुनून जगा अंदर और मैं बस वहीं से ठान लिया कि बस अब मुझे इसे करके दिखाना है, इसे आगे आके दिखाना है और इसी को रेस में एक दिन हराना है। तो सर वो हर बिल्कुल सर, फिर 6 महीने के अंदर ही सर एक बार हमारा कंपटीशन हो गया भाई के मामा का लड़का और मेरा, तो फिर मैं उससे आगे निकल गया। तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं सर। अच्छा हमारे यहाँ जोधपुर में ट्रैक अच्छा है, सिंथेटिक ट्रैक बना हुआ है, तो वहाँ मैंने कोच ज्वाइन कर लिया, रजाक मोहम्मद थे जो प्रैक्टिस करवाते हैं इधर। तो वहाँ पे मैंने मन लगा के अच्छी प्रैक्टिस की, उस कुली में मैं स्टेट खेल के आया 1917 में, और बाकी फिर ओपन गेम्स खेलने लगा ये जो एसोसिएशन करवाती है, फिर स्टेट में मेडल आने लगे तो और जुनून जाग गया सर। वो एक ऐसा लगे ना मैं और भी आगे जा सकता हूँ, और भी आगे जा सकता हूँ, ऐसे कर करके मतलब बहुत ही मजा आता था सर प्रैक्टिस करने का ट्रैक पे। वो टाइम तोड़ने में मेरा 5000 और 10000 मीटर इवेंट है सर।
0: जी
1: प्रोफेशन बन गया मेरा, फिर ये ट्रैक के बिना सर एक दिन ग्राउंड नहीं जाते तो भी अजीब लगता है, पूरी बॉडी जकड़ जाती है बस ट्रैक पे जाना है दौड़ना है। और नेशनल चैंपियन, नेशनल प्लेयर हूँ सर, स्टेट चैंपियन ले चुका हूँ 2 बार और बाकी राजस्थान को 7 से 8 बार रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पर।
0: बहुत बढ़िया। तो श्रोताओं आप छुट चुके हैं आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन जुनून पर, और जुनून पर हम सुन रहे हैं माउंट आबू की वादियों से 107.8 FM पे और हमारे ऐप रेडियो मधुबन पर भी। तो हमारे साथ हैं एक युवा जुनूनी देवाराम। देवाराम कहते हैं कि उनका शरीर जगड़ जाता है कि जब उनका ट्रैक से मिलन नहीं होता, और ट्रैक से उनकी दोस्ती या कहीं की यारी इतनी जोरदार हो गई है कि रोज सुबह उनको ट्रैक चाहिए, अपने प्यारे ट्रैक से जब तक उनका मिलन नहीं होता उनकी तमन्ना पूरी नहीं होती। और तमन्ना है देश के लिए कुछ कर गुजर जाने की, मेडल पा जाने की, और मेडल पोडियम पे जब वो खड़े हों और देश का तिरंगा ऊपर जाए ये उनकी भावना है। हम उनकी ऐसी भावना और उनकी ऐसी अपेक्षाओं और उनकी मेहनत को हम सलाम करते हैं और उनको आशा करते हैं कि वो जरूर ही अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम पाएंगे। तो देवाराम देखिए ना, जब किसी इंसान को कुछ चैलेंज कर दिया जाता है तो वो जिंदगी को अपना जुनून बना लेता है, उस मकसद को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरता है। कुछ वैसा ही आपके साथ हुआ कि तुम नहीं कर सकते, तो ऐसा हमारे साथ में लाइफ में होता रहता है। तो क्या बात है, तुमने तो धन्यवाद दिया कि तुमने मुझे अच्छा चैलेंज दिया और आज तुमने मेरा जीवन बदल दिया।
1: जी सर रोज मिलता हूँ, अब तो मिलते हो रोज, धन्यवाद देता हूँ आपकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। अगर आप नहीं मिलते भैया, आपको दौड़ते हुए नहीं देखता और अगर आपने मना नहीं किया होता तो मैं नहीं दौड़ पाता आज।
0: क्या बात है। तो हमें ऐसे लोगों को जरूर जरूर धन्यवाद देना चाहिए जो हमें कोई चैलेंज दे जाए, जाने अनजाने में ही दे जाए और हम उस चैलेंज को पूरा कर जाए तो उनका धन्यवाद बनता है। तो आप 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के इवेंट में आप दौड़ते हैं और अब कार्यरत हैं, आप उसमें लगे लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो इस इवेंट में क्या रेजिलियंस या क्या गुण होने चाहिए खिलाड़ी के पास, एक एथलीट के पास जो इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कुछ वैसा ही है जैसे पान सिंह तोमर फिल्म के अंदर उस हीरो को कहा गया था कि तुम किसी रेस में तुम नहीं परफॉर्म कर पाओगे, है ना? तो तुम्हारा क्या अनुभव है इस 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर इवेंट की क्या होना चाहिए एथलीट के?
1: वो सर हमारे ऐसे तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ओपन गेम होते हैं उसमें पहले एंट्री होती है डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर पे होते हैं हमारे टूर्नामेंट, फिर राज्य स्तर, फिर नेशनल लेवल होते हैं। तो जिला स्तर खेलने के लिए पहले एंट्री करानी पड़ती है और जीतने के लिए फिक्स करनी पड़ती है, एक साथ दोनों टाइम प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अच्छे प्लेयर बन जाते हैं। साल डेढ़ साल बाद फिर धीरे धीरे आगे अपना तो समझ में आ जाता है।
0: नहीं नहीं बिल्कुल, आप तो प्रयास कर रहे हो इस बात को लेकर, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि हम क्या वो गुण होने चाहिए, शारीरिक क्षमताएं क्या होनी चाहिए, क्योंकि एक अलग इवेंट है, इसमें स्टैमिना चाहिए, तो वो स्टैमिना कहाँ से आता है?
1: सर एथलेटिक्स में सबसे हार्ड गेम एथलेटिक्स है सर, रनिंग, तो इसमें स्टैमिना उसके लिए प्रॉपर प्रिपेयर होना पड़ता है, पहले से ही ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, सारी एक्सरसाइज होती है और वर्कआउट होता है, जो वीकली शेड्यूल बना हुआ था वो वर्कआउट करना पड़ता है, वो वर्कआउट करके उसके लिए प्रिपेयर बनना होना पड़ता है पहले पूरा।
0: नहीं नहीं आप तो लगातार आप तो प्रयास कर रहे हैं, आप में एक स्टैमिना भी आपका है, क्योंकि मैं लंबी दूरी की दौड़ के लिए आपके अंदर स्टैमिना होना चाहिए और आपको अफ्रीकन खिलाड़ियों के साथ भिड़ना है, जब आपको इंटरनेशनल खेलों में जाना है तो आपका जो मुकाबला होगा वो अफ्रीकन खिलाड़ियों से होगा जो कि हमसे ज़्यादा स्टैमिना और हमसे ज़्यादा उनकी ट्रेनिंग है। क्या खास बातें हैं जो अफ्रीकन खिलाड़ियों से हमारा मुकाबला नहीं हो पाता?
1: सर एक तो मेन रहता है ट्रेनिंग और डाइट सर, ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसके ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग डाइट भी अच्छी होनी चाहिए और शूज कंफर्टेबल होने चाहिए अच्छे जो सभी रनर यूज करते हुए वैसे। मेन तो एथलीट में तो एथलीट तो डाइट की वजह से कभी कभी इंजरी खा जाता है, जैसे प्रॉपर डाइट नहीं ले पाता है तो कहीं नी पेन, ये एंकल पेन, हैमस्ट्रिंग वगैरह ये इंजरी हो जाती है, तो उसमें सर मेन डाइट, शूज और ट्रेनिंग होता है सर। ये चीजें लेके चलेंगे तो फिर हम भी उनकी तरह परफॉर्म कर पाएंगे। और एक जुनून होना चाहिए जो हम गेम करते हैं उसका पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए।
0: तो अभी तुम्हारा क्या लक्ष्य है, तुम क्या करना बाकी है, कौन सा मुकाम तुम देखते हो अपने लिए?
1: सर एक बार इंडिया के लिए खेलना है एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, कोई भी
0: जी जी
1: इंडिया की जर्सी।
0: हाँ श्रोताओं देखिए ना, इंडिया की जर्सी जो है, अपने वतन की जर्सी पहनना कितना कितना बड़ा बात है, कितनी बड़ी बात है हमारे हमारे देवाराम जी के लिए, और मेरे तो हर खिलाड़ी का ये सपना होता है। तो श्रोताओं इस सपने के लिए ही खिलाड़ी जीता है और इस सपने के लिए ही वो सुबह जागता है, इस सपने के लिए ही अपना पसीना बहाता है। और हम बात कर रहे हैं देवाराम से जो कि जोधपुर से आते हैं, सूर्य नगरी जोधपुर से, और जैसे ही सूरज निकलता है ये भी अपने ट्रैक पर पहुंच जाते हैं। आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है देवाराम?
1: सर दिन की 4:30 बजे उठता हूँ सुबह सर, आधे घंटे में नाश्ता फ्रेश होके ग्राउंड के लिए 5:30 तक ग्राउंड पहुँच जाता हूँ सर। और फिर हमारा 8:30-9 बजे तक वर्कआउट सेशन रहता है पूरा सर सुबह का, और फिर वापस आके जो भी डाइट होती है हमारी, जूस वगैरह और प्रोटीन डाइट, चने हो गए, दूध देख के, फिर 2 घंटे रेस्ट करके और फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई, और उसके बाद शाम को वापस सर 4:30-5 बजे के आसपास ग्राउंड जाते हैं। और शाम को हमारा मेन रहता है एक्सरसाइज सेशन रहता है, सुबह तो वर्कआउट हो जाता है मेन स्पीड वर्कआउट रनिंग, और शाम को एक्सरसाइज वगैरह वो होता है।
0: तो आपकी आप कौन से स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहे हैं जी?
1: सर जोधपुर में मैं अभी अमृतलाल गहलोत स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहा हूँ सर।
0: अच्छा, आपके यहाँ पर साई सेंटर भी है आपके यहाँ भारत सरकार का?
1: जी सर, साइंस सेंटर था, अब नहीं है सर, वो हट गया है। अभी जयपुर में है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पहले भी नहीं था। एथलेटिक्स का तो दूसरे गेमों का था सर, इसका नहीं था पहले भी।
0: जी,
1: नाम मात्र का है साइंस सेंटर सर, ऑफ है, बंद कर रखा है इन्होंने। पहले दूसरे गेमों की ट्रेनिंग होती थी तो वो भी बंद कर दी। तो
0: अच्छा,
1: हाँ सर
0: जी। तो क्या चैलेंजेस हैं आज के जमाने में एक एथलीट के सामने? एथलीट कैसे अपना कैसे अपने अपनी ट्रेनिंग को लेके मुकाबला कर रहा है, कैसे एक एथलीट आगे बढ़ता है, क्या चुनौतियाँ हैं एथलीट के सामने?
1: सर बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि इंजरी हो जाती है, फिर उनको वापस रिकवर होना पड़ता है, और उसके साथ पूरा डाइट का ध्यान रखना पड़ता है। मेन सर डाइट का ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बाहर का कुछ नहीं, जो भी चाहे उस खाने में स्वाद है नहीं है, लेकिन जो हमारी बॉडी को लगे और अच्छा परफॉर्म कर पाए उसके लिए अच्छी डाइट, और बाकी चाहे आंधी हो तूफान हो कुछ भी हो, ट्रैक पे पहुंचना है पहुंचना टाइम पर, और अच्छे से ट्रेनिंग करनी, तो यही डिसिप्लिन सालों लगता है सर। एक एथलीट को बनने में 4 से 5 साल लगते हैं, एक नेशनल लेवल प्लेयर बनने में। सर वो रूटीन रहता है सालों, सुबह शाम ग्राउंड एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर सर हम मंडे को मिस कर देते तो पूरा वीक खराब हो जाता है, तो फिर वो पूरा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है।
0: तुम कितने दिन से ट्रेनिंग कर रहे हो?
1: मेरे को सर 8 साल हो गए।
0: अच्छा,
1: हाँ सर,
0: बड़ी लंबी दूरी में मेहनत कर रहे हो, और जीवन में क्या सपना है अभी, क्या प्लान है इंडिया जर्सी के अलावा, और क्या सोचते हो अभी इंडिया जर्सी मिलने के बाद क्या करोगे?
1: वही खेलता रहूंगा सर, जब तक शरीर साथ देगा मेरा तब तक तो दौड़ूंगा सर, और दौड़ते ही रहूंगा। जैसे तो कंपटीशन, जब अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है मेरी तो मैं कंपटीशन खेलता रहूंगा सर। सर स्टार्टिंग में थोड़ा क्या कि वो कोरोना हो गया था, वो लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था, उसकी वजह से 1-1.5 साल खराब हो गया था मेरा, उसकी वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा है। बाकी उस टाइम कोरोना से पहले मैंने 2 साल पहले स्टार्ट कर दिया था सर, 2018 में, बीच में 1.5 साल वो हो गया, फिर थोड़ा मैन क्या पापा किसान खेती करते हैं तो इतना वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे खर्चा, तो सर मेरा वो ट्रेनिंग तो करता था लेकिन प्रॉपर रेस्ट नहीं होता था, साइड में छोटी मोटी जॉब करके अपना जो भी गेम का खर्चा शूज वगैरह वो एडजस्ट करता था। और फिर तीन साल तो ऐसे ही निकल गए, उसके बाद फिर प्रॉपर ट्रेनिंग करनी शुरू करी। मेरे क्या जिस स्कूल में पढ़ता था उन्होंने मुझे प्रिंसिपल मैम ने थोड़ा बहुत स्पॉन्सर किया था, तो मैं साइड का काम छोड़ के प्रॉपर रेस्ट करके अच्छी ट्रेनिंग करता था, तो सर धीरे धीरे परफॉर्मेंस आती गई, ठीक है सर, अच्छा फिट है। मेन सर आर्थिक तो वो दिक्कत आती है पैसे की, क्योंकि इसमें कॉस्टली आते हैं सर, हमारे शूज 15,000 से नीचे वो शूज ही नहीं है सर रनिंग के, और अलग अलग रखना पड़ता है, प्रैक्टिस शूज अलग, और इसमें कॉम्पिटिशन के शूज अलग होते हैं, फिर डाइट प्रोटीन हो गया, ये सर अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था स्टार्टिंग में। धीरे धीरे फिर सर मैंने कहीं से बात करके थोड़ी बहुत स्पॉन्सरशिप की वो जुगाड़ किया, उसके बाद फिर सर ये मैराथन खेलनी शुरू की मैंने, तो मैराथन की वजह से थोड़ा बहुत मेरा ये अच्छा होने लगा स्पोर्ट्स।
0: तो कितने दिन चल जाते हैं एक एथलीट के अच्छे वाले जूते?
1: कुछ सर हमें हर 1.5-2 महीने तक चलते हैं सर, वो प्रैक्टिस शूज तो 1.5 महीना लास्ट है, क्योंकि हमारे लॉन्ग वालों को 5-10 किलोमीटर का वो वर्कआउट सेशन होता है सर, वीकली कम से कम 180 किलोमीटर कवर करना पड़ता है वर्कआउट में सारा डिस्टेंस
0: जी।
1: लास्ट अगर थोड़ा ध्यान रख के अच्छे से चले या फिर ट्रैक पे सारा वर्कआउट रोड पे नहीं करे तो फिर सर 2 महीने लास्ट है शूज
0: जी।
1: और सर वो थोड़ा एक्स्ट्रा जैसे कि खाने से सब कुछ नहीं मिलता, प्रोटीन लेना पड़ता है, जो प्रोटीन पाउडर डब्बा आता है वो अलग से रिकवरी के लिए, वो प्रॉपर रिकवरी इस खाने में वो डाइजेस्ट वास्ट होना अगले दिन के लिए तैयार नहीं होते, तो वो प्रोटीन पाउडर भी लेना पड़ता है सर
0: जी। तो इस पूरी प्रक्रिया में आपको क्या सपोर्ट मिला गवर्नमेंट से?
1: सर गवर्नमेंट का तो कुछ सपोर्ट नहीं मिला सर अभी तक, वो मेडल के पैसे आए थे 1-2 बार, 2 मेडल के आए, बाकी अभी कुछ के आने हैं सर।
0: नेशनल लेवल मेडल के पास?
1: हाँ नेशनल मेडल नहीं है सर मेरा, मैं नेशनल प्लेयर हूँ सर, स्टेट में मेडल मेरे। नेशनल मैन अभी बीच में अनफिट हो गया तो अभी वापस फिट हुआ, तो अभी नेशनल आने टाइम अप्रैल एंड में नेशनल गेम से है सर, उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ मेडल के लिए
0: जी। हाँ सर, अभी आपका मुकाबला राजस्थान का मुकाबला कौन से स्टेट के खिलाड़ियों से ज़्यादा रहता है?
1: सर कॉम्पिटिटर ज़्यादा हमारे इससे यहाँ से गुजरात हरियाणा पंजाब ये सर, उनके बीच बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन होता है हमारा, इधर के अच्छे हो बहुत अच्छे प्लेयर है गुजरात हरियाणा ये पंजाब से, दिल्ली के भी अच्छे बहुत अच्छे एथलीट हैं।
0: नॉर्थ ईस्ट
1: उधर सर स्प्रिंटर है ज़्यादा, लोग शॉर्ट डिस्टेंस जैसे 400 200 100 मीटर वो बोले सर, तो उनका इतना पता नहीं क्योंकि मैं लॉन्ग करता हूँ सर।
0: काफ़ी लड़के पश्चिमी राजस्थान में, अभी लड़कियाँ भी अब काफ़ी आगे आ रही हैं मुझे लगता है एथलेटिक्स में, तो
1: बिल्कुल सर
0: अभी कैसा माहौल कैसा हो जाता है ट्रैक पे, शाम कैसी दिखती है ट्रैक पे?
1: सर ट्रैक पे सर सीधा जाते जन्नत दिखता हमें सर, देखते ही हो सुकून वही है सर हमारा, तो वो कर्म भूमि है जो हमारी ट्रैक, तो वहाँ पे ट्रैक के अंदर घुसते ही बाहर की सारी दुनियादारी भूल जाते हैं, बस वो ट्रैक ही दिखता है सर, प्रैक्टिस
0: बहुत सारे
1: लोग कहीं जाते हैं गार्डन घूमने, हम अगर कहीं मन शांत नहीं है ट्रैक पे चले जाते हैं
0: जी। नहीं खिलाड़ी काफी सारे आते हैं
1: ना? हाँ सर बहुत आते हैं शाम के टाइम, बॉयज गर्ल्स सारे प्रैक्टिस करते हैं, लड़कियां भी करती है लड़के भी करते हैं, दोनों टाइम वर्कआउट सेशन रहता है सर सभी का।
0: तुम सरकारी सेवाओं के लिए भी ट्राई कर रहे हो क्या?
1: जी सर मैं कर रहा हूँ, अभी वो स्कूल में पीटीआई हो गए कोच के लिए, अभी मेरी वो फाइनल ईयर है बीपीएड चल रही है, तो सर उसके बाद एग्जाम दूंगा सर।
0: बहुत बढ़िया
1: जी सर।
0: तो श्रोताओं आप सुन रहे हैं एक युवा आवाज, युवा जुनूनी, और वो आवाज जो ट्रैक पे निकालते हैं अपना पसीना, और जिनके पैरों में होते हैं जूते, और फिर सामने होता है लक्ष्य किलोमीटर का। तो हम ऐसे जुनूनी के साथ हैं जो लंबी दूरी के धावक हैं, और बस कुछ श्रोता हूँ आपको पता है कि जिंदगी भी एक दौड़ है, लेकिन जिंदगी की एक दौड़ में कुछ छोटी छोटी दौड़ है जो देश के लिए मेडल लाती है, और परिवार गांव और स्टेट के लिए एक सम्मान का विषय बन जाती है, कुछ वैसी ही दौड़ को करते हैं हमारे आज के गेस्ट देवरा और आज के जुनूनी देवरा। देवरा और क्या जिंदगी में क्या मसला है, क्या सोचते हो तुम खिलाड़ियों के जीवन को लेकर, क्या सोचते हो अपने आसपास के समाज और अपने अंदर क्या अंतर देखते हो?
1: सर ये चीज इसमें तो बहुत डिफरेंट है सर, एक खिलाड़ी सर इतना निखरा हुआ होता है कि हर चीज वो उसने स्ट्रगल किया है, तो एक मैं अगर कंपेयर करूं जो गेम नहीं करता और एक मैं गेम करता हूँ, जो चीज़ें हमने फेस की है जिस मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट खेलने जाते हैं अलग अलग उसे मिलते हैं, तो हमारा वो सोच का काफ़ी फर्क रहता है सर, वो हम ऐसे लगता है कि हाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें गेम में। जी सर
0: नहीं गेम तो देखिए हमें सिखाता है और गेम ही हमें आगे बढ़ाता है, और गेम की बदौलत ही दुनिया में सब कुछ आगे चलता है। वैसे दुनिया भी एक गेम है और हर कोई हमारे साथ रोज कोई ना कोई गेम खेलता है, लेकिन क्योंकि हम खिलाड़ी हैं और खतरों के खिलाड़ी हैं तो हम हर गेम से पार पा जाते हैं, और वैसे भी हमारा नाम है देवाराम है, हम तो देवों के राम हैं। तो देवाराम ये बताओ ना जोधपुर का जीवन कैसा है, जोधपुर कैसा शहर है, कैसा लगता है?
1: सर जोधपुर बहुत अच्छा है, मैं मेरे गेम के टूर ऑल इंडिया हो रखे हर स्टेट में घुमा हूँ, लेकिन जो जोधपुर में सुकून मिलता है ना सर रहने का, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का लोगों का जो एक आवादर है सर हमारी मेहमान नवाजी है बहुत अच्छी है, जोधपुर का मौसम बहुत अच्छा है सर, यहाँ
0: जी
1: कहीं पे भी रहने का मन नहीं करता जोधपुर की सेवा सर।
0: आप जिस स्टेडियम में ट्रेनिंग करते हैं अमरस लाल गहलोत, थोड़ा बताएंगे इनके बारे में?
1: सर हाँ सर बताएंगे, वो यहाँ पे जो आसपास है सारे माली समाज रहते हैं सर, माली समाज के एक बुजुर्ग थे जो मतलब उनकी जमीन थी ये, और वो अपने टाइम में वो दान करते थे, जैसे मतलब किसी की हेल्प कर दी, कोई गरीब है तो उसकी हेल्प कर दी, तो लास्ट में उन्होंने जाने से पहले ये जमीन दान कर दी कि ये एक स्टेडियम बना दें। पहले यहाँ पे स्टेडियम था ना सर, वहाँ पे एक नाटी थी जो हमारे मारवाड़ में बोलते हैं ना जो नाटी होती है जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है, वैसे थी, तो उन्होंने मतलब बच्चों के खेलने के लिए एक ग्राउंड जो इसमें बहुत सारे बच्चे आर्मी की भर्ती की तैयारी करते हैं उनके लिए वो ये सार्वजनिक भर्ती सर सभी के लिए। तो फिर उनका नाम दे दिया अमृतलाल केलर स्टेडियम से।
0: बहुत बढ़िया, तो एक बहुत भामाशाह थे मतलब।
1: बहुत बड़े भामाशाह थे सर। आज हजारों बच्चे यहाँ से पास आउट हो चुके सर, कोई आर्मी में, कोई दिल्ली पुलिस में, किसी में है।
0: सबसे अच्छा मोमेंट तुम्हारे जीवन का क्या अभी तक रहा?
1: सबसे अच्छा मोमेंट सर
0: वो याद है
1: मेडल का है सर, मेडल आता है तो वो पोडियम पे खड़े होते तो वही सबसे अच्छा मोमेंट होता सर।
0: बिल्कुल। इस पूरे माहौल में तुमने कौन कौन सी मैराथन में भाग लिया है अब तक?
1: सर मैंने मैराथन बहुत सारी खेली सर, ऐसे प्रॉपर याद तो नहीं है, लेकिन जो माउंट आबू में मैराथन हुई ना उसको वो सर सबसे अच्छी मैराथन थी, बहुत अच्छा लगा दौड़ के। और जो रिप्लेसमेंट या वो ओके ना सर सब कुछ बहुत अच्छा था माउंट आबू मैराथन में। ऐसी मैराथन मैंने पार्टिसिपेट पहली बार किया है, बाकी दूसरी जगह मैराथन होती है उसमें प्लेयर्स को जो फर्स्ट आता है, सेकेंड आता है, थर्ड आता है, सभी को इतना सम्मान नहीं मिलता, वो अपने एडवर्टाइजमेंट में टाइम गुजार देते हैं, खिलाड़ी को लास्ट में प्राइज मिल देते हैं, लेकिन ये सब कुछ खिलाड़ी के लिए, सबको मोटिवेशन देने के लिए सब कुछ किया तो बहुत अच्छा लगा सर माउंट आबू वाली मैराथन।
0: हाँ, यस, इसमें कोई प्रचार नहीं था। बिल्कुल। तो जिंदगी का मकसद जब सिर्फ प्रचार रह जाए तो फिर विचार खत्म हो जाते हैं, तो ऐसा ही विचार आपका है। तो श्रोताओं, आपने सुना देवाराम को, और देवाराम ने अपने जीवन की सारी बातें बता रहे हैं और खुल के बात कर रहे हैं, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8 FM, और मैं हूं आपका होस्ट शरद, और प्रोग्राम है जुनून, और जुनून में हमारे साथ जुनूनी है जोधपुर से देवाराम, और देवाराम से हम बात कर रहे हैं कि देवाराम की जो जिंदगी है ट्रैक पे है कि नहीं। और ये ट्रैक कितना लंबा जाएगा तो उसी पर हम बात कर रहे हैं, और देवाराम ने बताया है कि वो फिजिकल एजुकेशन में भी ट्रेनिंग कर रहे हैं और एक लंबी दूरी के धावक हैं। तो देवाराम, आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं?
1: फेवरेट खिलाड़ी मोहम्मद फराज है सर।
0: कौन से देश से खेलते हैं?
1: ये यूएसए की तरफ से खेलते हैं लेकिन केन्या के है सर।
0: जी जी जी। और ये ओलंपिक चैंपियन भी
1: भारतीय फेवरेट खिलाड़ी अविनाश आपले सर मेरे।
0: जी जी। और ये दोनों ही 5000 meters खेलते हैं, राइट?
1: हाँ, लंबी दूरी के एक ये हमारे भारतीय अविनाश आपले ये स्टीपल चेस करते हैं सर 3 किलोमीटर, और रिकॉर्ड भी अभी पहले इनके ही थे इंडिया रिकॉर्ड ये 5 किलोमीटर का अविनाश आपले, अभी सर गुलवीर सिंह है।
0: लेकिन तुम स्टीपल चेस के खिलाड़ी नहीं हो, लेकिन तुम्हारे फेवरेट अविनाश सांपले क्यों?
1: वो सर उनका वो मोटिवेशन, उनका जो स्ट्रगल, कंटिन्यू प्रैक्टिस, सब कुछ वो देख के सर फैन हो चुका हूँ।
0: और मोहम्मद फराज क्या खेलते हैं?
1: मोहम्मद फराज 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वो मैराथन भी खेलते हैं सर,
0: और वो ओलंपिक खिलाड़ी भी हैं।
1: हाँ, वो ओलंपिक मेडलिस्ट है सर।
0: बहुत बढ़िया। तो जो हमारे श्रोता स्टीपल चेस के बारे में नहीं जानते, इस दौड़ के बारे में बताइए हमें।
1: हाँ सर, बताइए। स्टीपल चेस 3 किलोमीटर में ये होता है सर, 5 हेडल होते हैं, तो हम जो इसको बादा दौड़ भी बोलते हैं हिंदी में, तो सर इसमें 5 हेडल होते हैं, तो उनको उनके ऊपर से कूद के जाना पड़ता है। 5 में से एक होता है सर वाटर जंप, जिसमें हेडल तो है ही सर, और उसके नीचे पानी गड्ढा कर रखा है पूरा, उसमें पानी भर रखा है, उस पानी के अंदर से कूद के जाना होता है। ऐसे 7.5 लैप होते हैं ग्राउंड के, तो फिर 3 किलोमीटर की उसको बाधा दौड़ कहते हैं।
0: जी, तो एक में पानी होता है और हडल क्या क्या हडल होते हैं?
1: एक पानी का होता है, बाकी नॉर्मल हडल होते हैं उनके ऊपर से कूदना होता है।
0: मैक्सिमम कितना ऊंचा हडल होता है?
1: मैक्सिमम होता है सर 2.5 फुट प्लस। हाँ, 2.5 फुट।
0: बाधाओं को से पार पा जाना ही तो वाला ही तो इंसान कहलाता है, और कुछ वैसी ही बाधाएं ट्रैक और वैसी ही कुछ बाधाएं ट्रैक पे होती है, और हमारे देवाराम भी ट्रैक पर उन बाधाओं से पार पाते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8 FM माउंट आबू की वादियों से, और उन्हीं माउंट आबू की वादियों में से जहां पर हम हर साल करते हैं मैराथन, और मैराथन होता है एक मनुष्य की ताकत को आजमाने का मौका, एक ऐसा मौका जब अपनी क्षमताओं से बाहर निकल जाना होता है और उन क्षमताओं को जांचने का अवसर मिलता है एक इंसान को मैराथन, एक लंबी ट्रेनिंग के बाद अपने हुनर और अपनी ताकत को दिखाना, अपनी जंगाओं को ताल देने का मौका कि आ जाओ देखते हैं किसमें है कितना दम। तो कुछ वैसी ही मैराथन, और हमारी बातचीत में हम उन मैराथन के बारे में भी बात करेंगे जिसमें लग जाता है पूरा दम। तो देवाराम हमारे साथ हैं और हम बात कर रहे हैं दम और खम की और दौड़ की, जिसमें मैराथन जिसमें स्टैमिना की भी बात है जो हम पहले कर रहे थे। तो कुछ वैसा ही होता है हमारी मैराथन माउंट आबू में जो हम ब्रह्मा कुमारी करवाते हैं, तो उसी मैराथन के बारे में थोड़ी बात करते हैं। 21 किलोमीटर का एक लंबी पहाड़ी, ऊंची माउंट की पहाड़ी, वो पहाड़ी जिस पर जिसको जीतने के लिए जिस पर लंबे समय तक अंग्रेजों ने राज किया, और आज़ादी के बाद अब राज है देवाराम जैसे एथलीट्स का उस पहाड़ी पर, और बता देगा कि हमने इसको जीता है और हमने इसको पूरा किया है अपनी ताकत और अपने स्टैमिना के तौर पे। तो देवाराम जी आप थोड़ा बताइए ना, क्या याद है उस मैराथन?
1: सर वो मोमेंट उस टाइम जो अगस्त का महीना था सर, 17 अगस्त को होती, उसमें सर वो नीचे आबू रोड से माउंट आबू तक पूरी चढ़ाई थी 21 किलोमीटर
0: जी।
1: तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे आगे, क्योंकि पहले मैं इतनी लंबी चढ़ाई कभी नहीं चढ़ा सर, फ्लैट ही दौड़ा हूँ मैराथन, और पहली बार वो चढ़ाई चढ़नी थी सर माउंट आबू वाले। पहले मैं बस गाड़ी से ही गया था और दौड़ के पहली बार गया था अगस्त 2025 में सर। तो उसमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा बीच में। एक सर हमारे जो मैराथन दौड़ते हैं या फिर कोई भी इवेंट 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर करते हैं तो एक सेकेंड विंड आती है, जो एक उस टाइम ऐसा लगता है कि जैसे रेस आती कंप्लीट होती है सर, उस टाइम लगता है कि अब छोड़ देते, बॉडी में बहुत पेन होता है, पाँव थक जाते हैं, सांस फूल जाती है। तो वो सेकेंड विंड में अगर खिलाड़ी वहाँ टिका रहता है तो वो पूरी पार कर लेता है अच्छे से, लेकिन उसमें वहाँ मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है खिलाड़ी को। तो सेकेंड विंड में वहाँ मेंटली प्रिपेयर रहता है, दिमाग से चलता है। एक सेकेंड विंड सिर्फ सर 2 या 2.5 मिनट का होता है वो टाइम, वो 2-2.5 मिनट हमने सहन कर लिया ना सर, फिर आगे का बहुत अच्छा हो जाएगा, आधी रेस पूरी तगड़ी हो जाएगी सर। तो उसी हिसाब से मैं माउंट आबू में यहाँ से आबू रोड से वहाँ ऊपर माउंट आबू तक चढ़ा, तो उस चढ़ाई में सर ये चीज़ें मेरे साथ कुछ नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा दौड़ के। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए सर, ठंडी हवा आ रही थी ऊपर से, जैसे वो ठंडा मौसम रहता है सर ऊपर माउंट आबू में, और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था, आगे बाइक वगैरह सब चल रहे थे, वो वोटिंग भी कर रहे थे हमारी। तो मैंने हंसते हंसते वो रनिंग पूरी कंप्लीट की सर। स्टार्टिंग में 5 किलोमीटर तक तो सारे कुछ एथलीट थे हमारे, मेरे साथ ही भाई जो कोई एक दो साथ में भी ट्रेनिंग करते थे, भाई जो सेकंड आया वो गुजरात का था, तो वो मेरे साथ चले 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक। फिर 8 किलोमीटर हमारी कंप्लीट हुई तो धीरे धीरे सब टूटने लगे, हम 4 एथलीट जो कंटिन्यू साथ में चल रहे थे 14 किलोमीटर तक सर। फिर उस टाइम में उनके साथ ही चल रहा था सर, मैंने सोचा कुछ थोड़ा अलग करते हैं, तो मैंने अपनी सर रफ्तार बढ़ाई, तो रफ्तार बढ़ाई तो वो साथी खिलाड़ी सारे छूट गए और मैं हो गया अकेला। फिर आगे बाइक चल रही थी, पूरी वीडियोग्राफी हो रही थी, तो वहाँ का जो बीच का सफर था ना सर बहुत सुहाना, ऐसे पूरी हरियाली, ऊपर चढ़ते जा रहे, ठंडी हवा आती जा रही, रिकवरी होती जा रही बॉडी की, बिल्कुल पसीना नहीं हो रहा है, पानी का जो रिप्लेसमेंट बीच में व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी, हर 2-2.5 किलोमीटर पे पानी की व्यवस्था थी। तो सर मैं ऐसे ऐसे करते करते मतलब पूरी रनिंग आराम से 1 घंटा 19 मिनट में कंप्लीट कर ली, और बहुत ऐसे जैसे मैंने मैराथन फिनिश की थी तो उस टाइम हाथों हाथ आगे मेडिकल सुविधा थी, सब कुछ बहुत अच्छे से था, लेकिन मुझे उन सब की जरूरत नहीं थी क्योंकि थकान हुई नहीं थी सर माउंट आबू रनिंग मैराथन में। बाकी मैराथन में बहुत जोर आता है, हालत खराब हो जाती लास्ट तक, लेकिन वो पता नहीं क्या उन पहाड़ियों में था, तो अच्छा भी लगा, एक फर्स्ट आने का वो जुनून था सर, जो दर्द भी भूल गया सारा, जो काम बॉडी पेन हो रही है कितनी थकान है वो सारी गायब हो गई।
0: वो ब्रह्मा कुमारी की फिजिटी की ताकत थी,
1: चमत्कारी है सर बहुत वहां पे तो पास कर गया है
0: वो ताकत थी फिजिटी की, वो ताकत के एक अंतर्मन की जो शायद तुमको ट्रांसफर की, ऊपर वाली शक्ति तुमको ट्रांसफर की। तो ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, तुमने एक बहुत बड़ी रिस्क ली, तुमने अपनी स्पीड बढ़ा दी, कहीं तुम एग्जॉस्ट हो जाते हो, कहीं तुम एग्जॉस्ट हो जाते हो,
1: तो वो निर्णय सर वो इतना भरोसा थोड़ा खुद पे था सर, मैं बस खुद पे भरोसा करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इतना भरोसा था कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी हालत खराब हो जाए, खिलाड़ी मेरे पीछे दौड़े, वो भी अच्छे प्लेयर थे, 7 वोट थे वो भी अच्छे थे मेरे, काफी रेशो में हम बराबर के खिलाड़ी है, एक गुजरात का था वो बहुत अच्छा था, एक टाइम मेरे से भी अच्छा था प्लेयर, तो उस टाइम मुझे वो भांप लेते सर पीछे से जो साथ में चल रहे हैं ना, कि इसमें कितना जोर बच्चा है, इसमें कितना बच्चा है, मेरे में कितना, मैं थोड़ा फास्ट कर सकता हूँ, जब हमें लगता है सर कि हाँ फास्ट करेंगे और नहीं छूटेंगे, हम पूरी कंप्लीट कर देंगे, तो उस टाइम ही फास्ट करते, बहुत सोच समझ के करना पड़ता है।
0: और तुम लोग अच्छा एक दूसरे को भी जज करते रहते हो कि सामने वाले में कितना दम बचा है।
1: हाँ वो जज तो सर वो देख के नहीं करते, देखना तो कहाँ सर, आगे वो सीधी रोड दिखती है, बस भागना भागना, स्पीड मेंटेन रखनी पड़ती है, वो उसकी सांस से जज करते हैं, उसकी सांस से, उसके पांव की आवाज से, वो ऐसे ऑटोमेटिक गेम करते हैं सर, वो पता चल जाता है उसमें कितना दम बचा पीछे में। जो सांस चलती है ना उसके हिसाब से पता चल जाता है हमें सर, अगर ज्यादा तेज सांस चलती है
0: जी। लेकिन हमारे श्रोता जो नहीं जानते हैं वो तो ये उनको उनकी जानकारी के लिए बता दें कि मैराथन सामने वाले से ज्यादा खुद से लड़ाई है।
1: हाँ सर वो मैराथन में खुद से लड़ाई होती है, क्योंकि 21 किलोमीटर बहुत लंबी दूरी होती है, और लगातार ऐसा नहीं खाली दौड़ना, स्पीड मेंटेन करके दौड़ना होता है सर, किलोमीटर पेस होता है, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं 3 का पेस पर किलोमीटर 3 मिनट, तो मेंटेन करना पड़ता है, लास्ट में उससे भी फास्ट करनी पड़ती है। मुझे कवर करेगा, और फिर मैं अपने रिदम में चलता रहा, उसी स्पीड को मेंटेन करते हैं। बाकी दूसरी रेस में होता है सर कि सारे प्लेयर, जैसे एक झुंड होता है सर हमारा 10 खिलाड़ियों को, वो लास्ट 19-20 किलोमीटर तक सभी साथ में चलते हैं, फिर क्या होता है वहां पे होता है बड़ा रिस्क लेना पड़ता है कि पूरी उठा के चलो, या तो मैं पीछे रहूंगा या फिर ये सारे पीछे रह जाएंगे, उसमें सर 1 किलोमीटर लास्ट वाला इतना फास्ट करना पड़ता है कि वहां गिरना पड़ता फिनिश करते ही, हाथों तो बाद कुछ पता ही नहीं चलता फर्स्ट कौन आया, मैं आया कहाँ हूँ, कहाँ बैठा हूँ, 10 मिनट बाद पता चलता है।
0: फिर तो वो रिबन टूटता है और हम उस पार होते हैं। तो ये तो है, लेकिन एक बात है कि तुम 5000 मीटर के खिलाड़ी हो और तुमने ये तुम्हारे को लगभग 2100 मीटर की तुम्हारी दौड़ थी, तुमको 4 गुना तुमको डिस्टेंस दे दिया गया, और जिसकी तुम्हें प्रैक्टिस नहीं है, तो ये स्टैमिना कहाँ से आता है, मतलब इतना स्टैमिना कहाँ से आता है?
1: स्टेमिना सर ट्रेनिंग में होता है हमारा, जैसे कि मैं 5 और 10 किलोमीटर इवेंट है मेरा, तो सर 10 दोनों करता हूँ 5 और 10 किलोमीटर, तो मेन मेरा 10 है, बाकी 5 पार्टिसिपेट करता हूँ, लेकिन मेरे 5 में मेडल कम आते हैं, 10 में ज्यादा आते हैं सर। तो हमारे क्या ट्रेनिंग सेशन होता है, जैसे 10 किलोमीटर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें 3 गुना वर्कआउट ज्यादा होता है, जैसे कि लगभग हमारा वीक में 2 दिन तो 20 किलोमीटर ऐसे ही हो जाता है, करना पड़ता है रनिंग।
0: तुमने तुम्हारा 180 किलोमीटर का लक्ष्य है जो तुमने बताया अभी।
1: हाँ, वीकली 180 किलोमीटर है सर, 180। वो पूरा वर्कआउट सेशन में रहता, फास्ट स्लो जैसे होता है वो सब। तो मैराथन मैंने पहली बार भागी थी तो सर 10-12 किलोमीटर तक सही चल पाया, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जिसने मेरे हाथों पांव ने मेरी सांस ने फेफड़ों ने सब ने जवाब दे दिया कि हम बाहर आ रहे हैं, तू नहीं रुका तो बाहर आ जाएंगे, तो सर
0: हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, श्रोताओं मजा आ रहा है ना बातचीत में जी।
1: तो सर उसके बाद मैंने वो लास्ट तक वो वर्कआउट में भी अपना डिस्टेंस बढ़ाया, फिर और मैं सर मैं सच बताऊं सर मैंने मैराथन सिर्फ पैसे के लिए भागी, पहली बार भागना शुरू हुआ सर, क्योंकि मेरा वो साइड इनकम था नहीं और स्पोर्ट्स के शूज ये डाइट वगैरह बहुत महंगी आती थी, तो मेरे पास एक ही चारा था कि मैराथन भागूं जिससे मेरा वर्कआउट भी हो जाए और पैसे भी आ जाए। लेकिन फिर धीरे धीरे एक मैराथन का भी जुनून होता सर, पोडियम पे जा खड़े होते हैं, सब प्राइज मनी भी मिलता है, एक इज्जत मिलती है, वहाँ का अच्छा लगता है सर वो खेल के, तो एक जुनून भी है मैराथन खेलने का और हमारे वो डाइट भी चल जाती है। लेकिन सर जो माउंट आबू वाले मैराथन में मिला, जो मतलब वहाँ से आगे और ज्यादा स्ट्रगल करने का मन किया सर, मतलब बहुत अच्छा लगा, इतना मतलब हमारा आवाज़र हुआ, प्लेयर्स का जाते ही मेडल पहनाना, रिप्लेसमेंट जाते ही वो कोल्ड एनर्जी ड्रिंक वगैरह सब अवेलेबल था, नाश्ता जो खिलाड़ी को चाहिए वो चीज़ें सारी अवेलेबल थी। तो उसमें सर मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं प्राइज के लिए दौड़ा नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे वो चाहिए ही नहीं था प्राइज, लेकिन वो फर्स्ट आया, वो सम्मान मिला ना मुझे, वो ही बहुत था मेरे लिए सर, बहुत अच्छा लग रहा था। माउंट अबू मैराथन वो एकमात्र ऐसी मैराथन है जिसमें तो मैं सब सारी चीज़ों को छोड़ के मतलब एक इन्जॉयमेंट, वहाँ का जो नेचर में वो मोमेंट, वहाँ का वेदर था ना, वेदर भी अच्छा था और लोगों का वो सर बात करने का तरीका, सारे वहाँ के वो थे ना सर, कौन मतलब जहाँ जो भी लोग थे हमारा मेडल पहना स्वागत किया, वो उनके सर बहुत अच्छा था बात करने का तरीका, एक रेस्पेक्टेड तरीके से बात की थी उनसे, वो अच्छा लगा सर।
0: जी खिलाड़ी को देखिए सम्मान ही चाहिए होता है, खिलाड़ी और तो कुछ मांगता नहीं है, और खिलाड़ी सम्मान के लिए खेलता है, मेडल के लिए खेलता है। लेकिन एक बात है कि तुमने तुम बता रहे हो कि ये सेकंड विंड उस दिन नहीं आई, तो सेकंड विंड नहीं आई ये साइंटिफिकली तुम्हें मानने को तैयार नहीं, ऐसा क्यों हुआ होगा?
1: वो सर मैं भी नहीं समझ पाया, फिर ऊपर आया जीता, सभी ने बोला ये ब्रह्मा कुमारी, ये इसकी मतलब माउंट आबू की वादियों की कृपा, ये चमत्कार है। मैंने कहा हो सकता है, मैंने तो मान लिया है सर, क्योंकि और मैं अपने तरीके से सोचूं तो सर सेकंड विंड नहीं आने का कारण तो ये था कि स्टार्टिंग में जो हमारी स्पीड थी ना खिलाड़ी की, सारों की स्पीड स्लो थी क्योंकि चढ़ाई थी सर, ज़्यादा स्पीड से नहीं भाग सकते, वो रिदम सेट करके चलना पड़ता एक ही स्पीड में। तो मैं स्टार्टिंग वाले 4-5 किलोमीटर उनके साथ चलता रहा, मैंने उन सबको पहचाना कि ऐसा कौन सा बंदा है जो मेरे से अच्छा फिट है या फिर मेरे से आगे लेके चलेगा, तो फिर मैं उनमें से ढूंढ रहा था वो बंदा जो कोई आगे लेके चले, जो सबको पीछे छोड़ के मैं उसके पीछे पीछे चलता रहूं, लेकिन ऐसा बंदा कोई आया ही नहीं। तो 6-7 बंदे हम 6 किलोमीटर तक साथ चले, तो उसमें धीरे धीरे एक एक छूटने लग गया, तो फिर वहाँ से एक कॉन्फिडेंस आ गया सर, इतना कॉन्फिडेंस आ गया खुद पे कि बस आज मैं कर सकता हूँ।
0: हाँ, जी।
1: तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे छूटते गए, हम 4 जने लास्ट में बचे थे, 4-7 चल रहे थे सर, तो जिस स्पीड से वो चल रहे थे वो स्पीड मेरे लिए इजी था, एकदम इजी लग रहा था, सांस बिल्कुल भी नहीं फूल रही थी, रिकवरी फुल थी, पसीना भी कम ही आ रहा था, और बाकी पानी की जरूरत नहीं पड़ रही थी, 14 किलोमीटर के बाद ही पड़ी थी हमें पानी की जरूरत। फिर देखा मैंने थोड़ा बस वो रिस्क तो लिया सर, क्योंकि वहाँ पे मैंने एकदम से अपनी स्पीड बढ़ाई, जैसे मैंने झटका दिया रेस में सब छूट गए सर, छूटे तो मैंने तो अभी अपने पास 14 किलोमीटर हुई है, तो 7 किलोमीटर और पड़ी है, तो उसमें सर धीरे धीरे गैप बढ़ाते और बढ़ाते गैप, तो मेरे सेकंड वाला मेरे से 1 किलोमीटर पीछे था सर।
0: जी
1: हाँ, मैं 1 किलोमीटर सबसे आगे था, वो सेकंड बंदा 1 किलोमीटर मतलब 3 मिनट बाद आया मेरे से, और थर्ड वाला तो बहुत भी पीछे था।
0: बहुत बढ़िया।
1: वो उसमें सेकेंड विंड का थकान हुई नहीं सर, थकान दो ही सेकेंड विंड यही होती है सर, पांव दर्द करने लग जाते हैं, सांस फूल जाती है, उस टाइम ऐसा लगता है हमसे होगा ही नहीं, यहीं छोड़ देते हैं, फिर वो चीज़ उस टाइम कुछ नहीं महसूस हुआ ऐसा कुछ भी, और वो क्यों नहीं हुआ मुझे भी समझ नहीं आया आज तक।
0: मोहम्मद फराज की क्या खास बात है जो आपको उनसे सीखने को मिली?
1: उनकी सर वो कोई रेस छोड़ते नहीं बीच में, और उनका स्ट्रगल मैन ट्रेनिंग सेशन रहता है ना, वो बहुत मेहनत से करते हैं सब कुछ, डिसिप्लिन उनका बहुत अच्छा है।
0: जी
1: एक बार उनकी रेस थी एक सर 10,000 मीटर, उसमें स्टार्टिंग में क्या किसी खिलाड़ी ने पीछे पांव अटक गया था, तो उसकी वजह से वो गिर गए थे नीचे, नीचे गिरने के बाद भी उन्होंने वापस हार नहीं मानी, वापस उठ के और लास्ट में फिनिश फर्स्ट किया था, फर्स्ट हो गए थे वो, गोल्ड था उनका, नीचे गिरने के बाद भी वापस उठकर उन सबको पीछे रखा था, तो वो हार नहीं मानते कभी सर।
0: एथलेटिक्स में खास तौर पे 5,000 मीटर और 10,000 मीटर में या स्प्रिंट में क्या आपको लगता है एशियन खिलाड़ी मेडल्स ले सकते हैं, अफ्रीकन खिलाड़ियों को हरा सकते हैं, ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं जो
1: सर हमारे इंडिया में ही है सर इस बार, तो हम ये गुलवीर सिंह है सर, आर्मी से बिलोंग कर रहे आर्मी में है सर, और इन्होंने इंडिया रिकॉर्ड भी बनाया अभी 27-14 का है सर,
0: 5,000 मीटर
1: 10 किलोमीटर का 27 मिनट 14 सेकंड सर
0: जी,
1: तो ये बहुत अच्छे फिट है और ये जाती है सर 27-28 मिनट की रेस जाती है ओलंपिक गेम्स में भी।
0: तो अभी तैयारी
1: कर रहे हैं ओलंपिक पार्टिसिपेट किया है। कर रहे हैं उनको सर अभी बहुत जैसे कि ये बुलवीर सिंह हो गए अविनाश आपले उनको आर्मी सपोर्ट करती है हमारी भारत सरकार करती है जो भी है बहुत सपोर्ट ट्रेनिंग जिनको बाहर ट्रेनिंग कराया जा रहा है आउट ऑफ इंडिया तो आराम से इस बार हमारे इंडिया का गोल्ड आ सकता है इसमें 10,000 मीटर में ओलंपिक में।
0: श्रोताओं जो बाहर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं ये टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की बात कर रहे हैं जिसमें भारत सरकार युवा एवं खेल मंत्रालय कुछ सिलेक्टेड खिलाड़ियों को टॉप स्कीम में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग का अवसर देता है और इसके साथ साथ एक अच्छा मानदेय भी उनको मासिक रूप से मिलता है और फुल सपोर्ट जिसे कहते हैं कि पूरा सपोर्ट चाहे कितना भी पैसा लग जाए वो भारत सरकार उनकी ट्रेनिंग में कमी नहीं छोड़ती है। तो इसे कहते हैं टॉप टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। तो उसके बारे में गुलवीर जी के बारे में बता रहे हैं हमारे देवाराम जी। देवाराम जी मैंने सही बताया देवाराम जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बताया सर आपने।
0: जी जी इसके अलावा और कौन सी मैराथन है जिसमें आपने भाग लिया है और आपके कोई क्या अनुभव रहे हैं देश विदेश कहीं पर और अनुभव क्या
1: सर? ऐसे तो मैंने बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल मैराथन भागी है अलवर में होती है दिल्ली में होती है लखनऊ गया था मैं ऐसे मैंने सर काउंट तो नहीं कि याद नहीं है कन्फर्म तो लेकिन 25-30 मैराथन मैंने खेली है सर उसमें मैं कम से कम सर 16-17 मैराथन मैंने विन किए।
0: जी बहुत बढ़िया। एक खिलाड़ी स्पॉन्सरशिप के लिए कैसे प्रयास करता है और क्या बढ़िया स्पॉन्सरशिप CSR स्पॉन्सरशिप मिल सकती है उसको?
1: हाँ सर स्पॉन्सरशिप के लिए खिलाड़ी क्या है सर जो भी अगर कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही है तो वो उससे पहले अचीवमेंट मांग रही है कि आपके पास नेशनल मेडल है तो स्पॉन्सर करेंगे लेकिन खिलाड़ी जब डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल खेलता है ना रियल सपोर्ट तो उस टाइम चाहिए था सर वो स्ट्रगल कर रहा होता उस टाइम उसको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है और बाकी जो स्ट्रगल कर लिया मेडल आ गया जो अचीवमेंट करने के बाद उसके बाद उसको स्पॉन्सरशिप मिलती है उस टाइम सच में जरूरत नहीं होती उस खिलाड़ी को जरूरत जैसे कि ये फाइट कर रहा है नेशनल स्टेट के बीच में खिलाड़ी और
0: जी मुख्य बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे हमको खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करने की जरूरत है और उस समय पे उनके लिए एक बैकअप प्लान बनाना
1: है नेशनल मेडल के लिए।
0: जी बिल्कुल तो बिल्कुल सही कह रहे हो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही हमें उनको सपोर्ट करने की जरूरत है
1: और बाकी जो गवर्नमेंट करती होगी पता नहीं सर मुझे तो कभी सपोर्ट मिला नहीं सर हमारे ये TDA का पैसा मिलता तो आने जाने हम खेलने जाते हैं ना सर यहाँ से स्टेट नेशनल जो TDA वो कुछ मिलता है वो उसके कोरोना से पहले तो बैंक डायरी की फोटोकॉपी ली जाती लेकिन पैसे कभी नहीं आए और अब तो वो भी नहीं लेते ये बीच में पता नहीं कौन खाते हैं सोशल वाले खा जाते हैं पैसे कौन करते पता नहीं चलता सर आज तक एक रुपया नहीं आया बोलते हैं कि आपके आएगा TDA लेकिन कभी नहीं आए सर मेरे 8 साल के गेम के करियर में आज तक गवर्नमेंट ने आने जाने का खर्चा तक नहीं दिया एक रुपया भी तो ऐसे न्यूज में पेपरों में कहते हैं सर गवर्नमेंट हेल्प करती है खिलाड़ी को या कुछ नहीं करती सर मुझे आज कुछ भी नहीं मिला आज तक किसी भी खिलाड़ी मेरे साथी को भी नहीं मिला सर।
0: ये बात सही है कि सरकार में कई बार चीजें समन्वय और उसके बिना अटक जाती हैं और कैसे ही
1: हाँ। खिलाड़ी तक जो सरकार की स्कीम निकलती है जैसे कि वो TDA मिलता है वो खिलाड़ी तक पहुंचता ही नहीं है।
0: लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूंगा दुनिया की और कौन कौन से मैराथन ग्राउंड पुणे का क्या अनुभव है? पुणे का भी काफी बड़ा मैराथन होता है मैंने सुना उसमें कई सेलिब्रिटीज भी आते हैं लोग।
1: हाँ सर ये ब्रांड एम्बेसडर वही होते हैं सेलिब्रिटी होते हैं अभी मैं यहाँ गुजरात गया था सर गांधीनगर वहाँ आए थे सुनील शेट्टी आए थे उन्होंने रेस स्टार्ट किया था हमें और उससे पहले मैं अहमदाबाद यहाँ अलवर गया था अलवर टाइगर मैराथन थी उसमें सर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी आए थे उन्होंने स्टार्ट किया था हमारे रेस को और बाकी ये बड़ी सेलिब्रिटी या फिर कोई नेता यही आते हैं।
0: निश्चित रूप से काफी सारी चीजें हैं जो आपने
1: कश्मीर गया था कश्मीर मैराथन में गया था भी दो तीन महीने पहले वहाँ तो सर ठंड बहुत थी माइनस में था पारा तो वहाँ कुछ सूट ही नहीं हुआ सर वो जो सोच के गए वो रेस लगी नहीं थी
0: वहाँ वार्म अप नहीं हो पाया आपका हाई एल्टीट्यूड में ना
1: हाँ सर, क्योंकि इतने ऊपर मैंने कभी ना तो ट्रेनिंग की है और जाने का एक्सपीरियंस भी पहला ही था, पहली बार ही गया था। बाकी सर हर स्टेट में मेरे साथ होती है, मैंने खेली भी है सर हर जगह।
0: अभी सबसे हाई कैश प्राइस वाली मैराथन कौन सी है?
1: हाई कैश प्राइस वाली सर लखनऊ में थी, ऐसे अलग अलग रहता है सर। ये अभी जो कश्मीर गया था ना उसमें सबसे हाई प्राइस था सर, 25 लाख था फर्स्ट प्राइस।
0: जी
1: हाँ, कश्मीर में हुई थी वो इंटरनेशनल मैराथन थी, तो बाहर के प्लेयर नहीं जीता था फर्स्ट, वो केनिया का था सर
0: जी,
1: और अपने इंडिया का सेकंड हो गया।
0: अच्छा बढ़िया, बहुत ही अच्छा अनुभव तुम्हारा, और एक विस्तार से तुमने अपने मैराथन के बारे में बताया है, और हम तो यही जानना चाह रहे थे कि आपका क्या नया अनुभव रहा मैराथन के साथ में। लेकिन हाँ ये बात सही है कि मैराथन तो आप दौड़ ही रहे हैं, लेकिन अपनी चैंपियनशिप भी नहीं छोड़िएगा,
1: आप
0: हमारे श्रोताओं से कुछ साझा करना चाहें तो हमें बताइए, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा लेकिन आप कहना चाहेंगे।
1: अपना मेरा टर्निंग पॉइंट बता सकता हूँ मेरी लाइफ का, वहाँ से वापस एक पूरी कहानी है सर, बता सकता हूँ अभी?
0: हाँ
1: सर, 2020 में कोरोना आया था, पहले मुझे स्टार्टिंग में, उससे पहले मैं प्रैक्टिस करता था, 2 साल पहले शुरू करते, 18 से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ इसकी स्पोर्ट में हूँ सर। उसके बाद 2020 में मुझे कोविड हो गया था सर, तो फर्स्ट बार वो बुखार आया और हफ्ते भर में ठीक हो गया मैं, सेकेंड बार मेरे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था सर, 60% इन्फेक्शन हो गया था नीचे इस, फिर पेट में वगैरह सब जगह अंदर इन्फेक्शन हो गया था कोविड की वजह से, पोस्ट कोविड हुआ था। तो फिर उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि अब नहीं बचूंगा, क्योंकि बहुत सारे केस आ रहे थे उस टाइम कोविड के, और फिर मैं यहाँ रूम पे अकेला ही रहता था जोधपुर में, और हॉस्पिटल भी पूरे पेशेंटों से भरे थे, और घर पे मैंने बताया नहीं था सर मुझे ये हो रखता है, मैंने फ़ोन पे ही डॉक्टर से सलाह ली कि वो कोविड की प्ले का है तो गोले ले रहा था, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हो रहा था। तो फिर यहाँ से फिर मैंने सोचा मैं बचूंगा नहीं सर, फिर यहाँ से कैसे भी करके घर चला गया मैं, घर वहाँ अलग ही रूम में सो गया, पापा को बोलते बाहर से आया हूँ तो फिर आप पास मत आना, और रोज दिक्कत होती थी बहुत, सांस की सर सांस ही नहीं आती थी, अंदर जाती हवा बाहर कुछ आता ही नहीं था, ऐसे करके मुझे मैंने बताना पड़ा, पापा ने हालत देखी तो ये क्या हो गया, तो फिर हॉस्पिटल लेके गए, तो मुझे वहाँ से फिर डॉक्टर ने वो सब कुछ चेक किया और लिखा इसके इन्फेक्शन है बहुत फेफड़ों में, तो फिर वहाँ से ट्रीटमेंट शुरू किया उन्होंने, 5-6 दिन बाद वापस देखा तो 2-4% वापस रिकवर हो रहे थे मेरे, तो वहाँ से वापस एक आस जगी जीने की, हाँ मरूंगा नहीं, रिकवरी हो रही है मेरी सर। तो वो मुझे टाइम 6 महीने लगे वापस कवर होने में, डॉक्टर ने सर 1.5 साल बोला था कुछ नहीं करना एक्टिविटी वगैरह, लेकिन मैंने 6 महीने बाद ट्रेनिंग शुरू कर दी वापस गेम की, और वहीं से वो मोटिवेशन आया मुझे गेम को, मैं कंटिन्यू करता गया, लेकिन बीच में परेशानियां बहुत आई थी सर, ये पैसों की दिक्कत आई थी क्योंकि ट्रेनिंग पे पैसा भी बहुत खर्च होता, डाइट का, शूज़ का, पापा खेती करते किसानी करते तो इतने पैसे नहीं दे सकते थे, ये सब कुछ झेलते हुए मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है गेम में, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं आ पाई सर, ये टर्निंग पॉइंट था मेरा कोविड, उसमें एक जीने की आशा खत्म हो गई थी, तो वापस दोबारा गेम में अच्छा करके आज यहाँ हूँ, तो बहुत कुछ नहीं सोच के मैं बस श्रोताओं को सबको यही कहना चाहूँगा कि कभी हार नहीं माननी, जैसा भी है जिस भी हाल में है, बस हम करते रहेंगे ना प्रैक्टिस, एक दिन वही मुकाम हासिल होगा हमें जरूर, हार नहीं माननी, गेम को कभी छोड़ना नहीं,
0: डर के आगे जीत है और मन के हारे हार, तो
1: हाँ मन के हारे हारे मन की जीत जीत सर।
0: तो इसलिए श्रोताओं, देवराम ने हमारे वैदिक शिक्षा से जो ज्ञान हमको मिला है वो ज्ञान फिर से आज हम ज्ञान चर्चा के बीच उस बात पर आ गए, और वो बात का सार, इस बातचीत का सार हमने ले लिया है, जो हमें गुरु ज्ञान मिलना था एक एथलीट से वो हमने ले लिया है।

और आज वो न केवल एक चैंपियन है और माउंट आबू मैराथन के भी चैंपियन है, और निश्चित रूप से हम उनको शुभकामनाएं देंगे कि वे एशियन गेम्स के लिए भी क्वालिफाई करें। थैंक यू।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में कितना सुंदर लगता है, कितना खुशी लगता है अपना गांव और अपना अंचल जब नाम सुनते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का नाम ही मेरा गांव मेरा अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गाँव और अंचल में जाते सभी वर्गों से मिलते हैं, चाहे प्रशासन गाँव के संघ हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे गांव का इतिहास हो, चाहे किसान हो, सभी वर्गों से मिलते। तो राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय का आवाज तो हमेशा सुनते हैं, लेकिन आज आपको रेवदर ब्लॉक के मंडार नूतन सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय का आवाज बारी बारी सुनने को मिलेगा। सभी अपना अपना उमंग उत्साह से लेकर आज पहुंचेंगे। तो हमारा श्रोता मित्र अपना वॉल्यूम को तेज रखते हुए ध्यान से सुन रहे बच्चों का आवाज को, बच्चों का कार्यक्रम। विद्यार्थी विकास में बच्चों का आवाज न हो ये हो ही नहीं सकता। जब अबरूड से मंडार तक पहुंचे तो मंडार का भी आवाज, खासकर नूतन सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय का आवाज आपको सुनने को मिलेगा। पहला प्रस्तुति सुनेंगे एक देशभक्ति गीत जिसमें असिता और श्रद्धा दोनों मिलकर इस कार्यक्रम को सजाएंगे। तो वेलकम करते हैं उनको, स्वागत करते हैं। तो लीजिए पहला प्रस्तुति।
1: मेरा नाम असिता है, मेरे पिताजी का नाम जयंतीलाल है, मेरे माताजी का नाम गुड़िया देवी है, मेरे स्कूल का नाम नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार।
2: मेरा नाम श्रद्धा वैष्णव है, मैं नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ।
3: मेरा नाम लाजवंती देवासी है, स्कूल का नाम नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार है।
4: मेरा नाम लक्षिता कोहली है, मैं नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ।

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और जब बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ऐसे देशभक्ति हो चाहे प्रार्थना हो चाहे भक्ति भावना को लेकर ओतप्रेत होते हैं, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: बच्चों लिए ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं और हमारा बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो कन्वेंट स्कूल के बच्चे, प्राइवेट स्कूल के बच्चे, नूतन सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार का आवाज आपको बारी बारी सुनने को मिल रहा है। और जब इस तरह कार्यक्रम में बच्चे भाग लेते हैं तो इसका श्रेय तो माता पिता, गुरुजन और विद्यालय को जाता है और खुद का प्रति भी ध्यान रहते हैं, जिसका चलते आज कार्यक्रम को सजा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और छात्र उपस्थित है, छात्रा का नाम है दृष्णा, तो आज 10th क्लास का बच्ची है, फिर भी कोई डरने कोई झिझक नहीं और अपना उमंग उत्साह को लेकर एक कन्या का गीत, श्री कृष्ण का भजन सुनाने जा रहे, तो ध्यान से सुने।
1: मेरा नाम दर्शना कुमारी है, मैं कक्षा 10th में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय है। मैं गांव मंडार की रहने वाली हूँ। श्री

0: देव की नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन की जयकार। देव की नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन की जयकार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव कहते हैं, और मुरारी को कौन नहीं जानते हैं। जय कृष्ण कहते हैं, जय कन्या लाल की, हाथी घोड़ा पाल की गीत भी गाते जन्माष्टमी का दिन भी, और ऐसे जब भी मौका मिलता है भजन संध्या में भी अपना उद्गार को, दिल का बात को रखते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण पहला प्रिंस है, स्थल कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परम धर्म। श्री कृष्ण को कौन भूल पाएगा, भक्ति में ओत प्रेत होकर सभी अपना अपना बात को रख रहे हैं। तो हमारा दृष्टा भी आज इस कार्यक्रम को सजाए, भक्ति में ओत प्रेत होकर श्री कृष्ण का भजन के लेकर आए हैं। तो धन्यवाद देते हैं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक का बाद पुनः मिल रहे हैं और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए दो छात्रा उपस्थित है, जन्नत नाम सुनते कितना खुशी लगता है, जन्नत मतलब स्वर्ग, जन्नत और करिन दोनों दोस्त हैं और इस कार्यक्रम को सजाएंगे। तो क्या प्रस्तुति देंगे वो बताएगी गीत के माध्यम से, हृदय से अपना संगीत को व्यक्त करने जा रहे हैं, तो सुनते हैं उनको स्वागत करते हुए।
1: माई नेम इज जन्नत, आई रीड इन क्लास 7, माई स्कूल नेम इज नूतन सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडार, आई लिव इन मंडार सिरोही।
2: माई नेम इज कॉरिन, माई क्लास 7, माई विलेज नेम इज मंडार सिरोही जिला।
1: आओ बच्चों तुम्हें दिखाए जाके हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम, उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। जमुना जी के टक्को देखो गंगा का ये घाट है, बाट बाट

है बलिदान की। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पर आग जली थी, हर पर्वत एक शोला था।

करती है बलिदान, वंदे मातरम। चलिया काला भाग्य देखो यहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ गोल की होलिया। एक तरफ थी बंदूके, एक तरफ थी दंदन, एक तरफ थी डोलिया। बनने वाले बोल रहे थे इंकलाब की होलिया, यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपने जान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम।

वंदे मातरम वंदे मातरम। और भारत माता की जय कहते हैं और देशभक्ति में ओत प्रेत होकर इस तरह प्रस्तुति दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खासकर नूतन सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार का आवाज आपका पास हम रख रहे हैं।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला कड़ी में हमारा साथ सजाने के लिए उपस्थित है कौन कौन है, झलक दिव्या और देविका। वाह कितना खूब सुंदर नाम है, नाम से ही पता चलता है बच्चों का उमंग उत्साह। और ढोलक मंजीरा का साथ साथ देने के लिए सभी उपस्थित हैं, तो उन सभी को स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन कार्यक्रम में। और खासकर आज मंडार का आवाज़ सुनने को मिल रहा है नूतन सरस्वती विद्या मंदिर। जब बच्चे इस तरह कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं तो ज़रूर स्कूल का नाम रोशन करेंगे और खुद का भी नाम रोशन करेंगे ही। तो लीजिए पहला प्रस्तुति, पहला क्यों, अभी तो तीसरा प्रस्तुति की ओर चल रहे हैं और एक के बाद एक प्रस्तुतियाँ मिल रहा है। तो बाबा कहाँ पर है, बुला रहे हैं और बाण का माध्यम से सुंदर रूप में गीत सजाएंगे, तो लीजिए।
1: मेरा नाम झलक, मैं क्लास 11th आर्ट से। मेरे पिताजी का नाम जयंती लाल जी है, मेरी माता का नाम गुड़िया देवी, मैं मंडार की रहने वाली।
2: मेरा नाम देविका कुमारी है, मेरे स्कूल का नाम नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार है, मैं क्लास 11th आर्ट्स में पढ़ती हूँ।
3: मेरा नाम दिव्या कुमारी है, मैं क्लास 11th आर्ट्स में पढ़ती हूँ, मेरा गांव का नाम मंडार है, मेरे विद्यालय का नाम नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार।
1: हम तीनों मिलकर एक गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं।

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। खूब बहुत खूब बहुत खूब सभी को धन्यवाद। इस तरह कार्यक्रम में अपना आवाज को बुलंद कर रहे हैं और इस तरह समूह रूप में जब गीत गाते हैं तो एक दूसरे भी को मजा मिलता है और हमारा श्रोता मित्र भी झूम रहे हैं और अर्थ का साथ सार्थक कर रहे हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: चलिए आगे बढ़ते हुए अगला कड़ी में दो छात्र उपस्थित थे, किंजल और सम्या। किंजल और सम्या को धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते पहले ही, क्योंकि इस तरह कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और आप सब सुन पा रहे नूतन सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार का आवाज बारी बारी सुन रहे हैं। और सभी को चांस मिलता है, चाहे सिरोही जिला में जितना भी स्कूल है, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सभी को चांस मिलता है रेडियो मधुबनी इस तरह कार्यक्रम को लेकर बच्चों का पास पहुंचते हैं। चरित्र निर्माण, बौद्धिक विकास और आत्म प्रबंधन जैसे महान मुद्दे को बच्चों का अंदर में आत्मसात कराते हैं। बच्चे बड़े होकर देश को संभालेंगे और गाँव का नाम रोशन करेंगे। स्व दर्शन, सेल्फ मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, बच्चे खुद अनुशासित होंगे तो जरूर हमारा देश को भी अनुशासित कर पाएंगे। तो देर किस बात की, सुनते हैं उनसे प्रस्तुति, खासकर हमारा इस कार्यक्रम को सजा रहे किंजल और सौम्या। ओके, शुरू हो जाइए।
1: मेरा नाम है किंजल कुमारी, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ और विद्यालय का नाम नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार है।
2: मेरा नाम सौम्या है, मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ।
3: मेरा नाम नैना है, मेरी कक्षा 3 है और मेरे स्कूल का नाम है नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार।

विश्व की पुकार है, ये भगवान का सार है, ये युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों के धीर हो या पांडवों का

0: मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो, आरंभ है प्रचंड।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और बच्चे तो मोबाइल से और बड़ों को देखकर भी सीख जाते हैं, और कभी मौका मिलता है तो इस तरह कार्यक्रम को और हेल्दी वेल्दी कर देते हैं, क्योंकि आज रेडियो मधुबन उन बच्चों को मौका दे रही है, जिसका चलते बच्चे भी उमंग उत्साह के साथ अपना प्रस्तुतियां दे रहे हैं। तो धन्यवाद देते हैं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
2: Scientists are still in a fix why nature behaves as a double helix. Matter and energy are connected by a thread. Without Shakti, Shiva is dead. There are miracles and miracles and miracles. This world is not dangerous. This world is miraculous.

0: चलिए वंस मोर करते हुए ब्रेक के बाद हम पुनः मिल रहे हैं और हमारा इस कार्यक्रम को सजाने के लिए उपस्थित है महेंद्र ओके और वो भी हाथ हिला रहे हैं और राजू राम भी है। राजू राम हाथ उठाओ, वेरी गुड, राजू राम भी हाथ उठाया और हाँ जी भर रहे हैं और इसको साथ देने के लिए पारस भी है। पारस को कौन भूल पाएगा भाई, पत्थर से पारस बन जाते हैं जब दिव्यता आता है, जिज्ञासा होता है तो पत्थर से भी पारस अच्छा बन जाते हैं। तो देर किस बात की, एक प्रस्तुति सुनेंगे वो भी मारवाड़ी भाषा में सुनेंगे क्योंकि राजस्थान का मारवाड़ी है, मारवाड़ में रहते हैं तो मारवाड़ी भी चाहिए। तो लेते हैं उन सबसे एक प्रस्तुति। रेडी बच्चे? ओके शुरू हो जाइए।
1: मेरा नाम महेंद्र कुमार है, मेरे पिताजी का नाम जोईता राम है, मैं मंडार से हूँ, मेरे विद्यालय का नाम नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार है।
2: मेरा नाम राजू राम है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ, मैं नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ, मेरे गांव का नाम मंडार है।
3: मेरा नाम पारस कुमार है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ, मैं मंडार में रहता हूँ, मेरे स्कूल का नाम नूतन सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडार है।
4: हे भाई रे मत दीजो मावड़ी ने दोष कर।

0: भाई रे।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मारवाड़ी में अपना आवाज को बुलंद किए और इस तरह जब राजस्थान का नाम रोशन करते हैं बच्चे, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मारवाड़ी हो, चाहे आदिवासी गीत, तो सब में भरमार होते हैं बच्चे। बच्चे तो सच्चे होते हैं। विद्यालय में इस तरह गतिविधि में जब मौका मिलता है तो वो मौका का फायदा लेते हैं, जिसका चलते खुद को भी खुशी होता है और विद्यालयों को भी खुशी मिलता है, क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य है सर्वांगीण उन्नति। चाहे कोई भी कला हो, प्रकृति कला हो, चाहे संगीत कला हो, चाहे नृत्य कला हो, सभी को चांस मिलता है, जिसका चलते बच्चे भाग ले पा रहे। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खास कर नूतन सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार का आवाज को।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चलिए, बहुत कुछ हो रहा है और एक गुलदस्ता जैसे हमारा कार्यक्रम सज रहा है, क्योंकि वैरायटी का आवाज, चाहे मारवाड़ी, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, चाहे शायरी, चाहे देशभक्ति, चाहे भक्ति, सब में उमंग उत्साह लेकर भाग ले रहे हैं। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और एक प्रस्तुति जिसको सुनाने के लिए शायरी के रूप में मम्मी पापा का महत्व, माने फादर और मदर, माँ बाप का कदर कैसे होना चाहिए और माँ बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। चलिए क्या सुनाएगी, सुनते हैं उनसे।
1: नमस्ते, मैं जीनल डॉटर ऑफ प्रवीण सेन, मैं कक्षा 9th की छात्रा नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार में अध्ययन करती हूँ। आज की दुनिया को देखकर मेरे दिल और दिमाग में एक अलग ही विचार उठ जाता है। दोस्तों, हम जिंदगी में मोटिवेशन ढूंढने के लिए सोशल मीडिया रील्स देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं और बड़े बड़े स्पीकर्स को सुनते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका सबसे बड़ा लाइफ कोच कोई बाहरी इंसान नहीं बल्कि आपके घर की रसोई में काम करती माँ है और ऑफिस से थका हारा लौटता पिता। अगर कभी जिंदगी में डिप्रेशन महसूस हो, अगर कभी लगे कि आप हार रहे हैं, तो बस एक बार अपने मम्मी पापा के चेहरे की झुर्रियों को, उनकी आंखों की उम्मीदों को देख लेना। आपको किसी और मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनिए, नजर उठाकर देखो आसमान की तरफ, सितारे बहुत हैं लेकिन रोशनी कम है। जन्नत की बात करते हैं सब, पर माँ बाप के कदमों से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, यही वादा चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत सफल हो जाओ। बस एक बार अपने मम्मी पापा ने जो जीवन आपको समर्पित किया है, उन्हें कभी ना समझना कहना। थैंक यू।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर प्रस्तुति शायरी के रूप में। और एक मोटिवेशनल सॉन्ग को जैसे हम सुनते हैं, इसे एक स्पीच शायरी के रूप में अपना माँ बाप का जिक्र किए। और माँ बाप तो भगवान तुल्य होते हैं और कोच एक मेंटर जैसे काम करते हैं। सब चीज़ माँ बाप को पता होता है क्योंकि वो जन्मदाता है, जन्म से लेकर अभी तक सब चीज़ उनका पास हिसाब किताब लिखा जुका रहता है, और जिसका चलते उनसे बेटर कोई मेंटर बा कोच नहीं दे पाएगा। तो अच्छा से प्रस्तुति दिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रस्तुति के लिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक छोटा सा प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: दर्द है। मैं कक्षा पांचवी का हूँ। मेरे पापा का नाम दिनेश भाई सोनी है।
1: मेरा नाम आविश है। मैं कक्षा सिक्स में पढ़ता हूँ। हमारे विद्यालय का नाम नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय भंडार है।

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और आज तो मज़ा आ गया क्योंकि सबका आवाज़ में दम है, बुलंद है, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, और पहला बार रेडियो में आकाशवाणी में अपना आवाज़ को दे रहे हैं। जब इस तरह कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो परिजन माता पिता सब खुश हो जाते, चलो बच्चे हमारा पढ़ाई का साथ साथ इस तरह रेडियो कार्यक्रम में भी आते हैं। तो सुंदर प्रस्तुति के लिए सिद्धार्थ को धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चल पड़ रहे हैं, और इसका बाद अंतिम प्रस्तुति आपका पास हम रखेंगे, लेकिन अल्प विराम का बस सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

चलिए एक के बाद एक करते हुए अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चल पड़े और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए वरुण और उनका दोस्त भी आए हैं, तो अपना अपना नाम बताएंगे और कौन सा क्लास और कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं वो भी बताएंगे। तब पता चलेगा हमारा श्रोता मित्र को जी कहाँ से और कौन बोल रहे हैं। जब इस तरह नाम सुनेंगे तो आवाज़ का साथ साथ उनका मोहर लग जाएगा, हाँ ये वरुण का आवाज़ है। तो देर किस बात की, सुनते हैं अगला प्रस्तुति और ये होगा अंतिम प्रस्तुति।

0: मेरा नाम वरुण है, मैं कक्षा 7वीं में छात्र हूँ और मेरे स्कूल का नाम नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार है।
1: मेरा नाम दीक्षित है, मैं कक्षा 4वीं में पढ़ता हूँ और मेरा विद्यालय का नाम नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक मंडार स्कूल।
0: हो जाओ।

0: दिगंबर और उठा लो ऊंचा सर, कोटि कोटि कंठों से गूंजे भारत की जयकार, भारत की जयकार साथियों, भारत की जयकार।
1: चलिए तालियों का साथ धन्यवाद देते हैं आप दोनों को, खासकर अंतिम प्रस्तुति में सुंदर रूप में सजाए सभी को, जो जो आज भाग लिए और जो भाग लेने के लिए सहयोग दिए उन सभी को, शिक्षकगण, प्रिंसिपल और साथ ही सहयोग को भी धन्यवाद देते हैं। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किस बात को लेकर। सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, अपना पास जितना था ना कम ना ज़्यादा वो हिसाब से दिए हैं, और बच्चे तो खुश होते भाई चलो हमें कोई मौका दिया आज। कभी उलाना नहीं देंगे रेडियो मधुबन को, जो हमारे पास रेडियो मधुबन आया नहीं और हमारा आवाज़ को जन जन तक पहुंचा नहीं, है ना बच्चे, उलाना नहीं देंगे ना, बोल रहे नहीं देंगे, सिर हिला रहे, कोई बात नहीं। तो रही बात, आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल, खासकर आप सब सुन पा रहे हैं अंतिम प्रस्तुति में नूतन सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार का आवाज़ को। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मन की आंखों से एक ऐसा कार्यक्रम जो हमारी मन की आंखों से हम दुनिया को देख सकें। ये मन की आंखें होती क्या है? हमारी स्थूल आंखों से वो कुछ अलग है क्या? क्या हम जो दुनिया मन की आंखों से देखते हैं, क्या हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते हैं? अगर देखते हैं तो ऐसा क्या कमी रह जाती है जो हम मन की आंखों से जो देखते हैं वो इस स्थूल आंखों से दिखता नहीं है? दोस्तों बहुत सारी बातें हैं दुनिया में, जो दिखता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं देखने के बारे में। लेकिन आज कुछ ऐसे ही अनोखे अनुभवों के साथ हमारे बीच में है अभिषेक कुलहरी जी। आप वैसे मूलतः राजगढ़ चुरू डिस्ट्रिक्ट से हैं, लेकिन वर्तमान समय में आप जयपुर में रहते हैं। आपका जीवन तो वैसे ही बहुत अच्छा चल रहा था, बीच में एक ऐसी दुर्घटना घटी और उनके पूरे जीवन को बदल दिया। और ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ और उसके बाद उनकी जीवन कैसी है और अभी वो अपनी जीवन में इस बदलाव को एक नॉर्मल बना करके कैसे जी रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल है जो हमें सुनने, सीखने और समझने की है। तो इन सारे सवालों को जवाब देने के लिए आज हम स्वागत करते हैं मन की आंखों से इस कार्यक्रम में अभिषेक कुलहरी जी को। अभिषेक जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन में।
1: शुक्रिया निधि, शुक्रिया।
0: अभिषेक जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो शुरुआत की जीवन, जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे थे, और वो समय का क्या जीवन था, और जब आपकी जीवन में एक मोड़ आया और जब जीवन पूरा बदल गया और आपसे जब बातचीत करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं एक नया जीवन जीना सीखा है तो वो क्या है?
1: नहीं, एक्चुअली क्या है कि जब मेरे को दिखाई देता था तो दुनिया की आपाधापी के अंदर है ना, कुछ ढंग से पता नहीं चल पाता था, अपने आप को जज नहीं कर पाते थे, अपने बारे में नहीं सोच पाते थे कि क्या है ये। जैसे मतलब बाहरी दुनिया में अपन बात करें तो थोड़ी सी मतलब मेरा फ्रेंड सर्किल था वो अच्छा था, अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए थे मुझसे, तो जिनका वो कोई काम निकलवाना होता था वो मतलब मेरे को फ़ोन कर लेते। तो उस टाइम पे बिल्कुल यंग था तो मैं तो ये सोचता था कि मैं ही प्रधानमंत्री हूँ और मेरा कर्तव्य है ये इन सभी का मतलब काम करना, चाहे वो रात को मेरे को 12 बजे फोन कर दें, चाहे रात को 2 बजे कर दें, मैं एटलीस्ट काम करता था उनका, अपना काम छोड़ के।
0: जी।
1: तो कभी कभी ऐसा होता था, जैसे स्वास्थ्य मंत्री थे उस टाइम पे राजकुमार जी शर्मा, यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट में, तो उनके पीए थे वो मेरे मित्र थे।
0: अच्छा।
1: अब एक जो पीए होता है मतलब मंत्री जी का, तो फिर अपन तो कोई भी काम करवा सकते हैं, एटलीस्ट उस विभाग में तो करवा ही देंगे।
0: जी।
1: अब मेरे दोस्त थे वो डॉक्टर थे, तो कुछ दोस्त वो मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, मतलब उसको बोलें तो अपन थोड़ा सा चालाक भी बोल सकते हैं।
0: अच्छा।
1: ये बातें मुझे बाद में पता लगी है, पहले उस टाइम पे नहीं पता थी।
0: जी।
1: और ये बातें है ना, मुझे ऐसे लगता है कि बाबा से जब से मैं जुड़ा हूँ ना, तो मेरे को ना सभी के बारे में वो बाबा ना टच करवा रहे हैं कि जिसके बारे में तू सोचता था वो कैसे हैं, उनकी बातें बताते हैं वो मुझे। स्थूल आंखों से मैं मतलब उस टाइम पे नहीं सोच पाया ये बातें। तो एक दिन मेरे फ्रेंड ने मेरे को फोन किया कि मेरा ट्रांसफर करवाना है, वो मतलब MBBS के बाद पोस्टेड था मेडिकल ऑफिसर वहाँ अनूपगढ़ में।
0: जी।
1: गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की तहसील थी।
0: जी।
1: उसमें अब वो था झुंझुनू का, तो वो उनको ये पता कि अभिषेक के पास फोन करेंगे ना तो एटलीस्ट काम हो जाएगा अपना, कैसे भी हो जाए।
0: जी।
1: तो उन्होंने फोन किया मेरे को कि अभिषेक यार ट्रांसफर करवाना है। ठीक है, कहाँ करवाना? तो वो बोला कि तेरा जानकार है ना यार वो मंत्री जी के पीए, तो उनसे ट्रांसफर करवा दे यार मेरा, तो इतना सा वो काम कर ही देंगे वहाँ, बिल्कुल कर देंगे। तो मैंने क्या किया, उसमें क्या होता है कि अपन को मतलब जब एक तो होता है कि मतलब अपन दिमाग से काम करें, एक अपन दिल से काम करें। अब दिल से काम करते हैं ना तब दिमाग नहीं लगाते उसमें, तो मैंने उसको ही नंबर दे दिए सीधे पीए के, मैं यार ये नंबर पकड़ और इनको बोलना कि मैं अभिषेक का फ्रेंड हूँ तो तेरा काम हो जाएगा। वो बोले ठीक। अब मैंने उनको नंबर दे दिया, अब मुझे क्या पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने अपना तो ट्रांसफर करवाया, अपनी रेपो बढ़ाने के लिए 5-6 लोगों के और ट्रांसफर करवाए।
0: अच्छा।
1: रोजाना फोन करते, आज इधर से इधर करना, उनकी नहीं बनती किसी से तो ट्रांसफर करवा देते।
0: जी।
1: ये बातें मेरे को नहीं पता।
0: जी।
1: उस टाइम पे क्योंकि मैंने तो वो काम कर दिया मेरे को जो करना था। मेरा 2018 में एक रोड एक्सीडेंट हो गया मार्च में, तो उसके बाद में मेरे को मतलब दूसरी रियल टाइम जो है ना, मतलब जो सही दुनिया क्या है, उस टाइम पे शुरू हुआ जब मैं बाबा से जुड़ने लग गया, मेडिटेशन करने लग गया, सूरज भाई की वीडियो सुनता, मेरा यही काम था। तो एक साल तक मैंने खूब वीडियो सुने सूरज भाई के, मतलब सोचता रहता नींद तो।
0: ये एक्सीडेंट कैसे हुआ आपका?
1: एक्सीडेंट मेरा जब मैं घर पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मैं MBA पढ़ाई कर रहा था मेरी जयपुर से, तो मैं घर पे आया हुआ था, तो काम चल रहा था, वो मिस्त्री को छोड़ने के लिए मैं बस स्टैंड पे गया था, तो अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैंने हेलमेट नहीं पहना, अदरवाइज मैं हेलमेट पहनता था। लोग मेरी मजाक बनाते थे मेरे हेलमेट की वजह से, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में आता हूँ वहाँ हेलमेट कोई नहीं पहनता, छोटा क्षेत्र है वो, तो इस वजह से मेरे को आदत पड़ी हुई थी कि हेलमेट पहने, भाई अपन को सीधी हवा भी नहीं लगती आंखों में, तो सेफ्टी रहती है, सेफ्टी भी है। तो इस चक्कर में लोग मेरा दोस्त मजाक बनाते थे कि भाई तू हेलमेट क्यों पहनता है, अच्छी स्पोर्ट्स बाइक है तेरे पास, तो तू यार कम से कम इसको दिखाया अगर दिखे तो सही कि कौन जा रहा है इस बाइक के ऊपर।
0: अच्छा।
1: तब मैं यार इसमें दिखाने की क्या जरूरत है, ये तो मैंने सुविधा के लिए ले रखी है, दिखाने के लिए थोड़ा ना ले रखी है। तो एटलीस्ट चलो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उस दिन क्या हुआ, मैं हेलमेट नहीं पहना और मिस्त्री जी को शाम को छोड़ने गया, तो जैसे मैं उनको छोड़ के आया तो मैंने मेरी बाइक को घर की तरफ आ गया था, मैं वापस मेरे इंटेंशन हुआ दिमाग में कि अपने को तेल डलवाना चाहिए, मेरी बाइक है ना रिजर्व में आ गई थी ओन से, तो मैंने सोचा तेल डलवाना चाहिए, तो फिर मैं मुड़ गया वापस, जबकि मेरे को शाम को 7 बजे की बात है वो शाम को, तो मेरे को वापस कहीं नहीं जाना था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है
0: जी।
1: वो मतलब मैं जानबूझ के ना वहां पे गया कि इंसिडेंट्स बने
0: जी।
1: हाँ मतलब ये हकीकत है, क्योंकि उसी दिन मैं सही बताऊं तो उसी दिन मेरे एक्सीडेंट से एक घंटा पहले जब मैं मिस्त्री को छोड़ने जा रहा था, दिन में साथ में उनके काम करवाता, मैं हेल्प करता, तो शाम को नहाने के बाद मैंने सोचा मैं नहा लेता हूँ, अब इनको छोड़ने का टाइम हो गया। मैं जो ही नहा के आया बाथरूम से, तो मेरे दिमाग में अचानक से विचार आया उसी वक्त कि एक जादूगर होता है वो आंखों की पट्टी बांध के कैसे चला सकता है बाइक, और कोई बिना आंखों के मतलब कैसे सर्वाइव करते होंगे जिनको नहीं दिखाई देता। तो उस टाइम पे तो मैंने सिर्फ ऐसे ही सोचा था, उसी दिन की बात है 6 मार्च की ही, एक घंटा पहले की
0: जी।
1: अब मैं मिस्त्री को छोड़ने गया ना, तो वापस मतलब वो मैं उसको टच करता हूँ बात को, कि जैसे मैं घर के पास पहुंच गया, अब वापस मतलब मैं सेफ आ जाता, घर पे पहुंचने वाला था
0: जी,
1: 200 मीटर की दूरी है बस स्टॉप की
0: जी
1: मेरे घर से, तो वापस मैंने मोड़ी है बाइक को, और वापस मोड़ी के मतलब मैं जो ही चला तो रोड के ऊपर बस स्टॉप के जैसे ही आ गया, तो फिर ऑटो ने मेरे को रॉन्ग साइड से आके हिट कर दिया, मेरे बराबर में बस चल रही थी, तो मेरे पास और कोई मतलब फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर एक्सीडेंट हो गया, पता भी नहीं लगा, न संभलने का मौका मिला
0: जी।
1: तो उसी वक्त फिर मेरे को कैजुअलिटी में लेके गए हॉस्पिटल में सेमी कॉन्शियस मोड पे, तो एक दो दिन बाद में होश में आया, तो फिर पता लगा कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अब मैं तो वहीं पे मतलब डॉक्टर्स को यही बोल रहा था कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या चक्कर है, और शुरू शुरू में तो देखो डर भी लगा था कि मेरे साथ में क्या हो गया, मैं मतलब मेरे को हाथ पकड़ के चलाते थे पापा, तो मैं उनका हाथ खींचता था पीछे की तरफ, वो मेरे को मतलब इंश्योर करते थे इस बात के लिए कि मैंने हाथ पकड़ रखा है बेटा तो तेरे को किडनी नहीं दूंगा, मैं बताऊंगा कोई बैरियर आएगा तो आगे, इतना क्यों डर रहा है। लेकिन मैं मतलब इतना डर था वो अचानक से दिमाग में, पता नहीं मैंने सोचा कि उस टाइम पे सोचता था कि ये पता नहीं धरती नीचे ही मेरे ऊपर आ जाएगी, मतलब मैं चल भी नहीं पाता था बिल्कुल। तो फिर धीरे धीरे आदत पड़ी, फिर हॉस्पिटल में 3-4 महीने ट्रीटमेंट चला मेरा, और दोबारा एक्सीडेंट ऐसे हो गया जो डॉक्टर को मतलब आंखों का करना चाहिए था ट्रीटमेंट, उन्होंने किया नहीं, मेरी ब्रेन की सर्जरी कर दी एक थोड़े से पैसे के लिए
0: जी,
1: क्योंकि उनके पास आई सर्जन भी नहीं था उस हॉस्पिटल में, जबकि घर वालों ने बोला था उनको कि भाई इसको दिखाई नहीं दे रहा तो कम से कम, मेरे घर वाले डॉक्टर नहीं है लेकिन उनको ये पता है कि दिखाई नहीं दे रहा तो कम से कम इसका इलाज सबसे पहले करना चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे को लाइट में चेक कर रहे थे तो लाइट परसेप्शन में बता पा रहा था उनको, लेफ्ट राइट अप डाउन ऐसे 8 दिशाओं से बता रहा था मैं एग्जैक्ट, तो उन्होंने कहा कि इसके पर्दे के ऊपर रेटिना के ऊपर है ना ब्लड आ गया, तो ये दिखाए इसको मतलब दिख जाएगा इनको, वो ब्लड हटाएंगे तो। लेकिन जो डॉक्टर को पता है, अब मेडिकल के अंदर क्या है कि मतलब उसमें ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि कोई भी पेशेंट की कैजुअलिटी अगर है ना, अगर आंखों पे लगी है तो 72 घंटे के अंदर उसको ऑपरेट करना जरूरी होता है, अदरवाइज रोशनी बचने के कम चांस हो जाते हैं बिल्कुल ही। तो उन्होंने ऑपरेट नहीं किया। अब डॉक्टर को ये पता है, ये बातें मुझे बाद में पता लगी है, जितने मैंने हॉस्पिटल विजिट किए हैं वहां से पता लगी कि ऐसा होना चाहिए था। तो उन्होंने वो पैसे बनाने के चक्कर में फिर मेरे ब्रेन की सर्जरी कर दी और 10 दिन वहां पटके रखा मेरे को वहीं हॉस्पिटल में। फिर घर वालों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप मतलब इसकी आंखों को चेक ही नहीं कर रहे हो अभी और इसको दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका तो इलाज करिए ना। तो फिर उन्होंने कहा कि कर देंगे। वो सिर्फ मतलब मेरे को ना बस वो अपना वो चार्ज बना रहे थे सिर्फ। तो फिर घर वालों ने वहां से फिर वो बोला कि ऐसा कीजिए आप छुट्टी कर दीजिए हमारी। वो जबरदस्ती ना छुट्टी दिला के मेरे को जयपुर लिया है SMS हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे फिर SMS जयपुर में दिखाया मेरे को, तो फिर डॉक्टर ने कहा यार आप है ना मतलब 10 दिन लेट हो गए हैं। अब वो मेरे जो दोस्त थे डॉक्टर थे वो SMS में PG कर रहे थे उस टाइम पे, एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी लगा हुआ था। अब उन्होंने कह दिया क्योंकि उनको तो पता ही है ना वो बातें कि भाई इनको कैजुअलिटी में पेशेंट की आंखों को चेक करना जरूरी होता है। उन्होंने मेरे को देखते ही मतलब पापा को पास करते थे मेरे, तो उन्होंने कह दिया कि अंकल मतलब बहुत लेट हो गई, 10 दिन निकाल दिया आपने और आंख अभी तक इनकी ऑपरेट नहीं की है, अब हमें लगता है कि इसकी रोशनी नहीं बच पाएगी, बहुत 1% चांस बचे हैं। वही सेम बात डॉक्टर ने आंखों के जो रेटिना सर्जन थे वो उन्होंने कही कि 1% चांस है, अगर आप चाहो तो हम ऑपरेट कर लें और अगर आप ऐसा सोचो कि और अच्छे हॉस्पिटल में जाएं एम्स दिल्ली में चले जाइए आप, वहाँ पे और भी अच्छे डॉक्टर हैं। सभी आदमी ये चाहते हैं कि मैं बेस्ट से बेस्ट जगह जाऊँ ऑपरेट, कम से कम मतलब थोड़ा चांस बचा उसको सही में तो मतलब अच्छे से जगह से कन्वर्ट करें कि भाई थोड़े चांस बच जाएं रोशनी के, इसलिए मैं फिर दिल्ली चला गया। फिर वहाँ पे भी मेरा ऑपरेशन हुआ, 4-5 घंटे की सर्जरी की और वो सर्जरी बीच में छोड़ दी क्योंकि उसके अंदर डैमेजेस बहुत ज़्यादा हो रखे थे। एक कागज़ को जैसे मतलब अपन हाथ की मुट्ठी के अंदर भींच के रखेंगे और उसमें सलवटें कैसे पड़ेंगी, रेटिना में वैसे सलवटें पड़ गई थी उन्होंने, डॉक्टर ने कहा मेरे को, और वो बीच में छोड़ दी और उन्होंने कहा कि रोशनी अब नहीं आ पाएगी
0: जी।
1: फिर मेरा मैंने सोचना शुरू किया वहाँ से कि अपन इसमें क्या, शुरू शुरू में तो देखो गुस्सा आता था। उन्होंने मेरे को कहा कि ऐसा करते हैं डिसेबिलिटी का वो सर्टिफिकेट बना देते हैं, तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि सर्टिफिकेट बनाएंगे तो अच्छी जगह या फॉरेन भेजेंगे अपन को कहीं जहाँ अपना ट्रीटमेंट हो जाए, तो वो सर्टिफिकेट आप किसका बना रहे हो सर? तो बोला कि आपको ट्रांसपोर्टिंग में कंसेक्शन मिल जाएगा। बोला यार आपका दिमाग खराब हो गया डॉक्टर, आप कंसेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं रोशनी की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो रियलिटी थी, उनको पता था रियलिटी क्या है। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था इन चीजों को क्योंकि अचानक से मतलब चेंजेस हो गए थे लाइफ में।
0: आपकी फैमिली की रिएक्शन क्या थी जब ये पता चला कि अभी कुछ हो ही नहीं सकता है और आपको दिव्यांग का सर्टिफिकेशन बना रहे हैं?
1: देखो पापा तो साथ में घूम रहे थे, पापा शुरू में तो देखो मेरे को बाद में पता लगा कि पापा बाथरूम में बैठ के रोते थे मेरे लिए कि भाई अपना एक ही बेटा है उसकी आंखें चली गई और डिपेंडेंसी होगी इसकी लाइफ कैसे कटेगी अब आगे। तो पापा ने तो कह दिया था कि हाँ ठीक है आप बना सर्टिफिकेट तो बनाए, क्योंकि वो मेरे पापा आर्मी में थे तो थोड़ा सा डिसिप्लिन है और स्ट्रांग है वो थोड़े मेंटली भी, तो उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया था। अब मम्मी रही बात मम्मी की, तो मम्मी जी कहती थी, मम्मी शुरू में से बहुत मतलब कहती थी, एक दिन मैंने उनको सुना अपनी बहन से बात करते हुए यानी मेरी मौसी जी से, वो कह रही थी कि इससे अच्छा ना ये बढ़िया रहता कि भगवान हमको ना ये बेटा नहीं देता, एक लड़की ही, एक मेरी सिस्टर है हम दो भाई बहन है, वो बोल रही थी कि मतलब लड़की एक लड़की रह जाती ना तो अच्छा था, आज दुख नहीं देखना पड़ता हमें कि हमारा बेटा अंधा हो गया है और इसकी लाइफ कैसे कटेगी, ये भी दुखी है। लेकिन इसके अपोजिट था मेरे साथ में, उस टाइम तक मैंने सूरज भाई की क्लासे मतलब सुनता था मैं फोन के ऊपर, मुझे मतलब समझ में आ गई थी चीजें।
0: सूरज भाई जी की क्लासेस सुनना कैसे शुरू हुआ आपका?
1: वो मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने वो सुनते थे पहले, तो उन्होंने फिर जैसे मेरी वाइफ ने मेरे को सुनाया फिर।
0: अच्छा।
1: हाँ मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं साली हैं वो मतलब जुड़ी हुई हैं ज्ञान मार्ग में हैं,
0: ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई हैं,
1: वही मेरे को सेंटर पे लेके गए थे वहाँ
0: जी,
1: बापू नगर जयपुर वाले सेंटर पे लेके गए थे
0: जी।
1: तो उसके बाद मैंने सुनना शुरू किया, तो मेरे पे ना लोगों के तो कमेंट देखो उल्टे उल्टे आते थे कि धरती पे बोझ बन गया है, इसकी किस्मत खराब है, अब वो कमेंट आना मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते थे हकीकत में। अब मैं उनको तो जवाब नहीं देता था, लेकिन मन ही मन सोचता कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये जितनी बातें बोल रहे हैं ना, ये खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। समय आएगा एक दिन ऐसा जरूर, जब इनको अपने आप जवाब मिल जाएगा, अपन को देने की जरूरत नहीं है। मैं किस किस को जवाब दूंगा, सेम बातें होती थी लोगों की, वही किस्मत खराब है, आग गई तो संसार गया। और कुछ लोग तो हाँ ऐसे भी बोलते थे कि हीरो से जीरो बन गया, और कुछ कमेंट भी मारते थे, अब सुन चिड़िया की आवाज, मतलब यही बचा है, ठीक है। बहुत मतलब उठपटांग से कमेंट, नेगेटिव चलता था ओरा में चारों तरफ
0: जी।
1: लेकिन वो इन सब के बीच मैं तो यही सोच रहा था कि देखो, एक इंद्रिय के खत्म हो जाने से ना कुछ नहीं हो सकता। अभी अपन जिंदा है ना, तो फिर मतलब कुछ भी कर सकते हैं
0: जी,
1: क्योंकि अपने पास ऊपर वाले ने अपन को एक दिव्य बुद्धि दी है, उसका उसमें एक विवेक है, उसका अपन अगर सही से उपयोग करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी समस्या का मतलब समाधान नहीं हो सकता। अपन उसको इजी वे में डाल सकते हैं, इजी भी प्रॉब्लम्स को इजी कर सकते हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले तो मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ स्पोर्ट्स कल्चर है
0: जी,
1: वहाँ से मतलब श्री कृष्णा जी पुनिया हैं जो एथलीट निकली हैं, कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, ओलंपियन हैं
0: जी,
1: पीछे विधायक भी थी वो, और श्री देवेंद्र झाझड़िया हैं जो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, दो बार ओलंपिक में, एक बार सिल्वर मेडलिस्ट भी रहे हैं। तो मेरा इंटेंशन वहाँ गया कि अपन स्पोर्ट्स में करते हैं
0: जी।
1: तो फिर मैंने शुरू किया, अपने घर में थोड़ा जिम का सामान मंगवाया, मैंने सोचा कि शॉट पुट है वो मतलब फील्ड गेम है, तो उसमें ज़्यादा ट्रैक गेम है, वो फील्ड गेम है सॉरी, तो उस पर अपन को ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, अपन घर से तैयारी कर सकते हैं उसकी
0: जी।
1: तो मैंने उसका सामान मंगवाया, जिम का सामान मंगवाया, वेट लिफ्टिंग डंबल्स वगैरह, तो घर से शुरू किया मैंने।
0: कौन सी स्पोर्ट की तैयारी कर रहे थे?
1: शॉर्ट पुट की कर रहा था मैं।
0: अच्छा, शॉर्ट पुट।
1: शॉर्ट पुट की, हाँ। तो 6-7 महीने मैंने मतलब कम से कम भी मैं करता था 10-12 घंटे, मेरे को नींद आनी वैसे बंद हो गई थी, 4-5 घंटे ही मैक्सिमम सो पाता था मैं एक्सरसाइज करने के बाद भी, जबकि क्योंकि मेरे दिमाग में ना वही चलता था कि लोगों को जवाब जल्दी से जल्दी कैसे मिले। तो मैंने तैयारी शुरू की, रनिंग करता मैं, मैंने डोरी बांध ली घर में, साइड में खाली प्लॉट था उसमें, और उस डोरी के सहारे मैंने दौड़ता, सुबह 5 किलोमीटर, शाम को 5 किलोमीटर, उसको नाप लिया मैंने इंची टेप से, और जब तक 5 किलोमीटर के चक्कर ना हो जाए, उसमें 260 चक्कर बनते थे मेरे, तो 5 किलोमीटर रनिंग, और फिर मैं 3-4 दिन जिम करता हूँ। जिम,
0: ये सारी चीज आपने खुद से सोच के किया?
1: खुद से सोच के किया मैंने।
0: आपको कैसे जीना है बिना विजन का?
1: हाँ, बिना विजन के मैं क्या बेटर कर सकता हूँ दुनिया को, मतलब ये जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं इनको
0: कुछ तो करके दिखाएं।
1: हाँ, करके दिखाएं, इनको जवाब कैसे मिले, और दुनिया के लिए मतलब जो रास्ता भटक चुके हैं, जो आत्माएं मानो भटक गई हैं, और वो ऐसे जैसा डाइवर्जन हो जाता है, वो ऐसे सोचते हैं, तो मेरे दिमाग में चलता है इनके लिए अपन एक दिन मोटिवेशन बनेंगे, इनको मोटिवेट करेंगे अपन, भाई आप बैठ नहीं सकते किसी भी कंडीशन, एनी हाउ कंडीशन कोई भी हो जाए, यही सोच के मैं ना एक्सरसाइज वगैरह मतलब मैंने शुरू कर दिया। और जस्ट 1 साल बाद में मेरे फिर यहाँ पे स्टेट चैंपियनशिप होनी थी अपने राजस्थान की, SMS स्टेडियम में होनी थी, 6 मार्च 2019 की बात है ये, और 6 मार्च 2018 को मेरा एक्सीडेंट हुआ, सेम डेट को 1 साल बाद में मैंने ना शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल लगा दिया था।
0: अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस।
1: और उसी दिन मेरा इवेंट होना था डिस्कस का, मैं डिस्कस की भी तैयारी करता था, मेरे को बाद में पता लगा कि एक खिलाड़ी 3 इवेंट में भाग ले सकता है
0: जी।
1: तो मैंने उसमें सिल्वर भी खेला, डिस्कस के अंदर फिर मेरा सिल्वर मेडल लगा,
0: ये स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन।
1: हाँ, स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन था। तो उसमें बिलो विजन भी आते हैं
0: जी,
1: मतलब पार्शली ब्लाइंड होते हैं और बिलो विजन है ना, वो सभी खेलते हैं उसमें, और उसमें थोड़ा क्या है कि करप्शन भी होता है, अपनी टेक्नोलॉजी है ना इंडिया में इतनी एडवांस नहीं है कि वो आंखों को देख के मतलब एग्जैक्ट बता दे इसकी इसका विजन कितना बचा हुआ है, ये मतलब फैसिलिटीज है ना फॉरेन में होती हैं, तो उसमें करप्शन ज़्यादा चलता है, उसमें जनरली है ना मतलब जिनको कम दिखाई देता है ना वो है ना मतलब सर्टिफिकेट बना लेते हैं और वो मतलब उससे खेलते हैं, वो हमारे कॉम्पिटिशन में खेलते हैं जो मतलब कंप्लीट ब्लाइंड है, क्योंकि उसकी 3 कैटेगरी होती है, F11, 12 एंड 13, तो उसमें कंप्लीट जो होता है ना वो F11 में आता है, लेकिन वो F 12 और 13 के जो क्राइटेरिया है ना वो भी F11 में खेलते हैं, क्योंकि वो मतलब बता नहीं पाते ना वहाँ पे, और वो वहाँ पे है ना ऐसी ही एक्टिंग करते हैं कि वो मतलब दूसरे को ऐसे लगे कि वो ब्लाइंड है। जब वो मतलब उनका टाइम आता है गेम का मतलब फेंकने का शॉट पुट को डिस्कस को, उस टाइम पे वो ऐसे ही नाटक करते हैं, वैसे नहीं करते। क्योंकि ये बातें तो मुझे पता लगी कि जब वाइफ साथ में जाती थी तो वो मतलब बोलती थी कि वो इतना इजी घूम रहे हैं, एक्सरसाइज करते हुए घूम रहे हैं, पूरे फील्ड का चक्कर लगा रहे हैं अपने आप ही। तो ऐसा नहीं हो सकता है, एक ब्लाइंड पर्सन है ना बिना स्टिक के तो मेरा मानना है कि एटलीस्ट वो नहीं चल सकता है अकेला। स्टिक तो उसके होगी हाथ में, उसको डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, असिस्ट करने की आवश्यकता है उसको, तो वहां पे वैसे ही चलता है। फिर चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी तैयारी इतनी अच्छी थी कि मैं मतलब उनसे आगे निकल गया फिर भी
0: जी।
1: तो फिर मेरे को ये पता लगा तीसरा इवेंट और कर सकता हूँ, जेवलिंग भी कर सकता हूँ, तो जेवलिंग का मैंने
0: जेवलिंग थ्रो,
1: हाँ जेवलिंग थ्रो, तो फिर मैंने सोचा कि इसमें भी ट्राई कर लेते हैं। उसका दूसरे दिन इवेंट होना था 7 मार्च को
0: जी।
1: तो मैंने पूछा कोच साहब से वहाँ जो SMS स्टेडियम में कोच हैं लगे हैं कि मैं जेवलिंग फेंक लूंगा, वो बोला कि पहले फेंकी है, मैं बोला नहीं फेंकी, लेकिन मेरे को ये पता है कि कैसे फेंकी जाती है, देखा है मैंने
0: जी।
1: तो बोले कि यार फिर भी है ना प्रैक्टिस भी नहीं की तो यार नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कि मैं प्रैक्टिस 6 तारीख की बात है, ये दूसरे दिन होना था, मैं बोला यार मैं अभी मेरे पास शाम का टाइम है और सुबह मेरा कब होगा इवेंट, टाइम तो मतलब 12 बजे के बाद होना है, तो सुबह का भी टाइम है, मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ इसकी, तो हो सकता है मेरा काम हो जाए, मतलब कोई पोजिशन आ जाए। तो बोला कि उन्होंने फिर जेवलिंग लाए, वो मेरे को 1-2 थ्रो करवाए। तो फिर मैंने शुरू में तो देखो ढंग से थ्रो नहीं कर पा रहा था मैं जेवलिन को, लेकिन वो मतलब मैंने कम से कम 100-200 बार ट्राई किया उस टाइम पे
0: जी।
1: तो फिर वो मतलब परफेक्शन आ गया
0: जी।
1: क्योंकि वो ना फिर जैसे
0: खड़े होने जितना स्टैमिना आ गई,
1: हाँ और फेंक सकते हैं अपन उसको
0: जी।
1: 3-4 स्टेप लेके भाई मैं ज्यादा रनिंग ना करूँ तो थोड़ी रनिंग कर लूंगा, और वहां पे ना फिर आवाज करते हैं वो मतलब ताली बजाते हैं ऐसे, तब रिलीज करनी होती है उसको साउंड के अकॉर्डिंग। तो फिर मैंने वहां से फेंक दिया और वो भी फाइनली ब्रॉन्ज पे तो लग गया मेरा निशाना।
0: वेरी नाइस।
1: तो कोच ने फिर मेरे को ये कहा कि ठीक है तुम कोशिश तो कर ले, लेकिन कुछ मेडल पे तो नहीं लगेगा यार तेरा। तो मैं यार ऐसा तो कुछ नहीं है, अपन ट्राई तो करें, चलो नहीं लगे वो तो बाद की बात है, लेकिन अपन कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। कोशिश करते हैं देखते हैं, लेकिन वो फाइनली हो गया काम। फिर उन्होंने कहा कि तू 12 मीटर ही फेंक पाएगा इसको। तो मैं ठीक है, मतलब उन्होंने मेरे थ्रो देखे उसके अकॉर्डिंग, लेकिन वो मैंने उस टाइम पे फेंका मैंने ना 24 मीटर फेंकी मैंने उसको।
0: अच्छा।
1: 24 point something, मतलब उससे उन्होंने जितना बताया उससे डबल से भी थोड़ा ज्यादा ही फेंकी मैंने।
0: ओके।
1: तो फिर मैंने उनकी बात को भी गलत साबित कर दिया। वैसे वो मतलब
0: लक्ष्य था ही वैसे भी सबको गलत साबित करना।
1: तो मेरे कोच वैसे देवेंद्र झाझड़िया जी है ना, उनके सानिध्य में किया था मैंने प्रैक्टिस, उनका नाम है RD सिंह, वो अपने राजस्थान से पहले द्रोणाचार्य अवार्डी है।
0: अच्छा।
1: हाँ, मतलब पहला द्रोणाचार्य अवार्ड उन्हीं को मिला है अपने राजस्थान से, जिन्होंने पैरा खिलाड़ियों को तैयार किया है। अब देवेंद्र झाझड़िया जी है उनके वो गुरु है, तो उन्होंने गोल्ड मेडल लगाए ना, तो उसके लिए उनको सम्मानित किया गया द्रोणाचार्य अवार्डी से। तो ऐसे चलता रहा। फिर दूसरे साल मैं प्रैक्टिस कर रहा था उस टाइम पे, फिर नेशनल में मेरा सिलेक्शन हो गया
0: जी।
1: और 2019 में फिर लास्ट में क्या हुआ, कोविड आ गया था
0: जी
1: उस टाइम पे
0: जी।
1: 2020 में, तो 2020 में वापस वो मेरे स्टेट वाले होने थे, तो स्टेट में तो मैं चला गया, जोधपुर हुए उस टाइम पे फिर स्टेट वाले चैंपियनशिप, तो उसमें भी फिर मेरा सेम लगा, शॉर्ट पुट में गोल्ड और उसी में डिस्कस में सिल्वर, और उस टाइम पे वो हटा दिया था जेवलिंग, हटा दिया फिर अपने राजस्थान से, तो वो मैं नहीं कर पाया फिर दो इवेंट ही उसमें। दूसरी साल भी मैंने सेम रिपीट किया फिर गोल्ड और सिल्वर उसमें। फिर कोरोना, फिर मेरा नेशनल में हो गया, लेकिन नेशनल फिर डिले कर दिए कोरोना की वजह से, नहीं हो पाए। फिर मैं तैयारी कर रहा था तो दोबारा एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे, मैं वेट लिफ्ट कर रहा था, वो बार है ना पसीने की वजह से स्लिप हो गई मेरे हाथों से शोल्डर के ऊपर, मतलब वेट गिर गया,
0: फिर इंजरी
1: हो गई फिर शोल्डर में। अब जिस वजह से थ्रो करना वही वापस इंजरी हो गई। अब डॉक्टर को जैसे दिखाया तो फिर उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा अभी तो यार एक्सीडेंट हो, वो भी मतलब आश्चर्य में थे जैसे मेरे ब्रेन की सर्जरी हो तो वो टांके वैसे मतलब दिखते निशान गए नहीं थे वहां से।
0: अच्छा।
1: उस टाइम तक तो बोले यार अभी सारा लोड है ना सर पे आता है, तेरी जितनी भी एक्सरसाइज है ना वो मतलब सर को है ना प्रभावित करती है, और ब्रेन की सर्जरी करवा रखी है ताजा ताजा, इतने डैमेजेज हैं आपके साथ में, तो यार ये एटलीस्ट और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और मेरे कुछ वैसे लेफ्ट ईयर के अंदर है ना थोड़ी सी, जब मैं वेट लिफ्ट करता था ना भार पड़ता था तो मेरे को जैसे जैसे प्लेन में बैठते हैं तो अपन वो कानों के पर्दे बंद से खुलते हैं, बंद होते हैं खुलते हैं, ऐसे आवाज आने लगती थी मैं जो ही वेट लिफ्ट करता था। अब मेरे दिमाग में चलता कि यार कहीं पर्दा वर्दा है ना कुछ और गड़बड़ ना हो जाए, अब सुनाई भी नहीं देगा तो फिर ज्यादा दिक्कत
0: हो जाएगी।
1: तो थोड़ा थोड़ा वैसे डर हो गया, और फिर डॉक्टर ने भी फिर मेरे को कहा कि यार एटलीस्ट ये तो मत करो, अभी मत करो, इसको कम से कम है ना 3-4 साल आप वेट करो थोड़ा तो
0: हील
1: होके नॉर्मल हो जाए।
0: जी
1: डैमेज ज्यादा है क्योंकि मेरे चेहरे पे भी फ्रैक्चर हुए थे कई, कम से कम ऐसे मानो 25-30 फ्रैक्चर थे मेरे फेस के ऊपर
0: एक एक्सीडेंट के कारण।
1: एक एक्सीडेंट के आंखों की मतलब जो मैक्सिलोफेसियल सर्जरी होती है फेस की, वो करने के लिए रिकमेंड किया था मेरे को, लेकिन वो मैंने नहीं करवाई फिर।
0: लेकिन आपके चेहरे को देख के लगता नहीं है कि इतनी सर्जरीज हुई है?
1: नहीं वो लगता नहीं है, वो फिर मैंने करवाई भी नहीं। ब्रेन सर्जरी तो हुई थी, आंखों की भी हुई है, लेकिन वो ज्यादा नेसेसरी नहीं लगा मेरे को, क्योंकि भाई अपन एक्यूरेट वैसी चाहे ना, अब 19-20 का फर्क है मेरे मतलब चेहरे में सिर्फ, वो भी उन्हीं को पता लगेगा जिन्होंने मेरे को एक्सीडेंट से पहले देखा और बाद में देखा। जिसने बाद में देखा वो जज नहीं कर पाएगा कि कुछ है इसमें डिफरेंस। फिर वो डॉक्टर ने कहा तो फिर मैं बैठ गया फिर वापस, फिर मैंने सोचा कि अब क्या करें। फिर उस टाइम पे ना राजस्थान में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती निकली थी, क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया है
0: जी,
1: तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ठीक है ये अपनी स्ट्रीम की है तो इसमें अपन ट्राई करते हैं। तो पहली बार वैकेंसी आई थी राजस्थान में उसकी इंस्ट्रक्टर की
0: जी,
1: तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया। अब वो कोचिंग से जो नोट्स दिए ना उन्होंने
0: जी,
1: वो मैंने एज इट इज एक एक वर्ड बाय वर्ड याद कर लिया। अब मेरा ये चीज
0: तो
1: के लिए
0: आप तो कैसे पढ़ते थे, ब्रेल में पढ़ते थे?
1: नहीं ब्रेल में नहीं पढ़ता था, ब्रेल में तो मैं मतलब मेरे लिए सीखना इतना इजी नहीं था क्योंकि मैं बर्थ ब्लाइंड नहीं था
0: जी,
1: मैंने पढ़ाई कम्प्लीट कर रखी थी। अब जैसे ब्रेल में डॉट्स पे चलता है
0: जी,
1: तो उसमें 6 डॉट होते हैं वो, अब तो मुझे पता है कि वो कैसे है, थोड़ा थोड़ा मैंने सीख लिया
0: जी
1: काम चलाओ। लेकिन वो उस टाइम पे तो मैं पढ़ाई करता था तो वो क्लासेस सुनता था ऑनलाइन उनकी घर से
0: जी,
1: ऐप के द्वारा उनका ऐप होता है कोचिंग वालों का, तो ऐप से
0: आपको मतलब कोई मदद भी करते थे, कोई किताब पढ़ के सुनावे या रिकॉर्डिंग करके?
1: कभी कभी ऐसा होता था कि मेरी वाइफ है ना मेरे को नोट्स पढ़ के सुना देती थी।
0: आपकी वाइफ ने क्या पढ़ाई किया है?
1: उन्होंने वो किया है बी ए बी एड है, एम ए बी एड है, वो टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है वो भी
0: जी,
1: तो वैसे उनको टाइम कम ही मिल पाता है क्योंकि पूरा दिन ड्यूटी भी होती है, घर के काम भी होते हैं
0: जी,
1: और फिर मुझे पढ़ाने वाला काम, उसके लिए भी एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़े
0: जी।
1: लेकिन वो मेरे दिमाग में ना देखो पहले ऐसे ही आता था कि मैं ना कम से कम हेल्प लूं, चाहे वो मतलब अपने घर वाले ही क्यों ना हो। स्टार्टिंग के अंदर मेरी सेविंग करते थे पापा, तो मुझे अंदर से गिल्ट फील होता था कि मेरे साथ में ऐसा देखो क्या हो गया कि मुझे सेवा करनी चाहिए माता पिता की, आज मुझे करवानी पड़ रही है। तो मैं सोचता बहुत था, मतलब पूरी रात मेरे को नींद नहीं आती थी, तो मैं क्या करूँ, मतलब जितना मुझे पढ़ना हो, पढ़ाई वाला सीन तो बाद में शुरू हुआ है, ये तो एक्सीडेंट 18 में हुआ है, तैयारी तो मैंने 21 में शुरू की थी, एक्सीडेंट वो दोबारा मेरा वेट गिर गया था तब उसके बाद
0: जी।
1: तो फिर मैंने ना धीरे धीरे अपने आप को ये सोच लिया कि काम अब मतलब अपन को जीना पड़ेगा, तो जहाँ पर मतलब अपन को नेसेसरी है ना वहीं अपन सहायता लें, उससे पहले नहीं। तो फिर मैंने सारे काम करने अपने सीख लिए थे। अब मैं
0: कभी आपकी वाइफ को लगता था कि ये कहाँ से मेरे जीवन में आ गया, अभी अभी शादी हुई और अभी अभी ऐसे जीवन है, सपने क्या देखा और हकीकत में क्या हो गया है अभी, क्योंकि नया नया शादी है तो वो छोड़ के भी जा सकती है?
1: हाँ जा सकती है, मेरी सास ने बोला था, उनको रिकमेंड किया था इस बात के लिए कि एक अंधे व्यक्ति के साथ जिंदगी गुजारनी बहुत मुश्किल है बेटी
0: जी
1: तो
0: उन्होंने दे दो,
1: हाँ मतलब उन्होंने ये कहा था कि पूरी जिंदगी नहीं गुजर पाएगी, तो उन्होंने उनको रिकमेंड भी कर दिया जल्दी कि हो गया इनका काम अब, मतलब आप छोड़ सकती है चाहो तो, अगर आपकी मतलब जिंदगी कैसे गुजरेगी आगे। लेकिन उन्होंने वो मतलब कहा कि नहीं नहीं, वो स्ट्रॉन्ग थी वैसे मेंटली मेरी वाइफ, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे तो उनको ये भी नहीं पता था कि मैं क्या करूँगा आगे, स्पोर्ट्स में भी कर सकता हूँ या मैं पढ़ाई में भी करूँगा, ये तो बातें अब हुई हैं
0: जी,
1: उनको नहीं पता था, ये तो अर्लियर स्टेज पे उन्होंने ये कर ली थी फिर। लेकिन उसका डिसीजन था कि नहीं मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी, मैं इनके साथ ही रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी कंडीशन हो।
0: कितना समय हो गया था शादी को जब आपका एक्सीडेंट हुआ?
1: मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब 4 साल हो गए थे
0: शादी को।
1: हाँ, शादी को 4 साल हो गए थे।
0: तब तक तो एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो चुकी है।
1: हाँ, बस वही है, वो अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही मतलब शायद हो सकता है कि वो मेरे साथ रहना पसंद किया उन्होंने,
0: छोड़ा ना।
1: हाँ, तो उसके बाद मैं आपको बता रहा था, हाँ इंस्ट्रक्टर के निकले तो फिर वो मैंने तैयारी शुरू की, कला से सुनता था कभी कभी, वो मुझे पढ़ के सुना देती थी, तो मैंने वो वर्ड बाई वर्ड याद कर लिए थे। अब अनफॉर्चुनेटली उस साल है ना इतना पेपर डिफिकल्ट आया, क्योंकि पहली भर्ती थी, किसी को आइडिया नहीं था इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप का, नेचर क्वेश्चन की नेचर कैसी होगी इसमें पेपर में। तो जैसे उन्होंने तैयारी करवाई ना, मेरे कोचिंग से 12% ही आए 100 में से
0: जी।
1: अब उसके लिए कम मिनिमम मार्क्स लाने थे 35%, मतलब 35 नंबर लाने जरूरी थे उसमें। तो मेरे जो मतलब नोट्स में पर्सन ही अगर मैंने नहीं पढ़े उसके अलावा, तो फिर मैं कैसे पास करूँगा, मैं नहीं पास कर पाया उसको
0: जी।
1: 12% तो नोट्स में थे, और कुछ मैंने तुक्के लगाए थोड़ा, मतलब आसपास के ज्ञान को बढ़ा के मतलब मेरे अकॉर्डिंग किया, तो 21 नंबर तक पहुँचा मैं वहाँ।
0: अच्छा।
1: लेकिन 35 मैं नहीं कर पाया क्रॉस
0: जी,
1: तो मैं उसमें रह गया। उसके बाद नगर पालिका ईयू की भर्ती निकली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की
0: जी।
1: मैंने सोचा इसमें लगाएंगे, क्योंकि उसमें जनरल नॉलेज आती थी, थोड़ा सिलेबस छोटा था उसका, और धाराएं याद करनी थी नगर पालिकाओं की। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर मैंने सोचा कि घर पे पढ़ाई नहीं हो सकती, लोग आते जाते रहते हैं,
0: और
1: मम्मी की और वो मतलब वाइफ की, उनकी भी मतलब आपस में कभी कभी वो हो जाती है नोकझोंक हो जाती है। अब इधर माता जी मेरे को कहती हैं, इधर वो कहती है, मैं यार ये तो पंगा तो है, गड़बड़ी यहाँ पे
0: जी।
1: मैंने फिर सोचा कि अपन बाहर चलते हैं, घर को छोड़े ना, तब अपना कल्याण हो सकता है।
0: अच्छा।
1: तो मैंने छोड़ दिया फिर घर को।
0: अच्छा जी।
1: अब शुरू शुरू में तो फिर
0: श्री राम जी वनवास चले गए। जी।
1: तो उसके बाद शुरू में तो देखो मेरी वाइफ आई मेरे साथ में
0: जी
1: 3-4 महीने, तो मेरे जो असिस्टेंट बैठे हैं मेरे पास में, इन्हीं की बिल्डिंग में मतलब आया था मैं।
0: अच्छा।
1: इनके जो दादाजी है ना वो गार्ड हैं।
0: अच्छा।
1: उस बिल्डिंग के
0: जी
1: चौकीदार हैं वो। तो इनके यहाँ पे आके मैंने रेंट पे रहना शुरू किया इनके बिल्डिंग में। तो शुरू में तो वो 4-5, उसने 4 महीने की छुट्टी ली। अब गवर्नमेंट में वो छुट्टियां भी अपन लिमिटेड ले सकते हैं
0: जी,
1: तो जैसे तैसे करके है ना 1 साल निकल गया 4 महीने की। फिर वो मतलब और छुट्टी आगे गर्मियों की छुट्टियां आ गई
0: जी,
1: फिर थोड़ा मतलब 2-3 दिन 4-5 दिन चली गई वापस स्कूल में, और वो मेरे को साथ लेके जाती। मैं यार ऐसे नहीं चलेगा ये, फिर मतलब ऐसे काम, अब इस बात की क्या गारंटी है कि अपन एक कंपटीशन का पेपर दें उसमें सिलेक्ट हो जाएं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। अब वो मैंने पेपर तो देखो क्लियर किया उस टाइम पे, ईओ का कर दिया, लेकिन वो पेपर आउट हो गया, किस्मत खराब थी मेरी। पेपर आउट हो गया तो सरकार ने कर दिया कैंसिल। अब कैंसिल हो गया तो फिर दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी
0: जी।
1: अब दोबारा तैयारी की तो वही दिमाग में है कि अब की बार तो हो गया लेकिन अगली बार हो जाए भाई, 1% तो मतलब दिमाग में देखो रियलिटी रियलिटी होती है हमेशा, प्लान बी भी होना चाहिए आपके पास। तो मैंने सोचा कि ठीक है। अब वो बोले कि चलो अब तैयारी कर ली, घर पे चलते हैं। मैं यार घर पे मैं नहीं जा सकता। तो मैंने उसको क्लियर बोला कि दुनिया को पता लग गया अब ये तैयारी करने गया हुआ है, और घर पे मैं चला जाऊँ, घर पे मेरी तैयारी भी नहीं होगी, तो यार दुनिया को जवाब क्या मिलेगा
0: जी
1: कि तैयारी करके आ गया, लोग मनाएंगे मजाक तो पहले ही बना रखा है लाइफ ने और लोगों ने भी बना रखा है साथ में
0: जी,
1: और अब नहीं होगा तो फिर ये तो नाक का सवाल हो गया है
0: जी।
1: अब मैं ना तभी जाऊंगा जब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा
0: जी,
1: वरना नहीं जाऊंगा मैं घर पे। तो फिर उन्होंने मेरे पास जो मेरे असिस्टेंट बैठे हैं विशाल भाई को, इनको स्टार्टिंग में मैंने रखना शुरू किया मेरे साथ में
0: जी।
1: अब ये उस टाइम पे थे शायद 9th क्लास में थे विशाल, हाँ 9th क्लास में थे उस टाइम पे। बच्चा था ये बिल्कुल। तो ये भी थोड़े दिन में इसकी स्कूल होती, अब शाम को थोड़ा टाइम मेरे को देते, लेकिन मेरा मकान मैंने इनके घर को छोड़ दिया था उस टाइम पे, दूसरे मकान में आ गया फिर मैं
0: जी,
1: क्योंकि उसमें थोड़ा वेंटिलेशन का वगैरह ये प्रॉब्लम था। तो मैंने वो फॉर्चुनेटली मेरे मकान मालिक वो भी अच्छे मिले मेरे को, वहाँ पे जो दीदी रहती थी वो ओनर थी, लैंड लॉर्ड थी, वो मेरी क्लासें लगा देती
0: जी।
1: थोड़ा ये मतलब मेरे को टाइम दे देते हैं, तो फिर इससे भी लंबा टाइम, इनको भी लंबा, ये मेरे को लंबा टाइम नहीं दे सकता था क्योंकि इसके भी खुद के पर्सनल काम होते थे, बच्चा था, इसका खेलने का भी मन करेगा, ये खेल दोस्तों को भी टाइम देगा उस टाइम पे, खेलेगा भी
0: जी।
1: तो फिर वो मेरी दीदी है ना, वो मतलब लैंडलॉर्ड थी, वो क्लासें लगा दी थी मनीषा दीदी, और मैं क्लासे सुनता रहता, मैं रात को 11 बजे तक लास्ट मतलब उनका पूछ लेता मैं कब सोने का टाइम होगा आपका, तो वो बोलते कि हम 10:30 तक लगा सकते हैं, तो मैं लास्ट मतलब 11 बजे तक क्लास लगवाता, और दो क्लासे है ना
0: करंट, पढ़ के सुनाती थी सारी,
1: नहीं ऐप में क्लास लगाता ना मैं, ऐप से सुनता मैं क्लासे, चालू करके दे देती थी मेरे को
0: जी।
1: और मैं मतलब उसको
0: आप सुनते थे
1: और मैं उसको स्पीड में सुनता था, वो भी 2x पे सुनता था, 1.75 पे या फिर 2x पे, वो इसलिए कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा कवर करना था। अब मैं मान लो नॉर्मल स्पीड पे सुनूंगा तो मेरी क्लासेस, जैसे मैं 10 क्लासेस सुनूंगा और मैं वही 2x में सुनूंगा तो मैं 20 क्लासेस सुनूंगा एक साथ में
0: जी।
1: तो ऐसे मैंने ना 2x मोड पे शुरू किया और मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक सुनता था, और बीच में कभी मेरा मूड होता ना ऐसे भाई थोड़ा भारी हो गया है, सर भी दर्द करने लगता था क्योंकि टू मच इन्फॉर्मेशन जा रही थी
0: जी।
1: अचानक से दिमाग में
0: जी।
1: तो बीच में फिर वो मूड फ्रेश के लिए मैं सूरज भाई के वीडियो सुन लेता।
0: अच्छा,
1: पूरा दिन
0: या तो ये सुनो या तो वो सुनो,
1: हाँ बस दो ही काम,
0: ज्ञान है,
1: ज्ञान
0: ज्ञान
1: जी भाई। दुनिया से तो देखो कट हो ही गया था मैं, और मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं था दुनिया में अब
0: जी।
1: मेरे को ना मतलब वो खाने को दौड़ते थे, वो जैसी बातें करते थे मेरे साथ में, और वो मेरे को ना अजीब नजरिए से देखते थे, दूसरी बात ये और है। तो वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मैं ऐसे मतलब मेरे मन में यही सोचता था कि मैं नॉर्मल पर्सन हूँ, सीधी सी बात है, और मैं आज भी यही सोचता हूँ
0: जी। मैं ऐसे ही सोचना चाहिए, अब नॉर्मल क्या है इसमें,
1: मैं ऐसे नहीं सोचता कि मैं अब नॉर्मल हूँ या फिर मेरे कोई डिसेबिलिटी है, तो फिर मतलब क्योंकि अपन सीधी सी बात है समस्या के बारे में सोचेंगे ना तो समस्याएं आएंगी, और समाधान के बारे में सोचेंगे तो समाधान मिलेगा अपन को
0: जी।
1: तो ये तो नॉर्मल सा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सा फॉर्मूला है। इस चक्कर में मूड फ्रेश के लिए सूरज भाई सुन लेते थे, क्लासेस सुन लेते थे, फिर दोबारा मेरा ईओ में नहीं हो पाया, उसके बाद निकली आईए की भर्ती, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की, वो भी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए थी। अब की बार हो जाएगा अपना सिलेक्शन, इसमें इसकी तैयारी करते हैं। फिर मैंने उसकी तैयारी शुरू की, और साथ साथ में मैंने शुरू की उस टाइम पे आरएएस की
0: जी,
1: दोनों पैरेलल कर रहा था, क्योंकि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की करी थी, वो सेम सिलेबस था उसमें आईए में, कंप्यूटर साइंस वाला ही। तो मैंने सोचा कि होएगा ना तो इस नॉलेज पे ही हो जाएगा अपना, और साथ साथ में आरएएस की तैयारी करते हैं। फिर मैंने आरएएस की शुरू किया, और वाइफ भी चली गई थी, मैं अकेले रहता था, और अभी भी मैं अकेले रहता हूँ।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो
0: वाइफ अपनी बेटी के साथ, आपकी ससुर, आपकी मायके में, मतलब आपकी पेरेंट्स के साथ,
1: पेरेंट्स के साथ वही रहती हैं।
0: उनके पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स?
1: मेरे पेरेंट्स हमारे घर पे रहती है
0: जी।
1: बेटा मेरे वैसे एक्सीडेंट के बाद ही हुआ है, तो अब अकेले रह के मैं खूब क्लासेस सुनता था, और साथ साथ में नोट्स पढ़ता था, और मेरे को कोचिंग में मतलब मेरे को कोचिंग अच्छी मिली, मैं कोचिंग में जाता था, फिर मेरे को वहाँ पे मेरे कुछ अच्छे मित्र बन गए थे, तो वो मेरे को पढ़ाते नोट्स
0: जी।
1: कभी मेरे को जरूरत पड़ती ना कि ये चीज मेरे को पढ़ के सुन लेनी चाहिए 2-3 बार, तो वो मैं उनसे रिकॉर्ड भी करवा लेता था, फिर नोट्स को, नोट्स रिकॉर्ड किए हुए, वो कभी कभी वो सुन लेता, और वो कभी मेरे वो दोस्त पढ़ा देते और क्लासे सुनता
0: जी।
1: 14 से 15 घंटे पढ़ाई की रही है मैंने
0: जी,
1: और पिछले मतलब 4 साल से लगातार करी इतनी मैंने पढ़ाई
0: जी।
1: तो 2023 में तो देखो आईए के अंदर मैं सिलेक्शन हो गया मेरा, मतलब जनवरी में था उसका एग्जाम, तो फिर वो उसमें सिलेक्ट हो गया मैं 23 में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें भी मेरे साथ में दिक्कत ये हुई कि मेरे को आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसने अयोग्य करार दे दिया मेरे को। उन्होंने कहा कि आप डिसेबल मतलब आंखों से होना तो फिर हम आप हमारे विभाग आपको अलाउ नहीं करेगा, आपने चाहे एग्जाम क्लियर कर दिया हो। मैं यार ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी, विज्ञप्ति में डालनी चाहिए थी ये बात। मैंने ना देखो प्रयास किया ईमानदारी से, मैंने मेरा टाइम भी खराब किया है स्पेशली आपके लिए इस भर्ती के लिए, और आज मेरा सिलेक्शन हो गया तो आप ये कह रहे हो कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ आपके विभाग के लिए। आप मुझे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी देके देखिए तो सही, मैं मेरा काम नहीं कर पाऊंगा तब आप कह सकते हैं। मैं चाहे असिस्टेंट रखो किसी को भी रखो, मैं मेरा काम करूंगा, लेकिन जो मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन करूंगा मैं पूरा। वो बोले फिर मेरे को, मैं अधीनस्थ बोर्ड में गया वहाँ पे सचिव के पास, तो वहाँ पे भी मजाक बनाया मेरा। वो क्लर्क थे वो बोले यार भाई यार तू क्या, वो पहली बात तो रेस्पेक्ट तो देगा ही नहीं कोई।
0: हाँ।
1: मुझे ऐसे लगता है।
0: हाँ।
1: तू तो पार्ट में बात करते हैं वो
0: जी,
1: अरे तू क्या कर पाएगा, तेरे को दिखाई देता नहीं यार।
0: कितने भी पढ़ा लिखा सक्सेसफुल हो जाओ फिर भी जस्ट बिकॉज आपको विजन नहीं है इसीलिए आपका कोई वैल्यू नहीं है।
1: हाँ वो मेरे को ऐसे बोलते कि आप बोझ बन जाओगे, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट बोला। तो फिर मैंने उनको समझाया यार आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो
0: जी।
1: मैं मेरे दिमाग में ना फिर उस दिन है ना ये सोच लिया मैंने कि अब मैं आरएस ही बनूंगा, प्रशासनिक अधिकारी ही बनूंगा मैं, और एक दिन इनको मैं साबित करके दिखाऊंगा अपने आप को कि मैं कर सकता हूँ काम
0: जी।
1: तो उस टाइम से फिर मैंने शुरू कर दिया आरएस का, मैं कर ही रहा था साथ में। तो फिर फाइनली मैं 2023 में तो रह गया था, 4-5 नंबर से रहा था मैं फाइनल इंटरव्यू कॉल के लिए। तो मैंने स्टार्टिंग फिर मेरी फॉर्चुनेटली 2024 में भी है ना बराबर भर्ती निकल गई, मैं लक्की था बैक टू बैक भर्ती आ गई आरएस की, वरना 2-3 साल में आती है हर बार
0: जी।
1: तो फिर मेरा 2024 में फाइनली है ना सिलेक्शन हो गया आरएस में।
0: कंग्रेचुलेशंस, फाइनली आपने जीत लिया।
1: हाँ अब लोगों का ना जो लोग ये बात बोलते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, अब वही लोग ये बात बोलते हैं कि हमें पहले ही पता था ये सब कुछ कर सकता है। सेम पर्सन सेम बात कर रहा है
0: जी।
1: जिसने ये बोला कि ये नहीं कर सकता था,
0: हाँ।
1: आज वही ये बात है ना, कॉन्फिडेंट होके बोलता है कि हमें तो पहले ही विश्वास था कि ये कर सकता है। वही उन्हीं लोगों के जो बोल रहे थे हीरो से जीरो बन गया, हाँ। आज वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो साथ में मेरे आके फोटो खिंचवाना चाहते हैं, स्टेटस लगाना चाहते हैं कि अभिषेक हमारा दोस्त है।
0: अच्छा
1: ये आरएस भाई आरएस बन गया प्रशासनिक अधिकारी तो हो सकता है कि हमारे काम आ जाए। आज वही लोग है ना मतलब आके है ना फोटो खिंचवा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं जो मतलब किस्मत की दुआई देते थे, धरती पे बोझ बताते थे, आज वही मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे को
0: जी।
1: लोगों का मतलब काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, लेकिन आपको जो करना है ना वो करिए, मेरा तो मानना ये है
0: जी।
1: लोगों अगर आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे ना
0: जी,
1: तो आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है, समय अपने आप जवाब दे देता है
0: जी। सो अभिषेक जी, इतनी इंटरेस्टिंग आपकी लाइफ लर्निंग है, जब आप अपने आप को देखते हैं, वैसे आपने बातचीत के दौरान कई बातें शेयर की है, विजन के पहले और विजन के बाद, अब अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं?
1: वैसे तो कोई खास फर्क नहीं है
0: जी,
1: अगर मैं पर्सनली देखूं तो बस इतना फर्क है कि मैं थोड़ा सा इस जीवन के बारे में थोड़ी सच्चाई को, ट्रूथ को है वो अच्छे से समझ पाया हूँ
0: जी,
1: कि क्या रियलिटी है
0: जी।
1: इस भागा दौड़ में अपन यूं ही भागे जा रहे हैं, अपन को कुछ पता ही नहीं है, फालतू के माया मोह के चक्कर में पड़े हुए हैं। फाइनली है ना मेरे को तो ऐसे लगता है कि कोई आना जाने नहीं है इन बातों में, कुछ नहीं है
0: जी।
1: लेकिन फिर भी अपन सांसारिक वस्तुओं
0: के माया
1: में उलझे हुए हैं और कुछ उनका पार्ट भी होते हैं, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि सभी ऐसा करें
0: जी,
1: ऐसा भी ठीक नहीं है, क्योंकि सभी जैसे मतलब अपन बात करें कि हर व्यक्ति हर फैमिली वाला ये सोचता है कि मेरा बेटा बेटी है ना डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो वही बात है कि सारे डॉक्टर इंजीनियर बच गए बन जाएंगे तो फिर वो क्लर्क कौन बनेगा, टीचर कौन बनेगा तो वही है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि ठीक है, मैं अगर मैं पहले टच में आ जाता तो हो सकता है मैं सब कुछ छोड़ देता
0: जी।
1: अब मैं सोचता हूँ कि ठीक है मेरे को जैसा गृहस्थ जीवन मिला है तो मैं इसके साथ में रह के।
0: तो आध्यात्मिकता आपको कैसे मदद किया?
1: आध्यात्मिकता तो देखो हकीकत तो ये है कि कुछ अच्छी चीजें होती है ना लाइफ में, वो चाहे अपन यहाँ बैठ के बातें कर लें और चाहे साउथ पोल पे या नॉर्थ पोल पे जाके बातें करें तो भी वो वही रहेगी। तो मेरे को याद है कि मैं जब 18 साल कॉलेज में था ना
0: जी,
1: तो एक दिन मेरे दिमाग में विचार आया था हु एम आई, और मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया
0: जी,
1: और उसके नीचे भी लिखा मे बी अभिषेक कुलारी एल्स सर्चिंग और डॉट डॉट के। तो ये बातें है ना, वो प्रश्न मेरे को है ना सूरज भाई से जोड़ने के बाद पता लग गया
0: जी,
1: हु एम आई, आई एम ए सोल
0: जी,
1: और अपना है सुप्रीम सोल से नाता है, ये हकीकत है। जैसा अपन सोचते हैं ना वैसा बन जाते हैं
0: जी।
1: अपने मतलब ओरा को अपन इतना प्योरिटी रखें उसमें
0: जी,
1: और जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सब चीजों से दूर रहेंगे ना, तो कॉस्मोस आपकी है ना अपने आप सहायता करने लगता है, ये हकीकत है।
0: ये आपने अनुभव किया है।
1: जो मैं सोचता हूँ ऐसे सोच के बैठ जाऊं कि मुझे इसका जवाब मिले तब तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो इंटरनली मन में ऑटोमेटिक कभी कभी विचार आते हैं तो जनरली 90% ऐसा ही होता है कि उनका जवाब है ना अपने आप में मिल जाता है
0: जी।
1: मैं मतलब बाहर जाके भी नहीं देखूं, तो एक बार मैं एक मजाकिया किस्सा शेयर करता हूँ आपके साथ में
0: जी।
1: तो मेरे पड़ोस में आंटी है, वो उनके हस्बैंड है डॉक्टर
0: जी।
1: अब वो थोड़े से है ना वो ऐसे है, मतलब उनका व्यवहार है ना थोड़ा ऐसा है कि अगर उनसे जाके अपन ने गार्बेज के लिए भी हेल्प मांग लेंगे ना कि आपका ये कचरा पड़ा है ये मेरे को दे दीजिए, तो वो भी ना दें वो चाहे वो उनके काम का नहीं है
0: क्योंकि आप मांग रहे हैं इसलिए कुछ तो है इसलिए
1: हाँ, मतलब वो फिर ऐसा सोचेंगे इसमें कुछ ना कुछ ये काम की है अपनी चीज। तो एक दिन फिर अब मेरे को दुनिया के बारे में मैंने खूब सोचा एक्सीडेंट के बाद में
0: जी,
1: क्योंकि अपने जिस आसपास में जितने लोगों से टच में है सबके बारे में सोचेंगे अपन कौन कैसा है
0: जी।
1: तब उनके बेटे की मतलब डॉक्टरी है उनका बेटा भी
0: जी।
1: उनके बहू आ गई, उनकी कोरोना हो गया है, कोरोना टाइम की बात है। अब मैंने सोचा कि यार ये औरत मतलब अपनी बहू की है, वो मतलब कोरोना हो गया तो वो सही हो गई मुझे ऐसा पता लगा, तो मैं यार ये आने दे सकती है क्या नीचे, मैं मन ही मन सोच रहा हूँ अब मतलब अपने साथ रख रही होगी क्या आंटी जी
0: जी।
1: अब मैंने तो सोच लिया। अब दूसरे दिन ही है ना वो बहू है ना छत से मतलब वैसे दूरी पे है थोड़ा सा 50-100 मीटर की दूरी पे, वो छत से है ना अपनी वो आंटी जी को बोल रही कि मम्मी अब तो मैं सही हो गई नीचे आ गए आ जाऊं क्या
0: शायद ये आवाजें नहीं सुनते आप जब आप देख सकते तो
1: हाँ पहले नहीं सुनता था तो फिर उन्होंने जवाब दिया आंटी ने नहीं नहीं नहीं वो देसी भाषा मारवाड़ी में बोला उन्होंने ना तू ऊपरी बड़ी रहे तो नीचे बारह और कोरोना लगा देगी हमारे भी कोरोना लगा देगी फालतू तो, जबकि वो है ना मतलब उससे है ना कोरोना सही हो गया उसका
0: जी, फिर
1: लेकिन वो मानसिक दिवालियापन है ना उनका, मतलब वो ऐसे मतलब अपन को पहले पता होता है कि कौन पर्सन कैसा है
0: जी।
1: तो जब मैं बाबा से टच में आया ना तो मुझे मतलब ये चीजें ऐसे पता लग जाती है हाँ, सिक्स सेंस से मतलब फिर है ना जवाब अपने आप मिल जाता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को, और मैं शेयर भी नहीं करता ज्यादा बातें।
0: सही बात,
1: क्योंकि किसी का देखो प्रभाव है ना कम भी नहीं करना चाहिए किसी के आगे, अपन क्यों बोल के कहें किसी के बारे में, हमें पता है तो पता है ठीक है, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, अपन को कोई मतलब भी नहीं है उस बात से।
0: सही बात है अभिषेक जी, आपने बहुत सारी बातें जो अपनी जीवन की हकीकतें हैं उन चीजों को समझना देखना गौर करना आपने ये सीखा समझा और कर भी रहे हैं। अंत में जाते जाते जैसे हमारी मन की आंखों से कार्यक्रम है उसका जीवंत आपने आपके जीवन के उदाहरणों से तो आपने बहुत सारी बातें कही है, अब अपने फ्यूचर को कैसे देखते हैं अभी?
1: देखो फ्यूचर तो मैंने अभी यही सोचा है कि मैंने प्रशासनिक सेवा को चूज भी इसीलिए किया है कि मैं ज्यादा से ज्यादा है ना सेवा भाव से मैं लोगों की सेवा कर सकूं, और कोई व्यक्ति अंतिम लाइन में खड़ा है और अंतिम पंक्ति में जहां मतलब अंतिम पायदान पे है ना वहां तक मैं पहुंच सकूं मेरी सेवा के माध्यम से, जो भी मुझे सरकार रेस्पॉन्सिबिलिटी देगी जिस भी विभाग में भेजेंगी मैं मेरा काम ईमानदारी से करूँगा, और जितनी भी सरकार की वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका फायदा मतलब लास्ट व्यक्ति तक कैसे पहुँचे वो पूरी तरह से कोशिश करूंगा उसको वहां तक पहुंचाने की, जिस वजह से उसको अधिक से अधिक लाभ मिल सके
0: जी। एक बात और है इसमें, जब भी हम दिव्यांगों की बातचीत करते हैं एक्सेसिबिलिटी एक्सेप्टेंस एंड सोशल इक्वालिटी इन चीजों की बहुत हम चैलेंजिंग देखते हैं, ये चीजें बहुत कम मिलते हैं दिव्यांगों के लिए। एक सोशल एक्सेप्टेंस कम मिलता है, एक्सेसिबिलिटी भी कम मिलती है, एक्सेप्टेंस भी कम मिलता है, और कई चीज़ें आपने खुद भी अपने जीवन से शेयर किया है। तो जैसे आप अभी कह रहे हैं कि मैं आर्यस बनूंगा तो मैं सेवा करूंगा,
1: नहीं, बन गया हूँ मैं, अब सेवा करूंगा, मेरे को विभाग अलॉट हो जाएगा तब।
0: हाँ
1: हाँ,
0: आप जैसे आर्य सभी बने हैं,
1: हाँ,
0: तो आप सेवा करने की जो आप सोच रहे हैं, एक होता है कि जब आप देख पा रहे थे दुनिया को अपने स्थूल नेत्रों से, उस समय हमको इतना अंदाजा नहीं होता है कि एक विजुअली इम्पेयर्ड की दुनिया क्या होती है, उनकी क्या जरूरतें हैं। अभी आप खुद वो जीवन जी रहे हैं, तो अभी आप क्या सोचते हैं कि आपके पास कोई ऐसी एजेंडा या क्राइटेरिया है कि सबसे पहले मैं इस वर्ग के लोगों के लिए ये चीज़ें करना चाहता हूँ?
1: देखो, फाइनली तो मैं अब जब ही बता पाऊँगा, जैसे मेरे को अभी मेरे रैंक के अकॉर्डिंग मुझे मिलेगा, जैसे जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर मिलेगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में
0: जी,
1: तो वहाँ पे हो सकता है, जैसे मतलब मंडी के अंदर शोषण होता है किसानों का, जो उनके अनाज पैदा होता है खेतों में, उनका उनको सही मूल्य नहीं मिल पाता अपनी फसल का। तो मैं चाहूँगा कि मतलब मैं ईमानदारी से प्रयास करूँ और उनको मतलब उनका सही उपज का जो सही मूल्य है वो मिले, उनका शोषण ना हो मंडियों के अंदर बनियों के द्वारा, उनको एक्चुअल की

0: देखिए, आपको जो भी डिपार्टमेंट मिले उसमें जो भी लूप होल से आप उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ दिव्यांगों के बारे में सोचें।
1: नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैं दिव्यांगों के बारे में सोचूं। मतलब वो तो है, ये तो मैंने देखो, अभी मैं जहाँ से आता हूँ सेंटर से जुड़ा हूँ, वहाँ की हमारी इंचार्ज, जो सेंटर इंचार्ज हैं सादलपुर की, शोभा दीदी हैं, तो मैंने उनको बोला है कि अगर डिसेबल हो चाहे नॉर्मल हो, अगर किसी को आवश्यकता है ना अपनी मदद की, तो मुझे वो कभी भी बता सकती हैं। अगर शिक्षा के क्षेत्र में मैं चाहता हूँ कि लोग शिक्षित, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो शिक्षित होंगे ना, तो अपने अधिकारों और अपने कर्तव्य के बारे में जागरूक होंगे, तो मैं वैसा समझता हूँ कि अगर वो शिक्षित होएं और उसके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है शिक्षा लेने में, चाहे वो मतलब उनको पैसों की हो, तो मैं बेझिझक उनकी हेल्प करूँगा, चाहे वो डिसेबल हो चाहे डिसेबल ना हो।
0: थैंक यू सो मच अभिषेक जी, बहुत ही आनंद आया और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे बातचीत करके। वाकई में मन की आंखों से ये कार्यक्रम जो है वो हमारी मन की आंखों से दुनिया को देखने की एक दिशा देती है। आप सभी के जीवन के अनुभव तमाम श्रोताओं की आंखें खोलती हैं और एक एक्सेप्टेंस कहे या फिर हमारी जो साथ में रहने वाले दिव्यांग साथी जो हमारे आसपास में रहते हैं उनके साथ हमें कैसे जीना है, उनको कैसे समझना है और उनको किस तरीके की मदद की आवश्यकता होती है, ये सारी बातें समझने को मिलता है। तो आप इतने खुल के सच्चाई के साथ अपनी जीवन की कहानी को हमारी श्रोताओं के साथ साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद, आपका शुक्रिया।
0: दोस्तों अभी हम यहीं पे विराम लेते हैं और अभी तक आप सुन रहे थे अभिषेक कुल्हारी जी को। आप मूलतः राजगढ़ से है लेकिन वर्तमान में आप जयपुर में रहते हैं। आपने RIS की परीक्षा को क्रैक किया है और बहुत जल्द वो नियुक्त होने वाले हैं अपने पद पर। तो ऐसे ही फिर मिलेंगे एक नए अनुभव के साथ, एक नए साथी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

सावन की मन भावन की बरसे बदरिया सावन की। सावन की बारिश हो या फुहारे मन को बहुत सुकून देती है, मन को आराम देता है। यह समय प्रकृति की सुंदरता, हरियाली और प्रेम भरे गीतों का प्रतीक माना जाता है। मानसून के बारिश के बाद अब बारी है सावन के रंग में रंगने की। अब सावन में भी बारिश होती है, घनघोर घटा छा जाती है, तो आज हम सब सावन के गीतों का मजा लेंगे। ताजगी से भरे गीतों में खुमारी है, नशा है। विदा लेकर फिर से मिलने की जो आस बनी रहती है आप सभी के साथ, वह हम फिर से पूरा करते हैं गीतों और बातों के जरिए। ठीक 7 दिन के बाद हाजिर हो जाती हूँ आपके लिए, आपकी खातिर, ओनली ऑन रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। मैं इस कार्यक्रम की होस्ट स्वर्णलता। कार्यक्रम का नाम है गुलदस्ता।

0: अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: अखियां बरसे जियरा तरसे बोल रे पपीहरा। रूना लैला जी की आवाज में हमने बोल रे पपीहरा का एक अलग जादुई वर्शन सुना, जो हमारे दिल में और हमारे मन में एक अलग ताजगी भर कर चला गया। फ्रेशनेस आ जाता है जब हम अलग अलग मूड के गीत सुनते हैं बारिश के, सावन के। रुत सावन की है तो अपनों की याद तो आएगी ही। बारिश कभी भी हो सकती है, ठंड में भी बारिश होती है, ठंडक या सर्दी को बढ़ा देती है ठंड की बारिश। सावन की बारिश तीव्र होती है और तीज त्योहारों का आगमन होता है। आपका प्यार व दुलार भी हम इन सावन की बूंदों में, सावन की बारिश में हम फील कर सकते हैं। इसलिए तो हम लेकर आते हैं आपके लिए अलग अलग मूड के गीत, अलग अलग प्यार भरे गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ बहुत पुराना हमारा रिश्ता है, मेरे ख्याल से 25 साल से भी ज़्यादा हो रहे होंगे, और बहुत अच्छा लगता है। इतने सिंपल लोग हैं, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। इतनी शांत प्रकृति के लोग हैं, इतनी दुनिया में शांतता हो सकती है ये उनको देख के महसूस होता है और अच्छा लगता है। उनकी सीख में सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर किस तरह शांति पैदा की जाए, इसलिए उनका लोगो भी है ओम शांति। जब भी किसी को मिलते तो ओम शांति बोलते हैं। और सबसे बड़ा दुनिया का वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और मैं फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ इस संस्था को।
1: नहीं आए गरजत बरसत सावन आयो रे। अब हमारे इस कार्यक्रम को जो सुनते हैं उनमें नए भी हैं तो पुराने भी हैं। पुराने श्रोताओं को मालूम है कि हम हर साल सावन पर नए नए फ्रेश गीत और कुछ पुराने गीत लेकर आते हैं, और इस साल भी नए लिसनर्स ऐड हुए होंगे, तो हमें यकीन है वो सावन के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं और सावन के गीतों को सुनकर प्रफुल्लित भी हो रहे हैं। धरती पर चारों तरफ पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं। हरे भरे पेड़ पौधों को देखने के लिए हमारा जियरा तरसता है। वैसे भारत में बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं इस मौसम में, क्योंकि इस मौसम में ऐसे कार्यक्रम को सुनने का मजा दुगना हो जाता है। मौसम में ठंडक है और

दिल में भी रौनक है। तो रेडियो में आप सब आ चुके होंगे, यानी ट्यून कर चुके होंगे। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपके लिए आ रहा है बहुत ही सुंदर गीत।

0: रुक, रुक, रुक, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
1: सर वो सर सर
0: ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ। ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो। ओए इतनी धूप है धूल है, वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो। तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
0: तो आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो है? पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं होलदार। कड़क, पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
2: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: बाग में पंछी बोल रहा है, मनवा मेरा डोल रहा है, क्योंकि है रुत सावन की। तो सावन के गीतों से भरे हैं आज के प्रोग्राम। प्रोग्राम का नाम है गुलदस्ता। तो आज हम गुलदस्ता कार्यक्रम में सावन के गीतों में रंग रहे हैं खुद को। हमें उम्मीद है आप सब इन गीतों को एंजॉय कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। सावन के गीतों में सुकून भी है तो विरह भी है। क्लासिकल म्यूजिक का असर है तो सॉफ्ट म्यूजिक के भी ट्यून्स हैं, नोट्स हैं। गजल, भजन, फिल्म म्यूजिक सभी को सावन ने मोह लिया है, कैद कर लिया है अपने जादू भरे प्रेम में। नेक्स्ट सॉन्ग फिल्म म्यूजिक पसंद करने वालों के लिए है बी विद अस इन गुलदस्ता, सुनते हुए मुस्कुराते हुए, जिसे हम कहते हैं कीप लिसनिंग कीप स्माइलिंग ओनली ऑन रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप ऐसे सुन सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ।

0: मैं हूं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी परमात्मा मठ प्रयागपीठ से आप सभी सुन रहे श्रोताओं को ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन से रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं ढेर सारा शुभ प्रेम ओम शांति।
1: सावन आया बादल छाए वर्ष 2026 में उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार पवित्र श्रावण मास 30 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक रहेगा, इसलिए हमने 28 अगस्त से पहले आपके लिए लेकर आए हैं सावन स्पेशल प्रोग्राम और स्पेशल गीत आपके लिए खास रेडियो मधुबन पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। वैसे सावन का यह पूरा महीना भगवान शिव की आराधना, रुद्राभिषेक और व्रत त्योहारों के लिए अत्यंत शुभ और समर्पित माना जाता है। वैसे भगवान शिव के लिए कहा जाता है कि वे पतित पावन हैं, यानी पतितों को पावन बनाने के लिए आते हैं, इसलिए उनकी जोर शोर से पूजा होती है, स्तुति भजन किए जाते हैं। सावन की बूंदें लोगों के दिलों में पुराने गीत और यादें ताजा कर देती हैं। तो इसका मिसाल हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक और क्लासिकल गीत हो जाए राग केदार पर। हम देखते हैं कि सावन की बूंदें आपको क्या कह रही हैं।

0: मैं हूं पंकज उदास और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो।
1: सावन की ऋतु में जब जोर जोर से बिजली कड़कती है तो एक घबराहट सी होती है, तो उसी का वर्णन राग केदार पर आधारित गीत जो जो बूंदन बरसे, और सावन पर इससे बेहतर गीत नहीं हो सकता है क्लासिकल अंदाज में। वैसे हम आपके लिए आने वाले समय में राग केदार पर बहुत सारे गीत लेकर आएंगे, तो उसके लिए आप इंतजार जरूर कीजिएगा। मॉनसून की बारिश राहत तो देती है पर साथ में क्या करती है, तूफान व आंधी भी लेकर आती है। लेकिन सावन की बारिश जो है इसमें बहुत ही तीव्रता होती है, तीव्रता से मेघ गरजते हैं, बिजली कड़कती है, काले बादल भी अति घिर घिर आते हैं। बारिश के कारण एक और इमोशनल चेंजेस और प्राकृतिक बदलाव दोनों देखे जा सकते हैं, और आध्यात्मिक दुनिया में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं इस दौरान। जैसे कि हमने आपसे शेयर किया कि भगवान शिव की पूजा और झूला झूलने की परंपरा है, सावन की बूंदों में वादे के मुताबिक पुराने गीत और पुराने जो भी रिदम है वो पसंद आते हैं। तो आइए ना दो गीत बैक टू बैक सुनते हैं हम और आप मिलकर कार्यक्रम गुलदस्ता में।

0: आप क्यों नहीं खेल रहे हो?
1: मुझे कोई अपने साथ खेलने नहीं देता।
0: चलो मेरे साथ, हम भी उन बच्चों के साथ खेलते हैं।
1: पर वो
0: बच्चों, क्या हम भी आपके साथ खेल सकते हैं?
2: पर आंटी, ये कैसे खेलेगा? ये तो चल नहीं सकता।
0: क्या आप भी अगर इस हाल में होते तो क्या आपका मन नहीं करता खेलने का? आरव का भी मन आपकी तरह है, ये भी खेलना चाहता है, दोस्त बनाना चाहता है, हंसना चाहता है।
3: चलो हम भी अब आरव को अपने साथ खिलाते हैं। चलो आरव, खेलते हैं मिलकर।
4: कहीं हम अपनी पिछड़ी सोच की वजह से बच्चों से उनके खेलने का अधिकार छीन तो नहीं रहे हैं? रेडियो मधुबन कहता है, खेलना हर बच्चे का अधिकार है।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
6: बैक टू बैक दो ओल्ड मेलोडी सुनकर ऐसा लगा ना जैसे कि हम सावन और बारिश के खूबसूरत पलों का आनंद ले रहे हैं। तो अब जाने का समय आ गया है। जाते जाते दो गीत बैक टू बैक आप सभी के लिए। ये दोनों ही गीत ओल्ड मेलोडीज हैं। बहुत सारे त्योहारों का आगमन होता है सावन की ऋतु में। वातावरण में त्योहार की फीलिंग आने लगती है। सावन तैयारियां भी लेकर आता है, बहुत तैयारियां करवाता है यह महीना। सावन रफ्तार को तीव्र करता है। सावन मेल मिलाप का संदेशा लाता है। तो आप सब खूब तैयारियां कीजिए, हम भी तैयारियां करें और आने वाले समय में हम सब मिलकर जो भी त्योहार आते हैं उसे भी मनाएंगे रेडियो मधुबन पर। साथ में एक साथ हाथों में हाथ लिए हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमारा सफर जारी रहेगा। तो आप सब अपना ख्याल रखिए और खुशी से इस मौसम में हर तैयारियों का स्वागत कीजिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नई दुनिया नया जमाना इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज नई दुनिया नया जमाना इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक नए विषय पर बात करेंगे। वैसे तो आप सभी सतत विकास के जो 17 गोल्स से लक्ष्य है उसके बारे में जानते ही हैं। रेडियो मधुबन लगातार प्रयास कर रहा है आप सभी के पास ये मैसेज और ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए कि हमारे पास यूनाइटेड नेशंस के कितने लक्ष्य हैं जो इस विश्व को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो उनमें से एक गोल है 3 नंबर, यानी कि SDG 3, जो इंश्योर करता है कि हेल्दी लाइफ होना चाहिए, हमारे हेल्थ और वेलबींग को ये प्रमोट करता है। वैसे एक और गोल है गोल नंबर 6, जो ये इंश्योर करता है कि हर व्यक्ति को, हर इंसान के पास जो वाटर है, जो पानी है, मूलभूत सुविधाएं, तो वो फ्रेश वाटर और सही पानी मिले और इसके साथ साथ सैनिटेशन भी अच्छा हो, हाइजीन भी अच्छा हो। तो क्लीन वाटर और सैनिटेशन के लिए गोल नंबर 6 भी उपलब्ध है। तो नई दुनिया बनाने के लिए, नया ज़माना लाने के लिए एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के साथ साथ लोगों की हेल्थ और स्वच्छ पानी भी ज़रूरी है और स्वच्छता भी ज़रूरी है। तो अनेक NGO है जो इस के लिए कार्यरत हैं निरंतर। तो हमारे आबू रोड में ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड, ये NGO यहाँ के हेल्थ एंड सैनिटेशन के लिए कार्य कर रहा है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें से हेल्थ को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता कितना ज़रूरी है ये समझाते हैं, खास करके जो बालिकाएं हैं उनको समझाते हैं, और स्कूल्स में जाकर, सरकारी स्कूल्स में जाकर भी उन्हें, वो लोगों को इसके बारे में जागृत करते हैं, स्कूल के बच्चियों को, बच्चों को भी। तो हमारे आबू, पिंडवाड़ा, सिरोही, शिवगंज और देवधर में ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड ये NGO कार्यरत हैं। और हमारे आबू रोड ब्लॉक में असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में खुशबू जी कार्यरत हैं, जो हमारे इस आबू रोड शहर से ही हैं। तो आज ये स्टूडियो में मौजूद हैं खुशबू जी। आइए खुशबू जी से बात करते हैं और ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड क्या कार्य करता है और कैसे हेल्थ एंड हाइजीन पर ये प्रोग्राम्स करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। खुशबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
1: मेरा नाम खुशबू है और मैं ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड इंस्टीट्यूट में काम करती हूँ, और हमारा काम बच्चों को स्वच्छता और हाइजीन इस सब संबंधित, हम 90s स्कूल में काम कर रहे हैं जिसमें हमारा आबू रोड और रेवदर ब्लॉक, आबू रोड की 90 स्कूल और रेवदर की 30 स्कूल्स में हम काम कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, जिसमें हम बच्चों को हाइजीन और हेल्थ रिलेटेड बच्चों के साथ सेशन लेते हैं, जिसमें बच्चों को बताते हैं कि स्वच्छता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने स्वच्छ मस्तिष्क के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए। तो हम इस पे स्कूलों में जाके बच्चों के साथ कार्य कर रहे हैं, तो उससे बच्चों में थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए, ताकि जो बच्चे MDM जो स्कूल में चलता है, तो हम चाहते हैं कि उसमें थोड़ा सा बदलाव आए, क्योंकि MDM मतलब बच्चे जो खाना खाते हैं ना,
2: मिड डे मील,
1: तो उसमें हम चाहते हैं कि बच्चे खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते हैं, तो हम चाहते हैं कि उस आदत को बदलने के लिए, कि बच्चे खाना खाने से पहले जो मिड डे मील लेते हैं वो खाना खाने से पहले हाथ धोने की आदत उनमें आ जाना चाहिए।
2: तो क्या स्कूल में व्यवस्था है नल वगैरह के, और
1: कहीं
2: है और वो है?
1: कहीं स्कूलों में व्यवस्थाएं नहीं हैं, कहीं स्कूलों में व्यवस्थाएं हैं भी हैं, लेकिन जहां व्यवस्थाएं नहीं हैं वहां पर हम टीचरों को बोलते हैं कि जहां व्यवस्थाएं नहीं है तो वहां पर हाथ धोने के लिए, जैसे वो बाल्टी भर के रखते हैं, लेकिन वो चीजें व्यवस्थाएं नहीं होते हुए भी फिर भी वो उन चीजों को करते हैं
2: आपके बोलने के
1: बाद में,
2: जागरूक
1: करने के बाद में। तो बच्चों में कहीं कहीं स्कूलों में कुछ बदलाव आया है, कहीं कहीं बच्चे जो बिल्कुल निचले स्तर से या आर्थिक स्थिति से कमजोर है, तो बच्चे उसी प्रकार से स्कूल में भी आते हैं, तो वो नहीं भी कर पाते हैं, है ना।
2: तो आपने रिसर्च किया है और आप यहाँ के स्कूलों को देख रहे हैं, तो सबसे पहले जब आप गए स्कूलों में, बच्चों को देखा, क्या हालत था आबू रोड में गवर्नमेंट स्कूल्स में?
1: गवर्नमेंट स्कूल में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बच्चे बिल्कुल बिल्कुल भी सफाई से नहीं आ रहे थे। और टीचर भी बोलते थे, मैडम हम रोज़ बोलते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं ना तो पेरेंट्स हमको आके बोलते हैं कि आप रोज़ रोज़ हमारे बच्चों को परेशान करते हो, कि नहाना है, ब्रश करके आना है। तो थोड़ा सा उनको भी फील ऐसा होता था कि हमारे बच्चों को क्यों बोल रही है टीचर। तो हम बोलते थे तो वो गाँव के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं था। लेकिन मैं जब वहाँ पर गई तब मैंने बच्चों को ऐसे नहीं बोला कि आप लोग हाथ धो के आओ, मुँह धो के आओ, आप लोग गंदे आते हो, ऐसे नहीं। बिल्कुल बच्चों को नॉर्मली वे में कि बच्चे अपन को ऐसा करने से ये फायदा होगा, ऐसे करने से ये होगा। तो आज की स्थिति ऐसी है कि जहाँ बच्चे बिल्कुल गंदे आते थे तो वहाँ पर उनकी स्थिति बेटर हुई है।
2: जी, मतलब बोलने की तरीका आपने
1: तरीका
2: बदला।
1: बदला मैंने। और स्कूल में भी ये फर्क पड़ता है कि जब एक टीचर खुद बोलता है ना तो वहाँ पर बच्चे नहीं सुनते, लेकिन जब कोई बाहर का आके उनको कोई चीजें बता के जाता है तो बहुत फर्क पड़ता है।
2: जी
1: तो
2: जी
1: बच्चों में ये बदलाव आया है।
2: अच्छा, खुशबू जी ये बताइए कि ममता फाउंडेशन और आप जैसे यहाँ पर कार्यरत हैं, तो बच्चों से ही शुरुआत क्यों कर रहे हैं?
1: हाइजीन बहुत ही सेंसिटिवली नीड है, तो उन्होंने देखते हुए कि सबसे ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, हाइजीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द पार्ट ऑफ लाइफ।
2: जी
1: तो वो उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ों को तो ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाइजीन अपने बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन
2: जी
1: छोटे बच्चे इन चीज़ों को नहीं समझते। तो उन्होंने स्कूलों में, आंगनवाड़ी में, कम्युनिटी में, वहां जाके रिसर्च किया, तो उनको लगा कि ये हाइजीन और हेल्थ के ऊपर हमको बच्चों के साथ काम करना
2: करना है।
1: चाहिए।
2: जी,
1: तो मोस्ट ऑफ उन्होंने प्राइमरी बच्चों को लिया है ताकि वो बच्चों के साथ काम कर सकें और बच्चों की ही नींव हम शुरू से ही पक्की कर सकें। क्योंकि
2: जी
1: अगर हमने ये आदतें बच्चों में अभी से फर्स्ट से फिफ्थ तक के बच्चों में कर दिया तो उनको आगे हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब
2: जी
1: नींव पक्की हो जाएगी तो आगे जाके घड़ा एकदम मजबूत हो जाएगा। नींव पक्की करना चाहते हैं ताकि बच्चों में शुरू तक फिर वही आदतें रहें, क्योंकि हमारा खुद का भी यही है कि एक छोटा जो मटका होता है बचपन में, कच्चा जो होता है, तो उसको हम कैसे ही ठोक के, उसको जैसे घड़ना चाहें तो उसको घड़ सकते हैं।
2: तो
1: लेकिन
2: आप
1: आज
2: संस्कार पक्का करा रहे हैं।
1: संस्कार पक्का करा रहे हैं कि बच्चों में ये आदतें आ जाएं हाइजीन की।
2: जी,
1: हाइजीन सुधरेगा तो हेल्थ अपने आप सुधर जाएगी,
2: हाइजीन सुधरेगा तो हेल्थ अपने आप
1: बेटर
2: सुधर
1: हो
2: जाएगी,
1: जाएगी,
2: बेटर
1: सुधर
2: हो
1: जाएगी,
2: जाएगी।
1: बेटर हो जाएगी।
2: जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज भी क्या चुनौतियां हैं आबू रोड के आसपास के गांवों में स्वास्थ्य को लेकर के, हाइजीन को लेकर के, जो आदिवासी बच्चों में आप देख रहे हैं?
1: बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सबसे मेन तो पानी नहीं है कहीं बच्चों के पास। कुछ आर्थिक रूप से मजबूर हैं, जैसे माँ बाप कमा रहे हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वो बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो बच्चे स्कूल, अपने बड़ा बच्चा जो होता है फिफ्थ क्लास का, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे को तैयार करके स्कूल लेके जाता है। तो फिफ्थ क्लास का बच्चा यानी कि मिनिमम
2: 10 साल के अंदर
1: दस
2: अंदर
1: साल के
2: होता
1: अंदर अंदर
2: है।
1: होता है, तो वो एक 5 साल के बच्चे को या 4 साल के बच्चे को अगर तैयार करके लेके जाएगा तो वो क्या ही कंडीशन में लेके जाएगा।
2: सही।
1: तो वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि अवेयरनेस कम्युनिटी में नहीं है, है ना। सबसे मेन तो प्रॉब्लम वहां आती है कि कम्युनिटी में वो चीजें नहीं है, और कम्युनिटी में भी उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे वो आर्थिक रूप से मजबूर हैं, तो वो सब चीजें मूलभूत उनकी आवश्यक पूरी ना होने की वजह से वो इन सब चीजों से वंचित रह जाते हैं।
2: जी, तो हेल्थ और सैनिटेशन की सुविधाएं उनके पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गांवों में लोग नहीं रहते, खेतों के पास
1: खेतों के
2: रहते हैं।
1: पास रहते
2: अगर
1: हैं,
2: इकट्ठा रहते तो इकट्ठे कुएं खोद सकते
1: खोद
2: हैं या
1: सकते हैं,
2: फिर
1: कुछ कर सकते हैं,
2: नल का कनेक्शन हो
1: ननक्ष का
2: सकता
1: कनेक्शन
2: है,
1: हो सकता है।
2: लेकिन ये चैलेंजेस है आज
1: चैलेंजेस
2: भी
1: पे आज भी
2: आबू रोड में है। जी, तो आपके जो हेल्थ एंड सैनिटेशन प्रोग्राम आबू रोड में कैसे शुरू हुई, इसके बारे में जानना चाहेंगे?
1: हेल्थ और हाइजीन वाला जो प्रोग्राम है ये ऑलमोस्ट पहले से ही 2022 या 23 में लगभग सिरोही डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हो गया था। तो वहां पर सिरोही और पिंडवाड़ा में 50-50 स्कूलें थी, तो वहां पर से ये शुरू हुआ। फिर अभी 2025 में आबू रोड ब्लॉक लिया गया जिसमें अपने 90 स्कूल हैं, तो इन स्कूलों में काम हो रहा है। और 2026 में रेवदर और शिवगंज ब्लॉक अभी नया लिया है।
2: जी, तो सबसे पहले जब आप जाते हैं तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं आप?
1: सबसे पहले हम स्कूल में जाते हैं तो प्रिंसिपल से बात करते हैं कि भाई हमें सेशन लेना है बच्चों के साथ, फर्स्ट टू फिफ्थ के साथ। तो हम सब बच्चों को इकट्ठा करते हैं हॉल में, तो जाते ही तो हम बोलते नहीं है कि आप स्वच्छ रहो, ऐसे करो ऐसे करो, कुछ बच्चों का वातावरण बनाना पड़ता है. तो वातावरण बनाने के लिए जैसे बच्चों से कविताएं करवाते हैं, तो बच्चे हाइजीन से हम रिलेटेड कविताएं करवाते हैं, है ना, बच्चे बोलते हैं, फिर हम उन कविताओं के माध्यम से बच्चों को पूछते हैं कि भाई आपने ब्रश किया, नाखून काटे, अच्छा ये सब चीजें क्यों जरूरी है. तो पिछले एक साल से तो मैं आवरण में काम कर रही हूँ, तो बच्चे अब थोड़ा थोड़ा सा जवाब देते भी हैं कि मैडम ब्रश ऐसे करना चाहिए, ब्रश यूं करना चाहिए, अच्छा क्यों जरूरी है. तो जो WHO का है हाथ धोने का तरीका 6 स्टेप, तो वो हम मोस्ट ऑफ बच्चों को सबसे ज्यादा वो जाके बताते हैं कि 6 स्टेप में हाथ धोना चाहिए. अब वो धोना क्यों जरूरी है, हमारे पास कुछ पपेट वीडियो भी हैं, एनिमेशन वीडियो भी हैं, तो वो वीडियो हम बच्चों को दिखाते हैं उनके साथ, और हमारे पास ICI मटेरियल है उसको हम लेते हैं उपयोग में, तो उसमें हम बच्चों को बताते हैं, और हमारे ग्लास एक्टिविटी होती है तो उसमें हम बच्चों को बताते हैं कि हाथ जब अपन साबुन से नहीं धोते हैं तो कितनी गंदगी उस पानी में आती है, और जब हाथ धो लेते हैं तब वो बिल्कुल साफ पानी हो जाता है. तो कुछ कुछ एक्टिविटीज हम उनको करके बताते हैं, डायरेक्ट भी जाके उनको नहीं बोलते कि आप गंदे आते हो, आप लोग हाथ नहीं धोते हो, आप मुंह नहीं धोते हो, तो बच्चे थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता है. तो हम उनको खेल खेल के माध्यम से भी ये सब चीजें बता देते हैं कि ये सब चीजें होनी चाहिए, तो बच्चे ये सब चीजें करते भी हैं और कई स्कूलों में इम्प्रूव आया भी है. जैसे पांडुरी स्कूल की मैं बात करूं तो वहां पर जब मैं गई थी, PS स्कूल है, तो वहां पर बच्चे बिल्कुल गंदे आते थे, बिल्कुल भी नहीं नहाना, ना मुंह धोना, बाल भी नहीं बनाना, क्योंकि थोड़ा सा कम्युनिटी का भी थोड़ा सा था. तो वहां पर टीचर ने भी कई प्रयास कर लिए थे, लेकिन वहां पर यूं था कि टीचर बोलती थी तो कम्युनिटी को भी बुरा लगता था कि मेरे ही बच्चे को या मुझे ही, हमारे को ही क्यों बोल रही है. लेकिन जब मैं वहां पर गई, मैंने सेशन लिया बच्चों के साथ, उनको मैंने डायरेक्ट भी नहीं बोला कि आप लोग गंदे आते हो, उनके साथ खेल खेले, कविताएं करी और उनके साथ एक्टिविटियां करी, तब जाके, अब जाके पूरे साल भर में, अब जाके उन बच्चों में सुधार आया है. तो अब बिल्कुल एक साल मेहनत लगी है. टीचर भी जब वो हम जाते थे तो वो बोलते थे मैडम आप थोड़ा बोलो तो ही ये कुछ करेंगे, मैं बोलूंगी तो ये मुझे बुरा समझते हैं कि ये हमें क्यों बोलती हैं. तो वहां पर अब जाके उन बच्चों में सुधार आया है, तो वहां के टीचर्स भी खुश हैं और बच्चे भी खुश हैं. अब वो नहा कर आते हैं, है ना, खुद से ही नहाते हैं वो, ब्रश करके आएंगे, है ना, बाल बना के आएंगे. अब उनको खुद को भी अच्छा नहीं लगता है कि हम स्कूल गंदे जाएं.
2: राइट, तो वो उनको पता होना चाहिए कि गंदे रहने से क्या फर्क,
1: पड़ता है
2: और स्वच्छ रहने से कितना फ्रेश अच्छा लगता है.
1: तो उनको मैं बताती भी हूँ कि देखो जब आप बिना नहाए दो स्कूल में आते हो तो एक तो आप बिल्कुल सुस्त सुस्त रहते हो, ना तो पढ़ाई में मन लगता है, ना ही आप खेल कूद कर पाते हो, एक आप नहा के आओ और फिर आप पढ़ने बैठो, तो वो बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि नहीं हाँ मैडम, तो वो करते भी हैं, दूसरे दिन नहा के आएंगे, फ्रेश होके आएंगे और बिल्कुल वही चीजें करते हैं. तो उनको फर्क पड़ा है, काफी फर्क पड़ा है. एक स्कूल है धामसरा फली गिरवर, तो वहां पर वो बच्चे बहुत एक्टिव थे, स्कूल स्टाफ बहुत एक्टिव था, पर वहां पर चैलेंज ये था कि वो स्कूल क्षतिग्रस्त हो गई. अब वो क्षतिग्रस्त होने के कारण उसको दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया. लेकिन वहां पर सबसे बड़ा फर्क ये आया कि जैसे जब वो स्कूल के जो बच्चे थे ना, जब दूसरे स्कूल में गए, तो उनकी आदतों को देख के दूसरे स्कूल के जो बच्चे थे उनमें काफी बहुत बड़ा फर्क आया. तो वहाँ वो स्कूल के टीचर बोलते हैं मैडम यहाँ जब ये बच्चे वहां से यहाँ है ना इस स्कूल में, तो इनको देख के इनकी आदतों में सुधार आ गया, यानी कि वहां मुझे जाना नहीं पड़ा.
2: बहुत बड़ी उपलब्धि है ये.
1: बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि हमने एक साल के अंदर अंदर ये इतना बड़ा चेंजिंग जो आया है बहुत ही बढ़िया है, कि यानी कि पूरे स्कूल के क्षतिग्रस्त जो स्कूल थी उसका दूसरे स्कूल में
2: शिफ्ट किया गया.
1: तो उन बच्चों को देख के दूसरे बच्चों में सुधार आया है,
2: मतलब बच्चों ने बच्चों को सिखा दिया.
1: वहां मेरी जरूरत नहीं पड़ी. तो वहां जब मैं स्कूल विजिट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास 90 स्कूल है तो पॉसिबल नहीं होता है कि मैं हर एक स्कूल में जा पाऊं, तो मेरा टर्न आता है तो वो 2 महीने से 2.5 महीने लगभग हो जाते हैं एक स्कूल में, क्योंकि मुझे पर डे स्कूल 2 करनी पड़ती है. तो दूसरे स्कूल का जब टर्न आता है तो वो 25 से 30 दिन पूरे हो जाते हैं या 30 से 35 भी हो जाते हैं, क्योंकि कई संडे भी आ जाते हैं, छुट्टियां भी हो जाती हैं, तो 2-2.5 महीने मुझे लगभग दूसरे स्कूल में पहुंचने में, दूसरा टर्न विजिट होने में बहुत टाइम हो जाता है। तो वहां जब मैं गई तो उन्होंने मुझे ये बोला, बोले मैडम आप नहीं आए, लेकिन हमारे को ये फायदा हुआ है कि ये जो बच्चे आए ना, इनको देख के हमारे बच्चे सुधर गए, इनको देख के हाथ धोना सीख गए,
2: यही सफलता है,
1: ये सफलता है। तो ये बहुत बड़ा हमने चेंजिंग आया है
2: जी। आपको पर्सनली क्या बेनिफिट हुआ है जब आप बच्चों के साथ बात करते हैं, वो आदत सीख जाते हैं, खुशी तो होती है,
1: खुशी होती,
2: लेकिन और क्या महसूस करते हैं आप?
1: मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जो हमने टारगेट लिया या जो मैंने मेहनत करी वो आज मेरी मेहनत सफल हो रही है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि बच्चे बिल्कुल वाकई में स्वस्थ रहें, है ना। जो ठीक है सरकार जो काम कर रही है वो ठीक है करने दो, लेकिन बच्चों में वाकई में ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि आज मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी तो अपने बच्चे को ये सब चीजें सिखाती हूँ ना,
2: राइट,
1: कि नहीं हाथ धोने चाहिए या जो भी अच्छी आदत है वो आनी चाहिए। तो क्यों ना हम उन बच्चों के लिए काम करें जो बिल्कुल उस स्तर से उठकर आते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं तो, मेरा तो खुद का यही रहता है कि मैं जहां जाऊं ना अपना कॉन्सेप्ट पूरा करूं और कुछ ना कुछ बच्चों को सिखा के आऊं
2: जी,
1: और उनमें कुछ ना कुछ बदलाव आए
2: आए हैं।
1: 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन ठीक है 100 में से 20 भी आ गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है
2: जी, बिल्कुल।
1: 50 भी नहीं कहती
2: कर रहे हैं आप, और सफलताएं भी आपके सामने हैं,
1: सफलताएं और मेरे सामने हैं, और टीचर्स का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, यहाँ के अपने CBO हैं, टीचर्स स्टाफ है, PO हैं, बहुत अच्छा स्टाफ रहता है। वो खुद बोलते हैं कि मैडम आप बच्चों के साथ तो करते ही हो, लेकिन जो हमारे जो मिड डे मील का जो खाना बनाते हैं ना, उनको भी आप ये चीजें बता दो तो और भी ज्यादा बेस्ट है।
2: सही बात,
1: क्योंकि साफ सफाई का पार्ट तो सबके लिए है,
2: राइट। तो यहाँ के जो समुदाय है, महिलाएं हैं, तो क्या गलत धारणाएं आप देख रहे हैं, जो स्वच्छ नहीं रहते हैं वो लोग, क्या अवधारणाएं हैं उनके अंदर?
1: उनकी अवधारणाएं ये है कि उनको लगता है कि कुछ नहीं होता है, बीमारी जैसा कुछ है नहीं, ठीक है हमारे बच्चे गंदे भी रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हालांकि माएं उनको इतना ज्यादा रखती भी नहीं है। गलत धारणाएं तो है उनकी कि क्या ही सफाई, सफाई से, सफाई से कुछ नहीं होता है, हम जैसा रह रहे हैं, हमारा जो कल्चर हम पहले भी तो रहते थे, तो ये आज हमको क्यों आके हाथ धुलवा रहे हैं
2: जी,
1: वो उनकी धारणा है,
2: जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि पोल्यूशन, ये
1: पोल्यूशन है, ये सब चीजें हैं कि हाँ वाकई में मेरा बच्चा गंदगी की वजह से बीमार होता है। वो थोड़ा उनका अंधविश्वास भी रहता है कि नहीं पता नहीं क्या ही कुछ हो गया है मेरे बच्चे को, तो वो डॉक्टर के पास ना ले जाके पता नहीं वो कहीं ले जाते हैं बच्चों को,
2: भोपा भोपी के पास,
1: हाँ वो सबसे ज्यादा वो करते हैं। तो वो चैलेंजिंग है, कम्युनिटी के साथ है, लेकिन

0: जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो खुद में बदलाव लाते हैं।
1: जी, बिल्कुल। उनके पेरेंट्स के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है जो बच्चों के लिए आप काम करते हैं तो?
0: बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना स्कूल में, भले ही उनके साथ चाहे मारपीट हुई हो चाहे अच्छी बात हुई हो, वो जाके घर पे पेरेंट्स को बताते ही हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: कुछ भी घटित होता है ना उनके साथ, तो वो घर पे जाके पेरेंट्स को बताते ही हैं कि आज हमारे स्कूल में ये मैडम आई थी, उन्होंने हमें ये
1: ये
0: बताया
1: बताया
0: था, ये
1: जी।
0: बताया था, ये करवाया था। तो वो बहुत फर्क पड़ता है। तो कई कई पेरेंट्स जागरूक भी हुए हैं, कि ऐसा नहीं है कि मैं सबके लिए नहीं कह सकती कि नहीं वो जागरूक नहीं है, लेकिन हाँ कुछ पेरेंट्स, कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर वाकई में अवेयरनेस को लेके बहुत अच्छी चीजें हुई हैं। आज भी जैसे कई गांवों में ऐसा था कि बच्चों को साफ सफाई से नहीं रखते थे, है ना, जहां बैठते वहां उनकी आदत थी कि थूकना है, गंदगी करनी है ना, ये सब चीजें थी। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग आया है, वो बच्चों को लेके थोड़ा सा अवेयर हुए हैं कि हाँ हमें बच्चों को सफाई से रखना है ताकि ये बीमार ना हो। तो
1: राइट
0: नहलाने की आदत है उनको, सफाई से रखने की आदत है, तो वो हुई है, वो तो
1: जी
0: मैंने भी देखी है।
1: जी बिल्कुल। और एक सवाल ये है कि लोग सोचते हैं कि शौचालय और साफ पानी उपलब्ध करा देना ही पर्याप्त है स्वच्छता के लिए, या लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना जरूरी है, आप बताइए।
0: लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ठीक है गवर्नमेंट ने बनाए हैं शौचालय, लेकिन आज उन शौचालयों का कहीं प्रयोग नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि शौचालय में हम प्रयोग करेंगे तो हमारे पास गंदगी आएगी, तो वो खुले का प्रयोग करते हैं,
1: उल्टा
0: खुला
1: सोचते
0: उल्टा
1: हैं
0: सोचते हैं वो कि ये पता नहीं गवर्नमेंट ने, वो आज शायद गवर्नमेंट ने बना के भी दिए हैं शौचालय,
1: जी।
0: तो मैंने कई जगह कई गांवों में देखे हैं वो उसका उपयोग ना करके उसमें उन्होंने भूसा भर दिया है,
1: भूसा कहीं भेड़
0: कहीं
1: बकरी भी रख
0: भेड़
1: देते
0: बकरी
1: हैं।
0: बंधे हुए हैं, कहीं वो है। तो उनकी मानसिकता ये है कि ठीक है कि ये तो खाद बन जाती है, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि कितनी गंदगी फैलती है,
1: पानी में मिल जाता
0: पानी में
1: है,
0: मिल जाता
1: ग्राउंड
0: है,
1: वाटर
0: ग्राउंड
1: में भी।
0: वाटर हो जाता है, तो वो थोड़ी सी उनकी मानसिकता है। लेकिन हम शौचालय बना के देना ये सॉल्यूशन नहीं है, उनको अवेयरनेस की सबसे ज्यादा जरूरत है, बदलाव की ज्यादा जरूरत है,
1: उसको यूज
0: जागरूकता,
1: कैसे
0: यूज कैसे करना
1: करना।
0: है, ये सब चीजें। लेकिन जैसे हम कम्युनिटी में जाते हैं ना, तो खुले का शौच का भी उनको प्रयोग का जो ये करते हैं उनके बारे में भी हम उनको बताते हैं कि आप जो खुले में शौच करते हैं ना, वो बहुत सबसे ज्यादा घातक बीमारियों का वो
1: कारण
0: है,
1: है।
0: कारण है, कि आप जब खुले में शौच करते हैं तो वो हम उनको उदाहरण देते हैं, मक्खी का देते हैं और किसी भी चीज का देते हैं, कि आप जब ये करते हैं ना तो वो आपके खाने पर आके बैठती हैं, आपके पानी पे जाके बैठती है, तो वो अपने साथ बहुत सारी गंदगियां लेके आपके खाने पे बैठती हैं।
1: सही बात है।
0: तो हम उनको बताते भी हैं कि अगर आप भले खुले में शौच करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको मिट्टी से ढक दो ताकि वो दूसरी जगह गंदगी ना फैला सके। लेकिन उनके मन में तो जो होता है वो वही करते हैं।
1: जी, धीरे धीरे बदलाव
0: धीरे धीरे
1: आएगा।
0: बदलाव कम्युनिटी में, धीरे धीरे बदलाव आएगा, थोड़ा समय और लगेगा अवेयरनेस को लेकर, लेकिन जहां पर लोग जो पढ़े लिखे जो अभी की जनरेशन है वो इस चीज को समझती है, जो
1: जी,
0: पुराने लोग हैं वो नहीं समझते, लेकिन जो अभी की जनरेशन है जो
1: अभी स्कूल में है या
0: स्कूल
1: स्कूल कर
0: में
1: चुके
0: स्कूल कर
1: हैं।
0: चुके हैं, क्योंकि वो उन चीजों को समझते हैं, लड़कियां हैं लड़के हैं, तो खुले में शौच तो नहीं करती
1: क्योंकि
0: हैं,
1: आजकल इंटरनेट पे देखते
0: इंटरनेट ज्यादा
1: हैं
0: देखते हैं,
1: तो देखते हैं
0: तो
1: लोग
0: देखते
1: कैसे
0: हैं
1: रह
0: कैसे
1: रहे
0: रह
1: हैं।
0: रहे हैं, तो वो थोड़ा सा फर्क तो है। अभी इतना खुले में शौच है, लेकिन वो जो बिल्कुल मानसिकता उनके पुराने लोग हैं वो लोग करते हैं, लेकिन अभी की जनरेशन तो नहीं करती है। पहले लड़कियां खुले में नहाती थी, आजकल लड़कियां खुले में नहीं नहाती हैं,
1: उनको पता है कि
0: पता है
1: कितना
0: कि
1: दुरुपयोग हो
0: कितना हो
1: सकता
0: सकता
1: है अगर हम
0: है।
1: खुले
0: सोशल
1: में
0: मीडिया का उनको डर रह गया है कि नहीं अगर कहीं हम खुले में नहा लेंगे, नहीं तो पहले जब मैं फील्ड में काम करती थी तब मैं देखती थी हेडपंप पे लड़कियां औरतें ऐसे ही नहा रही होती हैं, तो
1: जी।
0: आजकल अब वो चीजें नहीं है,
1: अब वो वॉशरूम वगैरह
0: अब
1: कर
0: वो
1: चुके
0: वॉशरूम का,
1: हैं।
0: हाँ वो भले ही चार ऐसे साड़ियों का या जैसे भी तिरपाल का बना लेते हैं और उसी में नहाते हैं, और शौच का भी वो प्रयोग
1: जी,
0: करते
1: अभी
0: हैं।
1: अवेयरनेस धीरे धीरे
0: धीरे
1: आ रहा
0: धीरे
1: है।
0: आ रहा है, 100% तो नहीं कहेंगे, 50 भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 35 तो कह ही सकते हैं कि इतना तो है ही। बिल्कुल
1: जी। तो क्या आप बच्चों को वेस्ट मैनेजमेंट भी सिखाते हैं हेल्थ एंड हाइजीन के साथ साथ?
0: हाइजीन के साथ साथ उनको सिखाते हैं कि जैसे अपने जो कचरा होता है उसको आप यूज में भी ले सकते हो, आप जैसे मान लो कई चीजें वो डब्बे वगैरह हैं तो वो फेंक देते हैं कर देते हैं, तो उसको हम वहां जाके कूड़ेदान बना देते हैं उसका जाके, कि
1: जी
0: आप इसको फेंको मत,
1: हाँ
0: इसको आप यूज में लो,
1: जी
0: है ना, या आप कचरा भी फेंकते हो तो उसको भी यूज में लो। आर्ट जो होता है ना अपना कोलाज,
1: जी
0: वो हम कोलाज करवा देते हैं उनसे काम, कि आप इसको फेंको मत, कोई भी चित्र बनाओ और इसको कोलाज की तरह इसका उपयोग कर लो,
1: जी
0: तो वो बच्चे करते हैं। और कुछ डब्बे हुए तो उनका हम कूड़ेदान बनवा देते हैं, या कुछ उनसे ही कुछ क्रिएटिव करवा लेते हैं, तो वो करते हैं। वेस्टेज का तो हम बताते हैं,
1: वेस्टेज का आप उनको
0: बिल्कुल।
1: बताते हैं। तो यानी कि आप सिर्फ SDG 3 और 6 के साथ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सस्टेनेबल सिटीज या कम्युनिटीज,
0: बिल्कुल,
1: रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन कैसे होगा,
0: कैसे
1: उसका
0: होगा,
1: प्रोडक्शन, ये हेल्थ एंड सैनिटेशन के साथ भी जुड़ जाता है,
0: जुड़
1: यानी कि
0: जाता
1: SDG
0: है।
1: 11 और 12 पे भी आप कार्यरत हैं। तो आपके काम के दौरान जैसे आप कहानी बता रहे थे, तो ऐसी कौन सी कहानी है जो सबसे आपके हृदय के करीब हो, जो आपको इसके रिजल्ट सुन के जान के अच्छा लगा हो?
0: आवली फली एक स्कूल है, मैं मेरी नजरों में वो सबसे बेस्ट है
1: जी
0: आवली फली। वहाँ के टीचर्स एंड बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, वहाँ के स्टाफ इतना बढ़िया काम करते हैं, बहुत अच्छा। मेरे लिए तो वो बेस्ट है, और बहुत, यानी कि उनको, यानी कि कई स्कूलों में ऐसे बोलने का तरीका बच्चों का, लेकिन वहाँ के बच्चों का बोलने का तरीका, वहाँ पर बच्चे ऐसे बोलते हैं मैडम जी,
1: जी अच्छा ओके, रिस्पेक्टफुल बात करते
0: रिस्पेक्टफुल
1: हैं।
0: बात करते हैं। आप कोई भी हो, अनदर पर्सन या टीचर हो, कोई भी हो, तो वो रिस्पेक्टफुल बात करेंगे, मैडम जी हमने ये किया, मैडम जी हमने वो किया। मैं वहां जाती हूँ तो मुझे वो आने नहीं देते हैं,
1: जी प्यार करते हैं बहुत।
0: बिल्कुल बहुत प्यार करते हैं कि मैडम जी आप जाओगे नहीं, आप यहीं रहोगे, आप 1 बजे तक यहीं रहोगे, आप हमारे साथ ये एक्टिविटी करोगे, आप ये एक्टिविटी करोगे। वो पहले से तैयार रहते हैं कि मैडम आप क्या करवाने वाले हो हमसे,
1: बहुत उत्सुकता से
0: इस
1: इंतजार करते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: उत्सुकता से इंतजार करते हैं कि आज मैडम आई है तो क्या करवाएंगी।
1: जी
0: शायद मुझे लगता है मेरा तो टैग भी चेंज हो गया है, मेरा नाम खुशबू है, लेकिन मुझे बोलते हैं हाथ धुलाने वाली मैडम आ गई।
1: हाथ धुलाने वाले मैडम जी, लेकिन कोई फर्क नहीं
0: कोई
1: पड़ता
0: फर्क
1: है,
0: नहीं
1: अच्छा
0: पड़ता है,
1: लगता होगा
0: अच्छा
1: उनको।
0: लगता है कि चलो ठीक है, कुछ तो मेरे लिए, कुछ तो टैग मिला है कि हाँ कुछ तो करती हूँ ना जाके। टीचर्स भी देख के खुश हो जाते हैं, और बच्चे मुझे, मैं अंदर एंटर स्कूल में होती हूँ, मुझे दूर से पहचान जाते हैं,
1: कि
0: चाहे
1: मैडम
0: मैंने
1: आ गई
0: चेहरा
1: हैं,
0: बांधा हुआ होता है, चाहे कुछ भी होता है, दूर से पहचान जाते हैं, हमारी खुशी दीदी आ गई है,
1: खुशी दीदी बुलाते
0: खुशी
1: हैं।
0: दीदी बुलाते हैं, हमारी खुशी दीदी आ गई है, हमारी हाथ धुलाने वाली मैडम आ गई है, अब तो कुछ नया करवा के ही जाएंगी।
1: जी
0: तो वो बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो कहीं ना कहीं ठीक है, अपन काम कर रहे हैं, काम करके दे रही हूं, वो बात अलग है, लेकिन जो मन को
1: सुकून और
0: सुकून
1: शांति,
0: शांति जो देती है ना, वो वहीं जाके बच्चों की चेहरे की खुशी।
1: खुशी जी, आपके नाम भी सार्थक हो जाते
0: हाँ बिल्कुल,
1: हैं।
0: मेरा नाम सार्थक हो जाता है, टीचर्स भी बोलते हैं मैडम आपको देख के बच्चे ऐसे खुश हो जाते हैं, आपके जो नाम है ना वो आप खुशबू फैला जाती है बोले
1: सही
0: स्कूल
1: बात है,
0: आके,
1: सही बात है, सही बात
0: ऐसा
1: है,
0: है। तो वो
1: बिल्कुल
0: मुझे
1: सही।
0: भी बहुत खुशी मिलती है कि ठीक है, जो मैं काम कर रही हूँ, कम से कम कुछ तो उसका परिणाम मुझे मिल रहा है, या कुछ तो बच्चों में मुझे देखने को मिल रहा है।
1: जी जो यूथ सुन रहे हैं आपको इस वक्त, जो चाहते हैं कि हमारे आबू रोड में बदलाव हो, स्वच्छ हो, और स्कूल्स में खास करके हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान रखा जाए, तो वो कैसे जुड़े आपके साथ?
0: मैं तो यही कहूंगी, अगर जुड़ना ही है तो अपने आसपास के बच्चे हैं, आसपास की कम्युनिटी है, तो उनको थोड़ा सा अवेयरनेस के प्रति जागरूक करो, क्योंकि कोविड जब आया था ना तो हमने स्वच्छता का ही ध्यान रखा था, है ना, कोविड आया था तो हमने स्वच्छता का ही ध्यान रखा था कि हम कैसे हाथ धो रहे हैं, बार बार हमने हाथ धोए थे ताकि अपन को कोविड ना हो। तो मैं चाहती हूँ वो महामारी फिर से ना आए, वो पूरी स्वच्छता के ऊपर ही थी कि बार बार हाथ धोना है, सब्जियों को ला रहे हैं तो हाथ धोना है, फल फ्रूट खा रहे हैं तो हाथ धोने, फल फ्रूट धोने हैं, सब्जियां धोनी है, एटलीस्ट कई ने तो साबुन से फल फ्रूट धोए थे, सर्फ से फल फ्रूट धोए थे। तो मैं चाहती हूँ वो महामारी फिर से ना आए, क्योंकि स्वच्छता अपनी लाइफ का बहुत बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है, और पार्ट भी है। अगर हम अपने खुद की स्वच्छता है, अपने आसपास की स्वच्छता रखेंगे तो हम खुद ही स्वस्थ हो जाएंगे।
1: बिल्कुल
0: तो मैं तो
1: बिल्कुल
0: यही कहना चाहूंगी यूथ को, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें
1: राइट,
0: ताकि हम स्वस्थ रहें,
1: स्वस्थ रहे।
0: स्वस्थ
1: तो आम
0: रहेंगे।
1: नागरिक को भी यही आप बताना चाहेंगे, क्या 3 स्टेप हम अपना सकते हैं अपने आसपास को स्वच्छ रखने के लिए?
0: स्वच्छ रखने के लिए 3 स्टेप यही है कि हम अपने आसपास गंदगी एक तो जमा ना होने दें, है ना, और बच्चों में आदतें डाल दें कि वो कहीं से भी बाहर से आए, चाहे कुछ भी खाएं, तो वो हाथों को जरूर धोएं, और डेली बेसिस पे नहाना और ये सब तो होता ही है, और अपने आसपास गंदगी ना होने दें,
1: जी, ये 3 बातों का
0: तीन
1: ये
0: बातों का बिल्कुल ध्यान
1: ध्यान रख
0: रखें।
1: सकते हैं हम। अभी वक्त हो गया यहाँ से अलविदा कहने का, तो आप जाते जाते क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश
1: स्वस्थ
0: रहें
1: रहे, मस्त रहे और
0: खुश
1: खुशबू जी के तरह खुश
0: खुश
1: रहे।
0: रहे
1: और जितना सहयोग आप कर सकते हैं हमारे कम्युनिटी के लिए, हमारे आसपास के जो बच्चे रह रहे हैं, आम नागरिक रह रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: एंड बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि आगे भी हम आपके साथ जुड़ करके
0: बिल्कुल
1: कार्य करेंगे और नई दुनिया नया जमाना लाने की कोशिश करेंगे, और जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसे हम हमारे रेडियो के माध्यम से श्रोताओं तक तो पहुंचाने
0: बिल्कुल
1: की प्रयास करेंगे। धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो यहीं पर रुकना चाहेंगे नई दुनिया नया जमाना इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आपने खुशबू जी को सुना, आपको कैसा लगा आज का कार्यक्रम? आप हमें बता सकते हैं 9414-1415 पर। ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड, इस संस्था से जुड़ करके आबू रोड के आसपास खुशबू फैला रहे हो, यानी कि स्वच्छता को कैसे हम बरकरार रखें और हेल्थ और सैनिटेशन के ऊपर ध्यान दें, उस बात के लिए वो प्रयास कर रहे हैं एकदम ग्राउंड जीरो लेवल पर। तो नई दुनिया के हमारे श्रोताओं के लिए आपने जो संदेश दिया, बिल्कुल इस पर हम गौर करेंगे और बदलाव की शुरुआत हम अपने आप से करेंगे। यहीं पर रुकते हैं। नमस्कार।

0: उंगलियों के बीच में सफाई थोड़ी कर लो,
1: उंगलियों के बीच सफाई थोड़ी कर लो,
0: उंगलियों के बीच में सफाई थोड़ी कर लो,
1: उंगलियों के बीच में सफाई थोड़ी कर लो,
0: अंगूठे को गोल गोल के गोल गोल के धो लो,
1: अंगूठे को गोल गोल के गोल गोल के धो लो,
0: नाखूनों को अच्छे से सफाई थोड़ी कर लो,
1: नाखूनों को अच्छे से सफाई थोड़ी कर लो,
0: हाथ के पीछे से गंदगी

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। मैं हूँ आरजे शुभा। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे पर्यावरण प्रहरी उपस्थित हैं जिन्होंने केवल बातें नहीं की बल्कि अपने कार्यों से ये साबित किया कि यदि संकल्प मजबूत हो तो प्लास्टिक का कचरा भी समाज के लिए उपयोगी संसाधन बन सकता है। जी हाँ, कार्यक्रम है नई दुनिया नया जमाना। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पर्यावरण प्रेमियों के साथ बात करते हैं, इस प्रकृति को बचाने के लिए जो कार्यकर्ता कार्य करते हैं, उस धरती माता के सपूत बच्चों से हम बात करते हैं। तो हमारे आज के विशेष अतिथि हैं पर्यावरण प्रेमी संरक्षण समिति के संस्थापक श्री अनिल कुशवाहा जी, जो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा से हैं। लगभग 40 साथियों की टीम, जिसमें महिलाएं भी सक्रिय रूप से जुड़ी हैं और साथ मिलकर के पॉलीथिन मुक्त अभियान, इको ब्रिक्स निर्माण, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और वेस्ट बैंक और बर्तन बैंक जैसी अनूठी पहले चला रही हैं। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि इको ब्रिक्स से बनाया गया आई लव ब्यावरा इस सेल्फी पॉइंट को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस कार्य के लिए सराहा भी। तो आइए बिना देर के स्वागत करते हैं श्री अनिल कुशवाहा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में।
2: जी मैडम,
1: थैंक यू सर। और सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे सर, पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
2: जी मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। तो हमारे संघ में पंच परिवर्तन को लेके पूरे देश भर में काम चल रहा है, जिसमें एक पर्यावरण को लेके भी हम काम करने वाले थे पूरे देश भर के अंदर। तो उसमें पॉलीथिन को लेके एक विशेष करके एक अभियान पूरे देश भर में चल रहा है कि प्लास्टिक और पॉलीथिन का कम से कम उपयोग हो, इस दिशा में काम करना था
1: जी।
2: तो इसकी प्रेरणा संघ से मिली।
1: जैसे आपको तो प्रेरणा मिली संघ से, तो ये समिति बनाने की सोच आइडिया कहाँ से आया?
2: अब पर्यावरण को लेकर देश भर में विभिन्न जगह पे लोग अपने स्तर पे पेड़ लगाने का, जल संरक्षण का काम करते हैं, प्लास्टिक पॉलिथिन मुक्त को लेकर भी कई जगह लोग काम करते हैं। लेकिन मैंने विचार करा, अगर इस काम को मैं अकेला अगर अपने अगर इस काम को करूंगा तो हो सकता है लोग मेरा सहयोग करें ना करें ऐसा। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना एक टीम बना के ये काम करा जाए, क्योंकि जब तक किसी काम को बड़ा काम करने के लिए ज्यादा लोग नहीं रहते तो दिक्कतें आती है, काम करने में कठिनाइयां होती हैं। तो मैंने कुछ लोगों को से बातचीत करके एक ऐसी योजना बनाई कि यार अपन एक पर्यावरण संरक्षण समिति करके एक टीम का निर्माण करते हैं जो अपन पॉलिथिन मुक्त की दिशा में काम करेंगे। तो लोगों का रुझान भी मिला, सहयोग भी मिला, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए तो ये बहुत अच्छा लगा।
1: जी जी जी, बहुत खूब। तो जब आपने लोगों को अप्रोच किया, जोड़ने के लिए कोशिश किया या उनको आपने कन्विंस करने की कोशिश किया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे विचार है, तो क्या ये सहज सफर था या फिर थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा?
2: जानते हैं कि कोई से भी काम सहज नहीं होता, जब तक उसकी सफलता आपको नहीं मिल जाती तो कठिनाइयां तो आती हैं। कई टीम के जो मेरे मेंबर थे उनको भी एक समय ऐसा लगा कि क्या काम है पॉलिथिन बीनना, इको ब्रिक्स बनाना और अपने करने से क्या होगा। फिर कई प्रकार के कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। फिर लोग मेरे को, मेरी टीम के कुछ मेंबर थे, तो जब मैं शाम को जाता था रात को, क्या चलो आज अपन को पॉलिथिन इकट्ठा करके इको ब्रिक्स बनाएंगे, तो मुझे देख के वो भग जाते थे वहां से। तो इधर उधर कान पे फोन लगा के और वो क्योंकि भैया मैं आ रहा हूँ भोजन करके, आज खाना खा के नहीं आया मैं, तो मैं आता हूँ फिर। पर मैंने अपने अपना मनोबल को बढ़ाए रखा, उसको तोड़ा नहीं। फिर जब सफलता मिलते रहे, लोगों का सहयोग मिलता रहा, तो उनको भी लगा कि नहीं यार भैया जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम है, हम सबको सहयोग करना चाहिए। फिर धीरे धीरे जो लोग इधर उधर चले जाते थे उनकी भी रुचि बढ़ती गई और फिर वो भी एक बढ़िया सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका में इस समिति में योगदान देने लगे।
1: जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने चैलेंजेस फेस किया कि पहले पहले लोगों को लग रहा होगा कि ये एक ऐसा काम है जैसे आपने कहा, और फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जब सफलता मिली तो लोग फिर जुड़ते गए। तो आपने एक इको ब्रिक्स की बात की यहाँ पे, तो इको ब्रिक्स तो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन इको ब्रिक्स एक्चुअली क्या होता है, आप कैसे करते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया जो है हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में बताइए।
2: ये बहुत एक सरल और एक सिंपल कार है, ये हम घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं आजकल जितना भी पैकेजिंग जो सामान है, किराने का अन्य उपयोगी सामान, वो सारा सारा पॉलिथीन के अंदर आता है। अब वो आता है तो अपन उनको यूज करके बाहर फेंक देते हैं, तो आप बढ़िया उनको इकट्ठा कीजिए अपने घर पे। पानी की बोतलें गर्मी में सब जगह आती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, माजा वगैरह की, ये सब सारी चीजें बॉटल गर्मी में आती है घर पे, तो बढ़िया उसको पॉलिथीन को इकट्ठा करके और जो खाली बोतलें हैं उनके अंदर उन पॉलिथीन को ठूस ठूस के उनको दबा दबा के भरते जाए। जैसे एक पॉलिथीन दबाई उसको बढ़िया, एक लकड़ी ली और उसको दबा दबा के उसको भरा अपन ने, तो बढ़िया वो कम से कम 250 से 300 ग्राम उसका वजन हो जाता है एक बोतलों का। तो ऐसा काम अपन घर पे भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 4 लोगों को मिलके काम करना है अपने को, अपन घर पे भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं।
1: जी, तो ये इको ब्रिक्स मतलब पॉलीथिन से भरा हुआ ईंट कह सकते हैं आप इसको।
2: हाँ, ईट कह सकते हैं, प्लास्टिक के ईट का निर्माण हो जाता है।
1: जी, और ये जैसे बॉटल्स हम यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के, इसके पानी के बॉटल्स, तो उसके अंदर पॉलीथिन भरना होता है। कौन से पॉलीथिन,
2: हाँ,
1: रैपर
2: सिंगल
1: कि किस प्रकार के
2: यूज
1: पॉलीथिन?
2: पॉलिथीन, सिंगल यूज जो पॉलिथीन है जो किराने के माध्यम से आती है, सब्जियों के माध्यम से जो अपन बाजार से सामग्री वगैरह लेके आते हैं, वो सारी पॉलिथीन को अपन उसके अंदर भर सकते हैं।
1: सिंगल यूज
2: मल्टीपेल
1: प्लास्टिक।
2: जो, हाँ, जो चिप्स वगैरह के रेपर होते हैं, बिस्किट वगैरह के, जितने प्रकार के रेपर, उन सबको उसके बोतलों के अंदर भर के बड़े एको ब्रिक्स बना सकते हैं अपन, जिससे अपन घर
1: जी
2: पे भी उपयोग कर सकते हैं। बढ़िया पेड़ गार्डन हो तो उसके गार्डन की क्यारी बनाने के लिए, किसी पेड़ की क्यारी बनाने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए बढ़िया उस पर कलर वगैरह करो तो अच्छा, तो एक ईट की जगह उपयोग कर सकते हैं उसका, जिससे प्लास्टिक मुक्त भी हो जाएगी और अपना पर्यावरण का भी संरक्षण हो जाएगा।
1: जी तो ये स्ट्रांग होती है ईंट जैसे या कैसा रहता है?
2: स्ट्रोंग होती है मैडम, मजबूत हो जाती है, क्योंकि तो इसमें पॉलिथीन जाने के बाद बाहर नहीं निकलती उसमें से।
1: जी, ओके। तो घर में और क्या क्या उपयोग कर सकते हैं हम? मान लीजिए गार्डनिंग के लिए हमने उपयोग किया, गमला भी बना सकते हैं इसको, और कैसे
2: हाँ,
1: उपयोग कर सकते
2: तो अभी एक आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भेजी थी आपको, एक मुर्दा बनाया हमने बैठने के लिए, जो अपने
1: हैं?
2: कोल्ड
1: यस
2: ड्रिंक से
1: यस
2: जो 2 लीटर की बॉटल होती है,
1: यस
2: बढ़िया उसको ठोस ठोस के भर लिया अपन ने, वो उसको कवर सारी बॉटलों के, 9 बोतलों को अपन ने सेट बना के उसको चिपका लिया गोंद से, फेविकोल वगैरह से, और
1: जी,
2: बढ़िया
1: तो
2: उसको एक कवर करके उसको बड़े बैठने के एक मुर्दा बना सकते हैं। हमने बनाया अभी एक मुर्दा उसको बैठने के लिए, तो बढ़िया
1: वेस्ट
2: फन
1: कपड़े
2: फेयर
1: को
2: की दिशा में भी अपन
1: लेकर
2: काम कर
1: के
2: सकते
1: ढक
2: हैं। हाँ
1: के। जी, ओके। मतलब पहले आपने बॉटल्स लिए, फिर आपने उसको गूंद चिपकाया, और
2: हाँ
1: एक समान साइज के आपने बॉटल्स लिए, और उसके
2: समान
1: बाद उसको
2: साइज,
1: चिपकाने के बाद फिर आप कोई भी वेस्ट कपड़े को उसके ऊपर ढक के सिलाई कर सकते हैं, या ऐसे ही ढक के
2: हाँ
1: उसको स्टील बना सकते हैं।
2: कवर बना के उसका बढ़िया, अच्छा है
1: ओके, उसका कवर बना के आप उसे बैठने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जी
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी जी बहुत बढ़िया सर। सर, अब तक आपने 700 से अधिक इको ब्रिक्स लगाए हैं, तो इसमें सबसे यादगार परियोजना कौन सी रही है? मतलब आपको सबसे अच्छा क्या लगा जब आपने इको ब्रिक्स का इस्तेमाल किया?
2: हमने पहला एक हमारे वो शिशु मंदिर है, विद्यालय है बच्चों का, वहाँ पे हमारे सर्वप्रथम एक पेड़ की क्यारी बनाई, तो
1: जी
2: पहला पहला एक वो काम था पेड़ की क्यारी बनाना, तो बड़े जुनून भी था, तो वहाँ के जो टीचर वगैरह और बच्चे थे सब देख रहे थे कि ये क्या है, तो उनको बताया सब सारी चीजें, तो उनका भी कुछ जो उसमें मैम वगैरह भी थी टीचर्स वगैरह, तो उनको भी सब पता है इसके बारे में। बढ़िया रहा, पर सोशल मीडिया पे हमारा भी एक चैनल है जो आपने देखा है पर्यावरण
1: जी
2: प्रेमी करके, तो जब उसको जो सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम यूट्यूब पे उसकी वीडियो डाली, तो लोगों का रुझान चेंज हुआ कि यार ये पॉलिथीन और ये प्लास्टिक जिसको अपन कचरा समझ के बाहर फेंक देते हैं, इसका इतना अच्छा भी उपयोग हो सकता है। तो लोगों के बढ़िया जो हमारे जो नगर में रहने वाले जो कुछ साथीगण है, महिलाएं वहां तक सकती है, उनका रुझान बढ़ा, तो उनके फोन आने लगे कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, तो उनको बताया कि ऐसे इस प्लास्टिक की बोतल से इको वृक्ष बना के इनको अंदर बोतल के अंदर ये पॉलिथीन भर के हम बढ़िया इस प्रकार की क्यारी बनाई है, तो लोग उसको देखने गए, तो उन्होंने कह रहे ये क्या नया प्रयोग क्या करा इन्होंने, तो
1: जी
2: वो सबसे अच्छा यादगार रहा मतलब हमारा, जिससे हमें भी मतलब एक मोटिवेट हुए, पूरी टीम को भी एक बहुत अच्छा लगा कि वो सोशल मीडिया पे जब वो पहली वीडियो जब हमारे यूट्यूब पर डली, तो वो 3 घंटे में 5,000 लोग उसको देख चुके थे।
1: जी क्या बात है सर। जी, ग्रेट, आपने इंस्पायर किया सबको। हमें लगता है कि छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे परिवर्तन कर रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन एक बड़ा बदलाव लेकर के आता है। आपको देख करके और लोग भी प्रयास करते होंगे, और आपके साथ
2: मेरा
1: महिलाएं
2: जी,
1: भी मिल रहे हैं अभी। जी बताइए सर,
2: मतलब
1: आप
2: मैं सोचना है मेरा कि जैसे कोई सा काम बड़ा नहीं होता, अपन कहते हैं कि जो एक दिन में नहीं होने वाला काम वो एक दिन जरूर होता है, लेकिन आप कंटिन्यू करते रहेंगे उस काम को, तो वो एक दिन में नहीं होने वाला काम एक दिन जरूर होगा।
1: यस, बिल्कुल, एक दिन जरूर होगा। इस सोच के साथ, इस लक्ष्य के साथ हम काम करेंगे तो परिवर्तन जरूर होता है। सर, आपके साथ महिलाएं भी शामिल हैं, और जो आपने सेल्फी पॉइंट बनाया था, आई लव
2: जी
1: व्यापरा करके, प्रधानमंत्री जी भी आपकी जो महिलाएं हैं टीम में उनकी कार्य को सराहा उन्होंने, और मन की बात में भी ये सराहना की गई आप लोगों के कार्य को। तो उस पल का
2: जी
1: अनुभव कैसा था?
2: वो क्या इतना एक विश्वास नहीं था कि हमारे काम के इतने कम समय में, क्योंकि जिस दिन मोदी जी ने हमारे काम की प्रशंसा की उस दिन हमको उस काम को करे हुए 6 महीने फिक्स हुए थे उस दिन, मतलब जो 28 तारीख शायद, हाँ 28 तारीख के का कार्यक्रम था मोदी जी का वो, तो इतनी मन में प्रसन्नता हुई कि मैं बता नहीं सकता आपको। जो हमारे साथ जो महिला है, जो हमारी दीदी वगैरह हमारे साथ इस काम में सहयोग कर रही है हमको, वो भी इतनी खुश हुई उस काम को देख के, और मतलब वो कह सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं इस भावना को कि एक देश के, एक पूरे विश्व के एक इतने बड़े नेता, और उन्होंने इस छोटे से काम की प्रशंसा की, तो एक सबके मन में एक भूतपूर्व मतलब बढ़िया एक खुशी का पहल था वो पूरा दिन, मतलब सबके चेहरे पे खुशी थी।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, और प्रेरणा भी मिली होगी कि और आगे ऐसा कार्य हम करते रहे।
2: सब जो टीम के और अन्य मेंबर थे, दीदी वगैरह, वो इतने उस काम मोदी जी के प्रेरणा से इतने मोटिवेट हुए, तो उन्होंने लक्ष्य बना लिया अपना कि इस काम को और आगे लेके जाना।
1: जी बहुत बढ़िया सर। आपकी टीम में जो महिलाएं हैं वो कैसे आपके साथ जुड़ी और उनकी क्या भूमिका है, आप बता सकते हैं?
2: हाँ क्या है, वो हमारे टीम में क्या, एक मेरी दीदी हैं, हमारे मोहल्ले में रहती है, एक पिंकी दीदी करके, तो
1: जी
2: मेरा क्या है जन्मदिन था जिसे इस काम की शुरुआत करी मैंने 26 जनवरी को, एक दिन पहले। तो सब लोगों के फोन वगैरह आए मेरे पास उनकी बधाई देने के लिए, तो उन्होंने की भाई साहब आपका जन्मदिन मनाना है, तो मैंने कहा केक वगैरह तो काटते नहीं है अपन, पर मुझे गिफ्ट दिया आपसे, तो उन्होंने की बताओ आपको क्या गिफ्ट दिए, तो मैंने कि मेरे को केवल एक बोतल के अंदर पॉलीथिन भर के आप दे सकते हैं क्या, तो वो सोचने में पड़ गए, उन्होंने कि बोतल के अंदर पॉलीथिन भर के, तो उन्होंने कि इसको क्या, मैंने कि इसको इको ब्रिक्स बोलते हैं, तो आपके घर में जो जितनी भी पॉलीथिन वगैरह है उसको इकट्ठा कीजिए और एक बोतल मेरे को भेंट कीजिए मेरे जन्मदिन पे, यही मेरा उपहार है मेरे जन्मदिन पे। तो
1: क्या
2: वो
1: बात है
2: लेके
1: जी।
2: आ, और भी जो साथीगण थे वो भी एक सब लेके आ, जैसे 20-25 बॉटल उस दिन मेरे जन्मदिन पे इकट्ठी हो गई। तो दीदी को फिर मैंने बताया कि दीदी ऐसा ऐसा अपन इको ब्रिक्स से बढ़िया निर्माण करने वाले हैं, मैं तो उनकी भी 4-5, उनकी क्या बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी मोहल्ले में हमारे, तो वो क्या
1: जी
2: है कि कोई से भी कार्यक्रम करना महिलाओं का, तो 15-20 महिला सहज में इकट्ठी हो जाती थी, किसी धार्मिक कार्यक्रम वगैरह करना है, भजन भजन जो भी सब सारी चीजें, तो उनके क्या है लीडरशिप करने की एक उनके अंदर क्वालिटी थी, तो वो तुरंत उस काम में लग गई, तो उनको अच्छा लगा। तो ऐसे ही ब्यौरा में हमारे अनिला गुजराती करके दीदी है, वो इस काम को 1 साल पहले से कर रही है, वो
1: जी
2: अपने स्वयं के व्यक्तिगत प्रयास से अपने 100 इको ब्रिज की बाटल लगा चुकी है पहले। तो जब उन्होंने सोशल मीडिया पे मेरे 27 तारीख को जब वीडियो डाला हमने, तो उन्होंने वीडियो देखा तो उनका फोन आया मेरे पास, उन्होंने बताया कि भाई साहब मैं ये काम तो 1 साल हो गया मुझे करते करते, और आपको
1: जी
2: शुभकामनाएं, जन्मदिन की बधाई भी दी उन्होंने मेरे को। तो मैंने बोला दीदी मेरे को बधाई नहीं चाहिए जन्मदिन की, मैंने आप ये काम कर रहे हो तो मुझे तो आपसे इको ब्रेक चाहिए, तो उन्होंने 9 बॉटल मेरे जन्मदिन पे मुझे सप्रेम भेंट की इको ब्रेक की।
1: क्या बात है सर जी।
2: तो ऐसा नहीं है कि अपन ही कुछ अनोखा काम कर रहे हैं, संसार में बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं लेकिन दिखते नहीं है,
1: राइट
2: उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली, अनिला दीदी है वो, अनिला गुजराती, उनसे भी प्रेरणा मिली, तो आज वो भी हमारी टीम में, तो ऐसे महिलाएं जुड़ती गई एक दूसरे के माध्यम से, सबको अच्छा लगा, तो आज बढ़िया एक महिलाएं भी 15-20 महिलाएं हमारी टीम में हैं युवाओं के साथ।
1: क्या बात है जी सर, बहुत बढ़िया कि महिलाएं भी आपके साथ मिलकर के ये कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बर्थडे वाले दिन आपने जो गिफ्ट्स मांगी सबसे, ये
2: जी
1: अनोखे तरीके से एक पर्यावरण प्रेमी ही कर सकता है सेलिब्रेशन इस प्रकार से, तो आपने इसे सेलिब्रेट किया इको ब्रिक्स उपहार में लेते हुए, और इस कारवा को आप आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत खूब सर। तो आपसे जानना चाहेंगे, प्लास्टिक से जो ट्री गार्ड वगैरह बनाते हैं आप, डस्टबिन भी बनाते हैं, पेन बॉक्स जैसी उपयोगी वस्तुएं भी आप बनाते हैं, तो ये धीरे धीरे धीरे धीरे आपने किया होगा, तो कैसे किया और कहाँ स्कूलों में कहाँ आप इसका उपयोग करते हैं, ये भी हमारे श्रोताओं को।
2: ठीक है, ये ध्यान में ऐसे आया, मेरे मित्र हैं, मेरे खास 2 मित्र हैं, एडवोकेट तरुण जी सेन और काना कुशवा, तो इन्होंने बोला कि भैया अपन इको ब्रिज कब तक बनाएंगे, ये एक स्थायी विकल्प इसका नहीं है, क्योंकि तो क्या है कि उस समय जब हम उस काम को कर रहे थे तो लोगों का जुड़ना और वो हमारा सहयोग करना, तो और फिर हमारी भी टीम थी जो 25-30 लोगों की उस समय टीम हो गई थी, तो जब हम रोज
1: जी
2: आते तो सहज में 20-25-30 बॉटल इको ब्रिक्स हम रोज पर डे बनाते थे, तो ढेर लगने लगा, तो उन्होंने कहा ये स्थायी समाधान नहीं है, तो अपन इसको रिसाइकिल करने पे ध्यान देते हैं। तो तरुण जी ने और काना ने दिमाग लगाया, यूट्यूब पे रिसर्च वगैरह करा, क्या इसको अपन मेल्ट करके बढ़िया इससे विभिन्न प्रकार की चीजें वैसे बना सकते हैं अपन, तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा ये बात भी सही है,
1: जी
2: जब हमने रिसर्च करा, ध्यान यूट्यूब वगैरह पर सर्च करा, तो देखा तो यार इससे विभिन्न प्रकार की चीजें अपन बना सकते हैं, जो भारत में भी और अन्य विदेशों में भी इसको रिसाइकिल करके चीजें बन रही। तो हमने भी ट्रिगार्ड, एक पेट जो आपने देखा होगा, तख्ती जिसको बोलते हैं हम, जो पेपर वगैरह देने जाते थे उसको लेके जाते थे उस समय, तो वो तख्ती का एक निर्माण करा उसको बढ़िया, उसको चूरा वगैरह करके उसका, पॉलिथीन का। तो सबसे पहले हमने वो बनाया। तो हमारे ब्यावरा नगर पालिका के पास भी कुछ जानकारी मिली, तो मशीनरी वगैरह उनके पास थी, तो हमने सीएमओ
1: जी
2: साहब से, वहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हमारे पवन जी कुशवा जी हैं, तो उनसे भी बातचीत की। तो बोला भाई साहब आपके पास
1: जी
2: मशीनें हैं, इसका उपयोग हम इस प्रकार से रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो उनका पूरा सहयोग रहा, पूरा उनका सपोर्ट रहा। तो उन कुछ मशीनें थी उनके पास, उसका उपयोग करके बढ़िया हमने तख्ती और ये ट्रिगार्ड वगैरह उसी से बनाया। तो
1: जी
2: इसका
1: सर
2: उन्होंने फिर बोला भी है कि आप बनाइए, फिर इसका अपने विभिन्न प्रकार के जगहों पे जहाँ पे पेड़ नगर पालिका के माध्यम से लगते हैं, तो वो ट्रिगार्ड जाली वगैरह वो लगने वाली है।
1: जी सर आपने डस्टबिन भी बनाया, पेन बॉक्स भी बनाया, ये किस प्रकार से बनाते हैं?
2: ये पेन बॉक्स भी, ये हमने इसका तख्ते का बनाया, सीट बनती है इसकी, तो अब जो सीट बन गई तो आपका पूरा फर्नीचर बन गया, कुछ भी बना सकते हैं
1: जी
2: आप उससे, बैठने के लिए बेंच भी बना सकते हैं, टेबल अलमारी वगैरह कुछ भी बना सकते हैं।
1: ओके सर आपने जगह जगह बॉटल शेप में रखा है, इसको डस्टबिन तो नहीं कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इको ब्रिक्स के बॉटल बैंक बोलेंगे, तो
2: बहुत अच्छा
1: वो
2: प्रश्न था
1: आइडिया कहाँ से आया?
2: ये। क्या
1: जी
2: है कि मन में विचार आया कि इको वृक्ष बनाना है, तो इको वृक्ष बनाने के लिए बाटल तो चाहिए, अब बाटल कहाँ से लेके आए। तो मैंने कहा बाटल को कलेक्ट करने के लिए, हम देखते हैं हमारे शहरों में बस स्टैंड वगैरह, रेलवे स्टेशन पे, अन्य जगहों पे, चौराहों पे, क्या है वो यात्रीगण पानी पी के बाटलों को फेंक देते हैं। तो ये नोटिस करा जगह जगह बाटल, तो हम बाटल भी कलेक्ट करते थे। और मैंने कहा रोज कलेक्ट करने जाना, इसके लिए लोगों को समझाने के लिए अपन कुछ कर सकते। तो मैंने कहा एक बोतल जैसा, एक डस्टबिन के मतलब एक बोतल जैसा, बोतल को कलेक्ट करने के लिए एक डस्टबिन हमने नाम दिया उसको, बोतल बैंक नाम दिया हमने, डस्टबिन नहीं बोला उसको, बोतल बैंक बोला। तो लोगों को बताया, वहाँ के जो दुकानदार थे जिनकी दुकान थी, पानी वगैरह बोतल बेचते थे वो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उनको बोला कि ये कोई भी यात्री अगर मान लो आपसे कोल्ड ड्रिंक्स लेके पी के बोतल को फेंक देता है, तो कम से कम आप उसको बोल दो कि इस बोतल बैंक में कलेक्ट करते। तो उसको अजीब लगा दुकान वालों को, उसने पूछा भाई सर ये क्या है बोतल बैंक। मैंने बोला ये बोतलों को कलेक्ट करने के लिए हमने बनाया है, तो यहाँ पे पड़ी रहती है ये, एक अपना वातावरण दूषित रहता है। फिर तो उसको समझाया मैंने कि ये प्लास्टिक है, इसकी मियाद कम से कम 500 हजार वर्षों तक ये धरती पर पड़ी रहती है, अपन
1: जी
2: ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कम से कम आपने जो ग्राहक आ रहे उनसे बोल सकते कि भैया पानी पीने के बाद ये बोतलों को आप इसके अंदर, ये डस्टबिन के अंदर पटक दें। तो बढ़िया, 3 4 दिन थोड़ा सा अजीब लगा, तो फिर हम ही टीम के साथ जाते थे, और रात को जहाँ बोतल जो बिक्री पड़ी रहती थी उसको उस बोतलों में डालते थे। फिर लोगों ने देखा, धीरे धीरे समझ में आई लोगों के कि हाँ यार ये बोतलों को कलेक्ट करने के लिए इन्होंने डस्टबिन लगाया है। तो फिर आज हमने पूरे कम से कम 11 डस्टबिन अभी पूरे नगर में हम लगा चुके हैं,
1: जी
2: और
1: सर ग्रेट
2: वहां पे देख ध्यान में भी आया कि लोग उसका उपयोग भी करते हैं कम से कम। और एक अनुमान में बताऊं आपको, तो कम से कम 3 से 4 हजार बाटल उन डस्टबिनों के माध्यम से हम प्राप्त कर चुके हैं अभी इन 6 महीनों के अंदर।
1: ग्रेट सर ग्रेट सर ये भी आप खुद बनाते हैं बॉटल बैंक या खरीद सकते हैं इसे हम मार्केट से?
2: ये हमने बनवाया, मतलब तो बिल्डिंग लोकल का जो बिल्डिंग वाला है उनसे बातचीत करके उसको बताया पूरा कि भैया इस प्रकार से सेफ देना है अपने को, तो मटेरियल खरीद के उससे फिर वो आगे लेके हमने निर्माण करवाया। तो आप भी
1: जी
2: सब
1: आप
2: लोग भी अलग जगह पे बनवा सकते हो, कोई ज्यादा।
1: जी सर बहुत खूब। और सर आपने कैलेंडर भी बनाया है, वो कैसे बनाया आपने?
2: हाँ वो जो बोतलों का ढक्कन होता है, ये मैंने एक वीडियो देखी थी इसकी, तो मैंने कहा ये वीडियो ढक्कनों से कैलेंडर, तो फिर मैंने भी प्रयास करा उसका, तो बढ़िया, जो पानी पीने के बाद अपन बाहर फेंकते हैं तो ढक्कनों का भी कैसे उपयोग हम कर सकते हैं इस दिशा में। हमने कहा आपने घर पे भी एक वो कैलेंडर का निर्माण करा, आपको मतलब आपने भी देखा उस कैलेंडर को,
1: जी
2: तो अच्छा वो सा एक बढ़िया कैलेंडर का भी हमने बनाया मेरी संस्था के सभी लोगों ने, और बढ़िया जब वीडियो उसकी डाली हमने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, तो कुछ लोगों ने अपने घर पे भी बनाया वो कैलेंडर।
1: आपसे इंस्पायर होके।
2: जी
1: जी, बहुत खूब सर। और जो आप लोगों ने सेल्फी पॉइंट बनाया, उसके पीछे क्या विचारधारा था? कैसे आइडिया आया कि हम ऐसे सेल्फी पॉइंट बना सकते हैं, और कैसे बनाया आपने?
2: उसका विचार क्या है, जब हमारे पास क्या बहुत सारी बाटल इकट्ठी हो गई, तो मैंने कहा कुछ क्या है बहुत सारे पेड़ों की क्यारी वगैरह बना दी हमने, मतलब क्यारी बनाना मैंने कहा कुछ नया नवाचार के लिए क्या कर सकते हैं। तो पूरी टीम के लोगों ने विचार करा कि यार कुछ ना कुछ नया करते हैं, बड़ा करते हैं। हम
1: जी
2: तो धीरे धीरे विचार आया कि अपन बड़ा एक वो बैठने के लिए टेबल बनाते हैं। मैंने कहा टेबल बैठने के लिए सार्वजनिक लगती है सीमेंट वाला की जो होती है बैठने के लिए, तो हमारे वो काना भैया है, काना कुशवाहा, उनके मन में विचार आया कि भैया अपन एक इससे बढ़िया ब्यावरा लिखवाते हैं बहुत अच्छा। तो फिर विचार जना, काला ने बोला कि भैया ब्यावरा लिखवाते हैं अपने बोतलों से, तो बढ़िया हमने उसकी फ्रेम बनवाई। तो फिर वो विचार में आया तरुण जी के, तो उन्होंने बोला कि नहीं अपन आई लव ब्यावरा लिखवाते हैं बढ़िया, तो ये बढ़िया एक सेल्फी पॉइंट हो जाएगा। तो वो बढ़िया हो गया, तो उसका निर्माण करा, एक बिल्डिंग वालों को पकड़ा, तो उसने बढ़िया पूरा उसका आकार दिया तार वगैरह से, फिर उसके साइज वगैरह से पूरा, तो उसको लगाया तो बहुत अच्छा रहा। हमको भी उम्मीद नहीं थी कि वो आई लव ब्यावरा हमारे लिए बढ़िया गर्व का विषय बन जाएगा, हमारे नगर के लिए गर्व का विषय बन जाएगा।
1: एब्सोल्युटली जी सर,
2: जी
1: बहुत खूब सर। सर आप बर्तन बैंक भी आपने शुरुआत किया है, तो इसका क्या उद्देश्य होता है?
2: ये हमारा उद्देश्य ये है कि कम से कम हमारा जो नगर है, हमारा तो उद्देश्य प्लास्टिक मुक्त को है, लेकिन प्लास्टिक मुक्त कहने से तो होगा नहीं, वो करने से होगा। तो हमारा और हमारी जो संस्था है पूरी टीम का ऐसा सोचना है कि प्लास्टिक मुक्त के लिए एक बर्तन बैंक का हम शुभारंभ करते हैं। तो ऐसे आपको मतलब कुछ क्या बर्थडे है, शादी है, या अन्य किसी प्रकार के जो फंक्शन है, वो प्लास्टिक के डिस्पोजल वगैरह ले, धोने पत्तल वगैरह लेने से अच्छा हमारी संस्था से बर्तन लेके जाए, और जो उनका जो इच्छा है क्या शुल्क रहेगा वो, मतलब जो उनकी इच्छा है जितना शुल्क देके चले जाए, और वो वापिस साफ करके हमको देके चले जाए, ऐसा एक इस दिशा में सोचना रहा है हमारा। क्योंकि
1: जी
2: कुछ चीजें क्या है कि प्रैक्टिकल करके बताना पड़ता है, जमीन पे उतरना पड़ता है, उसके लिए कहने से तो नहीं होगा ना। अब कुछ पैकेजिंग सामान है मान लो, अब वो तो पैकेज में आएगा,
1: जी सर,
2: इसलिए बर्तन
1: तो
2: लेने का
1: बर्तन
2: शुभारंभ।
1: मतलब किस प्रकार से बर्तन आपसे वो लोग लेके जाते हैं फिर वापस करते हैं?
2: वो क्या है उनको मान लो ऐसे बात होगा, 200 लोगों का एक कार्यक्रम है, तो 200 बर्तन टीम के ले जाना, जो उनको आवश्यकता है मान लो थाली गिलास कटोरी चम्मच जैसा पूरा एक सेट है हमारा, वो उनको देते हैं, तो गिन के ले जा वो ले जाते हैं गिन के, और गिन के वापस साफ करके उनको दे जाते हैं।
1: ओके, तो इससे पर्यावरण साफ रहता है और प्लास्टिक प्रदूषण या अन्य डिस्पोजेबल के प्रदूषण नहीं होता है।
2: जी बिल्कुल नहीं,
1: ओके, तो आप स्टील के बर्तन उन्हें देते हैं फिर वो वापस आपको रीयूज
2: वो
1: करने के लिए
2: वापस
1: देते
2: जी।
1: हैं। जी बहुत खूब। तो सर अगर कोई युवा आपकी संस्था से जुड़ना चाहे या फिर ऐसे अपने गांव और शहर को बनाना चाहे तो आप उसको क्या सलाह देंगे, कहाँ से शुरुआत करें?
2: हम बिल्कुल सहयोग करेंगे उनका, उनकी मदद करेंगे, अगर वो हमारे नजदीकी घर के आसपास रहने वाले हैं तो यथासंभवतः हम हमारी टीम के साथ वहां पे जाएंगे भी सही, उनके लिए उनको बताएंगे।

0: हमारा लक्ष्य है कि हमारा नगर के साथ साथ पूरा जिला, पूरा प्रदेश और पूरा भारत एक दिन प्लास्टिक मुक्त हो। और लोग समझेंगे इस चीज को और लोगों के ध्यान में भी आता है, लोग समझ भी रहे हैं इस चीज को। आज जिस गति से मोदी जी ने मन की बात में हमारा जो उदाहरण पूरे देश को बताया है, तो लोगों के फोन भी आ रहे हैं। तो मेरा भी यही कहना है और हमारी संस्था के पूरे टीम से भी मेरा यही कहना है कि इस काम को आगे बढ़ाना है, लोगों को समझाना है कि वो प्लास्टिक मुक्त के लिए अपने से जुड़े, या उनके स्तर पे भी वो लोग प्रयास करें। कोई जरूरी नहीं किसी टीम के साथ जुड़ के हमको काम करना है, हम हमारे स्तर पे भी घर पे भी कम से कम पॉलिथीन प्लास्टिक का उपयोग करें, कार्यक्रमों में कम से कम पॉलिथीन प्लास्टिक का उपयोग करें, हो सकता हो तो ही उपयोग करें ना कि नहीं करें।
1: जी सर। सर जैसे आप भी नगर पालिका के साथ जुड़ करके प्रयास किया और उनके साथ मशीनरी उपलब्ध थे उनके पास, तो आप उसका यूज कर पाए, तो क्या जो युवा साथी चाहें तो भी वो अपने अपने नगर पालिका क्षेत्र के साथ जुड़
0: हाँ,
1: करके
0: कर
1: ये
0: सकते
1: कार्य
0: हैं
1: कर सकते हैं?
0: जी, क्योंकि हर एक नगर पालिका का अपना एमआरएफ प्लांट होता है, यानी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। हर नगर पालिका अपने कचरे का सेग्रीगेशन कर उसको अलग अलग कर उसको रिसाइकिल करती है, तो वहां पे भी कर सकते हैं। जो युवा साथी वहां पे करना चाहते हैं, नगर पालिका के साथ जुड़ के भी कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो जो साथी इस वक्त सुन रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान दे सकते हैं कि हर नगर पालिका के पास अपने मशीनरी होता ही है सेग्रीगेट करने के लिए कचरा, और उसको रिसाइकलिंग करने के लिए कुछ मशीन भी होता है, तो आप उनके सहयोग भी ले सकते
0: ले
1: हैं।
0: सकते, वो नगर
1: जी
0: पालिका भी
1: सर।
0: आपका सहयोग करे, करती है ये सब जगह।
1: जी जरूर। तो आप रेडियो मधुबन के जरिए जो इस वक्त श्रोता आपको सुन रहे हैं तो क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: मैं इसे आपके चैनल के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूंगा कि आप भी कम से कम पॉलिथीन प्लास्टिक का उपयोग करें, अपने घर पे आने वाली पॉलिथीन को बाहर ना फेंके, जिससे अपना पर्यावरण सुरक्षित रहे। क्योंकि हम देखते हैं, हमने सुना होगा कहीं ना कहीं कि जब हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं मकान बनाया है, जब बनाते थे तो वो उनके मन में उम्मीद रहती थी कि जब हम नीम खोदते थे तो एक मन में लालसा रहती थी कि यार कहीं ना कहीं इसको नीम को खोदेंगे तो इसमें से एक सोने चांदी हीरे जवाहरात निकलेंगे। लेकिन आज अब जब देखेंगे, जब हमारी आने वाली पीढ़ी जब उस भवन का निर्माण करेगी तो वो उस नीम के अंदर केवल प्लास्टिक प्लास्टिक और पॉलिथीन के अलावा कुछ भी निकलने वाला नहीं है। आज इतना अच्छा वातावरण पूरे देश के अंदर हम देखते हैं, हमारे आसपास देखते हैं, इसके पीछे का कारण यह है कि हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं संघर्ष करा है। आज जो पेड़ से जो फल निकलते हैं, जो हवा हम एक जो वातावरण जो देखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का हमारी देन है। आज हम जो करके जाएंगे आने वाली पीढ़ी के लिए, वो आने वाली पीढ़ी हमारा धन्यवाद देगी। तो मेरा इससे ही एक सभी से निवेदन है कि कुछ अच्छा करके जाएं।
1: जी बिल्कुल। तो अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा संदेश आपने दिया यहाँ पर कि कुछ अच्छा करके जाए। अगर हमारे पूर्वज ढूंढते थे इन संकल्पों के साथ कि मिट्टी के अंदर हमें सोना मिलेगा या कुछ ऐसे खनिज मिलेगा जो हमारे लिए भी उपयोगी है और पर्यावरण के लिए भी उपयोगी हो, तो हम भी ऐसा कुछ कार्य करें ताकि आगे आने वाले जनरेशन को प्लास्टिक और प्लास्टिक ही ना मिले जब मिट्टी खोदा जाए। तो बहुत बहुत
0: जी
1: धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप के कार्य को हम सल्यूट करते हैं, ऐसे आप औरों को भी प्रेरित करते रहें, आपके साथ और भी साथी जुड़े, आप पर्यावरण के लिए जो कार्य कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं,
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद। तो अनिल जी ने ये साबित किया है कि बदलाव की शुरुआत किसी बड़े संसाधन से नहीं बल्कि एक छोटे से संकल्प से होती है। आपके प्रेरणादायक कार्यों के लिए पूरी टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं फिर से। तो श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही। याद रखिए, स्वच्छ पर्यावरण केवल सरकार की नहीं हम सभी की जिम्मेदारी है। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107।

0: नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सा, शनिवार की सुप्रभातम। कैसे हैं सब? भले चंगे होंगे आशा करते हैं। तो भाई, आप सभी श्रोताओं का प्रभा पंडिताइन, आपका प्रोग्राम पंडिताइन में बहुत बहुत दिल से स्वागत करती है। और शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, और बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं आपको पितृदोष के बारे में। होते हैं ना, कई लोगों को कुछ कुछ दिमाग में ऐसा चलता है कि ये बात ऐसी हो रही तो इसके पीछे ये कारण होगा, ये बात हुई तो ये, अरे बहुत सारे हमारे खुपड़िया में दिमाग भर दी गई ये बातें कि ऐसे ऐसे करने से ऐसा ऐसा होता है, जबकि वो कुछ सही नहीं होता है। लेकिन फिर भी भाई, लोगों की मान्यता है, और हम तो अंधविश्वास के खिलाफ बोले वाले आप जानते हैं, लेकिन फिर भी किसी की आस्था पे ठोस ना पहुँचे इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कहते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर बेटे का नाम उभरते ही सावित्री चौंक गई। बरसों बाद बेटे का फोन आया रहा। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो बेटा। हेलो माँ, कैसी हो?
1: मैं ठीक हूँ दीपक, तुम कैसे हो?
0: कुछ क्षण चुप रहने के बाद दीपक बोला, माँ सब कुछ ठीक नहीं है। सावित्री की चिंता बढ़ गई। क्या हुआ बेटा?
1: माँ, तुमसे एक बात पूछनी थी, ये पितृदोष का होता है?
0: सावित्री कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, अचानक ही सवाल काहे पूछ रहे हो?
1: दीपक ने लंबी सांस ली। पिताजी के जाने के बाद से व्यापार लगातार घाटे में जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई भी ठीक से नहीं चल रही, घर में हर समय तनाव रहता है। मैंने इंटरनेट पर एक पंडित से बात की, उन्होंने कहा कि हमारे घर में पितृदोष है। बोले इसका उपाय हरिद्वार में होगा और उसके लिए बहुत धन लगेगा, सोचा पहले तुमसे पूछ लूं।
0: सावित्री की आंखें भर आई, वो कुछ देर तक चुप रही, फिर बहुत शांत स्वर में बोली, बेटा पितृदोष का अर्थ केवल ग्रह नक्षत्रों से जोड़कर मत देखो, मेरे लिए इसका एक और अर्थ है जो शायद तुमने कभी समझने की कोशिश नहीं की।
1: दीपक चुप रहा। सावित्री बोली, तुम्हारे पिता ने पूरी जिंदगी तुम्हारी हर आवश्यकता पूरी करने में लगा दी, तुम्हारी पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत की, तुम्हारे सपनों को अपना सपना समझा, तुम्हें अच्छे विद्यालय में पढ़ाया, तुम्हारे लिए घर बनाया और तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी इच्छाएं तक छोड़ दी। उन्हें बस एक आशा थी कि बुढ़ापे में बेटा उनके पास रहेगा, उनके दुख सुख में साथ देगा। सावित्री की आवाज़ भर आ गई, लेकिन तुम बड़े हुए तो तुम्हारे सपने बड़े हो गए, तुम विदेश चले गए, नई दुनिया, नया जीवन और नई जिम्मेदारियां मिल गई, तुम्हारे पिता वहीं रह गए, उसी घर में, उन्हीं दीवारों के बीच। दीपक की आंखों के सामने पिता का चेहरा घूम गया। सावित्री आगे बोली, जब तुम्हारे पिता बीमार पड़े थे तब उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, वो बार बार कहते रहे दीपक को बुला लो, दीपक को बुला लो, लेकिन तुम काम में व्यस्त थे, तुमने फ़ोन पर हाल पूछ लिया और समझ लिया कि तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो गया। जॉन पिता ने तुम्हें चलना सिखाया, वो अपने अंतिम दिनों में तुम्हारे कदमों की आहट सुनना चाहते थे। फोन के दोनों ओर गहरी खामोशी छा गई। सावित्री ने आंसू पोंछते हुए कहा, और जब वो चले गए तब भी तुम उनके अंतिम संस्कार में नहीं आ सके, किसी अजनबी ने उन्हें शमशान तक पहुंचाया। बेटा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा पितृदोष है, जब माता पिता जीवन भर संतान के लिए जीते हैं और अंत में उसी संतान के समय के लिए तरस जाते हैं। दीपक फूट फूट कर रो पड़ा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। सावित्री भी रो रही थी, लेकिन उसने स्वयं को संभाला, माफ़ी मुझसे नहीं, अपने पिता से मांगना, और अगर सच में पितृदोष का उपाय करना चाहते हो तो केवल किसी अनुष्ठान में धन खर्च मत करना, अपने बच्चों को धन के साथ संस्कार देना, उन्हें सिखाना कि माता पिता की सेवा कोई बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य है, और हाँ, यदि तुम्हारे पिता की कोई अधूरी इच्छा है तो उसे पूरा करने की कोशिश करना। किसी ज़रूरतमंद वृद्ध की सहायता करना, अपने माता पिता के नाम से किसी भूखे को भोजन कराना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अपने बच्चों के लिए ऐसा उदाहरण बनना कि वो कल तुम्हें अकेला ना छोड़े। दीपक की आवाज़ कांप रही थी। माँ, मैं वापस आना चाहता हूँ। सावित्री ने कहा, बेटा, घर का दरवाज़ा आज भी खुला है, माँ का दिल भी। कुछ दिनों बाद दीपक भारत लौट आया। पिता की तस्वीर के सामने बैठकर उसने देर तक सिर झुका रखा। उस दिन उसे समझ आया कि पितरों को केवल जल अर्पित करना ही श्रद्धा नहीं है, उनके दिए संस्कारों को अपने जीवन में उतारना भी सच्ची श्रद्धांजलि है। पितृपक्ष हमें केवल अपने पूर्वजों को याद करने का अवसर नहीं देता, बल्कि ये भी पूछता है, क्या हम अपने माता पिता के साथ वो कर रहे हैं जिसकी आशा हम अपने बच्चों से करते हैं। याद रखिए, माता पिता की सेवा जीवन में ही कर लीजिए, जीते जी ही कर लीजिए। काहे कि मृत्यु के बाद किया गया पछतावा कभी उनके चरणों तक नहीं पहुंचता। सच्चा पितृ दोष वही है जब माता पिता जीवित हो और संतान के पास उनके लिए समय ना हो। माता पिता का सम्मान कीजिए, यही सबसे बड़ा संस्कार है, यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। आशा करते हैं आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। कई बार हम दुनिया का दिखाए के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक उनकी वैल्यू नहीं करते। और सही में पितृ दोष, मातृ दोष ऐसे देखें तो कुछ भी नहीं होता है। वो जो माता पिता की अतृप्त इच्छाएँ होती है उनको हम जीते जी पूरा करें, मरे के बाद नहीं। मरने के बाद तो पछतावा होता है और पता नहीं वो पहुंचता भी है कि नहीं। यानी आप जीते जी जो कुछ करते हैं वही आपकी सच्ची प्रॉपर्टी है। ईश्वर समय पर देता है, इसलिए देर भी कृपा ही होती है। ईश्वर कोई भी चीज़ समय पर देता है, इसलिए देर भी कृपा ही होती है। मोह इतना ना करें कि बुराइयाँ देख ना पाएँ, और घृणा इतनी ना करें कि अच्छाइयाँ देख ना पाएँ। खोई हुई चीज़ें हमेशा सुंदर लगती हैं, जैसे वक्त और बचपन। सोने की कीमत बाजार बताता है, लेकिन इंसान की कीमत उसका व्यवहार और संस्कार बताता है। बच के रहो थोड़ा इस दुनिया के लोगों से, बच के रहो थोड़ा इस दुनिया के लोगों से, यहाँ समझाने वाले कम, भड़काने वाले ज़्यादा हैं। आप भी हमारी बात से सहमत होंगे, इस दुनिया में हो रहा है। अगर मैं दूसरों की कमियां मन में रखती हूँ तो वो शीघ्र ही मेरी बन जाएंगी। जो चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वो हमारे अंदर उतर जाती है। कभी कभी आपको मिलने वाली सफलता देर से मिलती है, इसलिए विश्वास में स्थिर रहें। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग। कहे कि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। जब भीतर चलने वाली सांसें भी अपने हिसाब से चल रही है तो बाहर के लोग आपके हिसाब से काम करें ये अपेक्षा छोड़ दो। कहे कि यही सबसे बड़ा दुख का कारण है, दूसरे से अपेक्षा रखना, एक्सपेक्टेशन नहीं, सिवाय अपने आप से और किसी से नहीं और अपने परमात्मा से। जिनका हाथ खुद ऊपर वाला थाम लेता है उनकी कश्तियाँ अपने आप किनारे लग जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा मिलता रहे उसे नसीब कहते हैं। सब कुछ है फिर भी हमेशा रोता रहे उसको बदनसीब कहते हैं। और जो थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहते उसको खुश नसीब कहते हैं। अपने हिस्से की खुशियाँ बेचकर भी जो मुस्कराया है, अपने हिस्से की खुशियाँ बेचकर भी जो मुस्कराया है, यकीन मानिए उसे कभी कोई दुख नहीं हरा पाया है, कभी दुख हरा नहीं पाया है। चलिए भाई, यही बात पर एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर बतियाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, 12 बजे तक प्रभा पंडिताइन आपके साथ है। सुनिएगा मधुर गीत।
2: माँ बाप से बड़े

दिल उसका नहीं दुखाना, माँ बाप से पढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल।

की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको डर है ये मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल।

0: है, दिल उसका नहीं।
1: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
2: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ, अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
3: दरवाजे पर दस्तक का शुल्क। शहर के एक शांत मोहल्ले में रमेश नाम का एक युवक प्रतिदिन घर घर समाचार पत्र पहुंचाया करता था। एक दिन वो देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति के घर की डाक पेटी पूरी तरह भर चुकी थी। समाचार पत्र डालने की जगह ना होने के कारण रमेश ने दरवाजा खटखटाया। कुछ क्षण बाद लगभग 80 वर्ष के श्री बैनर्जी ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। हेलो, रमेश ने पूछा, बाबूजी आपकी डाक पेटी इतनी भरी हुई है, क्या आप समाचार पत्र नहीं पढ़ते? बैनर्जी मुस्कराए और बोले, नहीं बेटा, मैं समाचार पत्र पढ़ने के लिए नहीं मंगवाता। रमेश को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, फिर प्रतिदिन समाचार पत्र क्यों लेते हैं? बुजुर्ग ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम प्रतिदिन मेरा दरवाज़ा खटखटाओ, घंटी बजाओ और समाचार पत्र मुझे अपने हाथों से दो। रमेश ने कहा, लेकिन बाबूजी इससे आपका भी समय जाएगा और मेरा भी। बैनर्जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हें हर महीने 500 रुपये अतिरिक्त दूंगा। इसे समाचार पत्र पहुंचाने का नहीं बल्कि मेरे दरवाजे पर दस्तक देने का शुल्क समझ लेना। रमेश ने हंसते हुए पूछा, इतनी सी बात के लिए आप इतना 500 रुपया काहे देंगे? इस बार बुजुर्ग की आंखों की चमक अचानक बुझ गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मेरे घर में अब कोई नहीं रहता बेटा। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी का कई वर्ष पहले निधन हो चुका था और उनका बेटा विदेश में रहता था। बड़ा सा घर था लेकिन उसमें अब केवल उनकी सांसों की आवाज़ गूंजती थी। फिर उन्होंने रमेश का हाथ पकड़कर कहा, मुझसे एक और वादा करो। जी बताइए। जिस दिन तुम मेरा दरवाज़ा खटखटाओ और मेरी ओर से कोई उत्तर न मिले, उस दिन पुलिस को सूचना देना, मेरे बेटे को भी ये खबर दे देना, हो सकता है उस दिन मैं इस दुनिया में न रहूँ। रमेश स्तब्ध रह गया। बनर्जी जी की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ता, मुझे तो बस तुम्हारे कदमों की आहट सुननी होती है। दरवाजे पर दस्तक होती है तो लगता है कि आज भी कोई मुझे याद करता है। कोई चेहरा सामने आता है तो लगता है कि मैं अभी इस दुनिया के लिए अनजान नहीं हुआ हूँ। उस दिन रमेश को समझ आया कि कभी कभी मनुष्य वस्तु नहीं खरीदता, वो अपनापन खरीदता है। उसके बाद रमेश प्रतिदिन समय निकालकर बनर्जी के दरवाजे पर दस्तक देता, कुछ मिनट उनके पास बैठता, हालचाल पूछता और फिर आगे बढ़ जाता। समय बीतता गया। एक दिन रमेश ने हमेशा की तरह दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसने दोबारा दस्तक दी, फिर घंटी बजाई, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। उस दिन

0: जी जा चुके थे। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने पुलिस को सूचना दी और उनके बेटे को भी खबर दी। उस दिन उसे 500 रुपए नहीं मिले, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सीख मिली। किसी अकेले बुजुर्ग के दरवाजे पर की गई छोटी सी दस्तक भी उसके लिए जीवन का प्रमाण बन सकती है। आज हम संदेश भेजकर समझते हैं कि हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, लेकिन कभी कभी एक संदेश से अधिक मूल्यवान होता है किसी के पास बैठना, उसका हाल पूछना और ये एहसास कराना कि आप अकेले नहीं हैं। इसलिए अपने परिवार और आसपास रहने वाले बुजुर्गों को समय दीजिए। सुबह का एक संदेश, शाम का एक फ़ोन और कभी कभी घर जाकर मिल लेना, इन छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ा स्नेह छिपा होता है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन प्रसन्न है उसके पास ही वास्तविक संपत्ति है। किसी के दरवाजे पर दस्तक देते रहिए, क्योंकि हो सकता है वो दरवाजा किसी घर का नहीं, किसी अकेले हृदय का दरवाजा हो। हेलो,
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग दीदी,
0: ओम शांति। गुड मॉर्निंग, एकदम ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो?
1: हाँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, चार्टर से सुन रहा हूँ खुशी से और समझ कर, और बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। और आपको सभी को सुभाष भाई का नमस्कार और ओम शांति दीदी।
0: नमस्कार, ओम शांति। थैंक यू भैया फोन करने के लिए, ओम शांति। देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं, यदि शत्रु शांति की भाषा नहीं समझता है और धर्म या नीति को नहीं मानता है, तो उसके साथ छल कपट का प्रयोग करना पाप नहीं धर्म माना जाएगा। एक बहुत सुंदर कहानी है, अभी नहीं सुनाएंगे, लेकिन कहे का मतलब यह है कि कोई आप पे गलत करते रहे और आप माफ़ करते रहे नहीं, वहाँ पे कायर ना बने, वहाँ पर उसका प्रतिरोध करे। कहे कि सामने वाले की फिर हिम्मत बहुत बढ़ती जाती है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इशारे में बता दे कि जुबान तो भगवान ने हमारे मुंह में भी दी है, और जिस दिन बोलेंगे लगेंगे तो फिर वो डर जाएंगे कि अभी तो ये जाग गए हैं, यानी उल्टा जवाब दे सकते। अपनी इज्जत हर एक को प्यारी होती है। अनमोल विचार। परमात्मा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, चिंता हमेशा उलझाती है और प्रभु चिंतन हमेशा सुलझाता है। चिंता करोगे तो उलझे रहोगे और प्रभु चिंतन करोगे तो उलझे हुओं को भी सही रास्ता दिखाओगे। इसलिए चिंता छोड़, हमेशा प्रभु चिंतन करो। जिम्मेदारियों का बोझ आपको झुकाता नहीं है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आपकी वाणी और व्यवहार ही आपकी सच्ची सुंदरता है। खुश रहने का सबसे आसान तरीका, उम्मीद खुद से रखो, दूसरों से नहीं। जब आप दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने लगते हैं, तो आपके जीवन से उदासी का नामो निशान मिट जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही परम शांति देता है। मन शांत हो तो हर परिस्थिति आसान लगती है, और विचार अच्छे हो तो जीवन सुंदर लगता है। इसलिए दूसरों को बदलने से पहले अपने विचारों को बदलना सीखिए। है कि नहीं सही बात? गलत बात तो हम कर्म नहीं करते हैं, है कि नहीं भाई? बस इन बातों को सिर्फ कनवा से नहीं सुनिए, खुपरिया में भी इसको स्टोर करके रखिए, तभी ना काम आएगा जीवन में कभी भी। बार बार बार बार प्यार से और दया से रहने पर लगातार ध्यान दो। बार बार बार बार प्यार से और दया से रहने पर लगातार ध्यान दो। समय के साथ यही आपकी जीवन शैली बनकर आपको गर्व दिलाएगी। परमात्मा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, तीन चीज़ें जो एक बार चले जाने के बाद कभी वापस नहीं आती। पहला, बीता हुआ समय। दूसरा, बोले हुए शब्द। तीसरा, खोया हुआ मौका। इसलिए हमेशा समय, शब्द और मौके का सदुपयोग करो। आपके जीवन को बहुत खास बनाने की ताकत आपके अंदर ही है। हाँ, आप अनेक शक्तियों से भरपूर एक शक्तिशाली आत्मा हैं। अपने कर्म इतने मजबूत रखो कि आने वाला कल तुम्हारी मेहनत की कहानी सुनाए और किस्मत खुद तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाए। हमारा अस्तित्व हमारे कर्मों पर निर्भर होता है, किसी के नज़रिए पर नहीं। हर दिन थोड़ा समय अच्छे विचारों के साथ दूसरों का सहयोग और मदद करने में लगाओ। इससे मुश्किल हालात में आपको ईश्वर की पूरी मदद मिलेगी। कहते हैं ना, कर भला तो होगा भला, जीवन जीने की यही कला, तो आपसे भी यही कहते हैं। परमात्मा कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, विश्वास वो ताकत है जो अंधेरे रास्ते में भी रोशनी महसूस करवा देती है। जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे, तब अंदर से एक ही आवाज़ आए कि सब ठीक होगा, वही विश्वास है। आपकी अच्छाइयाँ बेशक अदृश्य हो सकती हैं, लेकिन इनकी छाप हमेशा दूसरे के हृदय में विराजमान रहती है। आप जितना कम बोलेंगे उतना ही आपको लोग ध्यान से सुनेंगे। मजबूत बनना है तो ईश्वर की तरफ ध्यान में लग जाओ, बेफिक्र रहना है तो ईश्वर से प्रार्थना करो। किसी को कुछ देना चाहते हो तो दुआ दीजिए, वो दुआ जो जुबान से नहीं दिल से निकली हो। जिंदगी का रास्ता कभी बना बनाया नहीं मिलता है, जिंदगी का रास्ता कभी बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। तो देखिए भाई बहनों, इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखिए और ध्यान में रख के चलिएगा, तो जब भी कोई परिस्थिति आएंगी तो ये बातें आपके सामने आएंगी और आप फिर मजबूत होकर खड़े हो जाएंगे। चलिए एक गीत और सुनते हैं, के बाद आपके बताएंगे। बहन जी कौनो निकवा सा गीतवा सुना दीजिए ना।

0: माय नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रेय शिकटकर. मैं एक सैन्य अधिकारी हूँ, निवृत्त सैन्य अधिकारी. मेरा ये निवेदन है यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में कि माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, हमें मान्य है कि हम इस पूरी पृथ्वी को बगीचा नहीं बना सकते हैं. माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, बस कांटे ही कुछ कम कर दिए, निकले जिधर से हम. एक कांटा, एक कुरीति, एक कुप्रथा, एक गलत बात अगर यहाँ से निकल जाएगी तो ये माउंट आबू जो है, यहाँ का क्षेत्र जो है, पूरा राजस्थान है, ये स्वर्ग हो जाएगा. और यही मेरा निवेदन है, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है.
1: बेटा अपने बूढ़े बाप को अनाथ आश्रम छोड़कर वापस जा रहा था तो उसके बीबी ने फोन किया और कहा, अपने बाप को ये भी कह दो कि त्योहार पर भी घर आने की आवश्यकता नहीं, अब वही रहे और हमें शांति से जीने दे. बेटा वापस मुड़ा और अनाथ आश्रम गया तो देखा कि उसका बाप अनाथ आश्रम के मैनेजर के साथ खुश होके गप्पों में व्यस्त है और वो यूं बैठे थे जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हो. बेटे ने पूछा, सर आप मेरे पिता को किस तरह और कब से जानते हैं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब ये अनाथालय से आपको गोद लेने आए थे. समझ गए, जो बाप ने उस लड़के को अनाथालय से ले जाके बड़ा किया, पाला पोसा, बड़ा होके वो बेटा उसी अनाथ आश्रम में बाप को छोड़ के गया. और बाप तो तब भी मस्त था और अब भी मस्त था, लेकिन का बीती होगी उस आज के सो कॉल जन जी पे. बहुत अपने आप को होशियार समझते हैं लेकिन जहाँ जो बोलना चाहिए वो बोल जाते हैं, नहीं बोलना वो बोल जाते हैं. ये समझ कौन देगा भाई. ठीक है, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आपकी बुद्धि बहुत तीव्र चलती है, लेकिन अपने संस्कारों को भी तो समझिए. बस्तर के किसी गांव में कालूराम नाम का एक किसान था. उसके पास लगभग 2 एकड़ का एक खेत रहा जिसमें खेती करके वो अपना परिवार का जीवन यापन किया करता था. वो वृद्ध हो चला था इसलिए उसकी खेतीबाड़ी अब उसका इकलौता बेटा भोला देखा करता था. भोला ने देखा कि उनका खेत में बीचों बीच एक बड़ा महुए का झाड़ है जिसकी छाया के नीचे चारों तरफ लगभग आधा एकड़ की भूमि पर फसल नहीं उगा करती थी. एक दिन भोला ने कुल्हाड़ी से उस वृक्ष को काटने की कोशिश की, तभी गांव के कोटवार की शिकायत पर तुरंत ही वन विभाग के अधिकारी उसके घर आकर हिदायत देखकर चले गए कि महुआ राज्य सरकार के प्रतिबंधित वृक्षों की श्रेणी में आने वाली वनोपज है, इसे काटना कानूनन जुर्म है. अब दोबारा से ऐसी कोशिश की तो सीधा जेल में डाल दिए जाओगे. डरा सहमा भूला उनके सामने कुछ न बोल सका. उसने बाद में सरपंच और ग्राम प्रधान से भी जानकारी प्राप्त की तो उनको पता चला कि इस प्रकार के वनोपज को काटने के लिए स्थानीय तहसीलदार की अनुमति आवश्यक है. भोला ने जैसे तैसे अपने गांव के पटवारी को अनुनय विनय करके महुआ का पेड़ काटने की तहसीलदार साहब से अनुमति प्राप्त करने के एवज में 1,000 रुपये देकर कहा कि जब मैं ये झाड़ काटूंगा तो इसकी आधी लकड़ियाँ आपको ही दूंगा. भोला 2 सप्ताह तक अनुमति की प्रतीक्षा करता रहा मगर अनुमति तो नहीं मिली. उलट उस पटवारी का ही दूसरे गांव में तबादला होने से भोला के पैसे पानी में चले गए. मानसून सिर पर था, भोला को धान की फसल बोना था, लिहाजा उसने उस वृक्ष के छाया वाले स्थान सहित पूरे खेत की जुताई करके धान की रुपाई करना शुरू कर दिया. जिद्दी भोला आश्वस्त था कि कुछ ना कुछ करके वो धान की फसल बड़ी होने से पहले इस वृक्ष को काट ही लेगा. भोला ने शहर से महंगा खरपतवार नाशक जहर एवं अन्य विषैली रसायन उस वृक्ष की जड़ों में डालकर महुए को नष्ट करने का एक और प्रयास किया मगर वो महुआ तो जंगली वनोपज था, उसे इन सब जहरीले रसायनों का कोई असर नहीं हुआ. वो महुए का पेड़ ज्यों का त्यों हरा भरा ही रहा। भोला धान की रुपाई करने के बावजूद भी उस महुए के छाया तले लगभग आधा एकड़ भूमि से कोई उत्पादन न कर पाने से हताश हो गया था। भोला को यूं हताश देखकर उसके पिता कालूराम ने कहा कि यदि तुम उस महुए के पेड़ को काटना चाहते हो तो मेरे अनुसार काम करो, पेड़ खुद ब खुद सूख कर गिर जाएगा। भोला ने कहा, ठीक है पिताजी, मुझे बताइए क्या करना है। कालूराम ने कहा कि सबसे पहले तो इस बार रबी की फसल को बाकी के भाग में ही बोना। अभी उस महुए के पेड़ के चारों तरफ गोल घेरा करके उसमें गोबर की खाद डालो और रोज ही उसे पानी देना शुरू कर दो। अरे, सितंबर अक्टूबर में कौन झाड़ों को पानी देता है, और वो भी उस महुए के पेड़ को जिसको मैं काटना चाहता हूँ। पिताजी, आप उसे कटवाने का प्लान बना रहे हैं या संरक्षित करने का? भोला ने हैरत से अपने पिता से पूछा। कालूराम ने मुस्कुराकर कहा, तुम सारे प्रयत्न करके देख चुके, अब मेरे हिसाब से भी एक बार करके देख लो, तुम्हें सफलता ना मिले तो कहना। अपने पिता का कहना मानकर भोला ने उस महुए के पेड़ के चारों ओर गोल घेरा बनाकर उसमें गोबर की खाद डालकर रोज़ एक ड्रम पानी देना शुरू कर दिया। हालांकि ठंड के समय में किसी भी पौधे को पानी की आवश्यकता नहीं होती, फिर तो महुआ एक जंगली वृक्ष था। भोला नहा कि उसे पानी दे रहा था, परंतु वो पिताजी का कहना नहीं न टाल सकता था। खरीफ की फसल भी कट चुकी थी, अब गर्मी पड़ना शुरू हो चुकी थी। वो महुए का पेड़ अन्य वृक्षों के उलट और भी ज़्यादा हरा भरा हो चुका था, परंतु भोला ने अपने पिता की आज्ञानुसार उस महुए के वृक्ष को खाद पानी देना जारी रखा। वन कर्मी रेंजर को ये संदेहास्पद लगा भी, परंतु किसी भी वृक्ष को खाद पानी देना कोई जुर्म तो था नहीं, इसलिए वो रेंजर भोला के पर्यावरण के प्रति जागरूकता की प्रशंसा करके चला गया। मई के मध्यान्ह में जब पूरे क्षेत्र में प्रचंड गर्मी पड़ने लगी, कालूराम ने अपने बेटा भोला को बुलाकर कहा, अब उस पेड़ को पानी देना बंद कर दो। भोला ने असमंजस की स्थिति में पिताजी के कहने के अनुसार उस पेड़ पर खाद पानी देना बंद कर दिया। वो सोच रहा था कि जब इससे पहले भी अति प्रचंड ग्रीष्म काल में भी ये महुए का वृक्ष गर्मी के थपेड़े सहकर भी खड़ा था, तो अब पानी बंद करे से उस वृक्ष को क्या फर्क पड़ेगा। परंतु आश्चर्यजनक रूप से पहले 15 दिन में ही उस वृक्ष की सारी पत्तियां झड़ गई। भोला ने पहले तो इसे पतझड़ के मौसम का असर समझा, परंतु जब एक एक करके उस पेड़ की शाखें और तना भी पूर्णतः शुष्क हो गया तो भोला को यकीन हो गया कि पिताजी की तरकीब काम कर गई है। जून की प्रचंड गर्मी वो महुए का वृक्ष बर्दाश्त नहीं कर सका। जुलाई में बरसात आने से सब तरफ हरियाली थी, मगर उस महुए के वृक्ष में न तो नए पत्ते आए न नई बयार। उस महुए के वृक्ष के ने दम तोड़ दिया था। इसी दौरान आए छोटे से तूफान को भी वो वृक्ष झेल न सका और स्वतः ही उखड़ कर गिर गया। इस घटना से हैरान परेशान भोला ने अपने पिता कालूराम से पूछा, तो उन्होंने कहा, ये महुए का वृक्ष जंगली वृक्ष है, किसी भी तरह के मौसम में बदलाव को सहन करने के बाद ही इतना बड़ा हुआ है। हर गर्मी में इसकी जड़ें पानी के जल स्तर के अनुरूप नीचे ही बढ़ती जाती है, जिससे ये वृक्ष कभी भी नहीं सूखा करता था। परंतु जब तुमने इसे ठंड के मौसम से ही खाद और पानी देना शुरू कर दिया तो ये वृक्ष अपनी मेहनत की आदत छोड़कर मुफ्त में मिले खाद पानी के ऊपर निर्भर होता गया। हेलो,
2: हेलो,
1: नमस्ते। ओम शांति, कैसे हो?
2: बहुत अच्छी।
1: बहुत दिनों के बाद फोन किया आपने। ठीक है,
2: चलो बात कर लेते हैं।
1: हाँ हाँ, तबीयत पानी सब ठीक है?
2: हाँ अभी तो मौसम की वजह से थोड़ा इसमें हो गया था, अभी तो आराम हो।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ
2: चलिए, बहुत दिन होगा।
1: हाँ वो ही ना,
2: बात करते हैं और कार्यक्रम सुनते हैं, लेकिन अभी क्या
1: हाँ
2: काम करते करते सुनते हैं तो कभी कुछ याद रहता नहीं है सारे कार्यक्रम।
1: हाँ हाँ हाँ घर के काम भी रहते होंगे।
2: हाँ अभी देखो पानी भी नहीं आता तो बाहर से पकना पड़ता है थोड़ा।
1: अच्छा हाँ
2: हाँ हाँ हाँ हाँ तो टाइम कम मिलता है तो कई बार
1: हाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम तो बनी रहती है घर गृहस्थ में ना। चलो इसी का नाम जीवन है, सब कुछ जीवन में करना पड़ता है ना। थोड़ा पर भगवान को याद करके करें तो वो थोड़ा
2: वो तो करते ही है।
1: हाँ
2: तो याद करे बिना तो
1: हाँ तो थोड़ा हल्का हो जाता है।
2: हाँ, मन हल्का हो जाता है और
1: मदद भी मिलती है, मन भी थोड़ा शांत रहता है।
2: क्या है
1: हाँ
2: जो सच्चे दिल से जीते है ना उसको परेशानियाँ भी ज्यादा जीते है। देखो उनको कभी भगवान का नाम नहीं है उनके लिए
1: तो
2: भी उनका जीवन ऐसे आनंद नहीं होता है। देखते है किसी को, लेकिन ये तो कर्मों का हिसाब किताब होता है।
1: जी जी जी
2: हम तो ईश्वर का नाम ही लेते हैं
1: बस,
2: परिस्थिति हो।
1: हाँ एक परमात्मा का नाम लेते रहना, उसकी मदद मिलते ही रहेगी। चलिए ठीक है, नमस्ते। तो देखिए भाई, हर गर्मी में इसकी जड़ें पानी के जल स्तर के अनुरूप नीचे ही बढ़ती जाती है, जिससे ये वृक्ष कभी भी नहीं सूख सकता। परंतु जब तुमने इसे ठंड के मौसम से ही खाद और पानी देना शुरू कर दिया तो ये वृक्ष अपनी मेहनत की आदत छोड़कर मुफ्त में मिले खाद पानी के ऊपर निर्भर हो गया, जिससे इसकी जड़ें क्षेत्रीय जल स्तर के अनुरूप नीचे की ओर न बढ़कर ऊपर से तुम्हारे द्वारा मिल रहे जल की तरफ अग्रसर हो गई। ये स्वावलंबी वृक्ष तुम्हारे द्वारा मिल रहे खाद पानी पर निर्भर होने से परावलंबी हो गया, और जब तुमने अचानक मई के मध्याह्न में इस मऊए को खाद पानी देना शुरू कर दिया, इसके जोड़े मौजूदा जल स्तर से बहुत दूर हो चुकी थी, जिससे वृक्ष बिना पानी के सूख कर स्वयं ही नष्ट हो गया। हम सभी कभी न कभी उस जंगली मऊए के वृक्ष की तरह स्वावलंबी थे, जो राह चलते कुएं नलकूप या नदी से बिना छना पानी पीकर भी बीमार नहीं होते थे, मिट्टी सने हाथ बिना डेटॉल के धोए भी स्वस्थ रहते थे, मिलो पैदल चलकर भी थकान महसूस नहीं होती थी। आज हम आरओ मिनरल वाटर पीकर खुद को महुए के उस वृक्ष की दशा में लाकर खड़े कर चुके हैं। यदि आरओ पानी या मिनरल वाटर ना मिले तो हम बीमार हो जाएंगे। यही वजह है इन फिल्टर बनाने वाली कंपनियों ने 10-15 हज़ार के फिल्टर का सालाना मेंटेनेंस 5-6 हज़ार रुपये कर दिया, यानी अपनी ही बिजली अपनी ही पानी होने के बावजूद लगभग 20 रुपये प्रतिदिन का सिर्फ पानी पर ही इन कंपनियों को देते हैं। इन मेहनतकश मजदूरों को भी सरकार मुफ्त या 1-2 रुपये किलो राशन देकर इसी प्रकार महुए के वृक्ष के समान परावलंबी बना चुकी है। शहरों में यही हाल मुफ्त के बिजली पानी के लालच का दिया जा रहा है, जो मुफ्त का खाने का आदि होने की वजह से उसी सरकार को मुफ्त का अनाज दे चाहे उसके वजह में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ही कि लिप्त क्यों ना हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को इस मऊे के वृक्ष की तरह परावलंबी बनाएंगे तो एक न एक दिन बेमौत मारे जाएंगे, इसलिए समय रहते स्वावलंबी बनने का प्रयास करें। स्वावलंबी का मतलब क्या है जानते हैं ना आप लोग? हम दूसरे पर निर्भर ना रहें, अपनी मेहनत अपनी बुद्धि उसके आधार पे हम जो कर सकते हैं करें, दूसरा ला के दे तो हम खाएंगे नहीं तो भूखे मर जाएंगे का नहीं, अपना खुद का कुछ करिए ना, काहे दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, है कि नहीं? तो चलिए अब इस पर से गीत सुन लेते हैं और उसके बाद फिर बतियाएंगे। सुनिएगा गीत।

0: पांच यूट्यूब वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
2: क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
4: देखिए भाई, जीवन के इन तीन चरणों में दुखी न हूँ। पहला चरण 58 से 65 वर्ष, आप कार्य क्षेत्र से दूर हो जाते हैं। आप अपने कैरियर में कितने भी सफल थे, शक्तिशाली क्यों ना रहे हों, इस समय आपको एक सामान्य व्यक्ति के रूप में ही देखा जाएगा। इसलिए अपनी पुरानी नौकरी या व्यवसाय की मानसिकता और श्रेष्ठता की भावना को पकड़े ना रहें, समझ गए ना। दूसरा चरण 65 से 72 वर्ष, इस समय समाज धीरे धीरे आपको दूर करने लगता है। दोस्तों और सहकर्मियों की संख्या कम होने लगेगी। पुराने कार्यस्थल पर शायद बहुत कम लोग ही आपको पहचानेंगे। बात बहुत पते की कर रहे हैं। मैं पहले था या मेरा भी एक समय था, ऐसी बातें कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नई पीढ़ी को आपको जानने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। इससे दुखी ना हो, कई बार हम हो जाते हैं। तीसरा चरण 72 से 77 वर्ष, इस चरण में परिवार भी धीरे धीरे आपको दूर करने लगता है। आपके बच्चे

दुनिया आपको धीरे धीरे अपने से दूर करने लगती है। इस समय मन उदास या दुखी न करे, काहे कि ये जीवन का अंतिम चरण है और एक दिन हर किसी को इसी रास्ते पर जाना है। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है, जीवन को आनंद से भरपूर बनाइए। आपको जो अच्छा लगे वो खाइए, पीजिए, खेलिए और जो मन करे वो कीजिए। सुखी रहिए, आनंद से जीवन बिताइए और हमेशा खुश रहिए। समझ गए तो? अरे भाई, समझ गए तो अच्छा है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो हम तो आगे की बात भूल भी नहीं करेंगे। इसके लिए आप खुद अपने समझ लीजिए। जिंदगी जीने के लिए दोनों तरह की योग्यता आवश्यक है, वक्त को बदलने की और वक्त के साथ बदलने की। किसी समस्या का सामना करना उसके समाधान की पहली सीढ़ी है। बहुत कुछ बदल जाता है बढ़ती उम्र के साथ। पहले जिद किया करते थे, अब समझौते किया करते हैं। जिंदगी ने सवालात बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले। हम तो आज भी वही हैं जो कल थे, बस लोगों ने अपने ख्यालात बदल डाले। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल 11 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में कितना सुंदर लगता है, कितना खुशी लगता है अपना गांव और अपना अंचल जब नाम सुनते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का नाम ही मेरा गांव मेरा अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी वर्गों से मिलते हैं, चाहे प्रशासन गाँव के संघ हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे गांव का इतिहास हो, चाहे किसान हो, सभी वर्गों से मिलते। तो राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय का आवाज तो हमेशा सुनते हैं, लेकिन आज आपको रेवदर ब्लॉक के मंडार नूतन सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय का आवाज बारी बारी सुनने को मिलेगा। सभी अपना अपना उमंग उत्साह से लेकर आज पहुंचेंगे। तो हमारा श्रोता मित्र अपना वॉल्यूम को तेज रखते हुए ध्यान से सुन रहे बच्चों का आवाज को, बच्चों का कार्यक्रम। विद्यार्थी विकास में बच्चों का आवाज न हो ये हो ही नहीं सकता। जब अबरोड से मंडार तक पहुंचे तो मंडार का भी आवाज, खासकर नूतन सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय का आवाज आपको सुनने को मिलेगा। पहला प्रस्तुति सुनेंगे एक देशभक्ति गीत जिसमें असिता और श्रद्धा दोनों मिलकर इस कार्यक्रम को सजाएंगे। तो वेलकम करते हैं, उनको स्वागत करते हैं। तो लीजिए पहला प्रस्तुति।
1: मेरा नाम असिता है, मेरे पिताजी का नाम जयंतीलाल है, मेरे माताजी का नाम गुड़िया देवी है, मेरे स्कूल का नाम नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार।
2: मेरा नाम श्रद्धा वैष्णव है, मैं नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ।
3: मेरा नाम लाजवंती देवासी है, स्कूल का नाम नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार है।
4: मेरा नाम लक्षिता कोहली है, मैं नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ।

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और जब बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ऐसे देशभक्ति हो चाहे प्रार्थना हो चाहे भक्ति भावना को लेकर ओत प्रेत होते हैं, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: चलिए ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं और हमारा बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे, तो कन्वेंट स्कूल के बच्चे, प्राइवेट स्कूल के बच्चे, नूतन सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार का आवाज आपको बारी बारी सुनने को मिल रहा है। और जब इस तरह कार्यक्रम में बच्चे भाग लेते हैं तो इसका श्रेय तो माता पिता, गुरुजन और विद्यालय को जाता है और खुद का प्रति भी ध्यान रहते हैं, जिसका चलते आज कार्यक्रम को सजा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और छात्र उपस्थित है, छात्रा का नाम है दृष्णा, तो आज 10th क्लास का बच्ची है, फिर भी कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं और अपना उमंग उत्साह को लेकर एक कन्या का गीत, श्री कृष्ण का भजन सुनाने जा रहे, तो ध्यान से सुने।
1: मेरा नाम दर्शना कुमारी है, मैं कक्षा 10th में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय है। मैं गांव मंडार की रहने वाली हूँ। श्री

0: देव की नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरण की जयकार। देव की नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरण की जयकार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव कहते हैं, और मुरारी को कौन नहीं जानते हैं। जय कृष्ण कहते हैं, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की गीत भी गाते जन्माष्टमी का दिन भी, और ऐसे जब भी मौका मिलता है भजन संध्या में भी अपना उद्गार को, दिल का बात को रखते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण पहला प्रिंस है, सोल कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परम धर्म। श्री कृष्ण को कौन भूल पाएगा, भक्ति में ओत प्रेत होकर सभी अपना अपना बात को रख रहे हैं। तो हमारा दृष्टा भी आज इस कार्यक्रम को सजाए, भक्ति में ओत प्रेत होकर श्री कृष्ण का भजन के लेकर आए हैं। तो धन्यवाद देते हैं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक का बाद पुनः मिल रहे हैं और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए दो छात्र उपस्थित है, जन्नत नाम सुनते हैं कितना खुशी लगता है, जन्नत मतलब स्वर्ग, जन्नत और करिन दोनों दोस्त हैं और इस कार्यक्रम को सजाएंगे। तो क्या प्रस्तुति देंगे वो बताएगी गीत के माध्यम से, हृदय से अपना संगीत को व्यक्त करने जा रहे हैं, तो सुनते हैं उनको स्वागत करते हुए।
1: माय नेम इज जन्नत, आई रीड इन क्लास 7, माय स्कूल नेम इज नूतन सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडार, आई लिव इन मंडार सिरोही।
2: माय नेम इज कॉरिन, माय क्लास 7, माय विलेज नेम इज मंडार सिरोही जिला।
3: आओ बच्चों तुम्हें दिखाए जाके हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम।

आज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन कटारा बछड़े थी कटारों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पत्नियां अंगारों पे। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करती है बलिदान की। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी ढोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था।

0: वंदे
1: वंदे मातरम वंदे मातरम। और भारत माता की जय कहते हैं और देशभक्ति में ओत प्रेत होकर इस तरह प्रस्तुति दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खासकर नूतन सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार का आवाज आपका पास हम रख रहे हैं।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला कड़ी में हमारा साथ सजाने के लिए उपस्थित है कौन कौन है, झलक दिव्या और देविका। वाह कितना खूब सुंदर नाम है, नाम से ही पता चलता है बच्चों का उमंग उत्साह। और ढोलक मंजीरा का साथ साथ देने के लिए सभी उपस्थित हैं, तो उन सभी को स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन कार्यक्रम में। और खासकर आज मंडार का आवाज़ सुनने को मिल रहा है नूतन सरस्वती विद्या मंदिर। जब बच्चे इस तरह कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं तो ज़रूर स्कूल का नाम रोशन करेंगे और खुद का भी नाम रोशन करेंगे ही। तो लीजिए पहला प्रस्तुति, पहला क्यों, अभी तो तीसरा प्रस्तुति की ओर चल रहे हैं और एक के बाद एक प्रस्तुतियाँ मिल रहा है। तो बाबा कहाँ पर है, बुला रहे हैं और बाण का माध्यम से सुंदर रूप में गीत सजाएंगे, तो लीजिए।
1: मेरा नाम झलक, मैं क्लास 11th आर्ट से। मेरे पिताजी का नाम जयंती लाल जी है, मेरी माता का नाम गुड़िया देवी, मैं मंडार की रहने वाली।
2: मेरा नाम देविका कुमारी है, मेरे स्कूल का नाम नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार है, मैं क्लास 11th आर्ट्स में पढ़ती हूँ।
3: मेरा नाम दिव्या कुमारी है, मैं क्लास 11th आर्ट्स में पढ़ती हूँ, मेरा गांव का नाम मंडार है, मेरे विद्यालय का नाम नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार।
1: हम तीनों मिलकर एक गीत प्रस्तुत

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। खूब बहुत खूब बहुत खूब सभी को धन्यवाद। इस तरह कार्यक्रम में अपना आवाज को बुलंद कर रहे हैं और इस तरह समूह रूप में जब गीत गाते हैं तो एक दूसरे भी को मजा मिलता है और हमारा श्रोता मित्र भी झूम रहे हैं और अर्थ का साथ सार्थक कर रहे हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: चलिए आगे बढ़ते हुए अगला कड़ी में दो छात्र उपस्थित थे, किंजल और सम्या। किंजल और सम्या को धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते पहले ही, क्योंकि इस तरह कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और आप सब सुन पा रहे नूतन सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार का आवाज़ बारी बारी सुन रहे हैं। और सभी को चांस मिलता है, चाहे सिरोही जिला में जितना भी स्कूल है, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सभी को चांस मिलता है। रेडियो मधुबनी इस तरह कार्यक्रम को लेकर बच्चों के पास पहुंचते हैं। चरित्र निर्माण, बौद्धिक विकास और आत्म प्रबंधन जैसे महान मुद्दे को बच्चों के अंदर में आत्मसात कराते हैं। बच्चे बड़े होकर देश को संभालेंगे और गाँव का नाम रोशन करेंगे। स्व दर्शन, सेल्फ मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, बच्चे खुद अनुशासित होंगे तो जरूर हमारा देश को भी अनुशासित कर पाएंगे। तो देर किस बात की, सुनते हैं उनसे प्रस्तुति, खासकर हमारा इस कार्यक्रम को सजा रहे किंजल और सौम्या। ओके, शुरू हो जाइए।
1: मेरा नाम है किंजल कुमारी, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ और विद्यालय का नाम नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार है।
2: मेरा नाम सौम्या है, मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ।
3: मेरा नाम नैना है, मेरी कक्षा 3rd है और मेरे स्कूल का नाम है नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार।

0: दो।
1: मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो, आरंभ है प्रचंड।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और बच्चे तो मोबाइल से और बड़ों को देखकर भी सीख जाते हैं, और कभी मौका मिलता है तो इस तरह कार्यक्रम को और हेल्दी वेल्दी कर देते हैं, क्योंकि आज रेडियो मधुबन उन बच्चों को मौका दे रही है, जिसका चलते बच्चे भी उमंग उत्साह के साथ अपना प्रस्तुतियां दे रहे हैं, तो धन्यवाद देते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
3: Scientists are still in a fix. Why nature behaves as a double helix? Matter and energy are connected by a thread. Without Shakti, Shiva is dead. There are miracles and miracles and miracles. This world is not dangerous. This world is miraculous.

0: चलिए वंस मोर करते हुए ब्रेक के बाद हम पुनः मिल रहे हैं और हमारा इस कार्यक्रम को सजाने के लिए उपस्थित है महेंद्र ओके और वो भी हाथ हिला रहे हैं और राजू राम भी है। राजू राम हाथ उठाओ, वेरी गुड, राजू राम भी हाथ उठाया और हाँ जी भर रहे हैं और इसको साथ देने के लिए पारस भी है। पारस को कौन भूल पाएगा भाई, पत्थर से पारस बन जाते हैं जब दिव्यता आता है, जिज्ञासा होता है तो पत्थर से भी पारस अच्छा बन जाते हैं। तो देर किस बात की, एक प्रस्तुति सुनेंगे वो भी मारवाड़ी भाषा में सुनेंगे क्योंकि राजस्थान का मारवाड़ी है, मारवाड़ में रहते हैं तो मारवाड़ी भी चाहिए। तो लेते हैं उन सब से एक प्रस्तुति। रेडी बच्चे? ओके शुरू हो जाइए।
1: मेरा नाम महेंद्र कुमार है, मेरे पिताजी का नाम जोईताराम है, मैं मंडार से हूँ, मेरे विद्यालय का नाम नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार है।
2: मेरा नाम राजू राम है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ, मैं नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ, मेरे गांव का नाम मंडार है।
3: मेरा नाम पारस कुमार है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ, मैं मंडार में रहता हूँ, मेरे स्कूल का नाम नूतन सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडार है।
4: हे भाई रे मत दीजो मावड़ी ने दोष।

0: भाई रे।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मारवाड़ी में अपना आवाज को बुलंद किए और इस तरह जब राजस्थान का नाम रोशन करते हैं बच्चे, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मारवाड़ी हो, चाहे आदिवासी गीत, तो सब में भरमार होते हैं बच्चे। बच्चे तो सच्चे होते हैं। विद्यालय में इस तरह गतिविधि में जब मौका मिलता है तो वो मौका का फायदा लेते हैं, जिसका चलते खुद को भी खुशी होता है और विद्यालयों को भी खुशी मिलता है, क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य है सर्वांगीण उन्नति। चाहे कोई भी कला हो, प्रकृति कला हो, चाहे संगीत कला हो, चाहे नृत्य कला हो, सभी को चांस मिलता है, जिसका चलते बच्चे भाग ले पा रहे। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खास कर नूतन सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार का आवाज को।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चलिए, बहुत कुछ हो रहा है और एक गुलदस्ता जैसे हमारा कार्यक्रम सज रहा है, क्योंकि वैरायटी का आवाज़, चाहे मारवाड़ी, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, चाहे शायरी, चाहे देशभक्ति, चाहे भक्ति, सब में उमंग उत्साह लेकर भाग ले रहे हैं। और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और एक प्रस्तुति, जिसको सुनाने के लिए शायरी के रूप में मम्मी पापा का महत्व, माने फादर और मदर, माँ बाप का कदर कैसे होना चाहिए और माँ बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। चलिए क्या सुनाएगी, सुनते हैं उनसे।
1: नमस्ते, मैं जिनल डॉटर ऑफ प्रवीण सेन, मैं कक्षा 9th की छात्रा नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार में अध्ययन करती हूँ। आज की दुनिया को देख कर मेरे दिल और दिमाग में एक अलग ही विचार उठ जाता है। दोस्तों, हम जिंदगी में मोटिवेशन ढूंढने के लिए सोशल मीडिया रील्स देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं और बड़े बड़े स्पीकर्स को सुनते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका सबसे बड़ा लाइफ कोच कोई बाहरी इंसान नहीं, बल्कि आपके घर की रसोई में काम करती माँ है और ऑफिस से थका हारा लौटता पिता। अगर कभी जिंदगी में डिप्रेशन महसूस हो, अगर कभी लगे कि आप हार रहे हैं, तो बस एक बार अपने मम्मी पापा के चेहरे की झुर्रियों को, उनकी आंखों की उम्मीदों को देख लेना। आपको किसी और मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनिए, नजर उठाकर देखो आसमान की तरफ, सितारे बहुत हैं लेकिन रोशनी कम है। जन्नत की बात करते हैं सब, पर माँ बाप के कदमों से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, यही वादा चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत सफल हो जाओ। बस एक बार अपने मम्मी पापा ने जो जीवन आपको समर्पित किया है, उन्हें कभी ना समझना कहना। थैंक यू।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर प्रस्तुति शायरी के रूप में और एक मोटिवेशनल संग को जैसे हम सुनते हैं, ऐसे एक स्पीच शायरी के रूप में अपना माँ बाप का जिक्र किए। और माँ बाप तो भगवान तुल्य होते हैं और कोच एक मेंटर जैसे काम करते हैं। सब चीज माँ बाप को पता होता है, क्योंकि वो जन्मदाता है, जन्म से लेकर अभी तक सब चीज उनका पास हिसाब किताब लिखा जुका रहता है, और जिसका चलते उनसे बेटर कोई मेंटर बा कोच नहीं दे पाएगा। तो अच्छा से प्रस्तुति दिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रस्तुति के लिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक छोटा सा प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हम।
1: महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: चलिए अगला प्रस्तुति के लिए बच्चे रेडी है और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए सिद्धार्थ उपस्थित हैं, तो उनको स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं इस तरह कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। और बड़े छोटे बच्चों को देखकर वो भी अपना आवाज़ को रोक नहीं पा रहे, क्योंकि एक गुलदस्ता जैसा हमारा कार्यक्रम हो रहा है। मैंने पहले भी बताया था जे आज तो सभी भाषाओं का, चाहे मारवाड़ी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, अभी हमें गुजराती भी सुनने को मिलेगा। तो लेते हैं उनसे क्या उम्मीद रखते हम सब। सुनाएगा सिद्धार्थ? ओके, रेडी? ओके, शुरू करिए।
1: नाम सिद्धार्थ है, मैं कक्षा पांचवी का हूँ। मेरे पापा का नाम दिनेश भाई सोनी है।
2: मेरा नाम आविश है, मैं कक्षा सिक्स में पढ़ता हूँ। हमारे विद्यालय का नाम नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय भंडार है।

बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और आज तो मजा आ गया क्योंकि सबका आवाज में दम है, बुलंद है, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, और पहला बार रेडियो में आकाशवाणी में अपना आवाज को दे रहे हैं। जब इस तरह कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो परिजन माता पिता सब खुश हो जाते, चलो बच्चे हमारा पढ़ाई का साथ साथ इस तरह रेडियो कार्यक्रम में भी आते हैं। तो सुंदर प्रस्तुति के लिए सिद्धार्थ को धन्यवाद देते हैं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चल पड़ रहे हैं और इसका बाद अंतिम प्रस्तुति आपका पास हम रखेंगे, लेकिन अल्प विराम का बस सुनते रहिए कार्यक्रम।

0: चलिए एक के बाद एक करते हुए अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चल पड़े और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए वरुण और उनका दोस्त भी आए हैं, तो अपना अपना नाम बताएंगे और कौन सा क्लास और कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं वो भी बताएंगे, तब पता चलेगा हमारा श्रोता मित्र को जी कहाँ से और कौन बोल रहे हैं। जब इस तरह नाम सुनेंगे तो आवाज़ का साथ साथ उनका मोहर लग जाएगा, हाँ ये वरुण का आवाज़ है। तो देर किस बात की, सुनते हैं अगला प्रस्तुति और ये होगा अंतिम प्रस्तुति।
1: मेरा नाम वरुण है, मैं कक्षा 7वीं में छात्र हूँ और मेरे स्कूल का नाम नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार है।
2: मेरा नाम दीक्षित है, मैं कक्षा 4वीं में पढ़ता हूँ और मेरा विद्यालय का नाम नूतन सरस्वती उच्च माध्यमिक मंडार स्कूल।
1: हो जाओ

0: और उठा लो ऊंचा सर, कोटि कोटि कंठों से गूंजे भारत की जयकार, भारत की जयकार साथियों, भारत की जयकार।
1: चलिए तालियों का साथ धन्यवाद देते हैं आप दोनों को, खासकर अंतिम प्रस्तुति में सुंदर रूप में सजाए सभी को, जो जो आज भाग लिए और जो भाग लेने के लिए सहयोग दिए उन सभी को, शिक्षकगण, प्रिंसिपल और साथ ही सहयोग को भी धन्यवाद देते हैं। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किस बात को लेकर। सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, अपने पास जितना था ना कम ना ज़्यादा वो हिसाब से दिए हैं, और बच्चे तो खुश होते भाई चलो हमें कोई मौका दिया आज। कभी उलाना नहीं देंगे रेडियो मधुबन को, जो हमारे पास रेडियो मधुबन आया नहीं और हमारा आवाज़ को जन जन तक पहुंचा नहीं, है ना बच्चे, उलाना नहीं देंगे ना, बोल रहे नहीं देंगे, सिर हिला रहे, कोई बात नहीं। तो रही बात, आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल, खासकर आप सब सुन पा रहे हैं अंतिम प्रस्तुति में नूतन सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडार का आवाज को। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: बरसत झरझत सावन आयो रे।
1: का बात है रतन, तू तो सावन का गीत गाए रही है।
0: कंचन आओ भाई आओ, राम राम
1: राम राम राम राम, राम, राम थने ही राम राम है।
0: हाँ भाई देख, सावन महीनो लाग गयो है। और सावन महीना लाग्या नहीं अत्रा दन वे गयो, मैं तो सावन को पूरा ही आनंद ले रही हूँ, अपना श्रोता बंधु भी लेता भी।
1: हाँ।
0: तो अपना श्रोता बंधु को स्वागत करा हाँ घावरी बातें कार्यक्रम में।
1: सुनता रहो
0: मुस्कुराता रहो,
1: रेडियो मधुबन
0: 107.8 FM। तो कंचन, सावन महीना की मजा तो पड़ रही ना?
1: हाँ खूब मजा पड़ रही है, मजो आ रही है। सोमवार चालू वेरिया है हमें, तू सोमवार करेगे कोनी?
0: हाँ सोमवार करा ना, सोमवार ने तो मंदिरा में मेलो लागे, आराम दर्शन करवाई जावा, और आरती सत्संग कीर्तन सब कर रहे हो। जिस तो मैंने तो गीत याद आ रहा है, और मैंने एक गीत और याद आ गयो, जो वो शायद पिक्चर को है पर याद आ गयो तो सुना दूं।
1: हाँ सुना दे सुना दे।
0: सावन के झूले ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापिस आया, मैं परदेसी घर वापिस आया। तो देख भाई, सावन महीनो तो एड़ो त्योहार है कि लोग बाने ग्योड़ाई अपना घरे पधारे है।
1: सही बात कह रही है, सावन आए हुए जोने हरियाली हरियाली वे गई है एक तरफ हर पर, हर सोमवार ने मनक व्रत राके चामके, तो 5 सोमवार है नहीं?
0: हाँ शायद 5 सोमवार आ रहा,
1: 5 सोमवार है। हर सोमवार ने मनक मंदिर जाए, जल्दी उठे, जल चढ़ावे, काचो दूध चढ़ावे, छोटा छोटा बच्चों ने शौक आवे व्रत करवा रो, मैं ही व्रत करा, मैं ही व्रत करा। तो सोमवार रो ने श्रावण रो खूब अच्छो, श्रावण तीस हर त्योहार चालू हुई है आज, ओपरे श्रावण ती। हाँ रक्षाबंधन आवी, रक्षाबंधन ती पहला तन दियो ने वे दशा मारा व्रत चालू वे जाई।
0: हाँ दशा माँ का व्रत ही चालू हुई।
1: हाँ
0: और सावन महीना तो आखो ही तू समझ ले त्योहार को ही है,
1: त्योहार को ही है,
0: हर सावन का सोमवार त्योहार है।
1: हाँ
0: हरियाली अमावस्या,
1: हाँ।
0: लोहड़ी तीज, रक्षाबंधन, 15 अगस्त।
1: 15 अगस्त सही बात कह रही है, मतलब खुशियाली खुशियाली
0: हाँ,
1: हर जगह
0: हरियाली और खुशियाली।
1: हाँ
0: जटे हरियाली है बटे खुशियाली है।
1: हाँ जरिस तो
0: तो
1: तू कटे सोमवार ने कोई अच्छा मंदिर, मतलब बड़ा मंदिर में कोई जावारो होशी है के?
0: देख आपने सावन महीना में शिव भोलेनाथ की पूजा भक्तजन खूब करे, शिव जी का मंदिर में खूब ठाट बाट रहे, बाकी तो हर एक मंदिर में रहे क्योंकि झूला तो लाग ही गया।
1: हाँ
0: तो ठाकुर जी ने झूलावे, पर शिव जी का मंदिर में तो तू पूछ मत कंचन, कतरी भीड़ रहे।
1: हाँ।
0: और मैं तो हर सोमवार जाऊं।
1: सही बात है, पर मारी ओ है कि ओ पे पाड़े मु तो देखो कटई दूर नहीं जाती, पाड़े मंदिर भी है वटेश पर जाऊं। हाँ कदी कण यू भी है के सब प्रोग्राम करे के हाँ बार दूर मंदिर जानो तो जाओ, बाकी रोज तो श्रावण में पाड़े मंदिर वे वटे जल परा चढ़ाऊं।
0: सही बात है, सुबह तो देखो आपने जो घर का पास में पड़ता है वटे ही जानो पड़े।
1: हाँ।
0: सुबह तो काम अतरो वे भाग दौड़ भाग दौड़, पर शाम का समय में पछे अपनी इच्छा वे जटे जावा।
1: सही बात है, सही बात
0: शाम
1: है।
0: का समय में दूर दूर भी जावा।
1: हाँ।
0: क्योंकि हर सोमवार मेला की न्यान भीड़ पड़े,
1: भीड़ पड़े
0: भक्ता की। तो शाम को थोड़ा दूर दूर जावा, कभी ऋषिकेश जावा।
1: हाँ,
0: तो
1: ऋषिकेश झरना चाले ना,
0: कभी गुप्तेश्वर जावा, कभी कुंडेश्वर, कुंडेश्वर महादेव देखे?
1: हाँ।
0: मस्त स्थान है।
1: तो वही तो
0: हाँ।
1: हर सोमवार अलग अलग जगह जावान मले, वन टाइम कोई रोके ही नहीं, घर वालों ने किया को के सोमवार चले रही है तो घर वाला ही कोई नहीं केवे, घर वाला ही के मन ही लेन जाओ आते
0: हाँ, हाँ, सब साथ में ही जावा। सही
1: हाँ।
0: है, टाबर टोली सब ने अड़ोस पड़ोस सब साथ
1: सब,
0: में जावा,
1: सब
0: मजा
1: साथ
0: आवे।
1: में मजा आवे।
0: आपा एक समय हो बचपन में आपा साथ में जाता है।
1: हाँ। सोमवार ने हर मतलब हर इंसान हर महिला रे मूर्ति वही सोबलू सोमवार आ रही है, जर सोमवार चालू वेवा वाला था श्रावण महीना रा, जर लोगों रे मुड़ा थी वही सोबलती, हमें सोमवार चालू वही हमें सब, कोई कोई तो श्रावण पाले तो बाल ही कटावना दाढ़ी भी कटावनी बंद करे पूरा सोमवार।
0: हाँ हाँ पूरा सावन महीना जो व्रत रखे ना
1: हाँ
0: वे बस सावन लागवा का पहली जो करावे जो करा देवे, पछे आख सावन महीना में बाल भी नहीं कटावे, सेविंग भी नहीं करावे, भले बढ़ जावे।
1: कोई कोई तो चप्पल ही नहीं पहरे
0: भाई, वो कहवे का आप आपकी आस्था वे जैसे
1: मन्नत।
0: हाँ
1: हाँ।
0: नहीं मन्नत ही नहीं, आस्था श्रद्धा सही भक्ति। तो कोई कसान करे, कोई अभी आख महीना चप्पल नहीं पहने, कोई आखा महीना हरी सब्जियां नहीं खावे।
1: हाँ, और मन्ने टाय रतन एक चीज देखो भी यू वीए हसनो भी आवे ने एक तरफ ती यू वीए की मनक यू तो दारू मांस पूरा वर्ष खाई श्रावण महीनो आवी जर के मोर श्रावण महीना बनी चालतो ओ तरीको कतरो अलग लागे नी।
0: पर श्रावण महीना में भी शराब जो पीवा वाला है वे कटे छोड़े,
1: वे तो नहीं छोड़ता, पर तो भी मैं ऐडा लोगों देखिया है जो यू कही श्रावण श्रावण तो छोड़ दी दो, श्रावण आयो है तो श्रावण महीना रो तो पूरा वर्ष ही छोड़ो ने।
0: हाँ, तामसिक खान पीन श्रावण महीनो के अदक मास वे ही तो कही कही भाई नहीं अबानु काम नहीं आवे।
1: हाँ, अबानु काम नहीं आवे तो वही चीज
0: तो पछे क्या काम आवे भाई, जो अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो तो जिंदगी भर छोड़ना चाहिए।
1: पर मैं आ चीज खूब देखी है श्रावण श्रावण ना हमें अबे नशो नहीं करो, श्रावण महीनो लागो है तो छोड़ो ने जिंदगी भर रे लिए छोड़ो, छो हष्ट पुष्ट खानो खाओ, खावारी अतरी अच्छी अच्छी चीजो है, तामसिक चीजो नहीं खानी जो जे ती अच्छू है फ्रूट वगैरह ये खाओ।
0: अरे ये तो देखो भाई फ्रूट दूध आपा कतरी बार बात करा तो सोचा ये कि भाई अणी का पाछे पैसा बर्बाद करो, तामसिक चीजा का पाछे अणी करता तो या का ऊपर पैसो खर्चो, स्वास्थ्य भी बढ़िया रही और फल फ्रूट।
1: आप रतन थारे बच में बात करूं वो तू कह रही है कि शराब पीवा वाला शराब पिए तो वे तो बोले नात्रा भक्त है, वे तो ये के बोले नाती तो बोले नशा करता तो मैं ही तो करे ही हूं। और
0: ये वाकई गलत फहमी है, खुद की बात ने ढाकवा का लिए अड़े
1: भगवान तर्क करे। हाँ,
0: एडा तर्क करे, अगर आप माने समझता वो ने कि भगवान ने समझना चाहो तो अध्यात्म में उतरनो पड़े।
1: सही बात है
0: कि भगवान कोई शराब गांजा भांग धतूरा या के पाछे नहीं पड़िया वे, इको अर्थ है विकार ने हरवा वाला।
1: सही बात है,
0: जैसे समुद्र मंथन भी हो, समुद्र मंथन में यदि विष निकलो
1: तो विष
0: हाँ तो विष ने कुण पी दो, वेस पी दो ना, क्योंकि सब मना कर दी दो, नहीं भाई मैं तो नहीं पी सका, सांप के मैं थोड़ोक ले सकू तो वो थोड़ोक ले दो, बिच्छू के मारा डंक में दे दो मैं थोड़ोक ले सकू, पर बचोड़ो कुण ले
1: जयंती
0: तो बचे भोलेनाथ क्यों चलो मने दे दो। तो इको अर्थ यो है कि वे विकार रूपी जो विष है विनय हरे नहीं कि वे भांग धतूरा खावे।
1: पर हमें मानव जीवन में अणो इंसानों ने कुण समझावे, अणो ने तो जो वे करे वो सही।
0: देख कंचन, अगर मैं गलत रास्ते जाऊं ठीक है, थाने ठा पड़ गई कि मैं गलत काम कर रही हूँ, अबे तू मैंने कह दी दो तू यो गलत काम कर रही, तो मारी बात ने ढाकवा कर लिए मैं दस झूठ बोलू, मैं उदाहरण दू वो भी हसो वो भी हसो वो भी हसो, जबकि मैंने तो मारा खुद के देखनो ने कि वे केड़ा भी वो मारे सुधरनो और मारे चेंज भेणो है, और जो चेंज वे वाला है वे उदाहरण नहीं रह की वे बात ने मान ले ठीक है भाई आगे नहीं करा।
1: सही बात है,
0: बाकी जैसे तू कह रही भांग धतूरा शराब का लिए महादेव जी पे इल्जाम लगावे, वशाने श्री कृष्ण जी का लिए नहीं कहे अरे वे तो 16108 राजकुमारिया ने मतलब वाका लारे विवाह की दो। अरे वाको अर्थ तो समझो भोला मन,
1: पूरी कहानी तो हटा नहीं है पाजा वण कृष्ण भगवान माते इल्जाम लगावे,
0: तो बस वही है कि जो नी सुधर वो छावे वाके दस बहाना समझदार का लिए इशारो ही काफी है।
1: सही बात कह रही, चल जावा दे ओपे तो ओपे सावन रा सोमवार रा आनंद ले यो, मस्त भजन कीर्तन करे यो, मंदिरों में जाइयो घूमबा जाइयो, हरियाला बगीचा में घूमे यो, तो तू चाल जे हमके मारे हाथे। हाँ
0: हाँ हाँ बिल्कुल चाला ना आपा, तो देखो सोमवार सोमवार तो जावा ही जाओ, आको सावन महीनो जावा तो तू जटे ले जाए बेटे मैं आवा तैयार हूँ, मैं ले जाऊँ बेटे तू भी आ
1: जाए जरूर आवो, मैं सुबह
0: वो के आखो संगठन बना जावा तो ही मजा आवे।
1: मजा आवे सही बात के,
0: एकला दोकला का ही मजा आवे
1: ना ना, सब बच्चा बच्चा सब हाथे वे तो हाँ नहीं अच्छो लागे,
0: अच्छो लागे। और देखो भाई आपा बच्चा नहीं हूँ के वा अरे वाके धोग लाग वाके धोग लाग, पर वे बच्चा जी प्रैक्टिकल में देखे माना माँ बाप ही लाग रहा
1: तो बच्चे सीखे।
0: हाँ वे सीखे और वे लागे बच्चे माने केवा की जरूरत नहीं पड़े।
1: सही बात है,
0: आने वास्ते मंदिर महादेव सत्संग कीर्तन में बच्चा ने भी ले जानो छावा।
1: सही है,
0: तो वे बच्चा में संस्कार उतरेगा, अच्छा सत्संग अच्छा वे यू करनो, पछे माने केणो नहीं पड़ी तू मंदिर जा अरे तू सत्संग में जा,
1: मैं देखी तो अपने आप करी
0: अपने आप सीखी। पर कंचन चलो सत्संग भी कह रहा सब कह रहा पर मैं गर्म गर्म नाश्तो बना रखे वो तो खाला ठंडो वे जाए।
1: हाँ चल चल खा लेता है।
0: तो एक आछू गीत भी सुना था अपना श्रोता बंधु ने।
1: हाँ सुना दे।
0: सुनता रहो
1: मुस्कुराता रहो
0: रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM।

0: सुरंगो आयो साहिबो नहीं आयो, सावण सुरंगो आयो साहिबो नहीं आयो, तीजरड़ी मन लू भायो बादरड़ी बरसो बरसो, पिया जीरा देश बिजरड़ी चमको चमको, पिया जीरा देश आ तो आ भाई कंचन पाचा आपा गावरी बातें कार्यक्रम में सगला श्रोता बंधुरो स्वागत करा हाँ। और देख भाई सावण महीना में एड़ा एड़ा गीत बोले के मन तो अपने आप ही याद आवे, एड़ा एड़ा गीत भी गावे।
1: जरिस मुई हो सो रही हूँ के रतन हर बार कठाती गीत एक ती एक लेन आवे।
0: पर सावण में एड़ा गीत गावे तो याद हो जावे, क्योंकि तीज त्योहार तो अभी है। तीज त्योहार पे अपने जमाई भाई है, बेटिया की शादी कराया बाद पहली तीज वे वे तो जमाई भाई ने भी बुलाना पड़े, बेटिया अपना घरे हुए
1: हाँ।
0: तो अपने आप ही बचे वहां के लिए कई बोला तो गीत याद आई जावे। आपने भी देखो भाई राजस्थान रा मायने एडी एडी परंपरा है कंचन कि आपने जमाई भाई आवे पहली बार त्योहार पे तो कतरो सम्मान करा।
1: पहली बार तो खूब सम्मान हुई है।
0: मन तो परंपरा अच्छी लागे,
1: अच्छी लागे हाँ। सही बात है।
0: और आपने सावन महीना की बात चल रही, सावन में त्योहार भी खूब आवे तो सावन महीना में सत्संग भी खूब आवे। आप सत्संग की भी बात कर रहे हैं, देख भाई धनठाए आपने ये 16 सोमवार जो करा ना मनसा महादेव का, वे भी चतुर्थी चालू हो जावे हाँ, जो ठेठ कार्तिक महीना तक रहे, दीपावली का बाद जो चौथ आवे ने, पर चार महीना को चौमासो के वहाँ चौमासा का स्टार्टिंग में या चतुर्थी आवे जदि मनसा महादेव के व्रत चालू हुए वो पाचे चौमासो खत्म वेवा आवे जदि चौथ आवे ने जदि पाचे संपन्न वेवे। अवैणी में भी देखो भक्ति कड़क है हो, सुबह वेगा उठ नाप स्नान ध्यान करो, ठेठ माता का केस लगा नेड़ी तक कहीं भी आपको धुलिया बगैर बाकी नहीं रहना छावे, माथो धोनो पड़े
1: रोज हर सोमवार
0: हर सोमवार। पहली चतुर्थी आपा चालू कर दा ठीक है, तो चौथ का दिन आपने सब पूजा की सामग्री ले जानी पड़े, चूरमा बनावे ही में हर सोमवार चूरमा बनावे, चौथ का दिन आपा स्टार्ट करा तो चौथ का दिन नु ये चालू हो जावे चूरमा। तो अबे में अलग अलग भाई मान्यता है, 2.5 किलो बनावे चूरमा जी का चार भाग करे, एक भाग पहली तो ठाकुर जी के सारो भोग लगाई, पचे भी को चार भाग करी, एक भाग गाय के एक भाग बेन बेटी के एक भाग खुद व्रत करा जो खावा को और एक प्रसाद वितरण करवा को
1: हाँ।
0: चार भाग करे तो कोई 1.25 शेर को करे तो कोई 2.5 किलो को करे और असान चार भाग करन बाटे और सुबह पहले स्नान ध्यान करन स्वच्छ कपड़ा जो कपड़ा धुलिया सका वेना छावे के पचे कोरा कपड़ा
1: औद कपड़ा
0: हाँ। पर इमें यू है के आपके कोरा कपड़ा तो कोई भारी वे संग ये पेरवा की जरूरत नहीं है,
1: सिंपल
0: हाँ सिंपल अनिवार्य से धुलुड़ा होना चाहिए और सुबह पहले आप स्नान ध्यान करते हैं तुरंत ही आप पूजा के लिए निकल जाओ। कहवे भाई अठिनो अठिने बैठा पाचे कपड़ा पे दाग लागे, पाचे अपन नाया ने घने घेप पे जाओ तो वॉशरूम भी जाना पड़े
1: हाँ।
0: तो कहवे के पूरी स्वच्छता का साथ में पूजा हुए तो आप नाते ही बस पचे कपड़ा पेरता ही माँ तो पूछता ही आप निकल जाओ पूजा करवा का लिए ताकि बनी टाइम पे तो पाचे न तो बाथरूम को प्रेशर बने न आप अठिन उठिने बैठा थाल अपने सजाई पूजा की रवाना हो जाओ
1: सही है।
0: और चूरमो तो बनाना ही पड़े तो चूरमो पहली बना दो पचे इमें 2 बार स्नान वेवे पहली नहा लो पचे आप चूरमो बनाओ पचे पाचो नहाओ। पर हाँ ये चतुर्थी शुरू हुए जो चतुर्थी का दिन खत्म वेवे पहले और लास्ट में बीच में सोमवार ने तो आप पूजा पाठ करो और पूजा करने आप कई भी प्रसाद चढ़ाओ, फ्रूट भी मिले केला लाओ आप इच्छा वे जो फ्रूट लान चढ़ाओ तो चाले। पर चौथ शुरू हुए चौथ का दिन ही समाप्ति हुए दो ही चौथ पे चूरमो छाई जाए।
1: अच्छा तो थे का की दौड़ा है सोमवार
0: हाँ, मैं किधर
1: जरे इस तन पूरो ध्यान है चलो तो, जन्ने करना भी बनो नहीं ठाबो पड़ी के वो सोमवार की गण करना है
0: हाँ,
1: सही बात है ने?
0: सही बात है। तो ये मनसा महादेव के वे जमा 16 सोमवार वे वे 16 सोमवार जैसे 16 शुक्रवार करा ना वैसे 16 सोमवार
1: सही
0: हाँ। गुजरात में भी खूब करे तो राजस्थान में भी खूब करे और भी अन्य राज्य में भी करता भी भाई बहन, क्योंकि शिव जी की पूजा ही सब ज्यादा हो सावन महीना, और झटी ने भी देखो सब शिवमय शिवमय हो जावे।
1: शिव जी रा तो सब भक्त है बोले बाबा, सब भगत भगत सबरा मोबाइल माते स्टेटस से देखो तो सबरा शिव जी रा इस लागोड़ावे,
0: शिव जी का इस लागोड़ावे। मैं एक बच्चा हूँ बात वेरी ही, तो बच्चा भगवान का सामने भोलेनाथ की मंदिर में भोलेनाथ का सामने कह रहे आख्या बंद कर भगवान प्रार्थना कर रहे, हे भगवान अणी बार तो मारे 90% तो मनाना ही पड़ी हो, अगर 90% मन जाए तो मैं एक नारियल चढ़ाऊ। मैं कह अच्छा मैं सुन रही ही, मैंने हंसी आई छोटो बच्चो 7-8 साल को, वो हसान कह रहे पछे दी वो भक्ति कर काढ़ी निकलो लागे तो मैं कह लाला हटाओ, तो कह हाँ कही के वो आप, तो मैं कहूँ अच्छा ये प्रार्थना की क्यों कर रहे हो, कि भगवान ने कह रहे हो ठाकुर जी ने मारे 90% छावे, क्योंकि भोलेनाथ का लिए सुनियो सको भोलेनाथ हर प्रार्थना पूरी करे। मैं क्यों कटे सुने थू, तो क्या हमारे दादाजी कहानी सुनावे ना, तो भोलेनाथ की सुनावे भोलेनाथ वरदान देवे पछे मुश्किल पड़ जावे तो वहां में श्री विष्णु जी मदद करे, तो मैं भोलेनाथ ने कह दी तो 90% बना दीजो, अब वहां को नहीं बनानी आई तो वे विष्णु जी बात करी।
1: देखो बच्चा ही केड़ी केड़ी बात करे है।
0: तो मन अतरी हंसी आई, वे क्या देखो बच्चा भी बुद्धि में बिठा रह गयो।
1: देखो बच्चों नहीं पर वो दादाजी बताई, दादाजी माते विश्वास, तो दादाजी झूठ नहीं बोले तो सही में, तो बच्चों तो यूज भी
0: हाँ, क्यों दादाजी कहानी क्यों जदी तो सही है
1: सही है।
0: वे बच्चा भगवान तो अपना साथ में है, पर मेहनत तो कर जाए तो 90% भी बन जाए, पर मेहनत छाई जाए,
1: मेहनत तो करनी पड़ी।
0: हाँ यू है कि देखो कतरा भाव शुद्ध हो जावे, बच्चा का भी भाव केड़ा शुद्ध हो गया आने वास्ते, वो कहे कि अपने अध्यात्म का प्रति तो रुझान वेणु ही छाई जाए, अपना भले छोटा वो बड़ा वो बच्चा ने ले जाओ आप, तो यहाँ का मैं संस्कार आई
1: बच्चों तो देखी फेस सीखी बच्चों हाँ। ने मंदिर ले जाइयो, सुबह ओपे अगरबत्ती दिया धूप करे यो, सबरा आदर करे यो, भगवान ने मंदिर जाओ तो बच्चा ही सीखे
0: सही है,
1: नहीं तो बच्चों ने कोई अनुभव नहीं रहता
0: बिल्कुल। और सावन महीना को देखो खाली जरूरी नहीं कि कोई 4 महीना व्रत करे, घना जना चौमासो नावे तो 4 महीना का व्रत करे, और झाको नी नानी आवे तो वे सावन महीना का व्रत करे,
1: सही है
0: आको सावन महीना का, तो कोई नियम करे तो हरी सब्जियां नहीं खावे,
1: नहीं खावे
0: हाँ, पचे दाल भाजी बेसन सूखी सागा चना कठोरी ऐसी चीजा खावे, पर हरी सब्जी नहीं खावे,
1: नहीं खावे तो सब अलग अलग तरह की करे
0: हाँ। और घना जना आजकल मैं तो देखियो हूँ कंचन के महिला सब ग्रुप बना बना अनभी स्नान पे जावे
1: हाँ।
0: कोई पुष्कर का स्नान लेवे हाँ। कोई हरिद्वार का स्नान लेवे
1: हाँ।
0: हरिद्वार हर पूनम के हर अमावस्या,
1: तू बोले रही है तो मने धीरे धीरे याद आवे रही हाँ, मैं दे मैं अड़ू देखी हुए
0: मारे फोन आयो मारी एक और सहेली है जिको हर अमावस्या पे स्नान करवा जहाँ तू आवे गई, मैं कहूँ यार हर अमावस्या में बंदू नहीं मैंने टाइम मिली तो मैं आऊँ, नहीं तो नहीं आऊँ, अगर हाँ कर दू मैं बंद जाऊँ तो हर अमावस्या जरूरी नहीं है, मारो आनी आवे बोले ठीक है जत्रा करने आप उतरे कर जे, मैं क्यों हाँ ठीक है, मैं पचे मैंने पूछो भाई तू डिटेल बता था क्यान करो, तो बोले कि मैं तो 4 महीना चौमासा का मतलब हर अमावस्या पूरा साल भर का हर अमावस्या पे स्नान करवा जानो।
1: अच्छा
0: कोई कह माँ पूनम पे जावा हर पूनम, और कोई पुष्कर जी जावे, कोई कोई तो हरिद्वार जावे तो क्या हरिद्वार, और अच्छा मतलब पूरा ग्रुप पे जावे तो आराम हो आप जाओ आओ एंजॉय भी, चलो अणी बहाने एक नारी शक्ति बहाने तो निकले घर का बहाने,
1: सही बात है,
0: नहीं तो आ खुद घर का काम कर का कमटाना ऊंची

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिलता है। तो आइए, कार्यक्रम सफलता का आधार मूल शिक्षा में आप सभी का स्वागत है, और आज के हमारे खास मेहमान राजेश जी हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। और पिछले एपिसोड में उन्होंने सफलता की वास्तविक सत्यता क्या है इस विषय को लेकर बहुत ही अच्छी बातें शेयर किया था। तो आज हम लोग चाहेंगे कि हम सफलता क्यों चाहते हैं। आज का हमारा जो विषय है, जो आप सभी को भी लग रहा होगा कि ये ऐसा कैसा विषय है ना, हम सफलता क्यों चाहते हैं, सभी सफल बनना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो चाहत है, क्या रीजन है कि हम सफल होना चाहते हैं या सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इसके इर्द गिर्द हम लोग बातचीत करेंगे। और आशा करूंगा आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, एक नया जो है आयाम आपको मिलने वाला है आज के इस विषय को सुनने के बाद। तो आइए राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में सफलता का आधार मूल्य शिक्षा में।
1: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया।
0: चलिए, मेरा सवाल वही रहेगा कि हम सफलता क्यों चाहते हैं, इस विषय पे क्यों बोलना चाहते हैं आप?
1: आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सब सफल होना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम सफलता क्यों चाहते हैं, चाहना ही क्यों है, ये इच्छा ही क्यों है कि हम सफल ही हों। तो इसके पीछे पहले हम थोड़ा, जैसे हमने हमारा जो पहला एपिसोड हुआ
0: जी जी जी जी,
1: उसमें हमने चर्चा की थी, तो आज भी थोड़ा उसको आगे बढ़ाते हैं ताकि हम उसको क्लियर कर सकें और हमारे जो सुनने वाले श्रोतागण हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबको समझ लग सके और उसको हमारे पिछले एपिसोड के साथ वो लिंक कर सके। तो एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं।
0: जी जी जी।
1: जैसे फॉर एग्जाम्पल, सफलता क्यों चाहते हैं लोग? वैसे दुनिया में देखते हैं कि लोग सफल हैं, एक बहुत बड़ा जो ड्रीम हमारे आजकल के यूथ्स के मन में है या जो मीडिया में दिखाया जाता है, नॉर्मली एड्स में दिखाते हैं, कोई सफल व्यक्ति होता है तो दिखाते हैं उसने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी होती, कोट पैंट पहना होता है, बहुत बड़ी गाड़ी होती है, बहुत बड़ा घर होता है, बंगला होता है, वो ऐसे चलता है जैसे पता नहीं उसको दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति वही हो। तो बच्चों के मन में या स्टूडेंट्स के मन में, यूथ्स के मन में ये होता है कि सफलता माना कि बहुत सारा मेरे पास धन हो जाए, पैसा हो जाए, पैसा कमा लूंगा, या कोई मैं जो बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या जो उस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, वो मैं बन जाऊंगा। या फिर तीसरा, एक तरह का हम कहें, जब हमने स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में जाकर के पूछा तो कहते हैं हम इसलिए सफल होना चाहते हैं ताकि हमारे पेरेंट्स का नाम होगा, मान होगा, शान होगा, या हमारा भी मान शान होगा। लेकिन अल्टीमेटली जब हम उनसे ये पूछते हैं कि अभी अगर आपके पास धन होगा तो क्या होगा, आप कहते हैं बहुत बड़ा पैसा होगा तो बहुत बड़ी गाड़ी होगी, अच्छे कपड़े होंगे, अच्छा उससे क्या होगा, बहुत बड़ी गाड़ी होगी तो फिर हम आराम से रहेंगे, घर होगा तो आराम से रहेंगे, बहुत बड़ा घर होगा तो अच्छा आराम से रहेंगे तो उससे क्या होगा,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अच्छा उससे हमें शांति रहेगी, खुशी रहेगी और संतुष्टता रहेगी, अच्छा खुशी रहेगी, शांति रहेगी, संतुष्टता रहेगी तो फिर क्या होगा, तो फिर उनके पास कोई उत्तर नहीं होता।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो अल्टीमेटली उनसे हम जब ये सवाल पूछते हैं कि अगर आप किसी प्रोफेशन में भी हो तो इंजीनियर बन जाओगे तो फिर क्या, सपोज वो कहता है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, अगर इंजीनियर बन जाएंगे तो फिर क्या होगा, अच्छा नौकरी मिल जाएगी बहुत अच्छी मेरे को, मैं बहुत अच्छी जॉब करूंगा, बहुत अच्छी से क्या मतलब है, जिसमें ज्यादा पैसे हो, ज्यादा पैकेज मिले, 40 लाख, 50 लाख, तो ज्यादा पैसे मिलेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वही बात कि बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, माँ बाप आराम से रहेंगे, फिर क्या होगा, फिर हम आराम से रहेंगे, आराम से क्या मतलब है, खुशी होगी, शांति होगी, संतुष्टता होगी। तो ऐसे ही जब उनको पूछते हैं, माँ बाप को इज्जत मिलेगी तो फिर क्या होगा, हमें भी इज्जत मिलेगी ना, अच्छा इज्जत मिलेगी तो क्या होगा, स्वाभिमान होगा, स्वाभिमान से क्या मिलता है, स्वाभिमान से अपने आप को संतुष्टता मिलती है, सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। तो अल्टीमेटली सफलता क्यों चाहते हैं, क्योंकि हम खुशी चाहते हैं,
0: शांति
1: चाहते, प्यार चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहां ये आ रही है कि हम बाहर से चाहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: हम दूसरों से चाहते हैं, हम चाहते हैं पैसे से हमको खुशी मिल जाए, हम चाहते हैं हमें प्रोफेशन से खुशी मिल जाए,
0: बिल्कुल,
1: हम चाहते हैं कि दूसरे हमें दें। जैसे उन्होंने कहा कि जब मैं बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा या मेरा बड़ा घर होगा, जैसे कई बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने हमें जवाब दिया कॉलेज में कि अपने लिए वो कुछ नहीं करना चाहते, बट दे हैव ए ड्रीम फॉर द पेरेंट्स, अपने माँ बाप के लिए कुछ बन के दिखाना चाहते हैं। तो वो इज्जत चाहते हैं।
0: आई थिंक मुझे लगता है राजेश जी, आपने जो बात छेड़ी है और इस पर लग रहा है कि हम लोग अगर अल्टीमेटली हम खुशी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, लेकिन बात हो जाती है उसको, उसका जो मेन सोर्स है उसको ना जानकर हम आधारित हो रहे हैं, डिपेंडेंसी की तरफ जा रहे हैं। पैसा होगा तो ये होगा, फिर ये करने से ये होगा, मना ऑलवेज हम लोग डिपेंड कर रहे हैं बाहर की चीजों से।
1: राइट
0: और हमेशा हमारी जो चाहना है वो अंदर की है, शांति प्रेम की,
1: राइट,
0: जो कहीं बिकती नहीं है और मिलती नहीं है बाहर में।
1: राइट राइट।
0: तो शायद यहां ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, तब जाके हम लोग जो है सफल होने का सही अर्थ को समझ सकते हैं।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। आशा करूंगा हमारे विद्यार्थी मित्र, अगर आप सुन रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको ये जो विषय है, मैंने कहा था कि आपको एक अंतर्दृष्टि मिल जाएगा, एक इनसाइट की तरफ आपका जो है फोकस राजेश जी आपको करना चाहते हैं, तो शायद आप उस फोकस की तरफ ध्यान देंगे। अगर आप अपना टारगेट क्या है, आपको क्या चाहिए, अगर इस पर आप अगर फोकस करेंगे तो वो चीजें तो बाहर से मिलनी ही नहीं है। फिर इसका मतलब हमारा जो हम जो सफल होना चाहते हैं, चाहे पैसा कमा लिया, गाड़ी बंगलो वगैरह सब कुछ आ गया, उसके बाद भी हम कहीं ना कहीं फिर भी हमारा जो पर्पस है वो क्लियर नहीं होगा।
1: राइट
0: तो उस पर्पस तक पहुंचने के लिए हमें जो है कुछ और चीजें करनी है, जो राजेश जी ही शायद बताने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग अब सफलता क्यों चाहते हैं ये तो आप समझ गए होंगे, इसके पीछे का जो मोटो है वो आपको पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, राजेश जी सुनाइए।
1: तो हमने सफलता को, जैसे हमने अभी जाना कि खुशी है, प्रेम है, शांति है, आनंद है, संतुष्टता है, हम ये चाहते हैं, लेकिन हम बाहरी रूप से चाहते हैं और हमने इसको कंडीशनड कर दिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: कंडीशन माना ये होगा तो ये होगा, जैसे हमने कल माइंडसेट की बात की थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: कि मैं अगर 1000 रुपया कमाऊंगा तो ही मैं खुश होऊंगा, लेकिन हमने देखा था कि एक 210 रुपये कमाने वाला व्यक्ति भी, जिसने 800 रुपये कमाया, उससे क्या है, वो खुश है। तो हमने कंडीशनड कर दिया है अपने आप को।
0: बिल्कुल।
1: कि मैं अगर इंजीनियर बनूंगा तो ही मैं खुश हो सकता हूं, अगर मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा तो मैं खुश नहीं हो सकता। कंडीशन कर दी, शर्त रख दी हमने कि ये होगा तो ही ये होगा, लेकिन ये भी माइंडसेट है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये प्रश्न बहुत बड़ा है, तो फिर सच्ची शांति, खुशी, आनंद है कहां? बाहर तो हम भटकते ही रहेंगे।
0: बिल्कुल।
1: अगर आज ये है तो कल ये है, परसों ये, हमारी नई नई कंडीशंस बनती रहती हैं। अगर आज आपने, जैसे मान लिया 12th के स्टूडेंट है, आपने डिसाइड किया 90% मार्क्स आएंगे तो मैं खुश होऊंगा, नहीं आए तो आप दुखी, आ गए तो आप खुशी। उसके बाद आपने नई एक माइंड सेट कर लिया कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरे को यही IIT में एडमिशन चाहिए
0: और यही जगह पे चाहिए
1: और यही, और उस जगह पे नहीं मिला मेरे को, किसी छोटे से कॉलेज में मिल गया तो मैं दुखी। हमने तो यहां तक देखा है कि स्टूडेंट सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं। अरे मेरा तो लाइफ का ड्रीम ये था, लेकिन उनको ये समझ नहीं आती कि ड्रीम मेरा क्या है। क्या मुझे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, या अंदर जो मुझे चाहिए, क्योंकि बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो भी क्या होगा, मुझे खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, लेकिन अगर छोटे में भी मिल गया तो खुशी शांति वो कहां है? प्रश्न यही आता है ना, क्या बड़े कॉलेज में, ज्यादा पैसे में, बड़े घर में खुशी शांति आनंद है या कहीं और है? तो आजकल के स्टूडेंट जो है वो अपने आप को असफल समझते हैं, असफल इन द सेंस के मान लीजिए इंजीनियर नहीं बना, वो तो उसका मींस है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: खुशी शांति आनंद प्राप्त करने का जो आपने माइंडसेट कर लिया था वो तो उसका मींस है, लेकिन अल्टीमेट हमारा एम नहीं है। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि हमारा एम इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, अगर मैंने वो नहीं प्राप्त किया तो मैं क्या हूं, असफल हो गया। लेकिन सफलता वो नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: आज लोग पैसे को मींस मान रहे हैं, अपने प्रोफेशन को मींस मान रहे हैं, दूसरों से प्राप्त हुई इज्जत को मींस मान रहे हैं, तो यहां बहुत बड़ी गलती हो रही। इस चीज को हमें लिए समझना जो है वो बहुत बहुत बहुत जो है वो
0: जरूरी है।
1: जरूरी है।
0: राजेश जी काफी अच्छा आपने बताया, और मुझे लगता है कि यहां पर एक आत्मचिंतन की बात मेरे समझ में आ रही है कि हम लोग जो ड्रीम्स देख रहे हैं, हम लोग जो सपने सजाए हैं और जो छोटी छोटी हमारी गोल्स आते जाते हैं, और हम लोग एक के बाद एक गोल्स हमारा नया बनता जाता है, और उसमें कहीं ऊपर नीचे हो जा रहे हैं तो हम डिप्रेशन में चले जा रहे हैं या सुसाइड कर रहे हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि हम लोग अपनी जो मेन जो पर्पस है उससे भटक कर और फिजिकल चीजों में कहीं ना कहीं हम लोग अपनी इच्छाओं को रख रहे हैं और वो पूरा नहीं होने के कारण हम लोग बहुत ज्यादा जो है डिप्रेशन में चले जा रहे हैं या सुसाइड केस जैसे आपने बताया ये सारी चीजें कर रहे हैं। कई बार माता पिता की भी अपेक्षा बच्चों से रहती है कि डिस्टिंक्शन में आना चाहिए, मेरा बच्चा बना सबसे हाई अच्छा एजुकेटर, तो अब वो बच्चा अगर हाई नहीं कर पाता है, डिस्टिंक्शन में उसका नंबर नहीं आता, तो माता पिता के डर से भी बच्चे सुसाइड कर सकते हैं।
1: उसका भी कारण ये है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों से, और एक्सपेक्टेशंस बचपन से डाल दी गई। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हमारा कंपटीशन का जमाना,
0: बिल्कुल,
1: तो कंपटीशन बच्चों में आया कहां से? कंपटीशन आया बचपन से। मुझे याद है एक बार मैं स्कूल में गया, वहां पेरेंट्स की मीटिंग हो रही थी, एक फर्स्ट ग्रेड का छोटा सा बच्चा होगा। तो जैसे पेरेंट्स मीटिंग खत्म होती है, बच्चा बाहर निकलता है अपनी मम्मी के साथ, और जैसे ही उसकी मम्मी बाहर निकलती है उसको मारना शुरू कर देती है कि तू तो फेल हो गया मैथ्स में, मैंने तुझे इतने बढ़िया स्कूल में डाला, हम तेरे ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं, तू फेल हो गया। तो बच्चे को ये लग गया कि जब तक मार्क्स नहीं आएंगे
0: तब
1: मेरे को
0: मां
1: बाप प्यार नहीं मिलेगा, मेरे को चीजें नहीं मिलेगी, मेरे को खुशी नहीं मिलेगी।
0: तो ये रॉन्ग प्रोग्राम भी क्रिएट हो गया उसके साथ।
1: ये रॉन्ग प्रोग्रामिंग, ये कंडीशनिंग जो अभी आपने भी बात की कि जो हमने कंडीशनिंग कर दी है
0: जी जी जी
1: कि खुशी कहीं और है, और हमारे समाज ने ही, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे सिस्टम ने उसको जो एक अनकंडीशन चीज है जिसकी हम बात करेंगे डिटेल में, उसके बारे में बात करेंगे। पहले इस पहलू को क्लियर करें, जैसे आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट रेज किया कि व्हाट आर द रीजंस, ये कंडीशनिंग के रीजंस क्या है, ये बचपन से हम में जो है वो
0: ये ऐसे लगता है कोई एडवर्टाइजमेंट हो गई, भाई फ्री में आपको ये मिलेगा, और छोटे अक्षर में लिखा रहता है कंडीशन सप्लाइड, और वो हम पढ़ते नहीं, हम तो ऊपर की चीजों को देख रहे हैं और जंप कर दिया। जब वो कंडीशन अप्लाइड में हमको सारी चीजें पता चल जाती, अरे ये तो गड़बड़ है। तो शायद मुझे लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं आज के समय में, माता पिता हो या बच्चे हो, सभी लोग जो है ना एक टारगेट अचीव करने के चक्कर में अपने मूल्यों को, माता पिता को अपना बच्चों से प्यार है वो जताना है, जब एग्जाम में पास हो गए तो मैं अब अच्छा होगा, ऐसा थोड़ी अपन ने कंडीशन करके प्यार किया था इस बच्चे को जन्म देने का, ये थोड़ी तुमने एप्लीकेशन डाला था।
1: इसीलिए तो कोटा में बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, रीजन बीइंग कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स ने रखी है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में और बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, और उनको ये लगता है कि बच्चा मेरा आईआईटी में जाएगा, मेडिकल कॉलेज में जाएगा, एम्स में जाएगा, तो बहुत सारा धन कमाएगा, तो धन कमाएगा तो बहुत सारा पैसा होगा। हमने जो पेरेंट्स के मन में ये, हमने जो मुश्किलें झेली हैं, दुख झेले, इनको ना झेलने पड़े, लेकिन वो दुख सुख जैसे हमने लास्ट एपिसोड में पाया वो कहीं और है, और उनके मन में भी ये गलत फहमी है, उन बेचारों को भी समझ नहीं है, इसलिए ना समझ होने के कारण वो ऐसा कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लैक ऑफ नॉलेज, माना खुद का नॉलेज नहीं है, और
1: ट्रू नॉलेज है वो नहीं है, सत्य नॉलेज नहीं है,
0: नॉलेज नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, जिसके वजह से हमारा जीवन जो है एक दौड़ की तरह रन कर रहे हैं, लेकिन कहीं शांति नहीं मिल रही।
1: राइट। और एक जो दूसरा कारण मैं बताना चाहूंगा, एक साइकोलॉजिकल रीजंस है, हम सफलता क्यों चाहते हैं, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स, लेकिन एक साइकोलॉजिकल रीजंस है। जैसे एक शब्द सफलता है, जैसे सफलता शब्द हमारे माइंड में आता है, हमारे मन में आता है, तो वो सफलता शब्द जुड़ा है एक खुशी के साथ, एक शांति के साथ, एक संतुष्टता, नेचुरल है,
0: नेचुरल है।
1: और ब्रेन हमारा जो है, जिसको न्यूरो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, जो अच्छे शब्द हैं, जब हम सुनते हैं, सोचते हैं या बोलते हैं, उसका ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आता है। जैसे मान लीजिए सफलता शब्द है, वो एक पॉजिटिव शब्द है, किसी की हम प्रेज करते हैं, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने आज शर्ट बहुत अच्छी पहनी है, है ना, तुमने आज बहुत अच्छा भाषण किया है, या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम किसी की भी किस तरह प्रशंसा करते हैं, पॉजिटिव शब्द बोले जाते हैं, तो वो पॉजिटिव वर्ड जो है ब्रेन में एक पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: और उन चेंजेस को हम न्यूरो साइंटिस्ट जो हैं, जब ब्रेन की एमआरआई की जाती है, तो पता लगता है हमारे ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है उसमें एक्टिविटी बढ़ जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: एग्जीक्यूटिव स्किल्स बढ़ जाती है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ जाती है, और जिसके कारण पॉजिटिव हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स हमारे ब्लड में जो है रिलीज होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन और उसका अपोजिट क्या है, नेगेटिव शब्द। जैसे असफलता का जो नेगेटिव शब्द है वो असफलता है। जैसे ही हमारे मन में असफलता शब्द आता है, या तो हमें वो दिखता है, मन में सोचते हैं, या हमारे पेरेंट्स हमको रियलाइज कराते हैं, या हमारे दोस्त या हमारे समाज हमको रियलाइज कराते हैं कि ये व्यक्ति असफल हो गया है, इसको इज्जत नहीं मिलेगी, वो हमें इज्जत नहीं देते, वो हमें खुशी नहीं देते। कई बार हम अपने अंदर अपने आप से नहीं डरते लेकिन दूसरों से डरते हैं। दूसरों का प्रेशर होता है हमारे ऊपर, पेरेंट्स का प्रेशर, समाज का प्रेशर, कि वो हमें इज्जत नहीं देंगे, हमें रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हमको बड़ा नहीं समझेंगे, हमें अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे। तो उनके डर के कारण ही भी व्यक्ति असफल नहीं होना चाहता। वो चाहता है कि मुझे चाहिए तो चाहिए, सफलता ही चाहिए। क्योंकि ये जो असफलता वाला शब्द है, ये जो नेगेटिव वर्ड है, जब हमारे अंदर जाएगा, या तो हम उसको सोचेंगे, क्योंकि तीन कारण है, या तो आप सोचते हैं, या तो आप बोलते हैं, या आप सुनते हैं। दूसरे माना आपके माँ बाप आपको बोलते हैं, आपके दोस्त आपको बोलते हैं, आपको समाज वाले आपको बोलते हैं, तो वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है ब्रेन के ऊपर, जैसे पॉजिटिव इफेक्ट बोला पॉजिटिव वर्ड्स का, ऐसे उल्टा होता है नेगेटिव। तो जैसे पॉजिटिव वर्ड्स जाते हैं तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऐसे जब नेगेटिव शब्द जाते हैं तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल, ये जो है ये स्ट्रेस हार्मोन्स है, ये रिलीज होते हैं, जो कि हमें एंग्जाइटी पैदा करते हैं, स्ट्रेस पैदा करते हैं। और यही स्ट्रेस अगर लगातार बना रहे तो ये लॉन्ग टर्म एंग्जाइटी बन जाती है, टेंशन बन जाती है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे हमें चिंता हो जाती है, या कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कहेंगे वो उदास हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम असफलता शब्द को सुनना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली ये हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी, काफी अच्छी बातचीत आपने की आज, और मुझे लगता है कि सफलता क्यों चाहते हैं, ये आपने वास्तविक जो स्वरूप है उसके बारे में आपने बड़ी अच्छी तरह से बताया। इनसाइट माना हमारी अंतर्दृष्टि को आपने जगाने की कोशिश की इसके साथ में, और बहुत सारे पहलू हैं। मुझे लगता है कि आगे हम लोग अनेक पहलुओं पर बात करेंगे, और आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते राजेश जी, मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे।
1: मैसेज जैसे हम चाहते क्या, खुशी चाहते हैं, हम चाहते हैं शांति, हम चाहते हैं आनंद। तो उसको प्राप्त करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट मैं चाहूंगा हमारे विद्यार्थियों से या जो भी हमारे श्रोतागण हैं वो करें। हम चाहते हैं खुशी, लेकिन हम ये भी बात कर रहे हैं कि वो हमने कंडीशन कर दी, लेकिन वो अनकंडीशन होनी चाहिए, उसका निराधार होनी चाहिए, उसका कोई आधार नहीं चाहिए,
0: होना चाहिए।
1: तो उसको हम बताने से पहले हमारे श्रोतागण, हमारे विद्यार्थी इसके ऊपर प्रयोग करें, और खुद ही खुद हम चाहते हैं कि वो समझें इसको, इससे पहले कि हम अगले एपिसोड में इसके बारे में बात करें, वो इसको खुद ही समझे और जान लें, और हम जो बातें बताएं वो हमारे

0: साथ रिलेट कर सके कि हाँ ये जो बात करी हमने अनुभव कर लिया, तो उसके लिए एक उनको संकल्प देंगे कि आई एम ए हैप्पी बींग, मैं एक खुशी का सितारा हूं।
1: क्या बात,
0: आई एम ए हैप्पी स्टार। अपने आप को ये संकल्प भी देंगे और देखेंगे भी अपने मस्तिष्क के मध्य में, जैसे सितारे चमकते सबको बहुत अच्छे लगते हैं, खुशी देते हैं, तो मैं भी खुशी का सितारा हूं। आई एम ए स्टार ऑफ हैप्पीनेस। दिन में 10 बार इसको सोचें और समय मिले तो बैठ करके देखें अपने मस्तिष्क के मध्य में सितारा चमक रहा है, और बार बार उसका अनुभव करने की कोशिश करें, रियलाइज करने की कोशिश करें, न केवल स्वयं को लेकिन जो भी व्यक्ति सामने आता है घर में, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, जैसे वो सामने आए, जैसे मैं खुशी का सितारा हूं, सामने वाला भी खुशी का सितारा है। और दिन में कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करें, और सुबह भी 10 बार लिखें उठते ही, रात को सोने से पहले 10 बार लिखें, और मैं समझता हूं नेक्स्ट डे व्हेन यू विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे तो आप अपने अंदर एक अजब सी खुशी, एक अजब सी सफुर्ती, एक अजब सा उमंग और उत्साह पाएंगे।
1: चलिए राजीव जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया, और जो बातें आपने बताई हैं वो मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि हमारा जो सफलता क्यों चाहिए उसके पीछे का रीजन उनको समझ में आ गया। और आखिरी में जो संदेश में आपने बताया कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, निराधार है खुशी, प्रेम, शांति, आनंद पाने के लिए आपको किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को थॉट दीजिए, जिस तरह के थॉट राजेश जी ने बताया, आई एम अ हैप्पी सोल, मैं बहुत ही खुशनुमा आत्मा हूं, इस तरह से अपने आप से कनेक्ट होते रहें, प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह की नई बातें लेकर आपके साथ जुड़ेंगे, और फिर से एक बार राजेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और आप सभी को अपने निराधार खुशी सफलता को प्राप्त करने के लिए ढेरों खुशियां। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रुक कोई रुक रुक रुक पीछे पीछे पीछे चल भाई, स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

शांति। आज है 23 अगस्त 2026 और आज हम सभी अव्यक्त बात दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने

31 मार्च 2011 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के रूप में अपने कोटों में कोई बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं कि सबसे पहले बाबा ने क्या देखा। हरेक के मस्तक से दिव्य चमकते हुए सितारे की चमक देख रहे हैं। फिर बाबा ने देखा नैनों से स्नेह की रेखा, मुख से ज्ञान की रेखा, दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखा, हाथों में ज्ञान के खजानों की रेखा और पांव में हर कदम में पदम की रेखा। ये बाबा ने सारी रेखाएं देखी भाग्य की, लेकिन बाबा कहे इन रेखाओं में सब नंबरवार संपन्न है। इस संगम युग पर ही ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है जो भविष्य में भी चलता है, दो युगों तक चलता है। तो बाबा कहते यह संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग है और जो जितना अपना भाग्य जमा करता है उतना अनेक जन्म भाग्य का फल प्राप्त होता रहता है। संगम युग की प्राप्तियां सारे कल्प में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। ये भाग्य की रेखा तो बाबा ने देखी, लेकिन अब बाबा कहे बाप दादा क्या देखना चाहते हैं। यही देखना चाहते हैं कि हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने, स्व के ऊपर अर्थात कर्मेंद्रिय के ऊपर और मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा बन राज्य करे। बाबा पूछते हैं मन बुद्धि के ऊपर रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर आ गई है, कहीं अधीनता तो नहीं है, तो कैसे अधिकारी बन करके रहे। उसकी विधि बाबा बताते हैं कि बाप को सदा साथी बना के रखते हैं तो ये मन बुद्धि संस्कार किसी की भी ताकत नहीं जो कंट्रोल में नहीं रहे। बाबा को खाली साथी बना के रखो तो बाबा कहे ये सब कंट्रोल में रहेंगे। बाप दादा इसीलिए शक्तियों को सदा कहते हैं कि अपने कौन से स्वरूप को याद रखो तो कभी भी बाबा का साथ भूल नहीं जाए। क्या स्वरूप याद रखो? हम है शिव शक्तियां, तो शिव और शक्ति साथ है। यह स्मृति ही माया जीत प्रकृति जीत स्वतः बना देती है। तो इसलिए मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल में रखने के विधि बाबा ने बताई, बाप को साथी बना लो, शिव शक्ति कंबाइंड रूप में रहो तो माया जीत प्रकृति जीत स्वतः बना देते हैं। वर्तमान समय प्रकृति भी अपना कार्य करती रहती है। बाबा कहते प्रकृति को भी मनुष्य आत्माएं तंग करते हैं तो प्रकृति भी तंग कर रही है। आप प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना रहे हो। आपको खुशी है कि अभी हमारा राज्य सुखमय संसार जहां प्रकृति भी सुखमय है वह राज्य आया कि आया। तो बाबा उसकी भी मुबारक देते हैं, बाबा के आप तो खुश रहते हो उसकी मुबारक हो, लेकिन ऐसी खुशी हो जो दुखी और शांत है उनको अपने बाप द्वारा ली हुई किरणों द्वारा खुशी की किरणें पहुंचाते रहो। बाबा कहे साथ में खुशी है ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा राज्य आया कि आया, उसकी तो बाबा मुबारक देते हैं, लेकिन बाबा कहे ऐसी खुशी हो जो दुखी और शांत आत्माएं हैं तो बाबा द्वारा ली हुई किरणें उसमें से खुशी की किरणें उनको पहुंचाते हो। ऐसी मनसा सेवा करने का टाइम हर एक को अपनी दिनचर्या में फिक्स करना है। संगम की जो विशेष दो बातें हैं कौन से अमूल्य खजाने हैं, एक संकल्प शक्ति और दूसरा संगम का समय। बाबा ने देखा
कि बहुतों के अशुद्ध संकल्प तो कम चलते हैं, नेगेटिव तो बहुत कम चलते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प आते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक इन दोनों बातों को, समय और संकल्प दोनों के मूल्य को जान, समय को और संकल्प को सफल करो। जितना सफल करते जाते हैं अनेक जन्म उसकी प्राप्ति जमा होती है। इन दोनों बातों को अटेंशन दे, सफल कर और सफलता मूर्त बनो। फिर बाबा विशेष वरदान भी दे रहे हैं आज बच्चों को और पूछते हैं हर एक बच्चा आज से अपने को टेंशन फ्री बना सकते हो? दृढ़ संकल्प करो कि आज से अटेंशन नो टेंशन, क्योंकि बाप दादा मन जीत जगत जीत बनाना चाहते हैं। तो टेंशन तो मन में ही आती है, इसीलिए बाबा कहते अटेंशन नो टेंशन, मन जीत जगत जीत बनो। बाप का वरदान सहज मिलेगा लेकिन सिर्फ थोड़ा अटेंशन रखना पड़ेगा। बाप के वरदान की मदद का अनुभव करके देखना। टेंशन फ्री कैसा हो चेहरा? कमल पुष्प समान व खिला हुआ गुलाब के पुष्प मिसल। बाबा कहते समय प्रमाण अभी वाणी द्वारा सुनने का समय भी लोगों को कम मिलेगा, इसीलिए मनसा द्वारा और अपने चेहरे और चलन द्वारा सर्विस करो। अभी का अभ्यास आगे आने वाले समय में भी कार्य में आएगा। आजकल दुनिया में टेंशन बहुत बढ़ रहा है, आपका टेंशन फ्री का अनुभव और टेंशन फ्री के चलन और चेहरा उन्हों के आगे एक उदाहरण मूर्त बनेगा। टेंशन वालों को टेंशन फ्री का एग्जाम्पल दिखाओ तो उनको भी सहारा दिखाई दे। और उसके लिए बाबा कहते दृढ़ता अपने अंदर लाओ, क्योंकि जहां दृढ़ता होती है वहां सफलता हुई पड़ी है। कितना हिम्मत और उमंग है कि ब्राह्मण परिवार में टेंशन का नाम निशान न हो। बाबा कहे इतनी हिम्मत और उमंग है। बाप दादा ने देखा कि चाहना सब रखते हैं, करेंगे, लेकिन जब समस्या आती है तो समस्या अपना बना देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री का एग्जाम्पल बन, सबके आधार मूरत बन। मनसा शक्ति द्वारा दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दो। दो बातें विशेष आज की मुरली में बाबा ने चर्चा की है, एक तो दृढ़ संकल्प द्वारा टेंशन फ्री एग्जाम्पल बने और सबके आधार मूरत बनो, और दूसरा मनसा शक्ति द्वारा दुखी आत्माओं को खुशी का वरदान दो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने कोटों में कोई में भी कोई बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। बाबा के चुने हुए बच्चे हैं और इसीलिए बाबा कहते कोटों में कोई में भी कोई विरले। जिन्होंने भगवान को पहचाना तो ऐसे बच्चों के भाग्य की रेखाएं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर देख रहे हैं। हर एक के मस्तक से चमकती हुई दिव्य चमकते हुए सितारे की चमक देख रहे हैं। भाग्य की रेखा में क्या देखा बाबा ने? तो मस्तक पर दिव्य चमकते हुए सितारे की चमक देख रहे हैं, नैनों से स्नेह की रेखा देख रहे हैं, मुख से ज्ञान के रेखा देख रहे हैं। मस्तक से दिव्य चमकते हुए सितारे की चमक, नैनों से स्नेह की रेखा देख रहे हैं और मुख से ज्ञान की रेखा देख रहे हैं। दिल में दिलाराम के लवलीन की रेखा देख रहे हैं।
हाथों में ज्ञान के खजानों की रेखा देख रहे हैं, पांव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। हर एक बच्चा इन रेखाओं में नंबरवार संपन्न है। रेखा हर बच्चे के मस्तक में, नैनों में, मुख में, हाथों में, दिल में और पांव में है, लेकिन बाबा कहे नंबरवार संपन्न है। ऐसा भाग्य आपके बिना और किसका भी नहीं है। आपका इतना श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चे से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। बाबा ने यह भी देखा कि हर एक बच्चे के श्रेष्ठ भाग्य को चमकते हुए देख रहे हैं और यह भाग्य अविनाशी बन जाता है, दो युग तक अविनाशी बन जाता है। क्यों? क्योंकि देने वाला अविनाशी बाप है। इस संगम युग पर ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है जो भविष्य में भी चलता रहता है। बाबा कहते हैं इस संगम युग में इतना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है जो भविष्य में भी दो युगों तक चलता रहता है। यह संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग है। जो जितना अपना भाग्य जमा करता है उतना अनेक जन्म भाग्य का फल प्राप्त होता रहता है। भगवान की भी खुली ऑफर है, जितना जमा करना चाहो कर लो, अनेक जन्म उस भाग्य का फल प्राप्त होता रहता है। इस संगम युग की महिमा आप बच्चे ही जानते हैं। संगम युग की प्राप्तियां सारे कल्प में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। संगम युग की प्राप्ति सारे कल्प में बाबा कहे अति श्रेष्ठ है। बाप दादा देख रहे हैं, हर एक बच्चा इस संगम युग की प्राप्तियों से कितना संपन्न है। ये बाबा देख रहे कितना संपन्न है। आप सभी भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव में सदा रहते हो या कभी कभी रहते हो। अविनाशी बाप है तो प्राप्तियां भी अविनाशी है। बाप दादा हर बच्चे को किस रूप में देखना चाहते हैं जानते हो ना। बाबा ने इतना भाग्य दिया, अविनाशी दिया, जितना प्राप्त करना चाहो कर लो, बाबा कहे, लेकिन बाबा क्या देखना चाहते हैं ये तो जानते हो ना। तो बाप दादा हर बच्चे को किस रूप में देखना चाहते हैं जानते हो ना। बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने। क्या देखना चाहते हैं? कि मेरा हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने, स्व के ऊपर अर्थात कर्मेंद्रिय के ऊपर, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर राजा बन राज्य करे। ये बाबा की चाहना है कि मेरा हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा बने और स्व के ऊपर यानी ये स्थूल कर्मेंद्रिय के ऊपर और सूक्ष्म कर्मेंद्रिया मन बुद्धि संस्कार के ऊपर भी राजा बन राज्य करे। ये भगवान की चाहना है। भविष्य में तो राज्य अधिकारी बनेंगे लेकिन अभी स्वराज्य अधिकारी राजा बने, ये बाबा की चाहना है। कोई भी कर्मेंद्रिया अपने कंट्रोल में हो, क्योंकि बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना प्राप्त हुआ है। कोई भी कर्मेंद्रिय बाबा कहे अपने कंट्रोल में हो, क्योंकि बाबा से हमने सर्व शक्तियों का खजाना प्राप्त किया हुआ है, अर्थात कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर भी हमारे पास है। तो बाप दादा हरेक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी राजा रूप में देखने चाहते हैं। तो आप सभी स्वराज्य अधिकारी बने हो? पूछते हैं। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बने हो जो भगवान देखना चाहते हैं। मन बुद्धि के ऊपर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर आ गई है,
अधीनता तो नहीं है, अधिकारी है। जब बाप दादा को साथ में रखते हैं, अकेले नहीं बनते हैं, बाप को सदा साथी बना के रखते हैं, तो यह मन बुद्धि संस्कार किसी की भी ताकत नहीं जो कंट्रोल में नहीं रहे। बहुत सुंदर विधि बाबा ने बताई कि इसको अपने कंट्रोल में कैसे रखना है, मन बुद्धि संस्कार को। तो भगवान को साथी बना लो, जहां भगवान का साथ होगा वहां किसी की भी ताकत नहीं, जो ये तीन सूक्ष्म शक्तियां भी हमारे कंट्रोल में न रहे। इसलिए बाप दादा शक्तियों को सदा कहते हैं कि अपने कौन से स्वरूप को सदा याद रखो, जो कभी भी बाप का साथ भूल नहीं जाए। बाबा हर बच्चों को कहते हैं अपने कौन सा स्वरूप याद रखो, जो कभी भी बाप का साथ भूल नहीं जाए। वह है शिव शक्ति है। बाबा कहे ये स्वरूप अपना सदा याद रखो कि हम शिव शक्तियां हैं, शिव और शक्ति साथ है। ये स्मृति माया जीत, प्रकृति जीत स्वतः बना देती है। माया जीत, प्रकृति जीत यानी हमारी आंतरिक प्रकृति, जिसको दूसरे शब्द में नेचर कहते हैं, तो हमारे स्वभाव संस्कार के ऊपर सहज जीत बन सके। तो यह स्मृति कि हम शिव शक्ति है, यह स्मृति माया जीत, प्रकृति जीत स्वतः बना देती है, क्योंकि बाप दादा ने सुना दिया है कि वर्तमान समय प्रकृति अपना कार्य करती रहती है। क्योंकि प्रकृति को भी मनुष्य आत्माएं तंग करते हैं, तो प्रकृति भी तंग करती है। कर्मों का हिसाब तो बन ही जाता है। मनुष्य ने प्रकृति का शोषण किया तो प्रकृति फिर अपना बदला तो जरूर लेती है। आजकल देखते हो कि प्रकृति कहां ना कहां अपना कार्य करती रहती है, लेकिन आप प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना रहे हो। बाबा इसीलिए बच्चों के अंदर ये नशा चढ़ाते हैं कि आप कौन हो, प्रकृति जीत प्रकृति को भी सतो प्रधान बना रहे हो। लोग तो प्रकृति की हलचल देख डरते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन आप जानते हो कि अच्छे ते अच्छा होगा, क्योंकि अभी यह संगम युग सृष्टि चक्र का अमृत वेला चल रहा है। घोर अंधेरी रात कलयुग की पूरी हो रही है, सतयुग दिन आरंभ होगा, लेकिन उसके पहले संगम युग ये सृष्टि चक्र का अमृत वेला चल रहा है। तो अमृत वेले के बाद क्या होता है, सवेरा अंधकार खत्म हो रोशनी आ जाती है। तो आपको खुशी है कि अभी हमारा राज्य सुखमय संसार, जहां प्रकृति भी सुखमय है, वह राज्य आया कि आया, खुशी है ना? पूछते बाबा, खुशी है ना? जिस राज्य में दुख अशांति का नाम निशान नहीं होगा, क्योंकि अभी संगम पर आप प्रकृति जीत बन रहे हो, तो सभी को खुशी है ना? किसकी, किस चीज की खुशी है? बाबा कहते बोलो, हमारा राज्य आने वाला है, हमारा सुखमय राज्य आने वाला है, उसकी खुशी है। ये खुशी है जो इस खुशी में रहते हैं कि हमारा राज्य आया कि आया। वह हाथ उठाओ, सभी ने हाथ उठाए तो बाबा कहते बहुत अच्छा, आप तो खुश रहते हो, उसकी मुबारक हो, लेकिन ऐसी खुशी, अपनी खुशी, आपके भाई बहन जो दुखी अशांत है, उसको अपने बाप द्वारा मिली हुई किरणों द्वारा खुशी के किरणें पहुंचाते हो? पूछते बाबा कि क्या आपकी खुशी, आपके भाई बहन जो दुखी अशांत है,
उसको अपने

पाप द्वारा ली हुई किरणों द्वारा खुशी की किरणें पहुंचाते हो। बाप दादा ने कहा था कि ऐसी मनसा सेवा करने का टाइम हर एक को अपनी दिनचर्या में फिक्स करना है। ऐसी मनसा सेवा करने का टाइम हर एक को अपनी दिनचर्या में फिक्स करना है। जैसे और कार्य के लिए टाइम फिक्स किया हुआ है, ऐसे अपनी खुशी की खुराक द्वारा दुखी आत्माओं को मनसा शक्ति द्वारा थोड़ा बहुत वरदान देकर के उन्हों को भी खुश करो। खुशी की किरणें देते हुए वरदान देकर के उनको भी बाबा के खुश करो। तो जिन्होंने अपना टाइम मनसा सेवा के लिए फिक्स किया है वह हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्होंने भी नहीं किया है थोड़े, लेकिन हर एक को इसका टाइम फिक्स करना है, क्योंकि अपने ही भाई बहन है ना, तो तरस पड़ता है ना कि तरस नहीं पड़ता है ना। और बाप दादा सभी को देखना चाहते हैं कि संगम की जो विशेष दो बातें हैं, जो अमूल्य है, कौन सी दो बातें हैं संगम युग की अमूल्य? एक संकल्प शक्ति और दूसरा संगम का समय। तो बाबा कहे, बाप दादा क्या देखना चाहते कि संगम की ये विशेष दो बातें जो अमूल्य है, संकल्प शक्ति और संगम का समय, क्योंकि संगम के समय में एक जन्म में अनेक जन्म की प्रारब्ध बनानी है। तो आजकल बाप दादा ने देखा है कि बहुतों के अशुद्ध संकल्प कम चलते, लेकिन व्यर्थ संकल्प आते जाते हैं। बाबा ने ये बहुत अच्छे से देखा कि अशुद्ध संकल्प इतने नहीं होते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत आते जाते हैं। तो इस एक जन्म के मूल्य के अनुसार व्यर्थ संकल्प अभी फिनिश होने चाहिए, क्योंकि संगम युग के महत्व के हिसाब से एक सेकंड कई कीमती समय का अधिकार दिलाती है। एक एक सेकंड संगम युग के कीमती समय, भविष्य का कीमती समय का अधिकार दिलाता है। इसलिए हर एक इन दो बातों के, समय और संकल्प दोनों के मूल्य को जान, समय को और संकल्प को सफल करो। दोनों के मूल्य को जानकर बाबा कहते, समय को और संकल्प को सफल करो। जैसे स्थूल खजाने को सफल करते हो, जानते हो कि एक जन्म में सफल करने से अनेक जन्म उनकी प्राप्ति जमा होती है, ऐसे इन दोनों बातों को अटेंशन दे, सफल कर सफलता मूर्त बनो। बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष एक वरदान दे रहे हैं। कौन सा वरदान दे रहे हैं? बाबा ने ये तो जरूर बताया कि संगम युग के अमूल्य खजाने, एक संकल्प एक समय, दोनों को अब सफल करना है, व्यर्थ नहीं जाने देना है। और उसके लिए आज बाबा विशेष एक वरदान दे रहे हैं कि हर एक बच्चा आज से अपने को टेंशन फ्री बना सकते हैं। पूछते बाबा कि हर एक बच्चा आज से अपने को टेंशन फ्री बना सकते हो? दृढ़ संकल्प करो कि आज से अटेंशन नो टेंशन। अटेंशन जरूर रहे, सावधान जरूर रहे, नो टेंशन। बाप दादा बच्चों को जब टेंशन में देखते हैं ना, तो सोचते हैं, क्या सोचते हैं बाप दादा? अभी अभी इस बच्चे का फोटो निकाल के भेजे तो खुद ही समझ जाएगा मैं क्या बन गया हूं। बाप दादा मन जीत जगत जीत बनाना चाहते हैं। टेंशन किसमें? मन में ही तो आता है ना। तो बाबा हमें मन जीत जगत जीत बनाना चाहते हैं,
और हम मन में क्या भर रहे हैं, टेंशन भर रहे हैं। इसलिए बाबा कहे टेंशन किस में, मन में ही तो आता है ना। तो आप तो राजा हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो ना, क्या मन आपका है या मन मालिक है? पूछते बाबा, क्या मन आपका है और आप मालिक हो मन के, या मन मालिक है? आप क्या कहते हो? सारा दिन मेरा मन कहते हो ना, मालिक तो नहीं है ना, मन मालिक तो नहीं है ना। कौन हिम्मत रखता है? बाप का वरदान सहज मिलेगा। बाबा वरदान देना चाहता है, किसको देना चाहते हैं? जिन्होंने अपने आप को टेंशन फ्री कर दिया है, ऐसे बच्चे को आज बाबा वरदान देना चाहते हैं। तो बाबा का वरदान सहज मिलेगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा अटेंशन रखना पड़ेगा। बाप के वरदान की मदद का अनुभव करके देखना। सभी का चेहरा जब भी देखो तो कैसे दिखाई दे? टेंशन फ्री, कमल पुष्प समान व खिला हुआ गुलाब के पुष्प मिसल, ऐसा चेहरा बाबा देखना चाहते हैं। टेंशन फ्री, कमल पुष्प समान या खिला हुआ गुलाब पुष्प मिसल। बाप दादा ने देखा कि जो पहले काम दिया था परसेंटेज लिखने का, सभी स्थानों से कुछ कुछ समाचार आया है। पिछले संडे की मुरली में बाबा ने काम दिया था कि हमें व्यर्थ मुक्त बनना है। तो बाबा ने कहा परसेंटेज लिखा है, कुछ कुछ स्थानों से समाचार आया है, यहां भी रिजल्ट निकाली है, मधुबन में भी रिजल्ट निकाली है। अटेंशन दिया, उसकी मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। लेकिन अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि समय प्रमाण, अभी वाणी द्वारा सुनने का समय भी कम मिलेगा। इसलिए मनसा द्वारा और अपने चेहरे और चलन द्वारा सर्विस करो। अभी लोग वाणी सुनना नहीं चाहेंगे, वाणी द्वारा ज्ञान नहीं सुनना चाहेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी मनसा द्वारा और अपने चेहरे और चलन द्वारा सर्विस करो। अभी का अभ्यास आगे आने वाले समय में कार्य में आएगा। तो आज से टेंशन फ्री का संकल्प कर सकते हो? पूछते बाबा, आज से टेंशन फ्री का संकल्प कर सकते हो? कर सकते हो, हाथ उठाओ। टेंशन फ्री, अच्छा सभी का फोटो निकालो। सभी ने हाथ उठाया तो बाबा के सभी का फोटो निकालो, बहुत अच्छा। तो जो आत्माएं सरकमस्टेंस के प्रमाण बहुत टेंशन में रहती है, आजकल दुनिया में टेंशन बहुत बढ़ रहा है, तो आपका टेंशन फ्री का अनुभव और टेंशन फ्री की चलन और चेहरा उन्हों के आगे का आधार मूरत बनेगा। जब वो देखेंगे कि ये तो टेंशन फ्री है, इनका चलन चेहरा टेंशन फ्री है, तो उनके लिए आधार मूरत बनेगा। अगर आज दुनिया में चक्कर लगाओ या समाचार सुनो तो क्या दिखाई देता है? टेम्पररी अपने को खुश करने के साधन बनाते रहते हैं। तो टेंशन वालों को टेंशन फ्री का एग्जाम्पल दिखाओ तो उनको भी सहारा दिखाई दे। तो संकल्प किया, अपने मन में संकल्प किया कि टेंशन फ्री रहेंगे? किया? पूछते बाबा, दृढ़ किया या साधारण किया? दृढ़ संकल्प किया या साधारण संकल्प किया? जहां दृढ़ता होती है वहां सफलता हुई पड़ी है। करेंगे नहीं, करना ही है, करेंगे नहीं लेकिन करना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प पसंद है? इसमें हाथ उठाओ। बाप दादा ने एक बात देखी है कि हाथ उठा के बहुत खुश कर देते हैं। हाथ उठा के खुश तो किया, लेकिन अभी क्या करेंगे? दृढ़ संकल्प, साधारण संकल्प,
इसमें रात दिन का फर्क है। दृढ़ संकल्प।